0: उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के, और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है, तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गोपवीतकम् कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थत शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया, पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सबके बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख भेड़िया नगारे बड़े ढोल गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है। कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्त्या नीराजनम अथा करोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
2: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
2: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखला से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि, जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता, जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
2: बड़े आराम से।
1: हाँ,
2: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
2: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है ख़त्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फ़ोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
1: हो जाते हैं।
2: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
2: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
2: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं,
2: अभी भी जो होते हैं
1: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
2: लीला जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 सुबह के 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थीं, नगर की वधुएँ थीं, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला, वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधु की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की

0: लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी, उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, ये अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाई ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ठ सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुख सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद त्वम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्ष गणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा, तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासी च किंचन, वाच्ये महेश विषय अतिव असी तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः, अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत तो सुंदर देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रांगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर है हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
3: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना

0: पुराणो न हनते हन्यामाने शरीरे, अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मनुष्य शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
1: हैं बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म, कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP, अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है, इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है, ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव

0: लेके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूँ तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुत्के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं
0: उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और

0: उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरती प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों न प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो।
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाए, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज. क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है. इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या,
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी मनुष्य को देना.
1: आपसे देख ले, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग. दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देयर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रिएचर्स, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ, बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें nourish.
1: और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know?
1: ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इमेजिन हाउ द डे विल पास एंड देन आई एम शेयरिंग एंड गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे मुझे कैसा लगेगा. Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है. I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माय वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ इज माय वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबॉडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माय रोल इज ओनली टू.
0: वंडरफुल, यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होगी।
1: आई फील ब्यूटिफुल
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्पररी चीजों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज को सुनना मतलब इस टेम्पररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीजें ढूंढी हुई है इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके, एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके, जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, that's good for me, then I should follow that. So be quiet, let go, let be, accept everything, pass on to everyone as they come and listen inside. Simple things. सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट, तो वे सिंपल
0: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज़ मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज है। But what we didn't realize is that every time we are inflicting so much of pain on ourselves, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय इरिटेशन, या इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन, इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया, तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस I am creating this. आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू करते, वॉच इट एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी, सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज द सेंटर कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए एंड देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान
1: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस चाहिएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो, एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से है। जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
2: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता ये कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो इट इज जस्ट वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड, यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है.

0: कुछ करे नहीं, बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है? ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट, होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है नहीं, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो अब देखो, औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कह सकते हैं
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आज भी ढेर सारी बातें लेकर के आई हूं। आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन आ जाती हूं आपके पास। और आज ना मैं आपको बता दूं, कुछ खास जानकारी आपके साथ साझा करने वाली हूं। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आज ना ये जो दिन है ना, मतलब संडे वाला दिन ना, ऐसा होता है ना कि जितने भी पेंडिंग काम है फटाफट से कर लिए जाए, या फिर कभी ऐसा होता है कि पेंडिंग काम तो ये तो काम तो होते ही रहेंगे, इस काम को छोड़ो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। आपका क्या इरादा है, क्या हो रहा है कि जल्दी से बताइए मुझे कि संडे वाले दिन क्या कुछ खास हो रहा है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कोई गाना सुना चाहते हैं, फरमाइश है तो जल्दी से पूरी कर सकती हूँ मैं गाना सुना के आपको। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और साथ ही आपको बता दूँ, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप. और साथ ही मैं आपको बता दूं, और ज्यादा हमारे साथ आप ज्यादा जुड़ सकते हैं, ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही जगह, एक नहीं बल्कि दो दो जगह, इंस्टाग्राम फेसबुक के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और रेडियो मानव रचना जो है इस नाम से जो है आप हमें खोज सकते हैं और ढेर सारी जानकारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी बहुत सारी. चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु।

0: अय्या सुकु सुकु
1: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और आज है संडे का दिन, संडे वाले दिन ढेर सारी बातें लेकर के आती हूँ। और मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं डॉक्टर राजेश, काफी दिन बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर राजेश एक योग एक्सपर्ट है, योग गुरु है और हेल्थ एक्सपर्ट है और साथ ही साथ एक हैप्पीनेस कोच भी है। तो चलिए आज उनसे बहुत सारी बात करेंगे। फियर ऑफ फेलियर के बारे में एक बहुत ही खास टॉपिक है, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं और कैसे जो है ये हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है, क्या इम्पैक्ट इसका आता है, वो सारी बातें आज होंगी। लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डॉक्टर राजेश हमारे आज के एक्सपर्ट से करेंगे बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। आज बहुत ही खास एक टॉपिक के साथ ना मैं आरजे साक्षी आपके पास आ गई, और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ आकर के बहुत टाइम बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज एक बहुत ही खास एक्सपर्ट हमारे, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि एक योग गुरु हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आपसे मिलकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद।
0: डॉक्टर राजेश, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और काफी दिन बाद आप आए हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: एक लंबा टाइम जो है वो आप ध्यान में थे, और मैं कहूँगी यहाँ पर तो कैसा लग रहा है, क्योंकि हम जब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं, आपको कैसा लग रहा है आज आके?
1: मैं थोड़ा सा यूरोप की ओर था, छुट्टियों में भी था और थोड़े वर्कशॉप वगैरह सारे सब ले रहा था और अच्छा लग रहा था। रिफ्रेश, रिजुविनेट, रिक्रिएट, एक कल्चर से दूसरे कल्चर की ओर जाना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, उनके साथ काम करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फेलियर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे माइंड में डिसअपॉइंटमेंट, एम्बैरेसमेंट और लोग क्या सोचेंगे, ये कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन कभी कभी अगर हम नोटिस करें कि हम सक्सेस पाने की डिजायर से ज्यादा फेलियर से बचने की कोशिश हम क्यों करते हैं, और आज इसी बारे में हम आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। क्योंकि कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज इसलिए छोड़ देते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि हम फेल ना हो जाए। कभी कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हमें डर लगता है, माइंड में वर्स्ट केस क्या आ सकता है, वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, उसे इमेजिन करते हैं। तो क्या फेलियर सच में इतना स्कैरी है, या फेलियर का जो फियर है ये हमें अपनी पोटेंशियल अचीवमेंट से कितना दूर कर सकता है, रोक सकता है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो डॉक्टर राजेश, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, फेलियर का जो फियर है एक्चुअली होता क्या है, और हम फेल होने से इतना डरते क्यों है?
1: देखिए, ये एक प्रेशर हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। और हम शुरुआत करेंगे गीता के उस श्लोक से जहाँ पर कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इस पॉइंट को अपने दिमाग में अगर रखिएगा तो आपको फेल होने से कोई डर नहीं लगेगा। आप
0: अर्थात
1: आप बहुत बढ़िया धनुर्धर बनिएगा, बहुत बढ़िया आप संघर्ष करने वाले बने, संघर्षशील बनना है। हम संघर्ष करेंगे। अगर इतिहास के पन्नों में देखेंगे, एक बार राजा हार जाता है, फिर दूसरी बार चढ़ाई करता है, फिर तीसरी बार, हर फेल्योर के पीछे एक नया सुझाव है, एक नई उम्मीद है, एक नया किरण है। इसलिए अंधकार है तो प्रकाश आएगा। हमें आशावादी बनना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है जीवन में, मनुष्य को ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ठीक है, हम फेल हो गए अभी तत्काल में, हम फिर से तैयारी करेंगे, आगे की ओर फिर आएंगे अच्छी तरह से। हो सकता है मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की एक खामी रह गई है, इस खामी को हम करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फेल्योर से और फेल होने से डरना नहीं है। फेल्योर होना और फेल होना दोनों दो चीजें हम यहाँ बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। फेल्योर में हमारा जो है सारे जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, वो कोलैप्स हो जाती है। फेल हो गए फिर तैयारी करेंगे। वो चीज आप बचा के रखिए, अपने अंदर का जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, लड़ेंगे
0: बिल्कुल,
1: और अच्छी तरह से लड़ेंगे और अच्छी उम्मीद के साथ लौटेंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक माइंड के साथ आपको जीना है, आशावाद को अपनाइए।
0: डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, और बचपन में पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो फेलियर के जो फियर को कैसे डेवलप करती है, क्योंकि शुरुआत जो है वो कहीं ना हमारे पेरेंट्स से आती है कि उस कमरे में गए पता उस कमरे में भूत है, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फियर है ये आ कहाँ से रहा, ये डर पैदा कहाँ से हो रहा है?
1: ये जो आपके प्रश्न है साक्षी जी ने, इसी प्रश्न में जवाब भी है। आपके प्रश्न और उत्तर दोनों साथ हैं। ये जो समाज है, परिवार है, यही हमारे अंदर में नकारात्मक चीजों को पैदा करता है। जिसने कभी भूत के बारे में, नकारात्मक शब्दों के बारे में न सुना है उसे क्या पता। जिसने सब दिन गंगा के पानी का सेवन किया हो उसे समुद्र का खारापन का क्या पता कि समुद्र कैसा टेस्ट है। तो हमें टेस्ट कराया जाता है समाज में इन सब चीजों के बारे में, कहानियों के माध्यम से। उस समय तो लगता है कि जो कहने वाले हैं वो छोटा सा मोमेंट आपके अंदर लाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कॉशस हो जाइए, लेकिन वही धीरे धीरे आपके मन के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में वो लंबे समय तक रह जाता है और वही आगे आपको फिर तनाव क्रिएट करता है, टेंशन क्रिएट करता है, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं आप और एंग्जस हो जाते हैं। तो एक तो ये बात हुआ, दूसरा क्या कि फैमिली के जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत खराब चीज है। हम 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे पर हम अपना प्रेशर जो 40 इयर्स 45 इयर्स का है प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं। हमने आईपीएस यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, आईपीएस ऑफिसर आईएएस हमने नहीं बना, अब हम वो बच्चे पर लगे हुए हैं बचपन से ही कि नहीं ये भी ये इसको इसी तरह से पढ़ना है, ये इसकी यही लाइन होगी। बच्चा म्यूजिक पढ़ा मैं एक्सपर्ट है, लेकिन गार्जियन कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो ये सारी सब चीजों, बच्चों को स्वतंत्र रूप से आप अवसर दीजिए ग्रो होने का और उनके अनुसार आप उनको चुनने दीजिए उनकी इच्छा के अनुसार, तब फिर उनको जीवन में आगे बढ़ने में आनंद आता है। और जीवन इसी का नाम है। और एक चीज आपको

0: और भी बताना चाहता हूँ, खास करके मैं जो आपके मानव रचना के जो श्रोतागण हैं, कि आपके जो बच्चे हैं ना, आप सिर्फ केयर टेकर हैं अपने बच्चों का। ये बच्चे आपके नहीं हैं, यह एक जर्नी पूरा करने के लिए एक सोल आया है और वो अपना जर्नी पूरा करेगा, अपने दायित्वों को पूरा करेगा और वापस जाएगा। तो अगर गार्जियन क्या होता है, यहाँ पर भूल कर देते हैं, पेरेंट्स भूल कर देते हैं, सोचते हैं ये बच्चे मेरे हैं, अपने हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यू डोंट ऑन देम, यू आर ओनली केयर टेकर। इसलिए बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीने दीजिए। आपका काम है उन्हें रोशनी दिखाना, ना कि उनके जीवन से उनकी रोशनी को छीनना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपसे जरूर पूछूंगी। तो तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ हैं जो कि एक हैप्पीनेस कोच हैं और बहुत सारी हम उनसे बातें कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ, क्या पास्ट में हुई एक फेलियर की मेमोरी फ्यूचर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है?
1: जरूर, ये बिल्कुल सत्य है। एक फेलियर जो है आपको कमजोर भी बना सकती है और मजबूत भी बना सकती है। आप कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपका चैलेंज किस प्रकार से आप अपने ऊपर लेते हैं। अगर हम फेलियर हो गए अपने जीवन में, इसका मतलब यह नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं हमारे लिए। हमें यहाँ से तैयारी के साथ फिर से वापस लौटना है। तो आपकी सोच आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपकी मनोदशा क्या है, ये सारा सब चीज निर्भर करता है। इसलिए अपने मोरल को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। अपनी जो आंतरिक शक्ति है, जो अपना करेज है, उसको बनाए रखिए आगे के लिए।
0: डॉक्टर राजेश, ऐसा भी होता है कि क्या हम फेलियर को एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा इमेजिन करते हैं, इस वजह से भी हमारा फिर ज्यादा हो जाता है?
1: देखिए, फेलियर अगर हमने बहुत बड़ा देख लिया और हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है होल्ड करने का, तो हम कोलैप्स कर जाएंगे।

0: हमेशा उसको भी देखना चाहिए।
1: तो डॉक्टर राजेश, तो क्या यहाँ पर हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, क्या उनके सपने या उनको ये फियर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा जो है वो डरते हैं अपने फेलियर को लेके?
0: ये जो फियर आता है ये आउटर लेवल से आता है। बच्चे कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो गार्जियन धीरे धीरे डराने लगते हैं, देखो ये तुम्हारे पास इतना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, दिस दैट। वो जो कंडीशन हम लगाते हैं, सोशल कंडीशन, मोरल कंडीशन, वैल्यू बेस्ड कंडीशन हम लगाते हैं, जिसके कारण कि वो फियर बड़ा हो जाता है।
1: जी, तो क्या इससे जो रिस्क लेने की हमारी एबिलिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है?
0: ऑफ कोर्स, बच्चे को पूर्ण रूप से कर दिए। सारे लोगों को रिस्क तो लेना ही, नो रिस्क नो गेम। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर वापस हम दूसरे दिशा से, मैंने पहले ही कहा फेल्योर आपके दरवाजे खोलते हैं, दूसरे दरवाजे खोलते हैं। एक दरवाजा अगर बंद हुआ है तो इसका मतलब कि आपके लिए सारे दरवाजे बंद होंगे, नहीं। Once your one door is closed, 1000 doors are open for you. इस पॉइंट पर आपको जीना है। एक दरवाजे बंद होने के बाद आपके 1000 दरवाजे भी खुलते हैं। सिर्फ आपको अपनी मना स्थिति को बनाए रखिए। कबीर का बड़ा अच्छा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही आपको
1: जिता सकता है
0: और मन ही आपको हरा सकता है। इसलिए कबीर के इस पंक्ति में जीवन के सारे इस प्रश्नों का जवाब है।
1: बिल्कुल।
0: मन से कभी भी हारना नहीं है। मन से कभी भी हारना नहीं है। मन से आप जीतिए। जिस दिन आप मन से जीत लेंगे उस दिन आपने जीत लिया।
1: बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संडे का दिन है आज और बहुत सारी होती हैं बातें। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा खास है। हम बात कर रहे हैं फियर ऑफ फेलियर की। तो ये जो डर है, क्या रिलेशनशिप में भी रिजेक्शन का या फेलियर का जो फियर है वो लोगों को इमोशनली ड्रेन कर देता है?
1: ऑफ कोर्स, रिलेशनशिप में फेलियर होना जो है ना, आपको एक बार तो आपको लगेगा कि पूरा आप सिंक हो गए, अब हमारे लिए दुनिया कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप इमोशनल लेवल पर इतने ड्रेन्ड हो जाते हैं। इमोशंस ही आपकी एनर्जी बिल्डअप करती है ना, इमोशंस ही आपके पूरे हॉर्मोन्स को मेंटेन करती है। और खास करके रिलेशनशिप में जब हम आते हैं तो डोपामाइन, लोग बात करते हैं, लोग देखते हैं, लोग कम्युनिकेशन करते हैं, टच है, ये है, परसेप्शन है, ये सारा सब जो है आपके सारे हॉर्मोन्स को, अच्छे हॉर्मोन्स को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर। तो आप बहुत ही डायनामिक होते हो और हैप्पी होते हो, खास करके डोपामाइन लेवल पर है। डोपामाइन, इंडोमॉर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन लेवल ये रिलेशनशिप मेंटेन करता। तो डेफिनेटली जब आप रिलेशनशिप में आपका टूट जाना, बिखराव जब होता है, तो आप एक अंधकार के डार्क जोन में जाते हैं। उस डार्क जोन में दो तरह की बातें हो सकती है। ये समय जो है या तो आपको पूरा अंदर की ओर ले जाएगा और या तो आप वहां से फिर वापस निकलेंगे पूरी तैयारी के साथ और पूरा फ्रेश हो करके और एक नया इंसान बन करके। तो हारना जो है वो दरवाजा खत्म नहीं होता है, हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को। एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब हमारे अंदर जो सेल्फ है वो तो हमारा अलाइव है, वहां से हम आगे बढ़े। ठीक है, हम अभी थोड़ा दिन के लिए, ऐसे सब समय में आदमी को क्या करना चाहिए, उस स्थान से थोड़ा दिन के लिए ब्रेक लेना चाहिए। किसी पहाड़ों पर जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, घूमने जाइए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाइए, थोड़ा समय गुजारिए। क्योंकि आपका जब माइंड चेंज होगा, जगह चेंज होगा, एनर्जी चेंज होगी, एनवायरनमेंट चेंज होगी, तो आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। ये सबसे इजीएस्ट टेक्निक है
0: जी
1: अपलिफ्टिंग का।
0: डॉक्टर राजेश, अगर मैं बोलूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे हर हाल में सक्सेसफुल होना है, तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करती है या फिर हमारे लिए ये हेल्दी है?
1: ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तो होता है कि अफर्मेशन के साथ हम जीते हैं, आई हैव टू फिनिश माय जॉब, नो वे, मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है। नाउ यू हैव टू क्रिएट द रिसोर्सेस, आप कौन से रास्ते को अपनाते हैं उस मंजिल तक जाने के लिए, सारा सब मायने रखता है। अफर्मेशन इज ए पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन इस अफर्मेशन के साथ अगर आप गलत रास्ते को चुनते हैं तो वो फिर गलत हो जाता है। आपके पास चॉइस है, जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। अरे भाई, बहुत पैसे कमाने हैं तो क्या तुम पैसे थोड़ी खाओगे? पैसे के ऊपर क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैप्पीनेस है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे परिवार हैं, तुम्हारे बच्चे हैं। पैसे आपके जीवन में खुशियां नहीं दे सकती है। आप उस पैसे के साथ कैसे जीते हो वो मायने रखता है।
0: तो डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि अब हमारी फाइनेंशियल तौर पे बातें चल रही हैं, फाइनेंशियली बातें चल रही हैं, फियर की बातें चल रही हैं, तो इस पर भी मैं आऊंगी।
1: और फाइनेंशियल फियर तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है।
0: एग्जैक्टली, तो इसीलिए हम इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। संडे का आज दिन है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ। अच्छा, अभी हमारी फाइनेंशियल फियर की अब हम बात कर रहे हैं, तो क्या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फेलियर के फियर को और ज्यादा इंटेंस बना सकती है?
1: जी, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, इंसान के मनोबल को तोड़ती है। ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि आप समाज में हो, फैमिली में हो
0: जी,
1: परिवार में हो, और खास करके ये आज की जो आधुनिक युग है, ये चकाचौंध वाली जो युग है, और इसमें तो बहुत ज्यादा जलवे लोग बिखेरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर तो बनाती है। इसलिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको हम रिजॉल्व करके रखें। सेव मनी फॉर रेनी डेज, थोड़े थोड़े से पैसे इन्वेस्ट जरूर कीजिए। बच्चे अगर आपके छोटे हैं, छोटे मोटे पैसे जरूर इन्वेस्ट कीजिए बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए। शुरू से देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा।
0: बिल्कुल,
1: ये तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सेव मनी फॉर रेनी डेज।
0: डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल होगा आपसे कि अब चूंकि फाइनेंशियल हम फियर की बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान जो फियर को डील कर रहा है, क्या एक फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेना कि मैं लूजर हूँ, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उस फेलियर आ जाता है, तो उसके बाद ये सोच लेना कि मैं लूजर हूँ। और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, अगर कहीं पर भी वो चूक जाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि हम शायद फेल हो गए हैं। तो ये क्या साइकोलॉजिकली ये हार्मफुल है?
1: ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और ऐसे समय में परिवार को, समाज को उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि नहीं, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा ठहराव है। आई एम यूजिंग द वर्ड ठहराव। ये तुम्हारी हार नहीं है, यहाँ पर तुम ठहरो थोड़ा, और फिर अपने आप को तैयार करो, और फिर आगे की ओर बढ़ो।
0: बिल्कुल,
1: इसमें परिवार का, फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए ऐसे लोगों को। अगर उस समय अगर आप उनको कुछ भी कहेंगे कि तुम फेलियर हो, तो उनको बहुत चुभ जाता है, और वो फिर इसी चीज को मान बैठते हैं, और फिर वो जीवन में नकारात्मक दिशा की ओर जाने लगते हैं, और वो धीरे धीरे परिवार से कट ऑफ होने लगते हैं, समाज से कट ऑफ होने लगते हैं, और अपने आप को आइसोलेट करते हैं और डीप डिप्रेशन में फिर जाते हैं। ऐसे समय में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का सहारा लेना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना चाहिए, स्पिरिचुअल का काउंसलिंग भी करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, अगर यहाँ पर हम बात करें पेरेंट्स की, टीचर्स की बात करें, तो ये जो नींव है ये बचपन से ही आनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, तो वो क्या होना चाहिए? क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जब तक नहीं डील होगा, क्योंकि अभी तो हमने जान लिया कि इस तरह से ये होता है और कैसे हम जो है, क्योंकि कैसे हमें, हम पर ये इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब इसका लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, कि अब हम इससे डील कैसे करें?
1: ये जो पहली पाठशाला जो होती है ना, वो माँ का गोद है। बच्चे को माँ के गोद में जो होती है ना, जो माँ जब लोरियां सुनाती हैं, कहानियां सुनाती हैं ना, वही पहली लर्निंग है। आजकल के मॉडर्न जमाने में हम उन चीजों को मिस कर रहे हैं। वहां पर से ही आप ख्याल रखिए कि ये हमारा बच्चा है, हम इसको किसी भी प्रकार की नकारात्मक कहानियां ना सुनाएं। ये छोटी छोटी कहानियां जो है ना, बच्चों के मन के ऊपर एक गहरा छाप छोड़ देती है। क्योंकि बच्चे तो क्यूरियोसिटी में अब आएंगे, वो हर चीज की जवाब को ढूंढेंगे, हर चीजों को जानना चाहेंगे, और यही जगह है माँ का जो गोद है। कहने का मतलब कि मदर और फादर, घर जो है, घर बच्चे का पहला पाठशाला है। कि भी किसी भी प्रकार का, जैसे लोग कहते हैं ना, भूत है इधर, ये भूत है, ये सारे सब चीजें हैं, ये सब मत बताइए बच्चों को ना। क्यों आप बता रहे हैं? अच्छी चीजें बताइए ना, अच्छी कहानियां बताइए, इन सब चीजों से मत डराइए बच्चों को.
0: बिल्कुल.
1: फिर वो बेचारे जो डर जाते हैं फिर वो जीवन भर नहीं निकल पाते हैं. मैं अपने बारे में एक थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करूंगा
0: जी.
1: मैंने एक बार किसी दोस्त से भूत के बारे में बचपन में सुना था स्कूल में. तो मैंने अपने घर में पिताजी से पूछा ये भूत क्या होता है. फादर बोले भूत तो मर जाता, आदमी मर जाने के बाद वो भूत बनता है और वो तो कुछ फिजिकल एक्सिस्टेंस तो उसका होता नहीं है, एनर्जेटिकली होता है. आदमी को जलना चाहिए, डरना चाहिए उससे जिसके दो हाथ दो पैर हैं. जिंदे लोगों से डरना चाहिए, वो आपको हार्म कर सकते, वो तो बेचारे हवा में है, स्पिरिट है, स्पेस में है, वो आपको क्या हार्म करेंगे. और उस दिन के बाद से मुझे आज तक भूतों से डर नहीं लगता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: क्योंकि पिताजी ने पहले ही राउंड में इतनी अच्छी उन्होंने इम्प्रिंट डाल दिया कि जिंदा आदमी तुमको मार सकता है, परेशान कर सकता है, वो तो स्पेस में चला गया.
0: बिल्कुल.
1: उसका तो कोई फिजिकली एक्सिस्टेंस ही नहीं है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए ये तो नींव है ना, ये बचपन से ही आती है. ये पेरेंट्स का ही काम है कि बच्चों को ना डरने दिया जाए, क्योंकि जहां बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होगा फियर ऑफ फेलियर अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा. तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे डॉक्टर राजेश
1: जी,
0: और उसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आपसे कुछ जरूरी सवाल है वो भी मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड.

0: वेलकम बैक रेडियो माने वृचरा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, योग गुरु है और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं। डॉक्टर राजेश, आपसे बातें हमारी चल रही हैं और फियर ऑफ फेलियर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है हमारा। अब मैं आपसे एक जरूरी सवाल, और एक नहीं काफी सारे सवाल हैं जो आपसे पूछने वाली हूँ, तो आपको एक का चयन करना है, दिस और दैट, तो आपको बताना है कि क्या सही है, फेलियर का फियर या लोगों का जजमेंट?
1: लोगों का जजमेंट।
0: सेफ चॉइस या रिस्की अपॉर्चुनिटी?
1: बीइंग मायसेल्फ रिस्की अपॉर्चुनिटी।
0: परफेक्ट रिजल्ट या ऑनेस्ट एफर्ट?
1: ऑनेस्ट एफर्ट।
0: फेल करके सीखना या ट्राई ही करना, हमेशा करते रहना या ट्राई, नहीं एक सेकंड, फेल करके सीखना या ट्राई ही ना करना?
1: फेल करके सीखना।
0: सक्सेस का प्रेशर या फेलियर का फियर?
1: सक्सेस का प्रेशर।
0: कंफर्ट जोन या न्यू चैलेंज?
1: न्यू चैलेंज।
0: क्रिटिसिज्म का डर या रिजेक्शन का डर?
1: कोई डर नहीं।
0: बिग रिस्क बिग रिवॉर्ड या स्मॉल स्टेप्स स्टेडी ग्रोथ?
1: बिग रिस्क।
0: पास्ट फेलियर या फेलियर फ्यूचर फेलियर? पास्ट फेलियर या फ्यूचर फेलियर का फियर?
1: दोनों में किसी का फियर नहीं, प्रेजेंट में जीना चाहिए इंसान को।
0: बिल्कुल। गिव अप करना या ट्राई अगेन?
1: ट्राई अगेन ऑलवेज।
0: प्लान बी या फुल कमिटमेंट?
1: फुल कमिटमेंट।
0: सेल्फ डाउट या ओवरथिंकिंग?
1: ओवरथिंकिंग।
0: मिस्टेक हाइड करना या एक्सेप्ट करना?
1: एक्सेप्ट करना।
0: अदर्स एक्सपेक्टेशंस या अपनी एक्सपेक्टेशंस?
1: अपनी एक्सपेक्ट।
0: फेलियर को लेसन मानना या सेटबैक?
1: फेलियर को लेसन मानना।
0: क्विक सक्सेस या स्लो सक्सेस?
1: स्लो सक्सेस।
0: इसके पीछे का रीजन?
1: स्टडी, स्लो स्टडी विंस द फास्ट।
0: बिल्कुल। रिग्रेट ऑफ ट्राइंग या रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग?
1: रिग्रेट ऑफ नॉट ट्राइंग।
0: फियर के साथ रुकना या फियर के साथ आगे बढ़ना?
1: फियर के साथ थोड़ा रुक जाना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसके पीछे का रीजन?
1: जब आप रुक जाएंगे तो फिर बहुत तैयारी के साथ वापस मैदान में आ पाएंगे लड़ने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: एक चीज कहा जाता है, दुश्मन जो है ना उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए कभी भी। कोई भी चैलेंज कहने, यहाँ दुश्मन कहने का अर्थ है कोई भी चैलेंज को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
0: जी,
1: आप पूरी तैयारी के साथ जुड़िए।
0: जी डॉक्टर राजेश, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था यहाँ पर, मैं इसके पीछे का भी रीजन आपसे जानना चाहूंगी, फेलियर का फियर या लोगों का जजमेंट? और आपने कहा लोगों का जजमेंट,
1: लोगों
0: फेलियर, फेलियर का फियर या लोगों का जजमेंट? और आपने इसका जवाब दिया लोगों का जजमेंट, वो क्यों?
1: लोगों का जजमेंट जो है ना, बड़ा आराम से सुनना चाहिए। उसको ध्यान में नहीं देना है, लेना है। उनका सुन लेना है और मुस्कुरा के आगे बढ़ना है।
0: बिल्कुल।
1: और उस उनके जो जजमेंट होंगे तो उस समय आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि लोग क्या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में।
0: बिल्कुल।
1: और जब आप कम बैक करेंगे ना तो लोग फिर बोलेंगे वाओ
0: क्या बात है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश। बस जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ, वो कौन सा मैसेज है, संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे?
1: समय गुजारिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और वर्तमान में जीने की कला को जागृत कीजिए।
0: बिल्कुल।
1: लिव इन प्रेजेंट।
0: बिल्कुल। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, और जाते जाते थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश, आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी जानकारी दी, मैं आपके तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है और खास करके साक्षी आपके साथ तो प्रोग्राम करके बड़ा अच्छा लगता है।
0: आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे।
1: जी जी जी जरूर।
0: चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आपसे एक छोटे से ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद होंगी बातें, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हमने आज बहुत सारी बातें करी हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से, और डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हमारे रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक खुशहाल खैरियत से होंगे। अगर अपना हालचाल हम लोग बताएं और जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ भी सब ठीक है। बाकी ये शो हमारा होता है स्टार्टअप बेस्ड एक शो। इसमें हम लोग बात करते हैं ओवरऑल एक पूरे प्रोसेस की। हम लोग एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रांड की तरफ चलते हैं। पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा फेमिलियर हो सके उस एक चीज से, आपको प्रोसेस के बारे में पता लगे, फाउंडर्स के बारे में पता लगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझ पाए। सो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या जस्ट इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि इट टेल्स यू अबाउट एंटायर थिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो या दैट्स हाउ दिस शो इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि भैया कौन कौन वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम ये बात बोल पाते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। करेंगे डिस्कशन कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में डील करती है, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योरटेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड यूके। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, 150 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ सीएजीआर ऑफ 20%, जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं। पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

अब आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरे

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मल्टीपल कंट्रीज जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइए, कम ऑन, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूँ जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गाँव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज़ बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में इस टेक्नोलॉजी का अगर पहुंचा दिया और वहां के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि गांव की लाइफ बहुत अलग होती है। वहां के लोग भी इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बट उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। इसलिए वहां पर भी ये चीज पहुंच पाई जिसकी वजह से अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिला फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं ग्रोथ ड्राइवर यहां पर बताना चाहूंगा दैट इज डेमोग्राफिक एडवांटेज। ठीक है, मोर देन 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो 35। ठीक है, 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 65% भारतीय। तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है टैक्स सेवी ऑडियंस हमारे पास ज्यादा है, और टैक्स सेवी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसके साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, PayU, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइंजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए, बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजेक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या, दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील राइट।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 FM के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैशी, क्रेडिट बी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिथम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए रेडियो मानवश्ना 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी हैं और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए, यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं, उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवश्ना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उनके सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ अभी तक इंडस्ट्री को समझ गए हैं, म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है बिना किसी देरी के। शो को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा ब्रांड है जो फिनटेक में डील करता है, उसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक इंडिया का लीडिंग कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न्यू एज डिजिटली नेटिव जो बिजनेसेस हैं, जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स हो गए या D2C जो ब्रांड्स होते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप्स हो गए, उनका एम्पावर करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SaaS बुलाते हैं, वो ब्रांड्स हैं, या इनफैक्ट किसी का अगर रेस्टोरेंट भी है, उनको एम्पावर करने का काम करता है ये वाला एक प्लेटफॉर्म। 2020 में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ वेलोसिटी, और ये जो है हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज, लाइक इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन डिल्यूटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, मीनिंग आपको जो है कैपिटल मिल जाएगी विदाउट इवन गिविंग अप द इक्विटी। यानी कि जो शार्क टैंक में हमने देखा है कि इतने प्रतिशत इक्विटी के बदले इतना पैसा मिलेगा, तो इक्विटी दिए बिना भी आप यहां से फंड रेज कर सकते हैं। सो या दिस इज द फाइनेंशियल पार्टनर। आई मीन टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अभी कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो काम ये करते हैं कि बाकी स्टार्टअप्स को एम्पावर करता है। सो थिंग्स हैव शिफ्टेड अ लॉट डिफरेंटली, और ये काफ़ी अमेजिंग पार्ट भी है कि हम लोग काफ़ी नए नए इनोवेटिव तरीके जो हैं वो लेकर के आ गए हैं। आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। यहाँ पर 400 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन हुआ है इकलौते 2024 के फेस्टिव सीजन में। ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart एंड क्विक कॉमर्स जाइंट्स लाइक Blinkit, ये बहुत तेजी से और बहुत फास्ट पेस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं। सो दे हैव रेज $30.3 million इन फंडिंग एंड आर ट्रस्टेड बाई ओवर 4,000 ब्रांड्स। That's what makes this brand so special, because ये empower करता है बाकी other startups को, empower करता है बाकी तमाम brands को जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। Even if you are not willing to give the equity, you can still raise the money, क्योंकि ये flexible है यहाँ पर, और काफ़ी सारे models इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। So it's an interesting part कि इंडिया में हमने ऐसे brands भी बनाए हैं जो बाकी brands को uplift कर रहे हैं और उनको scale up करने में मदद कर रहे हैं। So yeah, this is Velocity. On this note, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ इट स्टार्टेड, हु आर द फाउंडर्स, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडर्स, वी आर गोना टॉक अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक।

फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मेरा नाम है सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। हम जिस ब्रांड की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी। ये ब्रांड स्टार्ट हुआ 2020 में। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की वजह से बंद थी अपने घरों में, और इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। मतलब लिटरली इट वॉज बूमिंग, ये टाइम था वो। D2C ब्रांड्स जो हैं वो लिटरली लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी निकल के आ रहे थे, और इतने सारे ब्रांड्स हमने स्टार्ट होते हुए देखे। लेकिन एक कैच है यहाँ पर कि जब आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई स्टार्टअप चलाते हो, सो यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड कैश। ट्रेडिशनल बैंक्स की अगर आप बात करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वेंचर कैपिटल, वहां पर आपको इक्विटी देनी होती है, स्टेक पे लगानी होती है। बट यहाँ पर स्टार्ट हुई ये कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी, बेंगलुरु में स्टार्ट हुई, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी एक प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम पार्ट को फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया ये ब्रांड। इस मिशन के तौर पर लेट्स एम्पावर द अदर स्टार्टअप्स एंड उनकी चिंता को थोड़ा कम करते हैं। सो ये जो है रिवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। एक ऐसा मॉडल जहां पर जो रीपेमेंट है वो आपकी बिजनेस की सेल्स से जुड़ी हुई है। दैट मींस ग्रो बिग पे फास्टर, ठीक है? ये इनका एक कोर फंडामेंटल था और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। आई डोंट नो आप में से कितने से लोग हैं जिनका स्टार्टअप है, जो फेमिलियर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से, बट इफ यू आर द वन देन आपको पता होगा कि कितना क्रूशियल हो जाती हैं ये सारी चीजें। आई मीन टेक योर टाइम। अगर कोई भी ऐसा स्लो डाउन कोई प्रोसेस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि सेल अच्छी नहीं हो रही है, सो यू शुड टेक योर टाइम। जब से ये जो है स्टार्ट हुआ है, जब से इसको लॉन्च किया गया है, तब से इसने लिटरली बहुत एक्सपेंड किया है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स में इन्होंने जो है पैसा दिया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो AI पावर टूल्स बना रहे हैं। मतलब उस टाइम पर मैं बोलूँगा दैट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट उस टाइम से ये एम्पावर करते आ रहे हैं। सो इट बिकेम काइंड ऑफ अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ। सो ये है हमारी आज की कंपनी वेलोसिटी। आशा करता हूँ अभी तक ओवरव्यू आपको मिल गया है, कैसे स्टार्ट हुई, कहानी क्या है, कब स्टार्ट हुई, ये सब आप जान पाए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो आइडिया था। तो कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था, बट हाँ बहुत छोटे से बात समझ में आ गई कि यार स्टार्टअप्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर पूरी वेव आई हुई है, बट एट द सेम टाइम भैया बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सब करना शुरू किया और स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया। सो ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म जो है खड़ा हुआ और आज की रेट में काफी अच्छा खासा नाम है वेलोसिटी का, खासतौर पे जब आती है बात ई कॉमर्स ग्रोथ के ऊपर। तो ये है हमारी आज की कंपनी। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइफ। आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शो का लेकर चलेंगे। बात करते हैं फाउंडर्स की। भैया कौन है वो शार्प माइंड्स, कौन है वो ब्रिलियंट माइंड्स जिनके दिमाग में आइडिया आया? तो वो तीन नाम है, अविरूप मेधेकर, अतुल खिचारिया एंड सौरभ स्वरूप। पहला नाम लेते हैं अभिरूप मेढेकर, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलोसिटी। पुणे के रहने वाले हैं, मतलब ही इज द विजनरी फोर्स बिहाइंड वेलोसिटी। इन्होंने प्रीवियसली काफी काम किया है, जैसे कि मैकिन्जी कंसल्टेंट एंड साथ साथ एलिवेशन कैपिटल। दैट मींस कि फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं। इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कह सकते हैं फ्रंट रो की सीट मिल गई इन्हें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अगर आप इनकी बात करते हैं क्या विजन है इनका, सो ही सो एम्बिशियस। अपना इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है, बाकी ब्रांड्स को जो है अपलिफ्ट करना है। तो ये है इनका एक अल्टीमेट ड्रीम जो ये अभी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर अगर हम बात करें 2024 में एक टेक एंड इनोवेशन सबमिट हुआ था, वहां पर उन्होंने बात बोली थी कि AI का बहुत बड़ा रोल है इनकी बिजनेस ग्रोथ में। ठीक है, जहां पर इन्होंने मैकिन्जी में जब काम किया तो वहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है सीखा था, और उसके बाद AI जब दुनिया में आया तो उसके बाद दोनों तीनों चीजों को इन्होंने मिला दिया वहां पर, एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। सो ये है वेलोसिटी के CEO मिस्टर अभिरूप मेढेकर। दूसरा नाम आता है अतुल खिचारिया। अतुल इज द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ वेलोसिटी। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इनके होम टाउन के बारे में, बट इनका एक्सपीरियंस एज अ फाउंडर बहुत कुछ बताता है। मतलब एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने ब्रांड को स्केल अप करना है और कैसे बाकी ब्रांड्स की हेल्प करनी है स्केल अप करने में। जो भी डिजिटल बिजनेसेस हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं हम कि वो जो है अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा फोकस रहता है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक बहुत ट्रस्टेड नेम बन जाता है फॉर ओवर 4000 ब्रांड्स। एंड द थर्ड नेम इज सौरभ स्वरूप, को फाउंडर एंड CEO। भाई देखिए, डिजिटल एरा में किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, ई कॉमर्स के एरा में किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, टेक्निकल जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ही इज एग्जैक्टली द सेम पर्सन। He is also from Bengaluru startup scene. He is the tech wizard. Literally, जो वेलोसिटी का AI innovation है, जिस डेटा सेट पर उसको ट्रेन किया जाता है, जो भी चेंजेस की जरूरत होती है वो सब ये करते हैं। इन्होंने पास्ट में भी जो है काफी टेक सॉल्यूशंस जो हैं बिल्ड किए हैं, स्केल किए हैं, एंड ही इज रियली पैशनेट अबाउट यूजिंग AI। मतलब यहाँ पर नए बेंचमार्क सेट करने की, इन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ड्रीम लगा लीजिए या एक विश लगा लीजिए, बट इन्हें करना है और इनको बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जो AI का क्वालिटी चेक भी करते हैं। मतलब नॉट जस्ट AI यूजिंग, सिंपली AI का क्वालिटी चेक भी किया जाता है। AI पावर्ड क्रेडिट एनालिस्ट जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने बनाया है। सो दीज आर द ब्रिलियंट माइंड्स जो अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अलग अलग विजन लेकर आते हैं, बट सेम पेज पर जब आते हैं, एक ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक ब्रांड के लिए काम करते हैं, सो इवेंचुअली वो बड़ा बनता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। और फिलहाल इसी नोट पर हम लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस वक्त आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। अब ये वेलोसिटी के की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहला है ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का जो D2C एंड ई कॉमर्स मार्केट है, ये 2030 तक $250 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दैट मींस कि जो भैया D2C ब्रांड्स हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे और निकल के आएंगे नए प्लेयर, दैट मींस सबको फंडिंग की जरूरत होगी, तो वहां पर ये ब्रांड आ जाता है। और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, एक पूरा दौर चल रहा है स्टार्टअप्स का। इसके बाद आता है AI एंड डेटा इनोवेशन। यहाँ पर AI पावर्ड क्रेडिट एनालिसिस एक टूल है इनके पास, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है वानी AI, ठीक है, जो यहाँ पर फाइनेंसिंग को आपके थोड़ा फास्ट और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है, डील करता है, जो एनालाइज करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है तो। तीसरा भैया, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए जरूरी होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि आपको स्ट्रांग फंडिंग मिले। सेम इन्हीं के साथ है, तो इनके पास भी अच्छी खासी एक फंडिंग है, लेट्स नॉट गो देयर। फोर्थ आता है फाउंडर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो खुद टीम बिल्ड करते हैं, खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो खुद से नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, और खुद बहुत पैशनेट है इस एक चीज़ को लेकर, तो वो ये चीज़ इवेंचुअली एक बहुत बड़ी USP बन जाती है। तो उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है, दैट इज़ द फिफ्थ की ड्राइवर, और वो होता है कि 2024 में जो इन्होंने 400 करोड़ रुपये फेस्टिव सीजन में एलोकेट किया, उससे काफ़ी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ग्रो किया, काफ़ी पीक सेल साइकिल देखी, ब्रांड्स ने बूस्ट किया उनकी इन्वेंट्री, उनकी मार्केटिंग, हर एक चीज पर अच्छा खासा स्पेंड हुआ। और ये इन्होंने अब यहां से आप कह सकते हैं कि फेस्टिव फोकस्ड एक तरीके से एक साइकिल बनानी शुरू करी है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल। सो या, दीज आर द की ड्राइवर्स, और आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड को बहुत खास बनाते हैं, ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड वेलोसिटी। सो हाँ, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास है। अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज फुल हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है, देन यू शुड रीड दिस स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर तीन ऐसे लोग जिनको इतनी क्लटर्ड मार्केट में, इतना ज़्यादा क्योटिक मार्केट में भी एक गैप नज़र आ गया, जहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे हैं, उन्हें उसके बावजूद एक और प्रॉब्लम नज़र आई कि भैया ये नहीं देना चाहते इक्विटी और उनको जल्दी चाहिए, तो क्या किया जाए सर? सो दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक वानी AI, जिससे क्रेडिट एनालिसिस हो पाए और जल्दी जो है लोन डिस्पर्स हो जाए। आशा करता हूँ अब इतना जो शो आपको बताया है, इतनी जो इंडस्ट्री आपको बताई है, आप लोग समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है। कहने को तो ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आती है। अगर एक दिन आपको ये दिक्कत हो जाए तो अगले 2-3 दिन काफी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हैं। सिर में दर्द तो आपने अक्सर फील किया होगा, कभी कभी बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, शोर होता है, पोल्यूशन होता है, या फिर वैसे ही तबीयत खराब होती है तो सिर में दर्द होता है। लेकिन क्या ये सिर दर्द माइग्रेन है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन को पहचाने कैसे, और ये इतना कॉमनली यूज होने वाला शब्द माइग्रेन आखिर होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब रेगुलर हेडेक की शिकायत करते हैं तो उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि आपको माइग्रेन है। लेकिन माइग्रेन को पहचानना, इसका सॉल्यूशन क्या है वो जानना और इसको रोकना, ये भी जरूरी है। सो आज माइग्रेन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर मेघा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सो डॉक्टर मेघा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम हेडेक की बात कर रहे हैं तो हेडेक पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस किस तरीके के हेडेक होते हैं, क्योंकि जनरली जो हेडेक होता है वो यहाँ पर होता है, साइड्स में होता है।
3: सो हेडेक बहुत तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो हेडेक्स को हम दो तरीके से बताते हैं कि एक प्राइमरी हेडेक्स है, एक सेकेंडरी हेडेक्स है। प्राइमरी हेडेक्स ही होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, उसमें सबसे टॉप पे जो आता है वो होता है माइग्रेन।
2: ओके।
3: एंड माइग्रेन के साथ में टेंशन टाइप हेडेक, वो दूसरा टाइप होता है।

0: कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि हम कहें कि ये माइग्रेन है.
1: ओके.
0: सो माइग्रेन का पेशेंट जो सबसे कॉमन सिम्टम लेके आता है वो सर दर्द होता है. सर दर्द आधे सर में टप टप टप जैसा दर्द होना या फिर टस टस टस महसूस होना कि ऐसा कि थ्रॉबिंग सेंसेशन लग रही है कि सर में ऐसा लग रहा है कि कोई नसें फड़क रही हैं. ऐसा दर्द होना हमें माइग्रेन में मिलता है. दूसरा माइग्रेन को डिटेक्ट करने का होता है कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है. ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत तेज हो गया. स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली माइग्रेन बिल्डअप होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 hours में तेज होने लगता है. एंड कभी कभी माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो 24 से 48 घंटे एंड अप टू 72 आवर्स भी लास्ट कर सकता है.
1: ओके, यानी इतना समय तक माइग्रेन का दर्द चलता
0: जी है. तो माइग्रेन बहुत बार लंबे समय तक हमारे को 3 दिन तक भी अप टू 5 days आई हैव सीन कि पेशेंट का सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है. सो उस सर दर्द की वजह से अपना काम डेली रूटीन जो होता है वो काफी इफेक्टेड हो जाता है.
1: यानी माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द होता है, इसका जो सिम्टम है वो सिर दर्द है, लेकिन इसके अलावा भी क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं और इसको कैसे पहचाने हम कि ये माइग्रेन हो चुका है? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय. अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और आज हम बात करें हैं कैसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली आपने देखी होगी, लोगों को इससे सफर करते देखा है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है. बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको माइग्रेन है. और माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 से 4 दिन तक किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की क्षमता रखता है. लेकिन माइग्रेन को पहचानना कैसे है? क्या ये सिर्फ सिर दर्द है, या फिर क्या ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बाकी बॉडी पार्ट्स में भी दिक्कत ला सकती है? क्या बच्चों को होता है या बड़ों को होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद. सो डॉक्टर मेघा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 1 दिन से लेकर 4 दिन तक किसी को भी परेशान कर सकती है, मतलब सिर दर्द खत्म ही नहीं होता. लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द है या कुछ और भी प्रॉब्लम है?
1: सो माइग्रेन हेडेक जो स्टार्ट होती है, सरदर्द जो शुरू होता है, उससे पहले पेशेंट्स को अदर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जैसे कि उबासी आना, एक्सेसिव उबासी आ रही है, योनिंग किए जा रहे हैं, या फिर फटीगेबिलिटी है, थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन, मूड में चेंजेस हैं, लो मूड फील कर रहे हैं. एंड उसके बाद में हमारे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं हेडेक के, कि सरदर्द है. सरदर्द के साथ में बहुत बार पेशेंट को कंप्लेन होती है विजुअल सिम्टम्स की, मतलब कि आंखों के आगे धुंधलापन आना, या आंखों से दिखाई देने में दिक्कत होना, या आंखों के आगे रंगीन गोले बनना. ये भी एक कारण होता है जिसके साथ में माइग्रेन शुरू होता है. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे सरदर्द बिल्डअप होता है, उसके साथ में मरीज बहुत बार उल्टी का मन होना, उसके साथ में एक्सेसिव लाइट या साउंड से इरिटेबिलिटी होना कॉमनली देखा जाता है.
0: यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिरदर्द होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिट है आपने कहा है. और सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज होता है जब आपके विजन पे कुछ इफेक्ट होता है. Definitely. आपको समझ ही नहीं आता कि ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है या तकलीफ है, या फिर आप वैसे ही किसी डेफिशिएंसी की वजह से चक्कर आ रहे हैं, या फटीग है. और ऐसे में आंखों के सामने कुछ कलरफुल इमेजेस बनना, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेस वाली चीज होती है. तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिए कुछ बेसिक सिम्टम्स जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि माइग्रेन है. लेकिन क्या माइग्रेन सिर्फ एक बड़ी उम्र के लोगों को होता है या यंग एज में होता है? क्या बच्चों और बुजुर्गों को भी इफेक्ट करता है?
1: सो माइग्रेन का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, मतलब अगर आपके घर में, परिवार में आपके फादर मदर या किसी भी फैमिली मेंबर को माइग्रेन है, तो देयर आर चांसेस, 50% चांसेस कि वो आपको ट्रांसफर होगा. एंड जिनमें होता है ऑनसेट, अगर हम बात करें कि कब शुरुआत होती है सरदर्द की या माइग्रेन के सिम्टम्स की, लेस देन 5 ईयर के बच्चे में भी हेडेक स्टार्ट हो सकते हैं, माइग्रेन के अटैक्स हो सकते हैं. ठीक है. एंड अदर देन दैट, यूजुअली जो हम बोलते हैं कि किस उम्र से शुरू होता है, दैट इज प्यूबर्टी एज, मतलब कि 10 से 12 साल की उम्र पे सरदर्द जो होता है वो चालू होता है. एंड धीरे धीरे बिल्डअप होता है, इंक्रीज करता है. एंड वंस यू रीच आफ्टर, मतलब 40 से 50 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद में आपका जो सरदर्द होता है वो कम होने लग जाता है.
0: ओके. यानी 50 साल के बाद कम हो जाता है, और 12-13 साल की एज से शुरू होता है. क्या ऐसा होता है कि प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है?
1: सो अगर हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की आज, तो माइग्रेन मोस्टली फीमेल्स में कॉमन होता है, लेडीज में. ठीक है. एंड 3 times ज़्यादा कॉमन होता है लेडीज में एज कम्पेयर टू मेल्स. रीज़न, हार्मोन्स. हमारी फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होते हैं, 2 main हार्मोन होते हैं जो हमारी फीमेल बॉडी में काम कर रहे होते हैं. तो जब भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होगी, तो उसकी वजह से हमारे को, जिनको हेडेक के लिए प्रीडिस्पोजिशन है, उनमें माइग्रेन देखा जाता है, पर्टिकुलरली जैसे कि हमारे पीरियड्स आने से पहले.
0: ओके.
1: या फिर प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ रहा होता है और हमारा ईस्ट्रोजन कम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में हमें सरदर्द, या पहले 3 या 4 महीने में सरदर्द की फ्रिक्वेंसी, जिनको पहले से माइग्रेन है, उनमें बढ़ जाती है. एंड एज लेडीज अचीव द मेनोपॉज, तो उनके हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है.
0: ओके. यानी ये जो 30 साल की एज, 20 से 30 की एज है, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एज है माइग्रेन.
1: रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप.
0: हाँ, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें, और ज्यादातर फीमेल्स में होता है. सो ऐसी कुछ बातें और भी चल रही हैं. अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें उसका, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना, प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉडकास्ट सेक्शन में आरजी दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय के साथ मिल जाएंगी, माइग्रेन से जुड़ी हुई, जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारी ऐप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी सीरियस बातों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे गाने जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो, तो अभी फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक। मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: खुश रहे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन के बारे में, एक बहुत कॉमन समस्या जो अक्सर लेडीज को देखी गई है होते हुए, कुछ जेंट्स को भी होती है, लेकिन एक्चुअली में जब सिर दर्द बहुत भयानक हो, दो दिन तक ठीक ना हो रहा हो, तो माइग्रेन कहलाया जाता है और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। लेकिन क्यों ये माइग्रेन हो जाता है, कैसे ये ट्रिगर करता है, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर सिर दर्द हो जाता है। कई लोगों को धूप में जाने से होता है, कई लोगों को शोर से होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजों से भी होता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। तो आपको वो पहले समझना होता है कि किस चीज से एक्चुअली ये ट्रिगर हो रहा है। और यही सब बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय। डॉक्टर मेघा, माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो मैं ट्रिगर्स आपसे जानना चाहूंगी, कैसे होता है, कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं माइग्रेन के?
2: जैसा कि हमने पहले बात करी कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है कि 50% चांसेस होते हैं जिनकी फैमिली में है उनको जेनेटिक
1: हो सकता है।

0: ट्रांसमिशन होने का टू द नेक्स्ट मेंबर. उसके अलावा नींद का कम लेना, इन एडिक्वेट स्लीप, या हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे वर्क ज़्यादा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन टू लाइट एंड साउंड, या फिर हम खाली पेट सुबह में बिना नाश्ता करे हुए आए हैं, एक्सपोजर टू परफ्यूम्स, मतलब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल्स, ऑयल स्मेल्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज अस टू माइग्रेन अटैक्स. सो हर पेशेंट का या हर इंसान के जिनको हेडेक्स की कंप्लेन रहती है, माइग्रेन की कंप्लेन रहती है, उनके अपने अपने ट्रिगर्स होते हैं. अगर हम उन ट्रिगर्स को पहचान के उसे कट डाउन करें तो हमारे माइग्रेन के अटैक की फ्रिक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो भी कम की जा सकती है.
1: ओके डॉक्टर मेगा, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है पोस्ट कोविड, तो मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं. अपना फोन या अपना लैपटॉप देखते हैं तो समझ आता है कि दिन में 5 से 6 घंटे आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो क्या ये भी ट्रिगर है?
0: जी बिल्कुल, एक्सेसिव जब स्क्रीन का एक्सपोजर होता है, दैट इज लाइक लाइट का एक्सपोजर टू द आईज होता है, तो वो हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, एंड नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ब्रेन के, वो डायलेट करते हैं, और उसकी वजह से पेन का स्टिमुलेशन जो होता है वो बढ़ता है, और पेशेंट्स को बहुत बार पेन कंप्लेन होता है. बहुत देर तक काम कर रहे थे, उसके बाद में हमें सर दर्द हो गया, तो वो एक तो आई की फटीगेबिलिटी की वजह से सर में दर्द होता है, और दूसरा एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारी नर्व पे स्ट्रेस आता है उसकी वजह से होता है.
1: बिल्कुल. तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसके बाद उनको कई बार सिर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कॉफ़ी बहुत लोगों की फेवरेट है, लेकिन कई लोग बिल्कुल कॉफ़ी छोड़ देते हैं क्योंकि सिर में दर्द होता है, और कई लोग कॉफ़ी पीते हैं इसलिए कि सिर दर्द ठीक करना है.
0: सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन ड्रिंक्स, हमारा इनटेक 1 to 2 cups ऑफ कॉफ़ी पर डे हो सकता है, बट अगर हम दिन में 5-5, 6-7, तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कैफीन जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्रेन के डायलेट करके हेडेक्स स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है. सो एक्सेसिव, बहुत बार लोगों को चीज़ या ओवर एज चीज़ जो होता है उसे लेने से हेडेक्स होते हैं. समटाइम्स इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेड वाइन, कैन प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू हेडेक्स. सो माइग्रेनस वी से डोंट इंडल्ज इन द अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो. अदर देन दैट अगर आप देखें तो सिट्रस फ्रूट्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू हेडेक्स.
1: सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं कि विटामिन सी रिच हैं और लेने चाहिए,
0: बट बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड द कॉम्पोनेंट, इट कैन ट्रिगर्स द माइग्रेन अटैक्स इन द.
1: सो ऐसे में तो अचार वगैरह या चटनी भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम
0: हो सकता है. एंड अदर देन दैट चॉकलेट एंड कोला, सो डार्क चॉकलेट इज हेल्पफुल, बट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द चॉकलेट, सो किसी का भी ज्यादा होना शरीर में नुकसानदेह होता है. तो इन अ लिमिटेड क्वांटिटी यू कैन कंज्यूम कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी, चॉकलेट एंड कोलाज एज वेल एज द अदर कैफिनेटेड या एरिएटेड ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड.
1: यानी जो चीज़ें टेस्ट में बहुत अच्छी हैं पर हेल्दी नहीं है उनको तो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ट्रिगर करती हैं. डॉक्टर मेघा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ. आजकल बहुत सारे जो यंग गर्ल्स हैं या फिर कहें वेमेन, मेकअप बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, डेली यूज में है, सो क्या मेकअप या परफ्यूम्स ये भी ट्रिगर कर सकते हैं?
0: जी, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द परफ्यूम जो होती है, जिनमें बहुत तेज स्मेल आ रही है परफ्यूम की, तो जिनमें ये ट्रिगर होता है स्मेल का, दैट कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू माइग्रेन अटैक्स. आई हैव सीन समवन जिसको काजल लगाने की वजह से हेडेक हो जाता था, एंड वंस शी स्टॉप्ड यूजिंग काजल तो उससे उनका फ्रिक्वेंसी ऑफ हेडेक्स जो थे वो रिड्यूस हो गए.
1: यानी सिर्फ एक काजल जो आप अपनी खूबसूरती के लगाते हैं, और इसको मेकअप भी नहीं कहते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन,
0: बिल्कुल,
1: वो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. तो जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल करें और आपको सिर दर्द हो तो चीजें पहचाने के किस वजह से हो रहा है या क्या ऐसा किया है जो थोड़ा सा अलग है जिसकी वजह से आज सिर दर्द शुरू हुआ है. लेकिन इस माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? क्या इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल है कि आप 3-3, 4-4 दिन परेशान रहे पर ये रुक नहीं रहा है? तो ऐसी कुछ बातें और भी करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मैं हूं दीक्षा आपके साथ.

0: तेरे का इशारा समझू, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: फील गुड फील लाइव. मैं हूं दीक्षा, आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और हम बात करें हैं माइग्रेन के बारे में. एक ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम जिसको शायद आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकता है जिसको ये माइग्रेन हेडेक हो रहा हो. माइग्रेन के कई और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे आंखों के आगे कुछ कलरफुल सर्कल्स बनना, या फिर वॉमिट फील होना, नौजिया फील होना. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. बहुत ज्यादा योनिंग आ रही है अगर आपको अचानक से. आपकी नींद भी पूरी है लेकिन फिर भी आपको उबासियां आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ये माइग्रेन की शुरुआत तो नहीं है. बहुत ज्यादा डर के नहीं रहना है, लेकिन हाँ, सिम्टम्स को जरूर पहचानना है. बट अब माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए? हमने अक्सर उन लोगों को देखा है जिनको माइग्रेन होता है, वो दवाई खाते हैं पर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है. तो फिर माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जनरली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेडिसिन होती है. सो ऐसी कुछ बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर मेघा, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं और उन्हें ये बहुत घबराहट होती है कि अगर आज उनका दिन बहुत हेक्टिक चला गया तो उनको कहीं माइग्रेन अटैक ना हो जाए. सो इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है?
1: तो सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है. जो भी हमारे ट्रिगर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, कट डाउन करना है. चाहे वो हमारे अगर परफ्यूम का एक्सपोजर है या स्मेल की वजह से है तो उसे अवॉइड करना है. अगर हमारी नींद स्ट्रेस है तो हमें उसे कट डाउन करना है बाय डूइंग लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक योगा, मेडिटेशन. ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है एज अ पार्ट एंड पार्सल, कि ये नहीं है कि आज करा कल नहीं किया है. अ डेली रूटीन विल प्रिवेंट फर्दर अटैक्स ऑफ माइग्रेन. उसके अलावा खाने में मैग्नीशियम रिच फूड जो होता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग माइग्रेन. तो मतलब कि जो फूड जिसमें हमारे मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं, चाहे वो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, ये सब है. एक्सेसिव नहीं, पर थोड़ा थोड़ा इन एडिक्वेट एंड ऑप्टिमम अमाउंट में लेंगे तो इट विल हेल्प. उसके अलावा जब माइग्रेन को हमने प्रिवेंशन की तरह तो देखा, पर हर माइग्रेन के दो तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं. एक, जो एक्यूट हेडेक हो रहा है, जो सिम्टम है अभी करेंटली, उसको ख़त्म करना और आगे ऐसे सरदर्द ना बने, उसको बनने ना देने के लिए दवाइयां देना. सो दोनों तरीके से, एक्यूट एंड प्रिवेंशन, बोथ हैज़ टू बी डन, जिससे कि आगे के आपके नंबर ऑफ डेज, आपके ऑफिस, आपके बच्चों के स्कूल वर्क्स या लेडीज का घर का कामकाज जो है वो इम्पैक्टेड या इफेक्टेड ना हो.
0: बिल्कुल.
1: सो एक्यूट ट्रीटमेंट में यूजुअली हम पेन किलर्स, जो सरदर्द की दवाइयां होती हैं, वो देनी होती हैं. बहुत ज़्यादा पेन किलर लेना, मतलब कि आप हफ्ते में तीन तीन चार चार बार अगर हेडेक्स की मेडिकेशन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक हो जाता है. मतलब कि हम ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से सरदर्द की दवाइयाँ हमारे ऊपर काम नहीं कर रही और हमारे को सरदर्द बना ही रहेगा. सो उन पेशेंट में जिनको हम महीने में या तीन महीने में 15 दिन पर मंथ ज़्यादा पेन हो रहा है, या हर मतलब 15 दिन में सरदर्द बना ही रहता है, आधा महीना हमारे सरदर्द में ही निकल जाता है, चाहे वो हल्का है, धीरा है, तेज है, पर वो निकले जा रहा है, तो उन केसेस में हम प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, विच आर इन द मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू पेशेंट को जो हेडेक की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो कम हो जाती है. एंड दे आर पेशेंट्स हुआ ट्रीटेड एंड 6-6 महीने या साल साल भर भी उनको कोई ऐसा अटैक नहीं आता है सरदर्द का, एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन.
0: ओके, यानी बहुत सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं माइग्रेन को. लेकिन इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मेघा, कि बहुत सारे बाम मार्केट में मिलते हैं या आइस पैक कई लोग सजेस्ट करते हैं, वो भी कंट्रोल करने में मदद करता है?
1: जब भी हमें हेडेक या माइग्रेन का अटैक होता है तो आइडियली कहा जाता है कि कमरे की लाइट जो होती है वो डिम रखनी होती है, या तेज़ नहीं होती है, या फिर बंद करके रखनी होती है. डार्क रूम प्रिवेंट द स्टिमुलेशन टू द आइज एज वेल एज टू आर नर्व्स, जिसकी वजह से हमारे हेडेक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. उसके अलावा यूज ऑफ आइस पैक ऑन द फोरहेड और ओवर द स्कैल्प एंड नेक पे हॉट पैक, देयर इज अ डिफरेंस. तो यहाँ से मसल रिलीव होती है नेक की, और हेडेक की मसल, जो मसल लूज हो गई है, जो मतलब नसें फैल रही हैं बिकॉज ऑफ पेन, उसको कंस्ट्रिक्शन मिलता है. तो दोनों का इस्तेमाल, आइस पैक का ओवर द फोरहेड एंड नेक पे हॉट पैक. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन विच हेल्प इन रिलीविंग द पेन. अदर देन दैट, कॉफी कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव कॉफी नहीं कि आप कॉफी ही लिए जा रहे हैं, सिर्फ वन कप ऑफ कॉफी,
0: ब्लैक कॉफी और नॉर्मल कॉफी,
1: अब ब्लैक कॉफी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हेडेक और रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, जो तेजी है या बहुत तेज दर्द है उसको कम करती है. तो ये सब चीजें जो होती हैं हमें मदद करती हैं हेडेक को कम करने में.
0: जी, क्या माइग्रेन को कभी खत्म किया जा सकता है?
1: माइग्रेन को खत्म नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन. वी कैन ओनली डू द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अगर वो इतना सिम्टोमेटिक है देन वी नीड टू गेट द ट्रीटमेंट डन फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, कि हमें कैसे कैसे अपने हेडेक्स को कंट्रोल करना और कब हमें दवाइयाँ खानी है. बहुत बार लोग तेज दर्द होने पे दवाई खाते हैं कि जब तक वो पीक पे हो जाता है, तो वंस इट हैज रीच्ड इस पीक तो फिर वो टाइम लगाता है खत्म होने पे. तो यूजुअली जब आपको पता है, जो माइग्रेनर्स होते हैं दे नो कि उनको किस प्रकार का हेडेक है और कब शुरू हो गया है, तो आपको इनिशियल पार्ट में ही दवाई खानी है, अपना पेन किलर खाना है. अगर आप उसको पीक होने पे दवाई खाएंगे तो इट विल टेक टाइम, उतना ही टाइम लगेगा एंड दवाई का इफेक्ट भी कम आता है.
0: क्या नॉर्मल जैसे सिरदर्द में डिस्प्रिन सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है इनिशियल स्टेज पे, वो भी खाई जा सकती है?
1: जी, डिस्प्रिन, ब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, ये सब दवाइयां होती हैं जो हम कॉमनली देते हैं अपने पेशेंट्स को टू कंट्रोल द पेन. एंड उसके अलावा आजकल नेजल स्प्रेज भी आते हैं अगर जिन पेशेंट्स में कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्पाइट टेकिंग द एनसेट्स, मतलब कि डिस्प्रिन, आइब्रोफिन या नेप्रोक्सिन, तो दे कैन डू अ स्प्रे, अपनी नाक में स्प्रे डाल के उस अटैक को कम कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन और तेजी जो होती है उसको कम किया जा सकता है.
0: लाइक इनहेलर्स, वो भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे?
1: हाँ, इनहेलर से थोड़ा डिफरेंट, बट इट इज अ टाइप ऑफ स्प्रे.
0: ओके जी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं, आपके डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करेंगे प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए. और माइग्रेन एक बार शुरू हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग चलता है, बट आप इसको अगर कंट्रोल कर सकें अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस से तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है. बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है. फिलहाल डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से लेते हैं इजाज़त. थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा स्टूडियो में आने के लिए.
1: थैंक यू.
0: तो बहुत सारी बातों के बाद अब टाइम है आपसे इजाजत देने का. फिर से होगी मुलाकात प्रोग्राम ऑल इज वेल में अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ और करेंगे एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की खोज. लेकिन अभी फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: की ही बेटी हैं और उन्होंने फरीदाबाद का नाम बहुत रोशन किया है, तो इसीलिए वो हमारे फरीदाबाद की आन बान और शान है। मैं बात कर रही हूँ आद्या मिश्रा की, जिन्होंने इंडियन आइडल में हमारे शहर फरीदाबाद का बहुत नाम रोशन किया है, अपना और अपने परिवार का भी बहुत नाम रोशन किया है। सो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नायाब अवार्ड्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के टाइटल अपने काबू में किए हैं, यहाँ तक के उन पर जीत हासिल की है, जीत का परचम लहराया है, जैसे कि वॉइस ऑफ दिल्ली NCR, जयपुर आइडल, IIMA अवार्ड फॉर बेस्ट सूफी सॉन्ग। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा संगीत का रियलिटी शो जो संगीत का महाकुंभ कहलाता है, इंडियन आइडल जैसे शो में इन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आद्या मिश्रा जी की, जो हमारे अपने फरीदाबाद शहर की ही हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आद्या जी आज हमारे शो में।
1: गौरी मैम, मुझे तो खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे आज बुलाया है और आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोले हैं।
0: थैंक यू सो मच आद्या, ये तो आपका मैं कहूँगी बड़प्पन है जो आपको इतना अच्छा लग रहा है। सो आद्या, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपकी संगीत की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई, हमें इसके बारे में बताइए।
1: तो बेसिकली मेरा भाई है, बहुत म्यूज़िक में है, मतलब वो उसकी बहुत हॉबी थी कि, तो वो बहुत गाता बजाता सब था, तो उसने म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करी थी। उस टाइम पे मैं छः साल की रही हूँ।
0: ओके
1: तो अब वो होता ही है कि बड़ा भाई गया है तो मैं भी जाऊँगी।
0: जी जी जी, ये तो है।
1: तो वो जो सीखता था वो आके हमें सुनाता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा याद रखती थी कि इसने क्या किया है, मैं भी करूँगी। फिर एक दो बार मैं उसके साथ भी चली गई, तो मैं उसके साथ गई थी एक बार, तो उन्होंने कुछ तो गाने के लिए कहा था, एक पलटा था वो गाने के लिए कहा था, तो वो मुझे याद था कि इसने तो घर में बहुत सुनाया है, तो मैंने वो सुना दिया उधर। उन्होंने बोला नहीं था मुझे कि मैं सीखती तो थी नहीं, तो उन्होंने उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको भी ऐसे आवाज़ अलग लगी, उन्हें लगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने भी पिच किया कि इसको भी सिखाना चाहिए, और मैंने भी बोला कि मुझे भी सीखना है। तो When I was 7-8 years old, वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू किया।
0: ओके तो आद्या, पहला पल या पहला वो कौन सा ऐसा स्टेज था जब आपको लगा कि भाई मुझे म्यूजिक सीखना ही है अब? तो
1: पहला स्टेज मैं कहूँगी जब मुझे वॉइस ऑफ दिल्ली NCR जो 2019 में मैं जब जीती थी, वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है। क्योंकि उससे पहले ना एक श्योरिटी नहीं थी मुझे कि हो पाएगा मुझसे, कि म्यूजिक फील्ड बहुत मुश्किल है।
0: Exactly.
1: इंटर कोई करे तो बहुत बहुत मुश्किल है, तो मुझे यकीन नहीं था खुद पे। बट जब मैंने वो जीता तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं,
0: क्या म्यूजिक में ही जाना है,
1: मुझे उसी में जाना है। और फिर वहां से फिर मेरी जर्नी मैं कहूंगी एक नए इंसान के रूप में शुरू हुई है। क्योंकि आपके माइंड में जब आ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे यही करना है, तब आप अलग बन जाते हो। तो मैं कहूंगी कि जब मैं वो जीती थी शो तब हुआ था वो।
0: अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत छोटी उम्र से सीखना शुरू कर दिया, तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, मतलब जब उन्होंने आपके ब्रदर को सिखाना शुरू किया, आफ्टर दैट ब्रदर ने तो म्यूजिक छोड़ दिया, आपने शुरू कर दिया, तो मम्मी पापा का क्या कहना था कि हाँ चलो ठीक है आद्या को इसमें आगे कंटिन्यू कराते हैं? और दूसरा एक मेरा सवाल इसके साथ ये भी रहेगा कि गुरु कौन रहे आपके बचपन से जिनसे आपने अपनी संगीत की शिक्षा ली?
1: तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था उसपे, तो मेरे पेरेंट्स में से तो किसी को भी नहीं था कि अरे इनकी तो हॉबी है इनकी,
0: अच्छा।
1: मतलब ये इसमें करियर बनाएंगे, वो किसी का भी नहीं था।
0: ओके
1: तो बट उन्होंने सिखाया कि इनको पसंद है तो इनको सीखना चाहिए, बट मम्मी को कहीं ना कहीं था कि नहीं इसकी आवाज़ अलग है, तो वो माओ को हो जाता है रहता ही है। तो जब वॉइस ऑफ दिल्ली NCR जीता था ना मैंने, वो ही पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स कन्विंस थे, मतलब एक पेरेंट्स को भी दिलासा देना होता है कि नहीं हम कर सकते हैं इसमें, तो पापा को तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हाँ इसमें करियर हो पाएगा, बट मम्मी लगी रहती थी मुझे, ऑडिशन में भी मम्मी ही लेके जाती थी जितने ऑडिशन है। पापा को ऐसे था कि वो सपोर्ट तो हमेशा करते थे, लेकिन उन्हें ऐसे होता है ना कि यकीन नहीं था उन्हें भी कि इसमें कर सकते हैं हम। बट वो जीतने के बाद दोनों मेरे पेरेंट्स हो गए कि नहीं नहीं म्यूजिक में तुम करो अच्छा है,
0: मतलब उन्हें लगा होगा कि कुछ इसने अचीव किया है तो इसमें ये आगे बढ़ सकती है।
1: करेक्ट, आगे बढ़ सकती है। तो बट मैं कहूंगी कि मेरी मम्मी ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें

0: बहुत लोग आते नहीं है
1: बिल्कुल,
0: और उसमें अगर आपका एक पेरेंट लगा हुआ है आपके पीछे, आपको ले जा रहा है हर जगह रिजेक्ट होने के बावजूद, तो फिर वो पेरेंट का ही पूरा, मैं तो कहूंगी कि मेरी
1: बिल्कुल उनका सहयोग, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज है कि इतने ऑडिशंस होते हैं, हर कोई पेरेंट नहीं जा पाते अपने बच्चों के साथ,
0: नहीं ले जाते ऊपर से वो बहुत सारे, तो सबसे पहले चीजों से लड़ना पड़ता है आपको, हो पाएगा नहीं,
1: बिल्कुल
0: आप नहीं जानते किसी को इस फील्ड में, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें एक डर भी रहता है कि एक, क्योंकि एक प्रॉमिसिंग करियर नहीं है कि आपका, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी
1: जी।
0: उसके बाद भी अगर आपका पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो हैट्स ऑफ है। तो मेरी मम्मी ने शुरुआत में से ही किया है, पापा ने तो अब शुरू कर दिया, बट शुरुआत से मम्मी ने ज़्यादा किया है। और शिक्षा की बात हो तो मैंने शुरुआत के 8 साल अमित पांडे सर है उनसे सीखा है, मेरा भाई भी उन्हीं से सीखता था।
1: अच्छा।
0: एंड देन आफ्टर दैट मैंने 2 साल क्षितिज माथुर सर हैं दिल्ली में, मैंने अच्छा। उनसे सीखा है, उसके बाद तो इंडियन आइडल में हो गया था सिलेक्शन।
1: सो आद्या, जैसे आपने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने गुरुजी के बारे में बताया, तो आपको कोई ऐसी बात जो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा जो आपको याद रहती हो हर पल स्टेज पर जाने से पहले, कुछ ऐसे टिप्स हों, पॉइंट्स हों, जिस बात को आप हमेशा याद रखती हैं, चाहे वो पेरेंट्स का ही कुछ ऐसा मैसेज हो, कुछ उनकी सलाह हो कि आद्या को ये फॉलो करना है और उसे हमेशा वो याद रहती है, तो वो क्या चीज़ है?
0: जो सबसे मेन बात जो रहती थी ना, वो मैं कहूँगी मेरा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता होगा कि बहुत है, बट अंदर अंदर उतना नहीं था, तो मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, बहुत करती हूँ, स्टेज पे जाते कॉन्फिडेंस से वो थोड़ा गड़बड़ गया था। मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत वो नहीं किया है, वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हिल गया है मेरा। तो वो जो मुझे याद है वो यही रहता था कि किसी से डरना नहीं है, जो आपके सामने है वो आपको सुनने के लिए आए हैं
1: जी,
0: तो आपको उस पल पे सिर्फ ये सोचना है कि आप यहाँ एज अ सिंगर आए हो, आप अपनी परफॉर्मेंस पेश करने आए हो, तो आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, कुछ आपको सोचते नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि मैं, आपके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, तो वो ही बात याद आती थी कि शांत। मतलब बहुत सारे लोग ये देते हैं कि ऐसे गाना वैसे गाना, वो तो वो इंसान तब कर पाएगा ना जब वो शांत होगा, तो मुझे वही याद रहता था कि शांत हो जाओ, शांत, मैं अपने आप को ही बोलती थी शांत हो जाओ
1: और बिल्कुल घबराओ मत, नर्वस मत,
0: लंबी सांस लो शुरू।
1: बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है, और ये जरूरी नहीं है म्यूजिक की फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नर्वस नहीं होना है, अपना बेस्ट दो, है ना, फिर आगे तो भगवान के ऊपर है जो भी हो,
0: वो तो फिर
1: बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अच्छा आद्या, एक आपका मैं मेन चीज, अब जैसे इंडियन आइडल तो मेन रहा ही है आपकी लाइफ में, एक जो उड़ान मिली है वो शायद उसी से ही मिली है, तो ये जो इंडियन आइडल का ऑडिशन राउंड था, ये आपका बड़ा वायरल हुआ फोन वाला, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये तो हम जरूर आपसे आज सुनना चाहेंगे।
0: तो बेसिकली जो ऑडिशंस है वो मुंबई में हो रहे थे, दिल्ली के हो चुके थे, बट फिर मुंबई में मेन ऑडिशन जो टीवी राउंड था वो था, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो लास्ट मोमेंट पे मुझसे छूट गई थी फॉर ट्रैफिक, बिकॉज फरीदाबाद और दिल्ली का एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो छूट गई थी। एंड देन वो एक होता है ना कि आपके हाथ से मौका जा रहा है, तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं श्रेया मैम को बहुत फॉलो करती हूँ,
1: okay.
0: तो उनके पोस्ट पे कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह मैं कंटिन्यूस करती हूँ, तो मैंने सोचा कि वही मैं एक डीएम कर देती हूँ, बाय चांस किस्मत अच्छी हो तो कन्वे मैं कर दूंगी उनके, जो हमारे साथ जो टीम रहती थी बेसिकली, जो ऑडिशंस के टाइम रहते हैं जिनसे आप कॉन्टेक्ट करते हो, जो ऑडिशन
1: क्रू मेंबर्स
0: होते हैं जो, मैंने उनको ऐसे मैसेज कर दिया था, मुझे कोई होप नहीं थी कि वो देखेंगे कि मैं लेट हो रही हूँ, मैंने श्रेया मैम को एक डीएम कर दिया, अगर हो सके तो आप कन्वे कर दो, वो सुन ले और मुझे सिलेक्ट कर ले, कुछ तो हो जाए, तो उन्होंने कन्वे कर दिया उनको, तो उन्होंने अपने डीएम्स चेक किए और फिर उसमें मेरा डीएम शुरुआत में ही था, क्योंकि मैंने उसी टाइम भेजा था। एंड देन वो फिर मैं पहुंची, उतने में ही मेरा हो गया ऑडिशन, हो तब इट वॉज अ मैटर ऑफ लक, लक और मतलब किस्मत की ही बात थी वो, अगर नहीं देखते वो, क्योंकि इतने हजारों उनको डीएम आते हैं, किसी के कहने पे कोई डीएम देख ले तो होता नहीं
1: बिल्कुल, और कभी कभी तो मतलब वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो वो क्या अपना फोन चेक करते हैं क्या है, इतने बिजी रहते हैं। तो चलिए, कहा जाए तो आपका दिन था उस दिन, आपका लक ने आपका साथ दिया, तो इसीलिए आज हमारे साथ आद्या मिश्रा जी बैठी हुई है। ओके, सो आद्या, मैंने आपके इंटरव्यूज में और आपके जो भी पॉडकास्ट देखे हैं उसमें मैंने एक नाम बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुना है, वो नाम है नीरज कालकर सर का। तो इनके साथ आपका क्या बॉन्ड है? आप उन्हें क्या अपना मेंटोर मानती हैं? किस तरीके से इनसे आप जुड़ी हैं और सर की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, ये भी आप हमें बताइए।
0: तो मतलब ये नाम, ये जो भी इंसान है मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब नीरज सर से मैं आइडल में ही मिली थी, तो वो हमें मेंटर करते थे। जो जो भी राउंड्स होते हैं उसमें जो एक मेंटर होते हैं वो हमारे मेंटर थे, तो वहाँ मैं उनसे मिली थी और मैं बहुत ब्लेस्ड ऐसे फील कर रही थी, क्योंकि ना हम बहुत तरसते हैं उनसे मेंटर होने के लिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारे ऑडिशंस लेते हैं और हम देखते रहते हैं ना कि हम यही हमको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इस बार उन्होंने सेलेक्ट किया, कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि इस बार सेलेक्ट कर लिया। तो हम लोग बहुत बहुत वैसे रहते हैं कि हमें आपसे सीखना है, हम क्योंकि उनके पास जेन्युइनली बहुत टिप्स होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा रियाज वो कराते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये नेम और ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरा चेंज कर दिया फ्रॉम द आद्या दैट आई वाज एंड जो आद्या मैं अब हूँ। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों, बट क्योंकि वो हमारे मेंटर थे ड्यूरिंग द होल शो। जो जब सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे तो उनको वो मेंटर करते हैं, गाने जो भी होते हैं ना। तो एक तो मैं उनसे बहुत समय से ना चाहती थी कि उनसे मैं मिल भी पाऊँ, बात कर पाऊँ दो शब्द, क्योंकि वही जो ऑडिशंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे उसमें जो बच्चों को सिलेक्ट और रिजेक्ट करना होता है वो वही करते हैं।
1: मतलब पर्दे के पीछे नीरज सर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
0: नहीं नहीं, वो तो सामने बैठे होते हैं। अच्छा। सामने सामने जो जज हमको कर रहे होते हैं ना वही होते हैं। मैं मेरे लिए तो मेन जज वही है जो भी है, मतलब मैं मेनली उनके लिए हम लोग जाते हैं कि हम थोड़ा सिलेक्ट हो तो थोड़ा उनसे जान पाए कि क्या नज़रिया है म्यूज़िक को लेके। तो हम उन मैं उनसे हमेशा रिजेक्ट होती हूँ या वो होता है। तो इस बार सिलेक्ट हुई थी तो वो होता है ना कि अरे इन्होंने हमें इस बार बार रिजेक्ट किया है, अब सिलेक्ट किया तो कुछ तो होगा, इनसे हम जानते हैं। तो एज अ मेंटोर एंड स्टूडेंट ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था।
1: अच्छा।
0: एंड मैं आपको बताऊँ, उनका नज़रिया संगीत को लेके इतना अच्छा, इतना पक्का है ना, मतलब मेरा पूरा चेंज हो गया। अच्छा। मुझे ऐसा लगा मैं म्यूजिक को जान ही नहीं पाई आज तक अपनी जिंदगी में, जैसा इन्होंने बताया है। तब मैं तो म्यूजिक से मिली नहीं हूँ, जैसा म्यूजिक ये बता रहे हैं ऐसा म्यूजिक ना कोई करता है ना मैं मिली हूँ, मतलब पूरा मैं एक शॉक हो गई थी
1: म्यूजिक के लिए। नजरिया आपका चेंज हो गया, बिल्कुल
0: पूरा चेंज हो गया। और कितने सारे टिप्स, गाना है आपके पास, गाना आपका बेबी है, आप उसको कैसे क्या खिला रहे हो, कैसे उसको पाल रहे हो ना, उससे आपका आउटपुट आता है। तो वो नज़रिया देना गाने के पीछे, जो भी गाना मिल रहा है अभी नॉर्मली हम करेंगे तो एक गाना है याद करा सुना दिया,
1: बिल्कुल
0: उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं होता। अब अगर आप मुझे बोलोगे ना उसके पीछे इतने प्रोसेस है, मैं उस गाने को जीऊँगी पहले तब मैं परफॉर्म करूँगी आपके सामने, तो इतना कुछ हमने सीखा ना उनसे। तो वो मेंटोर स्टूडेंट से थोड़ा एज अ फादर भी मैं उनको देखने लगी, मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको एज अ फादर फिगर मानती हूँ। एंड आज अब मैं उनको ताता बुलाती हूँ, तो ताता मतलब पापा ही होता है संस्कृत में। एंड मैं उनको अपना फादर, सेकंड फादर मैं उन्हें मानती हूँ।
1: मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही देखी थी, फादर्स डे की आई गेस, उसमें आपने मेंशन किया होता है, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा।
0: करेक्ट। तो उनको मैं सेकंड फादर मानती हूँ, गुरु तो मैं मानती हूँ, मतलब फिर आफ्टर इंडियन आइडल मैं उनकी ही गाइडेंस के अंडर हूँ, मैं उनसे जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है,
1: मतलब वो आपको कदम कदम पे गाइड करते हैं,
0: कदम कदम पे गाइड करते हैं। और मैं और पूरा मेरा जो रूटीन है, रियाज है, मैं सब वो सब उन्होंने मुझे बताया है कैसे। अच्छा। करना है, मैं पूरा वही फॉलो करती हूँ।
1: तो रियाज की आपने जैसे बात की, तो आप किस तरीके से अपना रियाज करते हो, मतलब क्या टाइमिंग्स रहते हैं और जनरली लोगों को कैसे रियाज करना चाहिए? क्योंकि म्यूजिक में तो कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे तभी आवाज निखरती है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। और सर ने आपको क्या गाइड किया है, नीरज सर ने, वो भी हमें बताओ।
0: तो रियाज की जहाँ तक बात है, देखो रियाज के बिना तो है ही नहीं,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, हम कुछ भी एकदम टॉप बन जाए। लता जी भी, लता जी इसलिए थी क्योंकि वो रोज रियाज करती थी उस एज पे भी जब हुआ। एंड पहले तो ऐसा था आइडल से पहले कि एक घंटे किया रियाज, दो घंटे किया, किसी किसी दिन नहीं किया, कि वो सीरियसनेस नहीं है ना.
1: हाँ.
0: वो म्यूजिक को लेके वो ही नहीं है, एक नजरिया ही नहीं है. तो जैसे हमने आपको बताया ना कि मैं उनसे मिली तो मेरा पूरा चेंज हुआ. अब मैं ऐसी थी जो मैं 4 बजे सोने जाती हूँ सुबह.
1: अच्छा.
0: अब मैं 4 बजे उठती हूँ सुबह.
1: अच्छा.
0: 4 बजे मैं 4 या 3:30 उठती हूँ. ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूरा रियाज करती
1: हूँ. तो आप सोते कितने बजे हो?
0: सोना 9 बजे होता है.
1: अच्छा.
0: कभी कभी हल्का लेट हो जाता है, बट 9 बजे के बाद तो फिर पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि 9 बजे से 6:30 6:30 घंटे का वो है, 6:30 घंटे अच्छी नींद हो जाती है.
1: अच्छा.
0: तो मैं 9 बजे सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, सो जाती हूँ, और फिर सुबह 3:30 उठती हूँ.
1: अच्छा.
0: नहाओ, ब्रश करो, अपना सब कुछ करो, एंड फिर पूजा और रियाज दोनों साथ में होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है. तो उठने का मेनली है कि वो उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है. एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे सिखाया.
1: ओके.
0: सब उन्होंने ना संस्कार भी दिए हैं बहुत. मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इसीलिए मैंने बोला कि मैं आद्या जो थी उससे मैं बहुत डिफरेंट.
1: बिल्कुल. अब चेंज हो गए.
0: भगवान में भी मन लगता है. भगवान जी की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो भी मुझे उन्होंने सिखाई. हम लोग क्योंकि इतना नहीं करते थे. अब तो मैं भगवान जी से बात करती हूँ नॉर्मली. तो रियाज और पूजा दोनों साथ में सुबह सुबह मैं करती हूँ. उसके बाद आपको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे रियाज करना ही चाहिए.
1: अच्छा.
0: के बिना वो हो जाता है ऐसे ना, सुनने में बड़ा लगता है कि 6 से 8 घंटे. आप स्कूल जाते हो, आप 8 घंटे स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, 8 घंटे तो ऑफिस जाते ही हो. तो यहाँ भी वही है. आप ऐसा नहीं है कि 8 घंटे लगातार गाते रहो. 2 घंटे आपने किया, एक सिटिंग में 2 घंटे निकलते हैं आराम से. थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट दिया. वॉइस रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है. तो ये सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया. इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे रियाज करते हैं, कहाँ करते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में, स्पेशली ऐसे इंसान को जिसका कोई ऐसा नोन ही नहीं है जो म्यूजिक में है, उसे बड़ी
1: कोई बैकग्राउंड ही नहीं है जो गाइड कर सके.
0: और मेरी आवाज बहुत अच्छी करी उन्होंने. मतलब मेरा मुंह ही नहीं खुलता था, मैं सच बताऊं तो.
1: अच्छा.
0: आवाज आ रही है पर मुंह नहीं खुलता. ऐसे बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है, और लोग ना बस टोक देते हैं आपको.
1: हाँ.
0: आपका मुंह नहीं खुल रहा, पर कोई ठीक नहीं,
1: कोई समझाता नहीं,
0: कोई ठीक. उन्होंने लग के ठीक कराया उसे.
1: अच्छा.
0: जबकि वो उनका काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनका काम है मेंटर करना, लेकिन वो अपने काम के अलावा आके हमारे साथ इतना टाइम बिताते थे ना, एज अ पूरा अच्छे से एज अ म्यूजिशियन. बहुत हमने बहुत सीखा है उनसे. मतलब मैं ये जरूर कहूंगी कि आइडल से जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने ली है ना, वो मैं यही कहूंगी कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग.
1: और उनसे आपका एक कनेक्शन बना, इतना अच्छा बॉन्ड बना कि आप अभी भी उनकी अगर हेल्प लेना चाहे आप कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हो, उनसे सजेशंस मांग सकते हो
0: कभी भी.
1: सो आदे, जैसे आपने अभी नीरज सर का जिक्र किया यहाँ पर कि आपको बहुत गाइड किया है सर ने, रियाज के प्रति भी काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, तो आपकी वॉइस बहुत हस्की वॉइस है अभी भी, मैंने जैसे हमने बात की, तो इसको कैसे आप मेंटेन कैसे रख पाती हैं? मतलब एक वो होता है ना, वॉइस टेक्सचर ख़राब नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके का रियाज आप करते हैं? क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोग आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो क्या गाइड करेंगे आप कुछ म्यूजिक के जो लोग हैं, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपनी आवाज को कैसे निखार सकते हैं?
0: तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले से पूरी इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलूंगी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए.
1: ओके.
0: अपने आप को लेके, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या कैसे कितने पानी में है,
1: कैसा गाते हैं,
0: कैसा गाते हैं. तो सबसे पहली चीज तो ये मुझे उन्होंने ही सिखाया है कि हस्क जैसे होता है ना, अब तो बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं लोग, बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हस्क आपकी आवाज़ में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. क्योंकि आप देखिए, जब कोई बच्चा कोई भी पैदा होता है, किसी की आवाज़ हस्की नहीं होती.
1: बिल्कुल.
0: ये हमारी आदतों की वजह से ऐसा हो जाता है. बाहर का खाना,
1: अच्छा
0: ठंडा खाना.
1: ओके.
0: आपकी बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा कंटिन्यूसली वो खाना, बात करने का टोन. तो बात करने का टोन और गाने का टोन सेम होना चाहिए. अगर आप बोल रहे हो धीरे धीरे, गा रहे हो बहुत तेज, कुछ उसका वो ही नहीं है, मतलब मैच ही नहीं है. या फिर आप बहुत एक टोन की बात होती है, बहुत पतला बोल रहे हो, एकदम से बहुत मोटा गा रहे हो, तो वो आप अनजाने अनजाने में ही, पर वो सही चीज़ नहीं है. और हस्क भी फिर इसी चीज़ों की वजह से आता है. तो जब मैं आइडल में आई थी ना, तब तो मेरी आवाज़ में बहुत हस्क था. मतलब अब मैं ये बोलूंगी कि जो गाने मैं अब गा सकती हूँ शायद मैं उस समय गा भी नहीं सकती थी, इतना हंस।
1: अच्छा,
0: तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे ठीक कराया है, तो बैठ के लग लग के उन्होंने मेरा हंस पे काम किया। और अब मैं कहूँगी कि 70% हंस रिड्यूस हो गया मेरी वॉइस से, तो क्लैरिटी होती है ना जो आवाज़ में, वो आई है अब जाके थोड़ी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हंस था। और आजकल बहुत हंस को बहुत ये
1: अच्छा और डिफरेंट माना जा रहा है,
0: और लोग जानबूझ के गा रहे हैं, नहीं मत करो, मतलब
1: अच्छा
0: क्लियर होनी चाहिए आपकी आवाज। मैं कहूंगी कि मतलब टेक्सचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टोन की बात कर रही हूँ। टेक्सचर हस्क से डिफाइन नहीं होता, टेक्सचर आपका मोटा पतला ये हो सकता है, पर हस्की ऐसा कुछ टेक्सचर नहीं होता। तो जो भी मैं यही टिप दूंगी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ ऐसी है वैसी है। लोग भले आपको बोले बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तो सबको ही बोलता है आप बहुत अच्छा गाते हो, पर मुझे पता है कि मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या मुझे इस किस चीज़ पे काम करना है। तो और जो टिप्स की मैं ये बात कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आवाज़ का ध्यान रखो, मतलब सोना आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा टाइम पर सो जाओ, प्रैक्टिस करो, और सबसे बड़ी बात कि आप बोलने पे ध्यान रखो। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आप गा सकते हो।
1: अच्छा,
0: अगर आप गंदा बोलोगे ना आप गंदा ही गाओगे, मतलब कि बहुत तेज बोल रहे हो, चिल्ला
1: लाउड,
0: तो आपकी तो आप ब्लेस्ड हो कि आपकी आवाज़ खराब नहीं हो रही है।
1: हाँ।
0: नहीं तो हमें पता है मैं बहुत बात करूंगी ना, मेरी पूरी आवाज़ खराब हो जाएगी, मतलब बैठ जाएगी। तो धीरे बात करो, धीरे गाना भी अपना उसी के अगर, तो आप जितना अच्छा बात करोगे ना उतना मधुर आपका गाना निकलेगा।
1: अच्छा,
0: तो और अच्छे अच्छी बात करो, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो, भले वर्ल्ड में बहुत कुछ गंदा चल रहा है, क्योंकि वो गाने में रिफ्लेक्ट हो जाता है।
1: ओके,
0: जो परेशान है उसके गाने में दिख जाएगा कि भाई ये परेशान है,
1: वो इमोशंस तो दिख ही जाएंगे, नजर आ जाएंगे।
0: और प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा है मत छोड़ो, क्योंकि आप दो दिन छोड़ोगे ना आपकी आवाज़ बहुत पीछे चली जाती है। तो मैं यही टिप्स दूंगी कि रियाज तो अब हर कोई सेम रियाज नहीं कर सकता, सब अपने गले के हिसाब से रियाज करते हैं,
1: अपनी रेंज और अपने
0: रेंज, अपने आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता। रेंज पे तो बहुत कितनी लड़ाइयाँ हुई है दुनिया में कि ये रेंज है वो रेंज है, कुछ नहीं होता ये, मतलब आपकी जो रेंज है बहुत अच्छी रेंज है, खुश रहो उसमें, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। और बहुत लोग बोलेंगे आपको शायद, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत लोग फेस करे हैं कि आपकी तो बड़ी कम रेंज है, ऐसा कुछ नहीं है,
1: काफी लो स्केल में गाते हो,
0: ऐसा कुछ नहीं होता। तो किसी और की बात मत सुनो जब आप, और ये ना तब भी होता है जब हम बातों से अफेक्ट होता है जब हमने खुद का रियाज नहीं किया होता। अरे हम कौन सा रियाज करते हैं, सच सच ही बोल रहे होंगे।
1: हाँ, और कोई दूसरा आके आपको बताया, चाहे वो म्यूजिक बैकग्राउंड का भी ना हो, लेकिन हम उसकी बातों को काफी सीरियस ले लेते हैं।
0: म्यूजिक ना एक ऐसा चीज है ना जिसपे हर कोई अपनी टिप्पणी देता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल,
0: तुम मत सुनो, नहीं सुनने की जरूरत, सिर्फ अपने गुरुजी की सुनो और किसी की मत सुनो। तो यही टिप सबसे, गाना गाने वाले को ना गाने की टिप ज्यादा नहीं, ऐसी टिप ज्यादा देनी पड़ती है।
1: हाँ।
0: क्योंकि ये चीजें ज्यादा खराब करती है, कैसे हम गा रहे हैं ना उसको ज्यादा अफेक्ट ये करती है।
1: बिल्कुल,
0: रियाज तो हर कोई कर सकता है, हर कोई बता सकता है ऐसे करना है वैसे करना है।
1: बहुत अच्छी टिप है आपने दिया आज। सो आदे, जैसे अब इंडियन आइडल की बात चल रही है अभी तो हमारी, तो आपके उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट जज कौन थे?
0: सबसे फेवरेट
1: श्रेया मैम। तो कैसा कनेक्शन था मैम के साथ आपके टाइम पे? आई थिंक विशाल सर, श्रेया मैम और कुमार
0: सानू सर थे।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो मैं तो सोचा था मुझे श्रेया मैम ही पसंद थी, तो तीनों बहुत अच्छे थे, मतलब तीनों बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छे थे, बट श्रेया मैम से एक अलग क्योंकि पता नहीं उनमें कुछ बात तो है, मतलब मैं कहूँगी गाने में तो वो है ही बहुत अच्छी, बट एज अ पर्सन ऑल्सो आप कनेक्ट कर पाते हो उनसे, लगता नहीं है कि ये दो श्रेया घोषाल हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक कंफर्टेबल होते हैं ना जब आप किसी के साथ, तो उनके साथ आप बहुत ईजिली कम्फर्टेबल हो सकते हो, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। और एक वो फीलिंग भी होती है कि ये भी तो हमारे जैसे ही पाथ से आए हैं ना, तो उनमें वो अभी भी है ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ है वो, आपसे ऑफ कैमरा वो आके बात भी करती थी।
1: अच्छा,
0: टिप्स भी देती थी कि
1: मतलब जैसे आपका कोई सॉन्ग कैसा हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, उसके बारे में
0: खराब होता था ना तो वो आके दिलासा भी देती थी।
1: अच्छा,
0: कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ भी होता है। तो इसीलिए वो मतलब मेरी फेवरेट थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है एज अ पर्सन एंड एज अ म्यूजिशियन दोनों।
1: अच्छा
0: और श्रेया मैम की एक

0: बात की, उन्होंने ना मुझे सबसे पहले आउट ऑफ सारे कंटेस्टेंट्स मुझे सबसे पहले उन्होंने फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे।
1: अच्छा
0: तो बहुत ही बड़ी बात होती है आजकल के टाइम में, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी द मोस्ट यूज्ड
1: या
0: ऐप। तो उस पर आपको श्रेया मैम फॉलो कर दें,
1: बहुत बड़ी बात है
0: बहुत
1: ये।
0: बड़ी बात थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सबको फॉलो किया,
1: अच्छा
0: और मैंने देखा कि उनकी मदर ने भी सबको फॉलो किया है। मतलब
1: अच्छा
0: उनकी मॉम, उनके डैड, आप देखेंगे वैसे भी इन जनरल जहाँ श्रेया मैम होती है ना कहीं वो प्रेजेंट होते ही हैं हमेशा
1: ओके
0: पूरे टाइम। तो ये चीज़ें भी आपको बड़ी कनेक्ट करती हैं, क्योंकि
1: हाँ
0: एक माँ बाप भी उनके साथ हैं पूरे टाइम।
1: बिल्कुल
0: उनकी मदर मुझे फॉलो करती हैं, बहुत स्वीट है उनकी मदर, सबको फॉलो करती हैं वो, सारे कंटेस्टेंट्स हैं और देखती रहती हैं। वो शो पे भी आई थी वो, तो बैठ के सबको अप्रिशिएट बहुत करती हैं,
1: ये
0: बहुत क्यूट
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात है कि उनकी मदर आप लोगों से, मतलब उन्होंने फॉलो किया आप लोगों को, और मतलब इतना कितनी ब्लेसिंग्स दी
0: तो
1: होंगी
0: शोज
1: उन्होंने।
0: ना कि तभी तो श्रेया मैम ऐसी है, क्योंकि पेरेंट्स
1: हाँ
0: अच्छे होते हैं तो बच्चे तो अच्छे होते ही हैं।
1: ये तो है। और श्रेया मैम तो हम सभी की बहुत फेवरेट हैं, तो आप
0: यस,
1: तो उनके साथ रहे हो, आई थिंक 6 months का टाइम तो आपने स्पेंड किया ही
0: स्पेंड
1: है,
0: किया
1: तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही कहूंगी मैं तो इसको। और जैसे आते शो में हम देखते थे कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई एक्टर आ रहे हैं अपनी मूवी का प्रमोशन करने। मुझे याद है एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर आए थे, वो क्या एक्सपीरियंस है, मतलब वो एपिसोड तो आपका अमेजिंग था।
0: तो मैंने ना बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि रणबीर कपूर आएंगे ना तो प्लीज़ उस एपिसोड में कोशिश करके मुझसे गवा दो, क्योंकि आप हर एपिसोड में तो आप नहीं गा सकते थे,
1: जी
0: बिकॉज़ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स शुरुआत में थे।
1: हाँ
0: तो सैटरडे में जो बच्चे गाते थे वो संडे नहीं गाते थे, संडे दूसरे गाते थे। तो हमें इतना तो पता लग गया था कि रणबीर कपूर जो है वो सैटरडे को आ रहे हैं। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा तुम नहीं डालोगे ना मुझे, मैं छोड़ दूंगी शो, मुझे बस रणबीर कपूर के में डालो, किसी के में मत डालना। रणबीर कपूर और SR के आएंगे तो मुझे
1: अच्छा
0: डाल
1: SR
0: देना।
1: के आए थे आपके में
0: नहीं
1: या
0: आए
1: नहीं
0: थे,
1: आए ना।
0: नहीं आए। तो रणबीर कपूर का जब पता चला हमको कि आ रहे हैं, तो सर प्लीज़ मुझे दे। तो उनका भी था कि ठीक है तो इसको तो देंगे, कंटेंट का भी था ना, उनको तो मिलेगा। तो वो आए थे तो मैं पहले तो मैं देख रही थी बस उनको, क्योंकि मेरे बचपन से फेवरेट एक्टर है वो,
1: सभी के
0: फेवरेट
1: हमारे
0: एक्टर है
1: भी।
0: वो। इतनी अच्छी एक्टिंग में, तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज करी है उन्होंने। तो वो आए तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं इनके लिए कुछ तो बोलूँगी, तो मैं बोलने लगी, उतने में वो स्टेज पे ही आ गए खुद ही। तो
1: ओके
0: एक तो ये भी उनकी भी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी
1: हाँ
0: बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो मैं ना एज इन जनरल उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, मैं नीचे अपने घुटनों पे बैठी थी, वो भी बैठ गए अपने घुटनों पे, एंड ही देन किस्ड माई हैंड ऑल्सो, एंड देन ही हग्ड मी ऑल्सो, एंड
1: वाओ
0: आफ्टर दैट बिना कहे कैप भी उन्होंने साइन करके मुझे पहनाई। तो
1: अच्छा
0: और एक तो चीज़ जो ऑफ कैमरा हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने कुन फाया कुन गाया था थोड़ा सा उनके लिए, तो मैंने जूते उतारे थे, वो उन्होंने अपने हाथ से जूते उठा के मुझे दिए हैं।
1: गॉड,
0: मतलब
1: मतलब
0: बिना ऐसा
1: बहुत
0: भी कहे
1: ही
0: ना,
1: कहेंगे कि डाउन टू अर्थ
0: बहुत
1: बहुत
0: डाउन टू अर्थ थे।
1: ज्यादा।
0: अमीनुका भी जो एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, बहुत अच्छा गाती
1: हाँ
0: थी
1: हाँ
0: हर
1: हाँ
0: सीजन
1: हाँ
0: में, उसके उन्होंने पैर छू लिए थे जाके।
1: अच्छा
0: तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट्स हिज पर्सनैलिटी दैट इज़ डूइंग दिस। तो इसीलिए मैंने तो बोला ही था, देखो मेरा फेवरेट एक्टर ऐसे ही तो फेवरेट है नहीं, कुछ तो उसने बात होगी बंदे में जो मुझे मेरा फेवरेट है। तो मैं बहुत खुश थी वो पूरे टाइम, मैं बहुत खुश थी। मतलब इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे इतना चिढ़ाया गया है कि तुम नहाई, तुम्हारे हाथ
1: अच्छा
0: पे किस किया था ना उन्होंने, या
1: ओके
0: कैप लेके भाग जाते थे बच्चे कि नहीं हम रख लेते
1: वो
0: हैं,
1: कैप अभी भी है आपके
0: अभी
1: पास
0: भी है
1: ना
0: मेरे पास और मैं पहनती हूँ उसको कई
1: अच्छा
0: बार।
1: वही, मतलब कितने अच्छे पल हैं ये आपने जो इंडियन आइडल के टाइम बिताए हैं,
0: बहुत
1: तो
0: बहुत अच्छे।
1: बहुत सी यादें होंगी ना, तो कोई और भी ऐसी याद जो आप अभी तक मतलब कभी भूल ही नहीं सकते वो लाइफ में, इसके अलावा और क्या है।
0: दो मेमोरीज, एक तो जब संजय दत्त जी आए थे तो
1: अच्छा
0: उनसे तो सब डरते हैं, मतलब
1: हाँ
0: डरते हैं ना सेंस, वही
1: वो
0: उनका ऑरा
1: पर्सनालिटी
0: है
1: ऐसी
0: एक
1: हाँ
0: तो। और मैंने तो मतलब मुझे बहुत ऐसे वो था कि भाई तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, क्योंकि संजय दत्त इज़ वेरी
1: बिग नेम
0: ह्यूज, वेरी बिग नेम, एंड उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया।
1: अच्छा
0: तो मैंने कहा ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, भगवान जी आप
1: तब
0: तो
1: आपने
0: ज़्यादा
1: कौन सा
0: ही।
1: सॉन्ग गाया था।
0: तब मैंने गाया उनके पेरेंट्स को डेडिकेटेड था, नरगिस दत्त स्पेशल एपिसोड हुआ था, तो मैंने 3 गानों का मिक्स गाया था। एक तो नहीं, 2 गानों का मिक्स गाया था सॉरी, एक तो एक गज़ल थी एंड दूसरा था सुन मेरे बंधु रे, दैट इज़ अ
1: अच्छा
0: सॉन्ग बाय RD बर्मन जी। तो ये गाया था मैंने और वो बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ सामने से आके लिया, मैंने भी ले लिया उनका। तो
1: अच्छा
0: वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है. मैंने पिंच भी किया था अपने आप को कि ये सब सच में हो रहा है. और सेकंड जब मुझे गोल्डन माइक मिला था, मतलब मैं सच में बता रही हूँ मैं इस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि 100 बच्चों में से 10 बच्चों को गोल्डन माइक मिलता है.
1: इसमें गोल्डन माइक का क्या कॉन्सेप्ट रहता है थोड़ा सा आप हमें बताइए.
0: तो बेसिकली अगर आपको गोल्डन माइक मिला है तो टीवी राउंड के बाद ना एक और राउंड होता है कलिंग राउंड.
1: ओके.
0: विच इज नॉट शोन ऑन टीवी. कलिंग राउंड में बच्चे जो जिनको टिकट मिला है ना वो बच्चों में से कुछ बच्चे एलिमिनेट होते हैं.
1: अच्छा.
0: जो कि टीवी पे वो राउंड नहीं दिखाया जाता है. एंड फिर जन जो टीवी राउंड आता है उसमें डायरेक्टली जो बच्चे कलिंग सर्वाइव करें हैं, जिनके पास गोल्डन माइक है वो आते हैं. तो वो राउंड ना बहुत क्रूशियल राउंड है जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं.
1: अच्छा.
0: तो अगर आपको गोल्डन माइक मिल गया तो आपको सेफ्टी होती है बहुत ज्यादा कि नहीं भाई
1: टॉप 15
0: के उसमें कम्पीट करने के लिए मैं हूँ लाइन में. तो वो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट, मैं आपको सच में बता रही हूँ मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मुझे गोल्डन माइक मिला था. क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया ऑडिशंस में, उसके बाद सिलेक्ट होना आना और गोल्डन माइक मिल जाना जो कि बहुत कम बच्चों को मिलता है,
1: बहुत बड़ी
0: नहीं एक्सपेक्टेड था. मुझे था भगवान बस टिकट दिलवा दो, बस सिलेक्ट करवा दो, रिजेक्ट ना हूँ बट हो जाऊंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं है. बट गोल्डन माइक तो आई नेवर थॉट की इट विल हैपन.
1: तो गोल्डन माइक तो अभी भी सजाया हुआ होगा अपने रूम में.
0: सजाया हुआ है, मैं मेरे हाथ कांप रहे थे मैंने वो लिया था. क्योंकि बचपन से भी हम देखते हैं ना तो गोल्डन माइक जिसको मिलता था ना हम टीवी पे देखते कूद जाते थे, अरे इसको मिल गया गोल्डन माइक. वो आपको मिल जाए तो फिर तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है. तो वो मेरे लिए एक बहुत कोर मेमोरी है. जो सबसे बड़ी मेमोरी मेरे लिए एक्चुअली यही है कि मुझे जब गोल्डन माइक मिला.
1: नहीं
0: अक्षय मैम भाग के आई थी मुझे गोल्डन माइक.
1: अच्छा. और ये सब जब चल रहा था तो आपकी मदर आपके साथ थी या फादर थे साथ में? कौन गया हुआ था?
0: तो वहाँ पे एक पेरेंट रह सकता था.
1: अच्छा.
0: दोनों नहीं रह सकते थे. तो मेरी मॉम थी तो वो ऑफ स्क्रीन देख रही थी.
1: उनकी भी वो भी कितनी एक्साइटेड था. नहीं पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा, मतलब कहेंगे कि एकदम सपना ही है जिन्होंने इतनी मेहनत की है अपने बच्चों के लिए.
0: मेरा ना इंडियन आइडल में ये भी एक्चुअली था कि मदर स्पेशल एपिसोड आता है ना तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी वहाँ बैठे और मैं उनके लिए गाऊँ और वो रोए और फिर मैं भी रोऊँ. तो वो एक होता है क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी यार मैं कब उन माओं के साथ बैठूँगी. तो वो एक रह जाती है कुछ बातें आपके साथ.
1: बिल्कुल.
0: जो फिर जब मैं सिलेक्ट हुई थी तो मेरे दिमाग में यही था कि मदर स्पेशल कब आएगा, मैं चाहती हूँ वो मम्मी को वो खुशी देना.
1: तो हुआ था
0: तो फिनाले जब था, फिनाले से जस्ट पहले जो राउंड हुआ था ना उसमें,
1: तो आपने उसमें कौन सा सॉन्ग गाया था?
0: दिलवरो.
1: एक लाइन थोड़ी सी हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा.
0: ठीक है, कुछ गलती हो तो माफ करना क्योंकि मैं थोड़ा अंडर द वेदर है मेरा गला, बिकॉज़ वो मौसम चेंज हो रहा है ना बहुत ज्यादा इसीलिए.

0: ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी आवाज है आपकी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो आद्या, जैसे आप इंडियन आइडल में 6 महीने तक रही, तो वहाँ पे सैटरडे संडे जो ये शूट रहता है, मतलब कैसे होता है वो, आप लोगों को गाने प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलता है, और फिर शूट कैसे चलता है, पूरा दिन चलता है या सिर्फ रात रात में या कुछ ही घंटों का होता है, तो कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा वो भी बताइए और शूट के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है वहाँ पर, तो हम बहुत जानने के लिए एक्साइटेड है।
1: करेक्ट। तो 2 दिन नहीं होती थी शूटिंग, हमारे पास बहुत कम टाइम होता था। अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत में तो बच्चे ज्यादा थे जब, तब हम लोग एक ही एपिसोड में गाते थे, तो बेसिकली क्या होता है दोनों एपिसोड एक ही दिन में शूट होते हैं।
0: अच्छा।
1: तो क्योंकि सेम डे 2 अलग अलग गेस्ट आते हैं, फर्स्ट हाफ में फर्स्ट एपिसोड शूट होता है, सेकेंड हाफ जो 2 बजे के बाद है उसमें दूसरा एपिसोड शूट होता है। तो जब स्टार्टिंग में जब अलग अलग एपिसोड में होते थे तो एक ही गाना प्रिपेयर करना होता था या 2 गाने मैक्स, तो तब हमें गाने लॉक हो जाते थे बाय, आप ले लो हमारा हर मंडे शूट होता था, तो गाने लॉक हो जाते थे बाय वेडनेसडे या फिर थर्सडे कभी कभी। तो आप सोचो थर्सडे लॉक हुए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन है हमारे पास 2 गाने प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, जो कि आपको पूरे टीवी के सामने गाने हैं जो आपने कभी सुने नहीं है शायद अपनी जिंदगी में। और 4 दिन वैसे लगते हैं कि ज्यादा नहीं भाई, बहुत कम होते हैं।
0: मतलब सॉन्ग आपको मिलता था वेंसडे या थर्सडे को?
1: मोस्टली थर्सडे।
0: ओके।
1: थर्सडे तक मिलता था क्योंकि गेस्ट कौन आ रहा है,
0: हाँ, वो तभी पता चलता,
1: तभी पता चलता था, क्योंकि तभी टाइम तो चाहिए लॉक करने के लिए किसी को भी, क्योंकि सबके अपना देखना होता है उनको भी कि किसको बुलाना है किसको नहीं। तो थर्सडे तक, कभी कभी तो हमें फ्राइडे मिले हैं गाने।
0: अच्छा।
1: मंडे शूट है। Okay. और एक दिन पहले टेक्निकल होता है। टेक्निकल में व्हाट हैपेंस इज, आपको जहाँ पे शूट होता है ना वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ आपको गाना होता है एक बार आउटफिट चेक के लिए।
0: Okay.
1: आउटफिट की फिटिंग्स होती है उस दिन, और प्लस आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे साउंड कर रहे हो, ताकि आप एक दिन बाद अच्छा परफॉर्म कर सको।
0: Okay.
1: आपके माइक के सेटिंग वगैरह सब उस दिन फिक्स हो जाते हैं। तो आप ले लो हमारे पास कभी कभी तो 2 दिन होते थे, और थर्ड डे टेक्निकल है, फिर फोर्थ डे शूट है। मोस्टली ऐसे ही होता था, बहुत डिफिकल्ट था, मतलब हम ऐसे थे क्या गाएंगे हम, गाना तो हम याद ही करने में तो डर, क्योंकि लोग, मेरी पावर अच्छी थी, मैं भूलती नहीं थी, कुछ कुछ बच्चे बेचारे फंसे पड़े
0: भूल जाते हैं
1: क्या लिरिक्स है, भूल गए,
0: और कभी कभी तो 2-2 गाने भी एक साथ गाए।
1: हाँ, 2-2 गाने एक साथ। अब अभी तक तो ठीक है, जब ऐसा होने लगा बच्चे कम हो गए तो हमें दोनों एपिसोड में गाना होता था, तो आपके पास 4 गाने
0: संडे सैटरडे
1: 4 गाने हैं, ठीक है। ऊपर से जब कोई एंट्री करता है उनके लिए एक मेडले होता है, उसके गाने अलग, हमने कहा हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको 5-6 गाने 3 दिन में करना है, वेरी लेस टाइम, सुबह से रात खाना नहीं खा पा रहे हैं। और हमारे मेंटर्स लेकिन बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई बच्चा नहीं कर पाता अगर हमारे मेंटर्स नहीं होते हमारे।
0: तो नीरज सर के साथ और भी कोई मेंटर्स?
1: हाँ, थे तो नीरज सर थे, उनके अंडर मंगल सर और धर्मेश सर थे।
0: ओके।
1: तो 3 हमें गाइड करते थे थ्रू आउट। तो नीरज सर तो घर ही नहीं जाते थे, सोचो उनको क्या जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए रात रात तक रुके हुए हैं। एक रामायण का एपिसोड हुआ था, टेक्निकल के 1 दिन पहले हमने गाने प्रिपेयर किए, लिटरली कुछ कुछ का तो बेचारों का टेक्निकल के दिन चेंज हुआ है। तो आपको ये सिखा देता है उस टाइम पे कि जो लोग बोलते हैं ना हमें अभी 1 महीना चाहिए गाना करने के लिए, आप सही है, लेकिन आपको हमेशा जिंदगी में ये मौका नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक पावर बढ़ती है इंसान की कि हम करें। और सबसे यहाँ पे आप मेन चीज सीखते हो, आप बहुत पुराने गाने सीख लेते हो। मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो यूयो हनी सिंह और आतिफ असलम अरिजीत सिंह ओनली,
0: मतलब पुराना तो लेना देना ही नहीं था।
1: अब वो जो गाना बोल रहे हैं, मैं कहा ये कौन सा गाना है भाई, कौन से जमाने का गाना दे दिया आपने मुझे। अब या पहले तो मैं उसको समझ रही हूँ कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है, लिरिक्स याद करना, फिर गाने में बड़े टफ गाने।
0: तो गाना, जैसे पुराना गाना मिला आपको, तो आप कितनी बार उसे सुनते थे?
1: आप ले लो 1000 बार कम से कम, क्योंकि साउंड, अब मैंने आपको बोला ना, जो नए नए जमाने के सुन रहे हैं ना सिर्फ, उनका एक साउंड बन जाता है। जो आप पुराने गाने, आप अच्छे ही नहीं साउंड करोगे।
0: बिल्कुल।
1: पुराने गानों से अच्छे गाने हैं नहीं इस पूरी दुनिया में। मैं आपको ये बोलूंगी, मेरी जो आवाज इम्प्रूव हुई है ना इस हद तक, वो सिर्फ पुराने गानों की वजह से हुई है।
0: ओके।
1: क्योंकि उन बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग, बहुत अच्छा गाते,
0: तभी तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड,
1: खतरनाक गाते हैं। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मुझे लता जी के बारे में तक मुझे उतना नहीं पता था जब मैं गई थी, आप सोचिए, तब मैंने इतना सीखा है ना वहां जाके, मेरी सॉन्ग बैंक बढ़ गई है। अब जो लोग ने पहले से सुना हुआ है उनको तो चार दिन में करने में दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उन्होंने सुन रखा है। मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, बट नीरज सर पूरे टाइम लगे रहते थे, हेल्प करूँगा, सब मीनिंग समझाते थे गानों का, सब करते थे। तो और शूट शुरू होता था सुबह 9 बजे एंड इट यूज टू एंड बाई 1 AM 12 AM समटाइम्स 2 AM ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी टेक्निकली 12 बजे ख़त्म होता था, हम होटल आते थे 1 बजे तक, अगले दिन सुबह आपको 6 बजे जाना है।
0: अच्छा, बहुत बहुत हेक्टिक भी रहा होता है, लेकिन वो टीवी पर इतनी चीज़ें दिख नहीं पाती के,
1: ये कहाँ
0: देखा। हाँ, मतलब के बैकग्राउंड में कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल है आप लोगों का भी, और यहाँ तक कि जैसे आपने बताया सॉन्ग्स के लिए दो दो दिन पहले भी आपको गाने मिले
1: चेंज तो, प्रिपेयर कर लिया। हाँ, नहीं अब चेंज है गाने।
0: अच्छा,
1: ये हुआ है।
0: और कौन सा गेस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग्स मिलते थे। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता था कि आपको आपकी वॉइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स मिलते थे या कुछ भी दे देते थे?
1: नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि मेंटर्स डिसाइड करते थे सॉन्ग पर। ऐसा ना, बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो खराब गा रही है क्योंकि इसको गाना गंदा मिला है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपसे गाते नहीं बन रहा गाना।
0: हाँ,
1: मतलब मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ उस टाइम पे, तो मैं लता जी का गाना कोई भी गाती हूँ तो मैंने जो सुना अपने मुझे उतने नहीं अच्छे लगते अब, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गाना कहाँ से ख़राब हो जाएगा, आप गा नहीं पा रहे, ये है मेन। तो ये तो बात ही गलत है कि इनको गाना इनके हिसाब से नहीं मिल रहा। वो लेकिन वो कोशिश करते थे बहुत हद तक कि लंबी जुदाई जैसे मुझे दिया उस टाइम पे, जैसे मैं टेक्सचर था सब था, तो लंबी जुदाई बहुत अच्छा सूट करता है गाना मुझ पर, लंबी जुदाई दिया। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया है, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे गाने भी दिए हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं गाऊंगी। मैंने इश्क दल अगया रोक दिया था, और जो अनुराधा पौडवाल जी का गाना है, लता जी के गाने भी मुझे दिए थे, जो कई लोग ऐसे बोलेंगे कि लता जी ये गाने तो गा ही नहीं सकती।
0: हाँ,
1: तो उस टाइम पे तो मैं मानूंगी, अब नहीं मानूंगी मैं ये बात, पर हाँ तो ऐसा तो नहीं है कि। और ये लोग, ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप इसको हिसाब से नहीं दिए इसलिए ऐसा गा रही है, नहीं, वो फिर आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है कि ये एक पॉइंट दिखा रहे हो उस बात का। तो वॉइस क्वालिटी के हिसाब से वो देते हैं जहाँ वो दे सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको
0: आपके हमेशा वैसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल,
1: क्योंकि फिर आप फर्क क्या रह जाएगा,
0: और फिर कंपटीशन है ना बेसिकली, तो उसमें आने का क्या फायदा अगर आप हर तरीके के गाने नहीं गा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आद्या एक चीज और, जैसे आप टॉप 6 में आए थे, राइट? तो टॉप 6 में आने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडियन आइडल के टॉप 6 में आना, तो क्या उसके बाद आपके सक्सेस के दरवाजे खुले या फिर कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है?
1: देखिए, दरवाजे तो खुले, मुझे शेखर सर ने ऑन शो आके गाना दिया।
0: यस,
1: मतलब जो कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी।
0: और तब तो अभी शो चल ही रहा था,
1: शो चल रहा था, और उन्होंने शो चलते में मेरा गाना रिकॉर्ड भी करा दिया, शो चलते में रिलीज भी करा दिया।
0: अच्छा,
1: तो मतलब 3 मार्च को फिनाले था, 1 मार्च को मेरा गाना रिलीज हो गया।
0: ओके,
1: तो अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, अगर आप मेहनत करोगे तो आएगी, लेकिन हाँ स्ट्रगल तो, आप एक म्यूजिशियन हो वो आपकी जिंदगी भर रहेगा। आप बहुत अच्छे, सपोज आप अभी मैं श्रेया घोषाल जी बन गई, लेकिन अगर मैं उसे मेंटेन नहीं रखूंगी तो मैं वापस यही नॉर्मल हो जाऊंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गंदा गाती हूँ या मैं अच्छी म्यूजिशियन नहीं हूँ, वो किस्मत की बात है, या आपने कितनी मेहनत अपने आप को बिल्ड मेंटेन रखने में लगाई है उसकी बात है। ये डिफाइन नहीं करता कि आप कैसे म्यूजिशियन हो। मैंने देखा है इतने अच्छे गाते हुए लोग, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। तो ये मैं कहूँगी कि ये तो स्ट्रगल हर म्यूजिशियन की जिंदगी में जिंदगी भर रहेगा, जब तक आप मरते दम तक ये रहेगा। ये एक्टर, डांसर, सिंगर, जो ऐसी प्रोफेशंस है ना, इनके जिंदगी में लाइफ टाइम वो स्ट्रगल रहेगा कि आपको ऊपर कैसे रहे, जो कि बिल्कुल ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी कला में आप कितने माहिर हो, पर दुनिया को अगर आपको ऐसे दिखाना है कि आप मेरा नाम जानते हो, ये स्ट्रगल आपकी जिंदगी में,
0: तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा एंड तक वो,
1: तो तभी तो विनर जो जीतते हैं। कहाँ है,
0: मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जैसे इंडियन आइडल हो गया या सारेगामा पा, जो भी ये रियलिटी शोज है, इनके विनर्स तो बस उसी टाइम रहते हैं, ज्यादा हम नहीं जानते हैं
1: तो और जो वो सच में बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ, हाँ, कुछ हाँ, तो अच्छा गा रहे हैं कुछ, मैं ये भी बोलूंगी कि भटक गए क्योंकि सर भी चढ़ जाती है कभी कभी सक्सेस बहुत इजीली चढ़ती है, मतलब मैंने तो देखा है लोगों को।
0: अब जैसे एग्जांपल लिया जाए तो अरिजीत सिंह जो है,
1: अरिजीत
0: वो फेम गुरुकुल में आए थे,
1: फेम गुरुकुल में आए और उसके बाद वो कहीं नहीं आए, 8 साल बाद वो आए
0: बिल्कुल गायब, एग्जैक्टली
1: क्योंकि और उस टाइम पे जैसे अरिजीत सिंह गाते थे ना उस टाइम पे आप कोई नहीं बोल सकता कि वो ऐसे गाते हैं, तो इतना इम्प्रूवमेंट,
0: कितना फर्क है उनकी वॉइस में
1: पता बहुत चलता है। आप एक बार रियलिटी शो में गए ना आपको पता पूरा चल जाएगा कि आप कहाँ हो क्या गाते हो,
0: ओके
1: क्योंकि पूरा आपको पता चल जाएगा। वैसे आप गाओगे कोई बोलेगा नहीं सुनता कोई, जब आपको बहुत लोग बोलेंगे ना जो बड़े बड़े जो जानकार है बोलेंगे कि आपको ये वर्क करना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैं कहूँगी। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या गा रहे हैं और उनको लगता है बहुत अच्छा गा रहे हैं बहुत खराब गा रहे हैं, तो ये बहुत मैं तो बोलूँगी कि अब जैसे विनर है उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा भी गा रहे हैं लेकिन अब वही है ना नहीं जानते क्योंकि मेंटेन ऊपर बिल्ड करना अपने आप को बहुत मुश्किल है, इतने लोग हैं आजकल इंस्टाग्राम

0: से कर रहे हैं आप सब धीरे धीरे, तो मैं कहूँगी कि ये स्ट्रगल तो जिंदगी भर का है, कभी रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें।
1: मतलब मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी।
0: यस,
1: वो जरूर।
0: मेहनत सिर्फ गाने पे नहीं करनी, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सिर्फ गाने पे करनी होती तो बहुत लोग, कितने अच्छे अच्छे लोगों में जानती हूँ, पर वही है कि आपको अपना सोशली भी ग्रो करना पड़ेगा। वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं जानेगा।
1: हाँ,
0: ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का।
1: बिल्कुल। सो आद्या, इंडियन आइडल से जब आप एलिमिनेट हुए तो आपको कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा? मतलब कुछ अपने अंदर से नेगेटिव हुए आप, या फिर बहुत माइंड अपसेट हो जाता है और भी चीज़ें कि मैं वहाँ तक गई और आगे नहीं विनर बन पाई, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
0: कि मतलब मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बोलूँ मतलब वर्ड सही नहीं है, बट औकात से ज़्यादा मिला था।
1: ओके।
0: मतलब मैंने तो सोचा था कि सिर्फ ऑडिशन ऑडिशन हो जाए, टॉप 15 हो जाए, फिर निकाल दो, कोई बात नहीं। पर नहीं, फिनाले तक भी मैं पहुंची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो रहता है कि इतने करीब आके हो गया, बट खुद को भी पता है ना कि कितनी चीज़ें सुधारनी है, तो वो चीज़ का मुझे पता था कि मुझे अभी ये इस पे वर्क करना है। तो वो आपको पता होता तो फिर आप आउट होते तो
1: बुरा नहीं लगता,
0: नहीं लगता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, मैं बहुत कुछ सीख के गई। इनफैक्ट
1: मतलब टॉप 6 में आने के बाद भी एक वो ब्लेसिंग ही रही आपके
0: साथ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मतलब हम में से किसी ने नहीं सोचा था, मेरे फैमिली में भी, कि टॉप 6 तक हो पाएगा।
1: हाँ, नहीं, ये काफी बड़ी बात है। आद्या, फिर इंडियन आइडल से निकलने के बाद आपको कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले? क्योंकि मैंने एक सुना है जिसमें अन्नू मलिक जी ने म्यूजिक दिया है, तो वो क्या था, वो आपको कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली?
0: तो आइडल के बाद मुझे जी वालों के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे 3 सॉन्ग्स दिए थे।
1: अच्छा।
0: तीनों अनु मलिक जी ने ही कंपोज करे थे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे आफ्टर शो मिली। तो इट वाज आल्सो गुड स्टार्ट। तो 3 बड़े अच्छे गाने उन्होंने मुझसे गवाए थे।
1: मतलब शो में रहते रहते शेखर सर के साथ, शेखर सर के साथ आपको मिले थे?
0: तो शो में रहते रहते,
1: हाँ, और शो के बाद अनु मलिक जी के बाद, दोनों ही बहुत बड़े नाम है अपने आप में।
0: यस यस।
1: तो आपके वो सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, और जैसे आद्या आपने बताया आप इंडियन आइडल में, आपने तो देखो स्टार्टिंग से ही देखी वो चीज़ के कैसे आप ऑडिशंस में गए, और आप पहले भी बहुत से ऑडिशंस आपने दिए हैं। तो अब जैसे नॉर्मल कोई एक जो सिंगिंग सीख रहे हैं, आजकल बहुत लोग सिंगिंग कर रहे हैं और हर किसी का सपना होता है कि टीवी पे आना है, चाहे फिर वो इंडियन आइडल हो, सारे गामा हो, या कोई भी और रियलिटी शो हो, तो उसका मतलब क्या है ऐसा एक फर्स्ट स्टेप? मतलब स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताओ, जो जनरल ऑडियंस को नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता कि हमें कैसे ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा है कि हम लोग ऑडिशंस में जब जाते थे बचपन में, क्योंकि मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, सो वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि हिम्मत ही नहीं हो पाती आगे। कभी कभी तो नंबर रात को 11-11 बजे आता है, सुबह से 5 बजे से लाइन्स लग जाती हैं। तो इसके बारे में आप बताओ कि कैसे हम उसमें अप्लाई, हमारे जो भी म्यूजिक सीख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करिए।
0: तो इससे पहले मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल लोगों का होता है।
1: ओके।
0: आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी इंसान से, मुंबई में तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। म्यूजिक में मेरी फील्ड, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है म्यूजिक में। तो कई लोग तो ये भी सोच के जाते हैं ना कि अरे नहीं होता नॉर्मल लोगों का, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, नहीं चाहिए,
1: कि जब तक आपकी कोई जानकारी नहीं है तो आप नहीं जा सकते,
0: ये सब गलत है।
1: अच्छा।
0: और टाइम लगेगा आपको, हाँ, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपको समय बहुत लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका समय आएगा नहीं। तो मैंने 9-10-11 साल की एज से लगातार ऑडिशन दिए हैं, और जब मैं 17 साल की हुई हूँ तब मुझे पहली बार मैं आई हूँ टीवी पे, तो मैं कम से कम 7-8 साल कंटिन्यूस मैंने ऑडिशन दिए हैं मेरी मम्मी के साथ, बार बार रिजेक्ट, बार बार रिजेक्ट। एक टाइम पे ना जो मुझे हमारे ड्राइवर थे वो छोड़ने आते, उन्होंने भी बोल दिया अरे आप कहाँ लेके जाते हो इसको, उसका सिलेक्शन तो होता नहीं है। मेरी मम्मी मुझे उस साल, उसके अगले साल से मेट्रो से लेके जाने लगी कि कोई बोले नहीं, मेरी बेटी को नहीं बोले कोई। तो होता है। और ऑडिशन का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ। तो जब आप जाने लगोगे ना, आप एक चेहरा फिर आपका याद रह जाता है।
1: अच्छा। जो लोग ऑडिशंस लेते हैं,
0: हाँ, उनको रहे कि ये तो हर साल आती है ना, वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, लोग याद रखते हैं।
1: हाँ।
0: आपका जब टाइम होगा तभी होगा। तो हमें भी वही जो डेट्स दी जाती है ना, तो ये डेट्स हर जगह सर्कुलेट होते हैं, टीवी पे भी आता है जो हाँ. टीवी देखते हैं, फोन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कंटिन्यूसली आते रहता है कि इस तारीख पे इस स्कूल में ऑडिशन है, आप जाओ. लाइन में लगना पड़ता है. मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लग के रात के 9 बजे नंबर आया, मेरा भी ऐसा हाल हुआ है. पर एक समय जब आप जाने लगते हो ना, तब आपका ऐसे होने लगता है कि कुछ राउंड्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं फोन के थ्रू ही, मतलब फोन पे वो वीडियो मांगते हैं आपका गाते हुए. हो सकता है आपके 2-3 लेवल उसी में क्लियर हो जाए, आप इतना अच्छा गाते हो, और आपको डायरेक्ट उधर जाना हो 4th लेवल में जो लास्ट लेवल है, ऐसा भी होता है. तो मेरे ख्याल से प्रोसेस वही है, क्रू मेंबर्स से आप लोग बात करो, आप लोग अपना जो वीडियो भेजते हो उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो, और कोई तरीका नहीं है. जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसा कोई तरीका, हमने भी वैसे ही किया है और वैसे ही सिलेक्शन होता है सबका.
1: मतलब कोई अगर ज्यादा ये नहीं हो सकता कि आपकी जब तक जानकारी नहीं है तो ही आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं.
0: झूठ है. और पैसे लेते हैं कई लोग तो ये बोलते हैं, ये तो एकदम झूठ है. मतलब नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे थे भी नहीं देने को, कुछ नहीं था ऐसा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वैसे लेते हैं कुछ ऐसा है, इट्स जस्ट नॉर्मल. बट आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. जब बताओ, मतलब मम्मी मुझे मेट्रो से लेके जाने लगी, ऐसा हाल हो गया था. तो टाइम लगेगा बट हो जाएगा.
1: बट हो जाएगा, मतलब अगर ऑडिशंस आपको पता है कि हो रहे हैं तो जाना चाहिए.
0: जाना चाहिए,
1: है ना, क्योंकि
0: जाओ देखने के लिए जाओ कैसा गा रहे हैं लोग, क्या गा रहे हैं.
1: कभी कभी बहुत सी चीज़ें दूसरे को देख कर ही समझ आती हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है. आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसका, तो आपको भी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, आप भी ऐसे रूमर्स में ही भटकते रहेंगे मुझे लगता है.
0: और फिर आपको लाइफ में ना एक वो मिल जाता है कि आप इतने रिजेक्ट हो चुके हो, आप कोई करेगा ना तो आप एकदम दुख में नहीं जाओगे.
1: हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा,
0: आजकल झेल नहीं पाते.
1: हाँ,
0: बहुत छोटी चीज़ है ये, तो बहुत रिजेक्शन मिलेंगे लाइफ में, उससे आप एक वो हो जाते हो, अकस्टम हो जाते हो.
1: हाँ. और आधे आपके अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मतलब हमें क्या कुछ आपके फैंस को सुनने के लिए मिलेगा, कुछ नया उसके बारे में बताओ.
0: आफ्टर आइडल मेरा एक और पहलू से मैं भी रूबरू हुई, दैट इज कंपोज करना, लिखना, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं अभी कर पाऊंगी उसके लिए, क्योंकि वो खुद से आता है, आप कर नहीं सकते, मजबूती नहीं कर सकते. तो मैं अभी एक्चुअली उसी में लगी हूँ, मैं अपने गाने लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, एंड होपफुली कुछ 2-3 महीनों में मैं उन्हें रिलीज़ करना शुरू करूँगी. तो आई एम वर्किंग ऑन माई ओरिजिनल्स, एंड आई फील क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सीन अभी बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जिस लेवल पे बढ़ रहा है ना ऊपर, आई फील इन द कमिंग टाइम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ गोइंग टू रूल, क्योंकि फिल्मों में म्यूज़िक लोग इसी पे रह जाते हैं, प्लेबैक
1: और कवर सॉन्ग्स बना बना के.
0: हाँ, नहीं मिलेगा प्लेबैक आपको, नहीं मिलेगा. चलो आप अपना इंडिपेंडेंटली कर लो ना, आपको रोका नहीं है किसी ने. अब आजकल इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, उनको नहीं देता कोई प्लेबैक.
1: हाँ.
0: नहीं देता है, पॉलिटिक्स तो है. तो आप अपना इंडिपेंडेंट,
1: लेकिन उन्होंने अपना भी नाम बनाया हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है.
0: बहुत अच्छे से कर सकते. मैं इतने लोगों को देखा है जो 0 से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए लोगों के, सिर्फ गागा के पोस्ट करने से.
1: बिल्कुल.
0: तो इट्स वेरी इजी, एंड इजी तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब अगर आप मेहनत से करो ना तो हो जाएगा.
1: बिल्कुल. सो आद्या, लास्ट में अब आप हमारे दर्शकों को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपके जरिए वो लोगों तक जाना चाहिए?
0: मैसेज तो मैं ये, मतलब चाहे आप म्यूजिशियन हो चाहे नहीं हो, मैं सबसे बड़ा तो ये दूंगी कि आप अच्छे इंसान रहो, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस फील्ड में आने के बाद एकदम डिफरेंट हो जाते हैं,
1: बदल जाते हैं.
0: वो मत हो, आप अपने वैल्यूज पे बहुत स्ट्रांग रहो, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपका हर सेकंड पे, हर स्टेप पे टेस्ट होगा कि आप कैसे हो, और आपको हर सेकंड में तोड़ेगा. बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि आपके क्या गोल्स हैं व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड. मतलब मैं ये मैसेज दूंगी कि आप अच्छे इंसान रहो, अपने वैल्यूज कभी भूलो मत, और अपनी फील्ड, आपके जो गोल्स हैं वो याद रख के उन पे बहुत मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी.
1: ओके, सो लास्ट में अब आद्या ने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं. सो अब लास्ट में आद्या, मैं चाहूँगी कि जिस सॉन्ग की वजह से आपसे हम लोग रूबरू हुए, कनेक्ट हुए, जो आपका वो पहला ऑडिशन का गाना था, आप एक बार वो ज़रूर गा के जाएं आज, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आद्या मिश्रा का वो वाला सॉन्ग फिर से सब वो आपकी यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च करेंगे देखेंगे, तो एक बार आप ज़रूर वो गुनगुनाइए।

0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग, वेरी नाइस आद्या. मतलब ऐसे लग रहा है ओरिजिनल से भी ज़्यादा प्यारा आपने गाया है. अमेजिंग. सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. और आज की जो हमारी गेस्ट हैं आद्या मिश्रा, उन्होंने बहुत ही सुंदर टिप्स दी हमें, हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को, और इंडियन आइडल का जो अपनी जर्नी हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आद्या. और हम आपको विशेस देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे कि आप ऐसे ही खूब अपना, अपने परिवार का, हमारा, हमारे शहर का नाम रोशन करिए. तो बहुत बहुत हम सब की तरफ से आपको बधाई, और हम चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत और अच्छे आए, आपके फैंस को, हम लोगों को सुनने के लिए मिले. तो जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इसी शो क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना. टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ.
2: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मैं हूं आरजी सागर. आज का हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ. ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बातें करके, गुफ्तगू करके कुछ कुछ चीजें निकलवाने की कोशिश करते हैं. आज हमारे साथ है मिस जैस्मिन. जैस्मिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि जैस्मिन एक एक्टर हैं, जैस्मिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और काफी फेमस, बहुत कम टाइम में अच्छी खासी पहचान इन्होंने अपनी बनाई है. जैस्मिन से आज हम बात करेंगे कंटेंट इकोनॉमी की, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है प्रोसेस. लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे जैस्मिन का. जैस्मिन स्वागत है.
3: हेलो, हेलो सागर भैया,
2: कैसे हो?
3: मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हो?
2: बहुत बढ़िया. जैस्मिन, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए अपने शब्दों में.
3: पहले तो जैसा आपको पता है मेरा नाम जैस्मिन है, और पर ऑनलाइन मेरे को जस्सू भाई के नाम से ज्यादा जाना जाता है. जस्सू भाई या निब्बी का कैरेक्टर मेरा काफी फेमस है तो उस हिसाब से. और बाकी कंटेंट बनता कैसे है तो ये मैंने
2: इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे,
3: से सीखा है. अच्छा, हाँ बिल्कुल.
2: पहले तो हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करती हैं और कैसे आपने कंटेंट के बारे में सोचा, ये थोड़ा बताइए.
3: अच्छा, मैं पहले सेल्स लाइन में थी, मैंने सेल्स में काम किया हुआ है. तो सेल्स में काफी अच्छा पैसा मिलता है, आप जितना इंसान को पागल बना पाओ उतना अच्छा पैसा मिलता है, कहा जाता है वहाँ पे. तो मैं आपको आपकी किडनी ही बेच सकती हूँ. 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने स्कूल करने के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, और मैंने ओपन से SOL से वो किया है कॉलेज. तो फिर मैंने जॉब किया, जॉब से जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई तो मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि तुझे कुछ करना चाहिए, क्रिएटिव है तू, तेरी जबान जिस तरीके से चलती है ये वो फलाने का ना. तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते एक बार, ट्राई लेके देखते हैं. तो पहले मैंने ग्राउंड वर्क से चालू किया, मैंने अपने एक मित्र है उनकी बड़ी हेल्प करी चीजों में, और हेल्प भी किया उन्होंने, मुझे सिखाया और मैंने उनसे सीखा, और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ. वो भी बहुत अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर है, काफी फेमस है, उनका नाम तैयब है.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. तो उस तरफ आएंगे दोस्तों. फिलहाल आपने जाना जैस्मिन के बारे में, जैस्मिन की जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है. अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में हम लोग आगे बात करेंगे. विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ.

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ हैं ऑनलाइन जस्सू भाई के नाम से काफी फेमस क्रिएटर जैस्मिन। शो है वॉइस ऑफ यूथ और हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्किल सेट की। जैस्मिन, बात करना चाहूंगा कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, शुरू से पूरा प्रोसेस बताइए हमें कि यहाँ से शुरू होता है, ये थॉट होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है, बिल्कुल बेसिक की तरह जैसे कि आप पांचवी क्लास के किसी बच्चे को समझा रहे हो।
1: बेसिकली मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व की चीजें और मुझे जैसे बताई गई, जैसा मैंने सीखा आप लोगों से या आपके साथ रहने वाले लोगों से, तो मैंने देखा कि आपके माहौल से ही आता है ये। आप जिस माहौल में उठ बैठ, क्योंकि मुझे पता है सब फैमिली में ऐसा कोई ना कोई खड़ूस फूफा, चाची, मामी, ऐसा कोई ना कोई होता है। तो पहले तो ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए कि आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को। दूसरा, फिर आप उसको कैसे एग्जेजरेट करके अपने स्टाइल में बना सकते हो, ये प्रोसेस होता है। दूसरा, फिर हम लोग डिस्कस भी करते हैं आपस में। बहुत बार हुआ है कि आपने भी डिस्कस किया, मैंने भी किया, कि मेरे दिमाग में ना ये थॉट आया है कि बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसा कुछ बनाते हैं या गर्लफ्रेंड वाला कुछ बनाते हैं। जैसे मेरा टॉम बॉय कैरेक्टर इसलिए फेमस है क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ कि मुझे पार्टियां करना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, और मैं बहुत जल्दी गुस्सा भी होती हूँ, जैसे टॉम बॉय का कैरेक्टर की बहुत जल्दी वो उसको पिनक हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो वो मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर है। और जो निब्बी वाला कैरेक्टर है वो मैंने किसी को देखा है ऐसा करते हुए। तो ये जितनी भी चीजें आपकी रियल लाइफ से ही आती हैं, मेरे हिसाब से आप उसी से उठाते हो चीजें और उसी से प्रेरित होके फिर आप आगे बनाने की कोशिश करते हो। बस उसको लिखने का और चीजें करने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना पैटर्न है करने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, कैसे शुरू किया जाए?
1: पहले शुरू करो, क्योंकि लोग ना हेजिटेट होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है, मेरे ही दोस्त मेरे को ऐसे बोलते थे, अबे क्या कर रही है, ये सब कहाँ, नहीं होने वाली फेमस, तेरा नहीं होने वाला, तेरे से नहीं होगा, बहुत लोगों ने मुझे बोला। फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी डाली जिसपे मुझे क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये क्या बना दिया। फिर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिली स्टार्टिंग में ही आपको सपोर्ट करने लग जाती है, फैमिलीज भी नहीं करती क्योंकि ऑब्वियस है पैसा नहीं मिल रहा, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहता जैसे कहते हैं, तो बस वही वाली बात है। तो आपको पहले स्टार्ट करना है सब चीजें छोड़ के, और आपको रेगुलर रहना है एक तरीके से अपने काम के साथ। जैसे रोज सांस लेते हो ना, वैसे ही करना है इसको कि रोज राइटिंग करनी है, रोज एक वीडियो पोस्ट करनी है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी गलतियां भी नजर आने लगेगी, आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्या चीज पॉलिश करनी है, क्या चीज अच्छा करना है, या क्या मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। जैसे मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। कुछ लोग भी बता देते हैं कि यार इस वीडियो में ना तू अगर ऐसे करती जैसे तूने रियल में बोला था तो और अच्छा लगेगा, तो वैसे होता है। तो आपको बस स्टार्ट करने की देरी है, और आपको बहुत कम लोग होंगे जो पुश करेंगे, शायद आपको कोई पुश भी ना करे, पर आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास मैं हूँ, जैसे मेरे पास मैं हूँ तो वो होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। बहुत खूबसूरत। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील।

0: फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है, यहाँ तक जो बातचीत चल रही है उम्मीद कर रहा हूँ आपके आसपास की बात हो रही है, रिलेट कर पा रहे हैं आप थोड़ा सा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो आप देखते हैं, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लाने का जो पर्पज है वो यही होता है कि सो दैट वी शुड एक्सप्लोर ऑल दीज थॉट्स, वी शुड एक्सप्लोर व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। आज हमारे साथ यहाँ पर जैस्मिन है, तो जैस्मिन से हमने अभी तक बात करी है कि एग्जैक्टली ये कैसे करते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, और किसी नए इंसान को स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए। तो अभी तक जो बातचीत हुई उसमें इतना समझ में आया कि इग्नोर द क्रिटिसिज्म, सी द बिगर पिक्चर, जस्ट क्रिएट इट। ओके जैस्मिन, मैं ये भी बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों में दिमाग में ये थॉट होते हैं कि कॉन्टेंट क्रिएशन से सर्वाइवल कैसे हो पाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ होता है।
1: दाल चावल का जुगाड़ ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर करने लगोगे ना, तो आपको भी समझ आने लगेगा कि बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे अब आप व्लॉग चैनल हो तो यूट्यूब से भी आपको यूट्यूब मोनेटाइज होगा, आपका फेसबुक मोनेटाइज होगा, तो उससे आपको एक बेसिक इनकम आने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ही आएगी, स्टार्टिंग में कम ही आती है, मेरी भी कम ही आई थी और अभी भी कमी आती है, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी आती है ना। तो ये होता है आपका धीरे धीरे दाल चावल। आप जाते ही जॉब में आपको ऐसा तो नहीं होता ना कि मंथ पूरा होने से पहले ही बंदा आपको सैलरी दे देता है, आप उसे एक महीने को काटते हो ना, तो आपको वही टाइम काटना होता है। अब जिसमें स्किल्स है सर्वाइव करने की वो सर्वाइव कर जाता है, और जिसमें नहीं है तो वो बहाने दे देता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फाइनेंशियल इशू मेरे को भी रहे हैं, मेरे घर में मेरे फादर बीमार भी रहते हैं और मेरे भैया ही हैं कमाने वाले, तो मैंने भी फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं, पर मैंने हार नहीं मानी उस टाइम पे। और मेरे बिगेस्ट चीयर लीडर मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला है, कुछ कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों ने बेसिकली कि नहीं हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, और फिर होने लग गया। जैसे मुझे ब्रांड्स मिलने लग गए जिनसे मैं अच्छा कमाने लग गई, तो वहां से दाल चावल से पनीर का सफर पूरा हो गया मेरा, तो मैं दाल चावल से पनीर पे आ गई अब, और साथ में रायता भी ऑर्डर कर लेती हूँ अब।
0: बिल्कुल, आप 56 भोग मिले आपको, ऐसी हम दुआ करते हैं कि प्रॉपर आप 56 भोग की जगह कंज्यूम करें। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा भी होता है कि आइडियाज आने बंद हो जाते हैं क्रिएटर्स को।
1: हाँ, ये क्रिएटर ब्लॉकेज जैसा कहते हैं वो आता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाओ कि आपसे नहीं हो रहा। कभी कभार ब्रेक जरूरी होता है, जैसे वीकेंड लेते हो आप जॉब में कि सैटरडे संडे भैया छुट्टी चाहिए मेरे को, कि नहीं हो पा रहा बिल्कुल, है ना, दिमाग वो हो गया कि अब बस स्टॉप लग जाए यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2400 घंटे सिर्फ जॉब जॉब जॉब 9 to 5 की जॉब, यू नो, है ना, तो सबको पता है कि ऐसा होता है। तो सेम क्रिएटर्स लाइन में भी ऐसा होता है कि सबको ब्रेक चाहिए होता है, एक मूवी बनने के बाद सब लोग वीकेंड घूमने जाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कोई इवेंट पे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मैनी पेडी करा रहा है, है ना, कोई मसाज ले रहा है, तो सबको चाहिए होता है एक थेरेपी सेशन। आपके साथ भी ऐसा होगा, पूरे टाइम कंटेंट में लगे रहोगे तो फिर ऐसा नहीं है ना कि कंटेंट कभी खत्म ही नहीं हो वाला, कभी तो खत्म होगा आपके पास। फिर उसके लिए भी आप ऐसा करो ना कि मूवीज देखो, बुक्स पढ़ो, अपने आसपास गैदरिंग्स में जब जा रहे हो तो उनको ऑब्जर्व करो, बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा ट्रैवल करो, घूमने जाओ, वहां से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अभी एक क्रिएटर है अंकुर अग्रवाल, उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक वीडियो बना दी है, वो पहाड़ बने हुए हैं और उन्होंने रिलेट कर दिया कि पहाड़ क्या फील करते होंगे जब लोग उनपे चढ़ते होंगे या लोग उनपे थूकते होंगे या कुछ करते होंगे, तो ये सब वैसे ही आ रहा है ना कि वो घूमने गए होंगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि यार पहाड़ पे जाते हैं लोग तो ये करते हैं, तो पहाड़ को कैसा लगता होगा। और बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि हम तो सोचते ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, तो ये ऐसे ही आता है।
0: ओके, सो कैसे ओवरकम किया जाए उसको, जब वो आता है तो कैसे वापस से ट्रैक पे आया जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है?
1: तो हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, अभी रिसेंट भी हुआ है मेरे साथ, मैं बीमार हो गई थी तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर अगर अच्छा हो, आपके आसपास अपने लोग हों जो आपको प्रेशराइज ना करे कि भाई तू कंटेंट ही नहीं बना रही, तेरा तो ये हो जाएगा, अब तो नहीं चलेगा तेरा पेज, डीमोटिवेट करने की जगह जो आपको ये बोले कि छोड़ना ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहे भाई, ऐसे लोग हो तो फिर आप उस चीज से जल्दी निकल पाते हो। दूसरी चीज, आप उस टाइम पे ये हिम्मत मत हारो कि काम नहीं हो पाएगा, उस टाइम आप कोशिश करो कि मैं कहाँ से क्या चीज गेन कर सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम मूवीज देखी है, अपने आप को मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैंने सीरीज देखी बहुत सारी, मैंने बुक्स पढ़ी और लोगों से मिलती रही, मैंने अपने आप को अकेले बंद नहीं किया कि नहीं काम नहीं हो रहा तो मैं किसी को शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी, या लोग अकेलेपन में बंद कमरा और ये सब जो मूवियों में चलता है आजकल कि बंद हो जाती हूँ सब ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको जितना एक्सपोजर अपने आप को देना है वो आपको देना ही पड़ेगा, अंदर रहने से कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर से अंधेरा है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपको वापस से अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा, आपको
1: रोशनी के लिए गेट खोलना ही पड़ेगा आपको, आप बंद कमरे में कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम। तो जैस्मिन, यहाँ पर मेरे सवालों का पिटारा जो है बंद होता है, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया अगर आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: प्लीज अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करें कंटेंट बनाने के लिए, और दूसरा थैंकफुल रहें उन लोगों के जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। जैसे मैं अपने लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। उनमें से बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं, सागर भैया खुद हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज उन लोगों के थैंकफुल रहें, उनसे कभी दूर ना हो, और अपने काम को करते करते उनको मत भूल जाना जो पीछे जिनको छोड़ा है वो आप आगे बढ़ने के लिए।
0: बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात बोली है जैस्मिन ने, एंड मैं तहे दिल से यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैस्मिन, आपने बहुत लंबा संघर्ष रहा है आपका, बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में झेली हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, उतार बहुत लंबे लंबे गहरे गहरे आए हैं, लेकिन आपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख के हमेशा अपने जीवन को आगे की तरफ देखा है। तो ढेर सारा प्यार आपको और शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही जमे रहें, इतने ही सुंदर बनी रहें, इतनी ही अंदर की अपनी इंसानियत को जगाए रखें ताकि आपके आसपास लोगों को वो स्पेस मिले जिससे वो आपके पास आ सके, कुछ बोल सके। और मुझे लगता है किसी भी इंसान की सबसे बड़ी उपाधि है कि आपके आसपास के लोग आपके पास आके बैठ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है।
1: तो ये
0: मैं दिल से दुआ करता हूँ आप ऐसे रहें। और अब इसी के साथ दोस्तों वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का। उम्मीद कर रहा हूँ जैस्मिन से बात करके आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है एग्जैक्टली हाउ दिस कंटेंट इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ टू कोप अप विद द क्रिएटिव ब्लॉकेज, कैसे स्टार्ट किया जाता है, पैसा कैसे होता है, एंड सो जस्ट डू इट, सिंपल। फिलहाल इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए, आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा। कोई फीडबैक है मेरे लिए, जैस्मिन के लिए, सो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत आसान है 8010781078, इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए। फिलहाल मैं चलता हूँ। Now this is your host and host, RJ Sagar, signing off.

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ, अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। देखिए किसान भाइयों, बात हो रही है अरबी के बारे में। अब फसल कोई भी हो, मिट्टी का जब तक जिक्र ना हो, मिट्टी की बात ना हो, तब तक बात अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहली बात यही है कि हम मिट्टी का कैसे इस्तेमाल करें और मिट्टी वो कौन सी हो जो कि हमारी इस फसल यानी अरबी के लिए लाभदायक हो। तो किसान भाइयों, अरबी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर ये रेतली दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। घटिया निकास वाली मिट्टी में इसकी खेती बिल्कुल ना करें। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस्में वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि बहुत सारी किस्में होती हैं और अच्छी किस्म का आप चयन करते हैं तो आपकी फसल बेहतर होती है और लाभ भी आपको बेहतर मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा उस किस्म की जिसका नाम है पंजाब अरबी एक। इसके पौधे पर बड़े तिरछे सीधे हरे पत्तों वाले और कद में लंबे पत्तों वाले होते हैं। डंठल के आधार पर लंबी आवरण होती है। इसके फल सामान्य लंबे और काफ़ी मोटे होते हैं। इसके फल भूरे रंग के और गूदा अंदर से क्रीम रंग का होता है। ये किस्म 175 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो औसतन पैदावार है वो 90 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी और किस्मों के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है। आगे आपसे बात करूंगा ज़मीन की तैयारी के बारे में, बिजाई के बारे में, क्योंकि ये सारी बातें जानना ज़रूरी हैं। तो बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदा।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बिजाई के बारे में। भाई देखिए अरवी की, आप फसल जब बोएंगे तो उसकी बिजाई का तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजाई का समय क्या हो। उचित पैदावार के लिए फरवरी महीने के पहले पखवाड़े में गांठों को नर्सरी बेडों पर बोएं और फासला पंक्ति से पंक्ति में 60x15 या 45x20 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। बिजाई की गहराई की बात करें तो गांठों को 6 से 7.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और एक बिजाई का जो ढंग है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गांठों की हाथों से बिजाई की जाती है, बीजों को मिट्टी में गहराई से बोया जाता है। गांठों की बिजाई गड्ढे खोद कर की जाती है और इसके अलावा इसकी बिजाई आलुओं की तरह मशीन से भी की जा सकती है। लेकिन एक प्रश्न है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए या बीज का उपचार भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ खेत में 300 से 400 किलो गांठों का प्रयोग करें। बीज के उपचार की बात आती है तो बीज के उपचार के लिए बवेस्टीन के 2% घोल में 30 मिनट के लिए गांठों को भिगोएं। ये गांठों को मिट्टी में पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, उन बीमारियों से सुरक्षित रखता है। तो इसलिए बीज का उपचार भी ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है खाद पानी की, भाई कोई भी फसल हो, खाद पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो वो फलेगी फूलेगी कैसे। खाद पानी तो अगर हमें और आपको भी सही से ना मिले तो हमारा भी जीवन कैसे फलेगा फूलेगा। तो बताऊँगा, खाद के बारे में भी आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए अन्नदाता।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है अरवी के बारे में। पीछे आपसे जिक्र किया था बीज का या बिजाई का ढंग क्या होता है, बिजाई की गहराई क्या होती है, ये सारी बातें आपको बताई थी। पर अब बात करूंगा खाद के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बिजाई से पहले गली हुई रूड़ी की खाद 40 से 62.5 क्विंटल प्रति एकड़ में डालें और शुरुआती खाद के तौर पर यूरिया 90 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो प्रति एकड़ डालें। बिजाई के समय पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा डालें। पहली बिजाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा 2 हिस्सों में डालें और बाकी की बची हुई मात्रा गुड़ाई, निराई और मिट्टी चढ़ाने के समय डालना चाहिए। अब इतनी मेहनत करने के बाद अपनी फसल को आप अच्छे से खाद पानी तो दे देते हैं, पर जब बात आती है खरपतवार की तो वो आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो किसान भाइयों, खेत को नदीन मुक्त करने के लिए 1 से 2 कसी से गुड़ाई करें और हर एक गुड़ाई के बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। इससे जो खरपतवार है वो खरपतवार कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और जब खरपतवार पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपकी फसल खूब अच्छे से फलेगी, फूलेगी और आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, अरवी के बारे में आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने आपको समझाया था खरपतवार के बारे में, इसके अलावा बात की थी खाद की। तो खाद और खरपतवार के बारे में तो बात हो चुकी है, अब बात करेंगे सिंचाई की। देखिए किसान भाइयों, जरूरत से पहले सिंचाई फसल की बढ़िया पैदावार के लिए बहुत लाभदायक होती है। हाँ, और अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सिंचाई 3 से 4 दिनों के फासले पर करें और बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। पर कई बार ज़रूरत के मुताबिक जीवन रक्षक के लिए सिंचाई ज़रूरी होती है। इस फसल को नियमित अंकुरण के लिए स्थिर सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। बीजों के अंकुरण तक खेतों में नमी बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब बीमारियों से कैसे रोकथाम की जाए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे रोग के बारे में जिसको जाना जाता है पत्ता झुलस रोग। इस बीमारी का हमला मुख्य तौर पर बारिश के मौसम में रात का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और दिन का 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होने पर होता है। इससे पत्तों पर पानी के गोल धब्बे बन जाते हैं जो सूखने के बाद पीले और गहरे जामुनी रंग के हो जाते हैं। अब सवाल आता है रोकथाम कैसे की जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। पत्ते के झुलस रोग की रोकथाम के लिए डीथेन M45 400 से 500 ग्राम को 100 से लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 14 दिनों के फासले पर प्रति एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरह की बीमारी जिसका नाम है पत्ता झुलस रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वायरस के बारे में जिसको जाना जाता है एलोमाई या बोबोन वायरस के नाम से। ये बैसिलाइस वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी से झुर्री और विशाल पंख वाला चितकबरा रोग बन जाता है। इसकी अगर आप रोकथाम करना चाहते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए रोधक किस्मों का प्रयोग करें और क्षतिग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़ फेंक दें। एक और रोग होता है जिसका नाम है दाशीन का चितकबरा रोग। ये एक विषाणु वाली बीमारी है किसान भाइयों, जो चेपे के कारण होती है। इस बीमारी के लक्षण ठंडे महीनों में देखने को मिलते हैं और इससे नाड़ी का चितकबरा फैल जाता है और पत्तों पर अलग अलग किस्मों में निशान बने हुए साफ दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अरवी की अलग अलग किस्में उगाएं, जिससे आपकी फसल को किसी भी तरह की कोई भी हानि ना होने पाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, अरवी के बारे में बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। अब भाई, फसल हमारी झूमती झूमती तैयार हो चुकी है। अब बात आती है फसल की कटाई की। देखिए किसान भाइयों, इस फसल की पुटाई पत्ते पीले पड़ने पर बिजाई के बाद 175 से 200 दिनों में की जा सकती है। नर्म अरवी की पुटाई के लिए अगेती पुटाई करें। पुटाई के काम को ज़्यादा आसान करने के लिए खेत को अच्छी तरह से पानी लगाएं। इसकी पुटाई कसी या हाथ वाले औजारों के साथ की जा सकती है। पुटाई के बाद अरवी को साफ किया जाता है और फिर छटाई की जाती है। पर कटाई के बाद क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। पुटाई के बाद अरवी को ठंडी और शुष्क जगह पर बीज उत्पादन के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ठंडी और शुष्क जगह पर स्टोर करने से अरवी को गलन रोग से बचाया जाता है और अरवी को कोल्ड स्टोर या गड्ढों में भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी है अरवी के बारे में, और अरवी से जुड़ी जितनी भी बातें थीं सारी बातें आपके साथ साझा कर ली हैं। पर अब आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूं राम राम सलाम।

आज आज मैं आपसे बात करूंगा रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनका अध्ययन, चिंतन और लेखन न केवल साहित्य, संस्कृति और शिक्षा तक व्यापक है, बल्कि आज की राजनीति

मीडिया और समाज व्यवस्था के सूक्ष्मतम अंतर्ध्वनियां भी उनके मानस पटल में पूरी तरह से रची बसी हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, संस्मरण यानी कि इस तरह के साहित्यिक रूपों में अपनी अनुभूति की प्रामाणिकता और बोध प्रवणता को अभिव्यक्त किया है। अब तक उनके द्वारा रचित चारों कहानी संग्रहों बेताते हुए 2004 और अंत में ईशु 2008, युद्ध और बुद्ध 2014, जलकुंभी 2020 में भाषा, धर्म, रूढ़ी, दरिद्रता, उजड़ते गांव, स्त्री समस्या, नक्सलवाद की समस्या, बुद्धिजीवी वर्ग, पीढ़ियों के बीच के अंतर यानी कि इनसे जुड़े अनेक ज्वलंत सवालों को प्रकट किया है। ये कहानियां आज के समाज की प्रतिच्छवि हैं और इनसे झांकती आम आदमी के मानव अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता मधु कांकरिया की पहचान है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, साहित्य के विकास और समाज की पहचान को समझने में युगबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक साहित्यिक और दार्शनिक अवधारणा है जो साहित्यकार के समय और समाज की समझ को व्यक्त करती है और जिससे रचना में उस समय की संवेदनाओं, समस्याओं और विचारधाराओं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। युग और बोध शब्दों के योग से बना युग बोध एक यौगिक शब्द है जिसका तात्पर्य किसी युग के प्रति हमारी समझ, दृष्टिकोण यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में एक व्यापक शब्द है जो विशेष समय अवधि में घटित सभी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक, धार्मिक, व्यवसायिक घटनाओं को यथार्थ रूप में केंद्रीभूत रखता है। युगबोध वास्तविकता से परिचित कराता है। इसका ना वर्तमान के साथ कोई संबंध है और ना भविष्य से कोई ताल्लुक है। ये समय सामायिकता पर जोर देता है। एक ही युग में प्रत्येक व्यक्तियों का चेतन अलग अलग होने के कारण हर किसी की युगबोध को लेकर धारणा अलग अलग हो सकती है और उसका प्रभाव भी अलग अलग पाया जा सकता है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, जो एक बड़े ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका कहना है, युगबोध को किसी एक विशेष परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ साथ उसका स्वरूप बदल जाता है। समाज का संपूर्ण रूप साहित्य में समाहित है और युगबोध का पूर्ण रूप रचना में देखने को मिलता है। अतएव युगीन परिवेश को रेखांकित करने के लिए एक रचनाकार को संपूर्ण युग का ज्ञान होना चाहिए। महान कलाकार अपने युग का पूर्ण प्रतिनिधि, पूर्ण व्याख्याता होता है। उसकी वाणी में युग के सारे संघर्ष, सारे राग विराग, समस्त प्रश्न और संदेह मूर्तिमान होकर बोलते या ध्वनित होते हैं। एक समय सापेक्ष होने के कारण कुछ विशेष समय अवधि तक युगबोध का महत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन परवर्ती युग में उसे महत्व मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके अलावा वो और क्या कहना चाहती हैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा जरूर करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, रचनाकार मधु कांकरिया का कहना है कि किसी भी रचना को पूरी तरह समझने, उसका मूल्यांकन करने के लिए वो रचना कब लिखी गई थी, उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश किस तरह का था, यानी कि इन सारी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसे युग बोध कहा जाता है। युग बोध को सिर्फ आधुनिकता, समसामायिकता ही प्रभावित नहीं करती। आधुनिकता के साथ साथ इतिहास, संस्कृति, परंपरा भी उसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग के पीछे उसकी पृष्ठभूमि रहती है। इतिहास के किसी भी युग का साहित्य उठाकर देख लिया जाए तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण अवश्य देखने को मिलता है, जिसकी भावधारा मनुष्य चेतना, समाज और उसके परिवेश से बंधी हुई है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का कहना है कि साहित्य जीवन का दूसरा नाम है। साहित्य समाज की चेतना में सांस लेता है, समाज का वो परिधान है जिसमें समाज के सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद, आकर्षक विकर्षक यानी कि सारे ताने बाने बुने जाते हैं। उसमें मानव जाति की आत्मा का स्पंदन होता है। और दूसरी बात, समाज के बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है और साहित्य से परिचित हुए बिना हम समाज को समझ नहीं पाते हैं। साहित्य सृजन के लिए जो भाव विचार चाहिए वो सब समाज से ही मिलते हैं, जिसे युग बोध कहा जाता है। मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य के द्वारा ही होता है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन इसके अलावा वो कुछ और भी कहना चाहती हैं। उन सारी बातों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था मधु कांकरिया के बारे में, उनका कहना है कि मानव जीवन के तमाम पहलुओं को आत्मसात करके उसे अभिव्यक्त करने का काम साहित्य द्वारा होता है। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि युग बोध साहित्य का धर्म है। बोध एक आंतरिक प्रक्रिया होने के कारण किसी विषय, परिवेश, परिस्थिति के प्रति हमारी धारणा का निर्माण करता है। बोध हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के मुताबिक ये बदलता रहता है। अपनी बोध शक्ति के मुताबिक हर एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। ये एक प्रकार का अनुभव है जो हमें अपने जीवन को सहज करने के लिए सहायक होता है। हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है रचनाकार मधु कांकरिया का। लेकिन दोस्तों, मधु कांकरिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें थीं, आपके साथ साझा कर सकता था, पर समय इजाजत नहीं देता। इसलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में आपसे और भी बातें साझा करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ संडे शाम 4 से 5 आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जहाँ पर होती है बात हमारी। जी हाँ, हमारी इसलिए क्योंकि हम सब ट्रेंडिंग टॉपिक की ही बात करते हैं ना, है ना, क्योंकि चाहे बात हो सोशल मीडिया की, या बात हो हमारी सोसाइटी की, बात हो देश की, या बात हो विदेश की, हर टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं, हर टॉपिक को हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। जी हाँ, गानों से तो सबको प्यार है, गाने सुनकर कभी लोग सैड होते हैं तो गाने सुनते हैं, हैप्पी होते हैं तो गाने सुनते हैं, कभी ऐसे मूड क्या है समझ में नहीं आता है तो गाने सुन लेते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो गाने सुन लेते हैं, तो इसलिए गाने भी उतने इम्पॉर्टेंट है जितने की कोई बात होना। तो मैं आ गई हूँ आपके पास, हाजिर हूँ लेकर एक और खास इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, एक मीनिंगफुल और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, और इसी के साथ क्योंकि शुरू हो रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स की जो सिर्फ ट्रेंड ही नहीं करते हैं बल्कि हमारी लाइफ और सोसाइटी से भी कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स इक्वलिटी डे पर। जी हाँ, वुमेन्स की आज खास तौर पर बात होने वाली है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जबकि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, वुमेन्स जो आज के टाइम में कितनी तरक्की कर रही है, पर एक समय ऐसा भी था जब हम देखते थे कि वुमेन्स को कुछ नहीं समझा जाता था, शायद कोई इक्वेलिटी नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी, पर आज के टाइम में देखें तो बहुत सी चीज़ें बदल गई है। जी हाँ, 26 अगस्त ये एक खास दिन होता है जब साल में वुमेन्स इक्वेलिटी डे के रूप में इस चीज़ को मनाया जाता है। नाम सुनते ही सबसे पहले एक वर्ड दिमाग में आता है और वो होता है इक्वेलिटी। जी हाँ, यानी कि बराबरी। लेकिन क्या हमने कभी एक्चुअली सोचा है कि इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? क्या एक वुमेन को मेन से कॉम्पिटिट करना है? बिल्कुल भी नहीं। इक्वेलिटी का सिंपल सा मतलब है हर इंसान को अपने सपनों को चूज करना, अपनी एबिलिटीज को दिखाने और लाइफ में आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। जी हाँ, अगर एक लड़का अपना करियर चूज कर सकता है तो एक लड़की भी अपना करियर खुद चूज कर सकती है, और इसका हक होना दोनों को बराबर चाहिए। अगर एक बेटा अपने सपनों को फॉलो कर सकता है तो बेटी भी अपने सपनों को फॉलो कर सकती है, उसे सपोर्ट मिलना चाहिए उस चीज के लिए कि तुम भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात तो ये है इसमें कि इक्वेलिटी किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं होता है, बल्कि इक्वेलिटी का मतलब होता है सबको ऊपर उठने का मौका देना। जी हाँ, आज हम वुमेन्स को हर फील्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाते हुए देख रहे हैं, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, या फिर लीडरशिप क्वालिटी क्यों ना हो, वुमेन कंटिन्यूसली प्रूव कर रही है कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो क्या कुछ अचीव करके नहीं दिखा सकती है। लेकिन इक्वेलिटी की जर्नी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर से ही शुरू होती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने घर से उसकी शुरुआत करनी है। जब पेरेंट्स अपनी बेटी को उसके सपनों को सीरियसली लेते हुए जब इसकी फ्रीडम देते हैं ना, और जब फैमिली उसके डिसीजन पर ट्रस्ट करने लगती है, और जब वर्कप्लेस में टैलेंट को जेंडर से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी से जज किया जाता है, तब रियल इक्वेलिटी क्रिएट होती है। तो आज का ये ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें हम सिर्फ वुमेन इक्वेलिटी डे के बारे में ही बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे उस कॉन्फिडेंस की, सपनों की, अपॉर्चुनिटी की, जो उन वुमेन्स को, जो उनकी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर कर रही है। और एक थॉट के साथ आज की जर्नी को ना शुरू करते हैं कि इक्वेलिटी का मतलब किसी के आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि हर किसी को अपने बेस्ट वर्जन में पहुंचने का मौका देना ही इक्वेलिटी है। तो बस इसी के साथ जब मैंने अभी शुरू में बोला कि प्यार प्यार से गाने भी लेकर आई हो, तो वो भी सुनेंगे। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि पूरे एक घंटे का सफर है, तो आपको मैं बोर नहीं करूंगी, सुनाऊंगी बहुत ही प्यार सा गाना। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों आज हम ट्रेंडिंग तड़का में एक स्पेशल टॉपिक के साथ चल रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ आज हम चल रहे हैं, वो है विमेंस, यानी कि विमेंस इक्वालिटी डे। विमेंस इक्वालिटी की बात आज की जा रही है, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एक दिन तक ही लिमिटेड नहीं होता बल्कि हमारी डेली लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने बात की कि इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जर्नी की जो बहुत सुंदर भी है और इंस्पायरिंग भी, कि बेटी से लीडर तक की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब सोसाइटी में लड़कियों को कुछ रोल्स पहले डिसाइड कर दिए जाते थे कि तुम्हें बस इतना ही करना है। उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आज की बेटी सिर्फ अपने घर का नाम ही रोशन नहीं करती है बल्कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बना रही है। कोई डॉक्टर बनना चाहती है तो कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो कोई आरजे, जर्नलिस्ट या फिर फिल्म मेकर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज बहुत सी जो लड़कियां हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए डरती नहीं है, ये नहीं सोचती कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, बल्कि वो मेहनत भी कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि टैलेंट किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। जी हाँ, टैलेंट को बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक चांस चाहिए और कभी कभी सिर्फ एक इंसान चाहिए जो कहे तुम कर सकती हो, और ये सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बेटी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। अगर उसके पेरेंट्स उसका मजाक बनाने के बजाय उसे कहें ठीक है बेटा मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद एक सेंटेंस से उसकी पूरी दुनिया ही बदल सकती है। इसी तरह एक लड़की जब कॉलेज में अपना करियर चूज करती है, वो एक विमेन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, या फिर कोई फीमेल एथलीट जब फील्ड में उतरती है, हर स्टेप सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देता है। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी बड़ी पोजीशन पर होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप का मतलब होता है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चैलेंजेस के सामने खड़े रहना और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। तो अगर आपके आसपास कोई बेटी, कोई बहन, कोई फ्रेंड, कोई कलीग या फिर कोई माँ अगर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है, तो उसे कंपेयर करने के बजाय उनका ना सपोर्ट सिस्टम बनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार सपोर्ट कर तो देखिए, क्योंकि एक सिंपल सा एनकरेजमेंट कभी कभी किसी का कॉन्फिडेंस और टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और आज का इसी के साथ एक पॉजिटिव थॉट, हर बेटी के सपने को एक मौका दीजिए, क्योंकि पता नहीं कल वही बेटी कितनी जिंदगियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं विमेंस इक्वालिटी की। जी हाँ, अब तक हमने बात की इक्वालिटी की मीनिंग की और बेटी से लीडर तक की जर्नी की। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट

इन चीज की, और वो है कि अपनी पहचान और अपने फैसले खुद लेना। जी हाँ दोस्तों, जब हम सबकी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, स्कूल में क्या पढ़ना है, कॉलेज में क्या चूज करना है, कौन सा करियर बनाना है, किस फील्ड में जाना है, और कभी कभी तो सिंपल सी चीज जैसे क्या पहनना है या अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो विमेंस हैं, उन्हें अपने डिसीजंस लेने से पहले एक ही थॉट रोक लेता है कि लोग क्या कहेंगे। और शायद यही वो लाइन है जिसे हमें धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे की जगह हम पूछ सकते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम फैमिली या फिर सोसाइटी की एडवाइस को इग्नोर कर रहे हैं। एडवाइस लेना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों से जो हमारी केयर करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन में अपनी आवाज को इम्पोर्टेंस देना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। आज की विमेंस के लिए अपनी पहचान बनाना सिर्फ करियर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी का मतलब अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपनी चॉइसेस को और कॉन्फिडेंस को रखना है, और अपने सपनों को सीरियसली लेना है। और दोस्तों, हर विमेन का सपना बड़ा या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ये भी जरूरी नहीं है। किसी का सपना अपने बिजनेस को स्टार्ट करना हो सकता है, किसी का सपना हो सकता है कि वो जॉब करे, किसी का सपना हो सकता है कि हायर स्टडीज को कंप्लीट करना, और किसी का सपना हो सकता है कि वो अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सके। हर सपने की अपनी वैल्यू होती है, इसलिए अगर आप एक लड़की हैं, आप एक विमेन हैं, आपके माइंड में कोई सपना है, तो उस सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि किसी और को वो छोटा या फिर इम्पॉसिबल लगता है। और अगर आप किसी विमेन के या फिर किसी ऐसी गर्ल के फ्रेंड है या फिर सिबलिंग है, पेरेंट्स हैं, कलीग्स हैं, तो उसकी चॉइसेस का मजाक बनाने की बजाय उसकी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। कभी कभी किसी को सॉल्यूशन नहीं, बस एक सपोर्ट की, एक सपोर्टिव वॉइस चाहिए होता है जो कहे कि तुम ट्राई तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस यही छोटी सी चीजें हैं ना जो आपको अंदर से मोटिवेट कर देती हैं दोबारा से खड़े होने के लिए। तो आप साथ दीजिए, देखिए आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं विमेंस इक्वेलिटी की। विमेंस की आज बात हो रही है, इक्वेलिटी की बात हो रही है। ये दो वर्ड है ना, ये अपने आप में ना बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। जी हाँ, विमेंस, अगर हम सिंगल इस विमेन वर्ड को भी अगर सुने ना, तो विमेन से हमारे दिमाग में कितनी सारी चीज़ आती है। और अगर हम इक्वेलिटी की बात करते हैं, ये भी अपने आप में एक अलग ही आइडेंटिटी रखता है। तो इसलिए विमेंस इक्वेलिटी अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये कितना ज़रूरी है। तो अब तक हमने जैसे कि बात की कि विमेन की आइडेंटिटी, उसके सपने और अपने डिसीजन लेने पर कॉन्फिडेंस की, लेकिन अब एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्वेलिटी की बिगनिंग कहाँ से होती है। और इसका जवाब है हमारे घर से। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि सोसाइटी को चेंज करना है तो बहुत बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली चेंज की फर्स्ट क्लासरूम ना जो हमारा घर होता है ना, वही होता है। बचपन से ही बच्चे अपने घर में चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अगर घर में बेटा और बेटी दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उन दोनों को दोनों की बात सुनी जाती है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेम दिया जाता है, तो उनके माइंड में इक्वेलिटी नेचुरली डेवलप होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो घर से देखकर सीखते हैं वही आगे चलकर करते हैं। जैसे अगर बेटा पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स खेल सकता है, तो वैसे ही बेटी भी अपने फेवरेट एक्टिविटीज को चूज कर सकती है। अगर बेटा करियर चूज कर सकता है, तो बेटी भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर को चूज करने की फ्रीडम ले सकती है। और इक्वेलिटी सिर्फ एजुकेशन या फिर करियर तक ही लिमिटेड नहीं है, घर की काम भी इक्वेलिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कहा जाता है कि नहीं, काम तो सिर्फ लड़कियां करेंगी, लड़के नहीं करेंगे घर का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, घर का काम इक्वली डिवाइड हो कि वो काम लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। खाना बनाना हो, रूम क्लीन करना हो, कपड़े अरेंज करने हो, या घर की छोटी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ये सिर्फ लड़कियों की ड्यूटी नहीं है। ये बेसिक लाइफ स्किल है जो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आनी चाहिए। सोचिए, जब एक छोटा सा लड़का अपनी माँ की किचन में हेल्प करता है, तो वो सिर्फ एक काम में हेल्प नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो एक माइंडसेट अपना डेवलप कर रहा होता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह पेरेंट्स अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम जो बनना चाहती हो उसके लिए मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। उसको लगता है कि चाहे कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर मेरे पेरेंट्स जो मेरे अपने हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। और पेरेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपैरिजन से बचना। जी हाँ, देखो शर्मा जी की बेटी क्या कर रही है, या तुम्हें अपने भाई से सीखना चाहिए। ऐसे कंपैरिजन की बजाय बच्चों को उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही एनकरेज करना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, हर एक के सपने अलग हो सकते हैं और हर एक की जर्नी भी अलग होती है। तो इस विमेंस इक्वालिटी डे पर क्यों ना हम एक छोटी सी बिगनिंग कर सकते हैं कि घर में इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाए और इक्वली रखा जाए सब कुछ। क्योंकि जब इक्वालिटी घर में नॉर्मल बनेगी, तभी सोसाइटी में इसे नेचुरली चेंज आता दिखेगा। और इसके बाद एक और पॉजिटिव थॉट कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है, और इक्वालिटी का पहला कदम हमारे अपने घर से शुरू हो सकता है। तो इसकी शुरुआत क्यों ना आप ही सबसे पहले अपने घर से करें। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं विमेंस इक्वालिटी के बारे में। जी हाँ, अब तक हमने बात की इक्वालिटीज की, ड्रीम्स की, डिसीजंस की और घर से शुरू होने वाली इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। अब थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं उन विमेन से जिन्होंने अपनी मेहनत, कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन से अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, जब हम इंस्पायरिंग विमेन की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कि कल्पना चावला, एक ऐसे विमेन जिन्होंने स्पेस तक पहुंचकर मिलियंस ऑफ यंग गर्ल्स को बड़े सपने तय करने का इंस्पिरेशन दी। उनकी जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन्हें छोटा समझने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं मैरी कॉम की। बॉक्सिंग जैसे फील्ड में जहां चैलेंजेस कम नहीं थे, उन्होंने अपनी डेडिकेशन से इंडिया को प्राउड फील कराया। उनकी स्टोरी हमें बताती है कि डिटर्मिनेशन हो तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी आपको रोक नहीं सकती। फिर बात करते हैं पीवी सिंधु की। जी हाँ, जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपनी हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। उनकी जर्नी ये सिखाती है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे डेली प्रैक्टिस, पेशेंस और डिसिप्लिन होता है। और अगर बिजनेस और लीडरशिप की बात करें तो इंदिरा नोई का नाम भी इंस्पायरिंग है। उन्होंने ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप स्किल के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन

मनाई है और दुनिया भर में विमेन को इंस्पायर किया है। लेकिन दोस्तों, इंस्पिरेशन सिर्फ फेमस पर्सनालिटीज से नहीं मिलती है, बल्कि कभी कभी हमें अपनी मम्मी को देखना चाहिए, जो बिना कुछ कहे, बिना किसी एप्रिसिएशन के, एक्सपेक्टेशन के, फैमिली के लिए कंटिन्यूसली काम करती है। अपनी टीचर को देखिए, जो हर दिन स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाती है। अपने कलीग्स को देखिए, जो वर्क और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। या फिर अपनी फ्रेंड को देखिए, जो अपने सपनों के लिए शांति से मेहनत कर रही है। हर विमेन की अपनी स्टोरी है और हर स्टोरी में इंस्पिरेशन छुपी है। और इस विमेन्स इक्वालिटी डे पर शायद हमें सिर्फ सक्सेसफुल वुमेन्स को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन विमेन्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हर दिन अपनी लाइफ में छोटे बैटल्स फेस करके भी आगे बढ़ रही है। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे विमेन है जो आपको इंस्पायर करती है, तो विमेन्स इक्वालिटी डे के इस खास मौके पर उन्हें थैंक यू जरूर बोलिएगा। कभी कभी किसी को ये बताना कि यू इंस्पायर मी, उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं विमेंस इक्वालिटी के बारे में। अब तक हमने बहुत सारी बातों को समझा कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, कि बेटी से लीडर तक की उसकी जर्नी देखी और अपनी डिसीजन की इंपॉर्टेंस को समझा और ये भी जाना कि क्वालिटी की जो शुरुआत है वो घर से होती है। साथ ही हमने कुछ इंस्पायरिंग वुमेन्स के बारे में भी बात की। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि आज की जो वुमेन है वो कल की इंस्पिरेशन कैसे बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बल्कि कभी कभी आपकी सिंपल सी जर्नी भी किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती है। सोचिए, एक लड़की अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रही है, उसके आसपास की कोई छोटी लड़की उसे देखकर सोचती है कि मुझे भी पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। बस यही इंस्पिरेशन है। आज के विमेन के पास अपनी लाइफ को शेप करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है और नई करियर के ऑप्शंस है और पॉसिबिलिटीज है, उन सबको एक्सपेंड किया है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज के साथ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। कभी कभी हम खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी, शायद मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, लोग मुझे जज कर देंगे। लेकिन याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको हर आंसर पता हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप सीखने और ट्राई करने के लिए रेडी हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहती हैं तो छोटे से स्टेप से स्टार्ट कीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इसे स्टार्ट कीजिए। कोई स्किल सीखनी चाहते हैं उसे सीखिए, कोई बिजनेस का आइडिया है उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उससे शुरू करिए। कोई करियर का ड्रीम है तो उसके लिए प्रिपरेशन को शुरू कीजिए और उस पर काम करना शुरू करिए। परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते कई बार हम अपने सपनों को पोस्टपोन कर देते हैं, इसलिए स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। और यहाँ सोसाइटी और फैमिली का रोल भी इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी विमेन को ग्रो करते हुए देखते हैं तो उसकी गलतियों पर फोकस करने के बजाय उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट किसी भी पर्सन का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। और विमेन के लिए भी एक मैसेज कि अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कम्पेयर मत कीजिए। किसी का सक्सेस 25 की एज में आता है तो किसी का 35 में और किसी का तो 50 में। हर जर्नी का अपना टाइम होता है। एक टाइम आता है जब हर इंसान सक्सेसफुल बन जाता है, तो इसलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। बस आप आज ही शुरू करिए और देखिए आपको रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज के ट्रेंडिंग तड़का के फाइनल सेगमेंट में आ चुके हैं हम और अब बात करते हैं एक सिंपल सी। जी हाँ, इक्वालिटी सिर्फ विमेन की नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ विमेन को अपॉर्चुनिटीज देना नहीं है, बल्कि इक्वालिटी का मतलब है रिस्पेक्ट, सपोर्ट और इक्वल चांस देना है। एक पिता अपनी बेटी के सपनों को सपोर्ट करे तो ये इक्वालिटी है। एक भाई अपनी बहन की चॉइस को रिस्पेक्ट करे, ये भी इक्वालिटी है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ के करियर को सपोर्ट करे, ये भी इक्वालिटी है। और वर्क प्लेस में टैलेंट को जेंडर के नहीं बल्कि कैपेबिलिटी के बेसिस पर जज किया जाए, ये भी इक्वालिटी है। लेकिन इक्वालिटी की बिगनिंग हम अपनी डेली लाइफ से स्टार्ट कर सकते हैं। घर में बेटा और बेटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, घर के काम को सिर्फ एक विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझना, किसी विमेन की ओपिनियन को सीरियसली लेना और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे को जज करने के बजाय सपोर्ट करना। और लड़कियों, आपके लिए भी एक मैसेज है कि अपने सपनों को छोटा मत समझिए। हो सकता है कि आज आपकी जर्नी किसी को ऑर्डिनरी लग रही हो, लेकिन कल को वही आपकी जर्नी जो आपको ऑर्डिनरी लग रही थी वो किसी की इंस्पिरेशन बन जाए। परफेक्ट बनने का वेट मत कीजिए, बस एक स्मॉल स्टेप लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि कंपैरिजन नहीं एनकरेजमेंट, जजमेंट नहीं रिस्पेक्ट, लिमिटेशन नहीं अपॉर्चुनिटीज। और इसी थॉट के साथ आज के ट्रेंडिंग तड़का को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी हाँ, वक्त हो गया है मेरा आपसे इजाजत लेने का। और इसी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब एक विमेन आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक विमेन ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से किसी और नए ट्रेंडिंग तड़का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है और सुनते रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel like.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग ले एक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ। और अब दोस्तों समय हो चुका है कैसे कार्यक्रम का, जहाँ बात होती है आप ही की सुरक्षा की। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद और इसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं फरीदाबाद पुलिस, जहाँ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से फरीदाबाद पुलिस के विभिन्न अधिकारी आपसे बातचीत करते हैं विभिन्न मुद्दों पर। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय एक ऐसा विषय है जो हम सबकी जिंदगियों से डायरेक्टली जुड़ा है, बरसात होना और बरसात में पानी भरना। लेकिन इस माहौल में आपकी मदद के लिए अगर कोई सबसे पहले आते हैं तो वो है वहाँ आसपास के एरिया के लोकल रेजिडेंट्स और ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के वो जवान जो सड़क पर हैं आप ही की निगरानी, आप ही की सेफ्टी के लिए। ऐसे ही हाल ही में बारिश के दिनों में एक दिन इतनी बारिश हुई दिल्ली एनसीआर में कि पूरा एनसीआर डूबा हुआ सा नजर आ रहा था। सारे न्यूज चैनल्स, रिपोर्ट्स, हर जगह पर कुछ वीडियोज ऐसी वायरल हो रही थी जहां पर लोग सिर तक पानी में भरे हुए दिखाई दिए और तैर कर इधर से उधर जा रहे थे। गाड़ियां पानी में रुक चुकी थी, लोग फंस चुके थे। घंटों के जाम के बाद लोग रात को, शाम के चले हुए रात को अपने घर पहुंचे। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी 2-2 घंटे दूर नजर आ रहा था लोगों को। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ जांबाज ऐसे थे जो सामने आए और उन लोगों की मदद की जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं, जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं दांव पे लग चुकी थी पानी भरने की वजह से। ऐसी एक वीडियो वायरल हो रही है फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी की जो कि पानी में गए और एक पूरी डूबी हुई गाड़ी में से शख्स को निकालने में मदद भी करी और उस गाड़ी को भी बाहर निकलवाया। जी हाँ, ये वीडियो वायरल हो रही है एक अंडरपास जो कि ओल्ड अंडरपास के नाम से जाना जाता है फरीदाबाद में, और सबसे ज्यादा आवाजाही इस अंडरपास पर रहती है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर बारिश के पानी में हादसे में 2 लोगों ने जान भी गंवाई थी और उसके बाद से यहाँ पर गेट बंद कर दिए जाते हैं। तेज बारिश होने पर वार्निंग भी लगा दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार लोग समय बचाने के लालच में या फिर जाम में ना फंसने के लालच में इन अंडरपास का इस्तेमाल करना चाहते हैं और करते भी हैं। ऐसा ही एक हादसा 7 अगस्त की रात को हुआ, शाम को हुआ इनफैक्ट। और 7 अगस्त की शाम को जब पूरा दिन बारिश चली, शाम तक पानी जो था वो काफ़ी हद तक भर गया था और इस भरे हुए अंडरपास में से भी कुछ गाड़ियों की वीडियो वायरल हो रही है। एक बस पूरी डूबी रही थी और एक SUV पूरी डूबी हुई थी, लेकिन इसमें जो शख्स थे उन्हें बचा लिया गया। पर आज हमारे साथ स्टूडियो में वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इन व्यक्ति की हेल्प भी करी और उस गाड़ी को भी निकलवाया और साथ ही इस पूरे एरिया की निगरानी भी करी, और सिर्फ इस गाड़ी को नहीं कुछ और भी लोगों की मदद करी। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं ASI इंद्रजीत जी जो कि फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस में ही हैं और इस पूरे एरिया जो कि बटकल और NIT का एरिया है इसके जोनल ऑफिसर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: इंद्रजीत जी, एक वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई हाल ही में, वो वीडियो थी जहां पर आप उस गहरे पानी में, अंडरपास का जो पानी है उसमें चलते चले आ रहे हैं और वो इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें से आम इंसान का निकलना बहुत मुश्किल है, और साथ ही एक पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई SUV दिखाई दे रही है और एक बस की भी छत दिखाई दे रही है। तो ये क्या मंजर था थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि उस दिन 7 अगस्त पूरे दिन जो सुबह 5 बजे से 4 बजे से बारिश शुरू हुई वो रात तक चलती रही, इनफैक्ट अगले दिन तक चलती रही।
2: ये बस की छत तो सुबह दिखाई देने लगी, शाम तक जी तो बिल्कुल भी छत भी दिखाई नहीं दे रही थी उसकी
1: जी।
2: ये बस खराब हुई तकरीबन 3-4 बजे करीब शाम को, जब ये बच्चों को तो छोड़ के आ गए थे, लेकिन प्रिंसिपल से बात हुई थी तो वो कह रहे थे भाई जो 4th क्लास है उनके जो वहाँ पे सब हेल्प थे, लेडीज थी, उनको घर छोड़ने के लिए गई थे
1: जी।
2: जो रास्ते में वही अंडरपास में खराब हो गई क्योंकि उसमें पानी था,
1: तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं था
2: जब निकाल लिए थे पहले ही
1: जी, जी।
2: वो खड़ी थी, खड़ी गाड़ी अब खराब हो गई है, उसको
1: वो
2: डूब गई पानी, इतना पानी आया कि बस पूरी की पूरी डूब गई थी। फिर शाम को 7:30 बजे करीब
1: जी
2: एक एक्सयूवी फॉर्चुनर गाड़ी थी, फॉर्चुनर गाड़ी आई 21 की तरफ से, और मैं था उस समय जो अपना रेलवे स्टेशन की तरफ वाले रास्ते के पास में।
1: ओके जी।
2: मैंने उधर से दिखाई दिया कि भाई गाड़ी पानी के अंदर है अंडरपास में, और लाइटें जलती हुई थी,
1: वो लाइटों की रिफ्लेक्शन जो आपको दिख रही होगी,
2: रेड रेड कलर की लाइट, बैक बैक की जो रेड लाइट जलती वो दिखाई दे रही थी।
1: ओके।
2: तो मैं भाग के घूम के चंदीला गांव की तरफ से 21 ए की तरफ पैदल पैदल पहुंचा वहां से, क्योंकि गाड़ी को जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बाइक भी अपनी उधर ही खड़ी कर रखी थी, तो मैं पैदल पैदल घूमते हुए वहां गया। वहां पर एक संजय गिरी नाम का व्यक्ति था, जो इसने सिचुएशन को देखा कि भाई गाड़ी अंदर गई है, वो उसको बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उसको बचाने के लिए गया।
1: अच्छा।
2: मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करते हैं। तो जब जैसे ही मैं घूम के गया, तो तब तक उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल लिया था।
1: अच्छा,
2: संजय गिरी ने निकाल लिया था
1: जी।
2: तो वो बाहर लेके आए, और उसका फिर मैंने वो किया, मतलब कि जो देते हैं
1: सीपीआर
2: देते हैं वो कराया उसका, सीपीआर दे के फिर उसको, अभी तक तो उसकी आवाज वगैरह उसके मुंह से कुछ नहीं रही थी,
1: ना बेहोश थे,
2: ना ही उसकी आंख खुल रही थी, ना कुछ बोल पा रहे थे। हमने उससे पूछने की कोशिश की कि गाड़ी में आपके साथ कोई और है, व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में था कि बता नहीं पाया। तो हमने उसको तुरंत ही, एक वहां पे गाड़ी खड़ी हुई थी, बिना देरी के हमने उस गाड़ी के अंदर बैठाया उसको, और फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चला। अब उसकी कंडीशन बेटर बताई जा रही है।
1: कौन थे ये शख्स, कुछ पता चला? फरीदाबाद,
2: ये नीरज मित्तल जी थे, सेक्टर 9 में रहते थे।
1: ओके
2: जी। इनके लड़के भी आ गए थे थोड़ी देर बाद, जिनको हमने बता दिया था कि भाई आपके फादर को ऐसे ऐसे वो हो गया था, तो उनको फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: जी जी। जब इनको गाड़ी में से निकाला, तो गाड़ी में पूरा पानी भर चुका हो?
2: बिल्कुल भर चुका था
1: जी।
2: जो पीछे खिड़की, एक पीछे की खिड़की तोड़ी हमने, शीशा तोड़ा, और एक साइड का राइट साइड का शीशा तोड़ा,
1: तब जाके
2: इनको निकाला गया था।
1: और ये बेहोश हो चुके थे,
2: ये
1: पानी में,
2: बिल्कुल, क्योंकि एज 60 प्लस एज है।
1: अच्छा, 60 प्लस एज है, और
2: जी बिल्कुल 60 प्लस एज थी
1: जी। तो इनसे क्या किसी की बात हुई जब ये थोड़े ठीक महसूस किया, कि ये क्यों इतने पानी में जाते रहे? क्योंकि अब तो वार्निंग,
2: अभी तक तो वेंटिलेटर पर
1: जी,
2: अभी तक सिचुएशन मतलब कि ठीक है, मतलब कि ये नहीं है बिल्कुल भी, हम ये नहीं बता कह सकते कि भाई बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन पहले से बहुत ही
1: बहुत बेहतर है। सो बहुत सारी बातें दोस्तों चल रही हैं अनुज कुमार जी से, जो कि इंस्पेक्टर हैं और SHO ट्रैफिक हैं फरीदाबाद के, और इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कावड़ यात्रा के दौरान भी माहौल को एकदम शांत और ट्रैफिक को एकदम सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इस पर बहुत सी चर्चा करी है हमने, जानकारी आपके साथ साझा की है, बातें और भी ट्रैफिक के बारे में करेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम है सुरक्षा संवाद। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट हैं अनुज कुमार जी, इंस्पेक्टर फरीदाबाद पुलिस, SHO ट्रैफिक फरीदाबाद, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं कि शहर में ट्रैफिक को सुचारू रूप से कैसे चलाया जा सकता है, क्या प्रबंध किए जाते हैं और क्या क्या रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक को सही रूप से चलाने के लिए और साथ ही एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। इंद्रजीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी वार्निंग इस अंडरपास को लेकर लगाई जा चुकी है, दीवारों पर लिखा हुआ है, गेट बंद कर दिए हैं, हादसे पहले हो चुके हैं, तो सब अवेयर हैं शहर में, सबको
1: बिल्कुल सबको पता है,
0: हाँ पता है कि यहाँ पर हादसे होते, फिर लोग क्यों जाते हैं अंडरपास में?
1: अंडरपास में क्या है कि सब ये सोचते हैं कि भाई जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद, लेकिन पानी वो उनको अंदाजा नहीं होता कि भाई पानी कितना गहरा हो।
0: और वो अंडरपास जो है सबसे ज्यादा चलता हुआ अंडरपास, सबसे ज्यादा रश है। तो इसमें आपने जिस तरीके से उनको बचाया, संजय गिरी जी के बारे में मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं, क्या करते हैं ये, कहाँ रहते हैं?
1: ये संजय गिरी जो महिला थाना अपना 21A के अंदर महिला थाना, उसके सामने चाय की दुकान है इनकी
0: जी, और इन्हें स्वार्थ भाव से वहां पहुंचे और बचाया, ये भी कोई छोटी चीज नहीं।
1: फिर उसके बाद मैं भी देखने के लिए गया था, मैं खुद तैरता हुआ पानी के अंदर गया कि भाई कोई अपनी तसल्ली के लिए, भाई कोई शख्स उस गाड़ी के अंदर रह तो नहीं गया है,
0: कहीं कोई और भी कोई
1: हो जी, लेकिन उसमें ऐसा कोई कुछ था नहीं
0: जी। तो आपके मुताबिक ये एक ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ समय बचाने के लिए, शायद
1: समय बचाने के लिए,
0: और गेट ऑलरेडी बंद थे,
1: गेट ऑलरेडी हमने दिन में ही बंद कर दिए थे
0: जी, जैसे ही बारिश थोड़ी सी बड़ी आपने सारा बंद कर दिया। तो इंद्रजीत जी, ऐसे बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा समय बचाने के लिए, क्योंकि उस दिन जाम जो था वो घंटों का जाम,
1: बहुत ज्यादा जाम था, क्यों सुबह से लेकर शाम तक बारिश पूरा कंटिन्यू चल रही थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो था
0: जी, बहुत स्लो था उस दिन, तो मतलब हर कोई जो है वो अपने घर घंटों बाद पहुंचा था।
1: और ये भी बता दें इसके जो लड़के आए थे, उन्होंने बताया था कि ये इनका कोई रिलेटिव था जो एशियन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था,
0: उनको देखने के लिए गए थे।
1: उन्होंने ये सोचा भाई बड़खल फ्लाईओवर के ऊपर पूरा रश था, पूरा जाम था, उन्होंने ये सोचा कि भाई यहाँ जाम है ज्यादा,
0: तो
1: ओल्ड अंडरपास से निकाल लेते हैं। इनकी गाड़ी ऊंची थी, फॉर्च्यूनर गाड़ी,
0: इनको
1: लगा कि भाई निकल भी जाएगी, इसलिए वो इन्होंने वो रास्ता चुना।
0: पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि फॉर्च्यूनर तो छोड़िए, बस तक
1: बिल्कुल डूब चुकी थी
0: जी। इंद्रजीत जी, एक और गाड़ी आपने निकलवाई थी, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे लिसनर्स को बताएं, श्रोताओं को बताएं कि वो क्या हादसा था, वो कैसी लापरवाही थी, एकदम नई गाड़ी, दोस्तों जो वीडियो मैंने देखी है वो भी एकदम नई गाड़ी थी और पूरे तरीके से आधी वो डूबी हुई थी।
1: वो पटेल चौक के पास जो शमशान घाट है
0: जी, जी
1: उनका कोई वो था रिलेटिव, तो उसमें दाग के लिए गए थे
0: जी, जी
1: वहां पे जा रहे थे, तो वो यहाँ पे नहीं आए थे, उनके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि उनको रास्ते का नहीं पता था, वो दिल्ली से आए थे, उनको रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ से गड्ढा है या क्या है। तो पटेल चौक हनुमान मंदिर से जैसे ही वो उसकी तरफ चले शमशान घाट की तरफ, तो शमशान घाट के बिल्कुल सामने इन्होंने सोचा कि शमशान घाट सामने है, लेफ्ट में टर्न किया, लेफ्ट में टर्न लेते ही ना वो एक गड्ढा था वहाँ पे, जो जहाँ पे ये अपना छठ पूजा वगैरह करते हैं उसका गड्ढा था, उसमें पानी भर के वो करते थे, उसमें उसके अंदर गिर गई
0: गाड़ी, उसमें चली,
1: उसमें आगे का हिस्सा पूरा उसमें उसके अंदर जा चुका
0: और वो दिख नहीं रहा था क्योंकि पानी भर चुका था
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये अपने आप में बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन हो जाती है।
1: हाँ, ये पब्लिक को भी ध्यान में रखना चाहिए, जब बारिश हो ऐसा रास्ता चूज ना करे जो हमने कभी देखा ना हो या जिस पे हम कभी चले ना हो।
0: और इंद्रजीत जी, इसमें कहीं वार्निंग भी तो लगानी चाहिए, देखिए जैसे अंडरपास में वार्निंग लगी,
1: अंडरपास पे तो वार्निंग लगी हुई, रोड के दोनों तरफ टाइल लगी हुई है।
0: हाँ।
1: अब उस पे क्या वार्निंग लगाएंगे भाई, जब रोड के दोनों तरफ टाइल

0: लगा दी तो इसका मतलब रोड क्लोज है, खत्म है वहाँ से, उसके तरफ जाएंगे तो वो तो ड्राइवर की गलती है।
1: लेकिन कोई पैदल चलता हुआ शख्स उसमें गिर सकता है अगर गलती से उस जगह पे चला गया और गड्ढा नहीं दिख रहा, नहीं, तो या तो कुछ
0: पैदल के लिए उधर से मैं खुद देख के आया था, थोड़ा सा रास्ता लेफ्ट साइड में था जिसपे
1: पैदल
0: मैं खुद वहीं से गया था।
1: जी जी, यानी वो सिचुएशन
0: दिखाई दे रहा था,
1: वो एक कह सकते हैं कि हल्की लापरवाही हो गई।
0: हाँ, वो सोचे थोड़ा बहुत पानी होगा वो निकाल लें।
1: तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग हमें सुन रहे हैं, बारिश का सीजन चल रहा है और बारिश इस बार लगातार, पहले भी जो दो तीन हफ्ते पहले बारिश हुई थी लगातार एक एक दो दो दिन चलती है जिससे शहर की पूरी व्यवस्था एकदम से चरमरा जाती है।
0: बिल्कुल,
1: तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
0: एक तो जितने भी फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव या कहीं भी, कहीं भी पूरे ऑल इंडिया में जहां भी अंडरपास हो, बारिश के समय में किसी भी अंडरपास का प्रयोग ना करें, और जब भी बारिश के उसमें अपनी गाड़ी चलाए, धीरे चलाए ताकि दूसरों को छींटे ना लगे जिससे भी वो एकदम से चौक जाते हैं और हादसा होने की संभावना बनती है।
1: जी बिल्कुल। तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको ये बातचीत बहुत अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट रेडियो मानव रचना, और इस ऐप में पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको फरीदाबाद पुलिस के साथ हुए ये संवाद यानी सुरक्षा संवाद कार्यक्रम के काफी एपिसोड्स मिल जाएंगे जिनको आप कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने शहर की सुरक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम. मैं हूं दीक्षा, आपके साथ. प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, सपोर्टेड बाय फरीदाबाद पुलिस. और फरीदाबाद पुलिस से आज हमारे बीच हैं एसएचओ ट्रैफिक फरीदाबाद इंस्पेक्टर अनुज कुमार जी, और इनसे जान रहे हैं हम ट्रैफिक के कुछ खास रूल्स, चालान और एक्सीडेंट्स को कम करने के बारे में उठाए गए प्रयासों के बारे में. इंद्रजीत जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ. गाड़ियां जब चलती हैं सड़क पे और बारिश हो रही होती है, मतलब बारिश होने के दौरान जब गाड़ी चलती है, तो गाड़ियां सड़क स्लिपरी हो जाती है बहुत ज्यादा.
1: बिल्कुल.
0: और ऐसे में हादसे होने के बहुत चांसेस होते हैं.
1: बिल्कुल जी.
0: तो खास तौर पर से ये जो हाईवेज पर गाड़ियां चल रही हैं 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से चल रही, इनको क्या सजेस्ट करना चाहिए?
1: इनको भी सजेशन यही किया जाता है कि भाई बारिश के समय में ज्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ब्रेक लगते तो है लेकिन स्केट कर जाते हैं ब्रेक उसमें, जिससे हादसा होने की ज्यादा संभावनाएं होती है.
0: और टू व्हीलर वालों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हादसे ऐसे ही हो जाते हैं कि जो बाइक है वो पलट गई,
1: स्लिप वही ना, ब्रेक मारने से स्लिप हो जाती है.
0: तो स्पीड थोड़ी कम रखें. स्पीड थोड़ी कम रखनी चाहिए आपके मुताबिक.
1: स्पीड तो बारिश के टाइम में तो जितना कम से कम हो सके, जो अपना वैसे तो ट्रैफिक स्लो हो ही जाता है, अपना नॉर्मल स्पीड अपना
0: जी, मतलब अपनी लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाएं. इसके साथ साथ सर, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है बरसात में, तो क्या इसमें इंडिकेटर्स जलाना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स के बिना गाड़ी चलाते हैं, पार्किंग लाइट ऑन नहीं करते हैं या इंडिकेटर्स नहीं जलाते हैं, और ऐसे में अंधेरे में खास तौर पर से पीछे से आने वाली गाड़ी को
1: दिखाई नहीं देता, वो सामने से बारिश के पड़ रही है. वाइपर भी चलाते हैं लेकिन दिखाई फिर भी बहुत कम देता है. उसके लिए डिपर जो है अपने चला के रखना चाहिए.
0: जी, चला के रखने चाहिए, वो आप सजेस्ट करना चाहेंगे. अगर गाड़ी गहरे पानी में फंस जाए, अब जैसे यही हादसा था ओल्ड अंडरपास वाला, इसमें गाड़ी गहरे पानी में फंस गई है और शख्स निकल नहीं पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? निकलने के लिए इमरजेंसी में क्या करें? गाड़ी कैसे पीछे करें, कैसे वापस लाएं? क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज होता है कई बार कि आपकी गाड़ी जाम हो जाती है
1: पानी में जाते ही. आजकल गाड़ियां जो आ रही है सेंटर लॉकिंग है.
0: जी जी,
1: सभी में तकरीबन सेंटर लॉकिंग है, जो पानी में जाते ही सेंसर काम करने बंद कर देते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है. उसके लिए गाड़ी में कुछ ऐसे वो रखे जिससे शीशे को तोड़ा जा सके.
0: जी,
1: शीशे को तोड़ के आप बाहर निकल सकते हो.
0: जी, और एक गाड़ी के जो सीट हेडरेस्ट जो होता है उसको भी निकालने का प्रावधान होता है.
1: जी, सीट रेस्ट के पीछे जो ऊपर होता है ना गर्दन लगाने के लिए, उसको निकाल के उससे भी तोड़ सकते हैं.
0: जी, यानी ये उपाय जो है पता होने चाहिए. बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग भी हादसे का शिकार होते हैं बरसात में, उनको क्या, और गाड़ी चलाने वाले उनका ख्याल कैसे रखें? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो गाड़ी चलाता है उसको ये परवाह ही नहीं होती कि साथ में कोई पैदल चल रहा है.
1: जी देखो, अब ओल्ड अंडरपास की हम बात करते हैं.
0: जी,
1: ओल्ड अंडरपास पे बारिश खत्म होने के बाद में पानी भी निकाल दिया गया था, उसके बाद भी कीचड़, कम से कम एक एक डेढ़ फुट कीचड़ थी उसके अंदर, जो फिर भी पब्लिक, पैदल जाने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं मान रहे थे. मैंने खुद ही उनको, मैं प्रेजेंट था वहाँ पे, मैंने उनको खुद रोका टोका, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे. इसके लिए मैं पब्लिक से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो पुलिस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. पुलिस आपके फायदे के लिए कुछ वो कर रही है तो आपके फायदे के लिए कर रही है.
0: तो यानी जो कीचड़ है, जो स्टिल्ट बना हुआ है सारा, उसमें से ना गुजरे. तो सर, ये कीचड़ में से गुजरने अगर कोई जा रहा है पैदल, तो क्या हादसे हो सकते हैं, क्या आपको लगता है?
1: बाई चांस स्लिप हो जाए पैर.
0: हाँ.
1: सर में गहरी चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं उससे. हाँ. स्लिप होने से, जमीन पक्का है उसमें गिरेंगे तो हादसा हो सकता है.
0: तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें.
1: जी बिल्कुल.
0: इसके साथ साथ एक टायर से ऊपर जब पानी तैरने लग जाए, बहुत ज्यादा पानी जो गाड़ी के ऊपर से हो जाने, तो कब हमें गाड़ी जो है वो साइड पे लगा लेनी चाहिए? क्योंकि कई लोग पानी में जाते जाते जाते जाते जाते जाते और फिर गाड़ी जो है वहाँ रुक जाती है और पीछे एक बड़ा जाम जो है वो लग जाता है. So, कैसे इस चीज को समझें कि यहाँ पर गाड़ी खराब हो सकती है?
1: नहीं देखो, ऊपर से तो हमें जब गाड़ी में बैठते हैं तो पानी इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तक, जब बारी बोनट के ऊपर पानी आ जाता है, जब लगता है कि कुछ ज्यादा पानी है, तो इसलिए अपना पानी का अंदाजा लग ही जाता है भाई ज्यादा है या कम है. वो अपनी गाड़ी, जब जो गाड़ी चलाता है ना उसको पता होता है कि गाड़ी के पानी, अब गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में कितना, कहाँ तक पानी आ चुका है,
0: तो फिर गाड़ी
1: साइड में लगा लेनी चाहिए.
0: तो बहुत सारे ऐसे हादसे जो हैं वो थोड़ी बहुत समझ से रोके जा सकते हैं, और ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस जो है वो कोशिश करे, ये पॉसिबल नहीं होता है, एक आम इंसान को भी समझना चाहिए.
2: तो दोस्तों, बातों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 8010781078 पर. मैं हूँ दीक्षा आपके साथ.

0: पुलिस में। आइए जानते हैं और भी बहुत सी बातें रोड सेफ्टी के बारे में।
1: आप सर इंद्रजीत जी पूरा ट्रैफिक भी देख रहे हैं और जब जैम लगता है और इतनी बारिश होती है तो मैंने अपनी आंखों से पुलिस वालों को देखा है कि बेचारे अपने शूज उतार कर और भीगे हुए लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ दो मिनट रुक जाइए, हमें यहाँ से ये ट्रैफिक निकालने दीजिए, दो मिनट का सब्र, पर लोग नहीं सुनते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बताइए कि ट्रैफिक कैसे मैनेज करते हैं जब इतनी बारिश हो रही होती है।
2: ट्रैफिक तो मैम मैनेज करना पड़ता है, आज के टाइम में किसी को भी थोड़ी देर का समय नहीं है कि मैं थोड़ा वेट कर लूं। मैं अपना खुद का बता रहा हूं मैम, मैंने कई बार देखा हम पब्लिक को रोकते लेकिन थोड़ा थोड़ा सरका सरका के आगे निकल ही जाते,
1: बिल्कुल
2: भाई निकल जाऊं मैं भी निकल जाऊंगा, पर कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसको मैनेज करके हम जैसे भी हो सकता है मैनेज करके उसको निकालते हैं।
1: जी जी, तो पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे ऐसे ट्रैफिक जाम में जब फंसते हैं तो?
2: ट्रैफिक जाम में जब फंसते हैं तो पब्लिक को यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा संयम बरतें। संयम बरतोगे तो पुलिस के सहयोग भी होगा और आपको भी पूरा सहयोग होगा और आप टाइम से भी घर पहुंच पाओगे,
1: ट्रैफिक जल्दी खुलेगा। यही जो लोग इधर से भी आ जाते हैं, राइट से भी लेफ्ट से भी, वो आगे जाकर गड़बड़
2: कर देते हैं, पूरा एकदम ब्लॉक हो जाता है, उसको निकालना फिर वो हो जाता है।
1: जी जी जी सर, ट्रैफिक जाम में बहुत सारे लोग हमने देखे हैं रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं, बहुत रॉन्ग साइड चलाते हैं, तो क्या इतना ज्यादा जाम लगा है तो पुलिस कोई एक्शन लेती है उन पे?
2: रॉन्ग साइड के बहुत ज्यादा चलान करते हैं मैडम
1: जी। कितना
2: एक बाईपास पे स्पेशली रॉन्ग साइड के, रॉन्ग तकरीबन बाईपास पे सारे कट ऐसे बनाए हुए हैं जो रॉन्ग साइड चलते हैं पब्लिक, वहाँ पे एक स्पेशली हमने छोड़ा हुआ है कि भाई एक बंदा जो रॉन्ग साइड के ही चलान करता है,
1: टारगेट वहाँ से पूरे हो जाते हैं
2: तकरीबन डेली वहाँ के 100 चलान तो होते ही होते हैं।
1: डेली 100 चलान रॉन्ग साइड के?
2: रॉन्ग साइड के डेली वहाँ के बाईपास के, और बाकी जो करते हैं वो एक्स्ट्रा है।
1: एक्स्ट्रा है
2: जी बिल्कुल,
1: यानी आप 100 चालान डेली बाईपास के काट रहे हैं रॉन्ग साइड के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और हमने देखा है
2: और बड़े इसका भी 5,500 रुपए का फाइन करते हैं,
1: 5,500 रुपए
2: 5,500 रुपए का रॉन्ग साइड का फाइन है, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मानती, अपनी जान जोखिम में डाल देंगे लेकिन चलेंगे रॉन्ग साइड।
1: ये तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम भी है, क्योंकि जब आप रॉन्ग साइड चलाते हैं तो आपको नहीं पता सामने से
2: कौन सी गाड़ी और स्पीड में, वो तो अपना ठीक चल रहा है, उसकी गलती क्या है,
1: ये बहुत जानलेवा है सिचुएशन।
2: बिल्कुल,
1: हाल ही में डीसी साहब का भी एक ऑर्डर आया था कि कोई भी अगर इन एक्सप्रेस वे से रॉन्ग साइड पे जाता है बाईपास से तो उसकी गाड़ी इम्पाउंड कर लेते हैं, क्या आप लोग करते हैं गाड़ी
2: इम्पाउंड? भी करते हैं,
1: इम्पाउंड भी करते हैं, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है?
2: वो फिर कोर्ट से चलान भर के छुटवाए जाते हैं,
1: और 5,500 रुपए का चलान है, ये बहुत बड़ा चलान है। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं और आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं सिर्फ थोड़ा सा समय बचाने के लिए तो ये गलती मत कीजिएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि आप सिर्फ अपना समय नहीं बचा रहे हैं, आप दूसरे की जान को खतरे में डाल रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। सो इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें जानकारी दी कि बरसात में आपने किस तरीके से मदद की, एक शख्स को अस्पताल पहुंचाया, उनके जीवन को बचाया, और साथ ही लोगों को ये भी गाइड कर रहे हैं कि भाई आप इस पूरे बारिश के मौसम अपना ख्याल रखें और सड़कों पर बेवजह गलती से भी कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं चाहे पैदल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हादसे की एक दस्तक जो है वो बनी रहती है, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए।
2: जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।
1: तो बहुत सारी बातें दोस्तों हम कर चुके हैं इंद्रजीत जी जो कि एसआई हैं फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस में, और हाल ही में ओल्ड फरीदाबाद में जो एक बड़ी गाड़ी फंसी और जिसमें जो शख्स फंसे उनको संजय गिरी के साथ अस्पताल तक पहुंचाने वाले शख्स यही थे जिन्होंने एक व्यक्ति की जान बचाई, और आज वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हैं लेकिन पहले से बेहतर हैं। और आपसे यही हम अपील करना चाहेंगे, यही आपसे इल्तजा करना चाहेंगे कि कृपया करके बारिश के मौसम में अगर अंडर पासेस की तरफ से आप रेगुलरली जाते हैं तो बरसात के मौसम में उसे अवॉइड कीजिए। ट्रैफिक जाम से निकल के तो आप चाहे 1 या 2 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप अंडर पास में फंस गए तो फिर ज़िंदगी बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये शख्स बहुत किस्मत वाले थे कि इन्हें इंद्रजीत और संजय गिरी जी जैसे दो शख्स मिले जिन्होंने इनकी ज़िंदगी बचाई, लेकिन हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता, इसलिए प्लीज़ अंडरपास ज़मीन से बहुत नीचे होते हैं और पानी भरना यहाँ पर लाजमी है, तो आप प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सीरियसली लें और समय की जगह अगर अपनी ज़िंदगी को बचाने में फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रोग्राम सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त, और हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे फरीदाबाद पुलिस का इस सीरीज़ के लिए, और आपसे भी यही कहना चाहेंगे अगर आपके सवाल हों और कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर हमें मैसेज करें 8010781076।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं बहुत ही खास कार्यक्रम मानवता की राह पर। जी हाँ, मानवता की राह पर स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी मैं लेकर आ गई हूँ। और आपको पता है ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको उन सभी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाती हूँ, एनजीओ से मिलवाती हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाती हूँ, इंडिविजुअल से मिलवाती हूँ जो मानवता के काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो गरीबों की मदद करते हैं, जो बेसहाराओं को सहारा देते हैं, विकलांगों की मदद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी एनजीओ भी हो सकती है जो आपके बिजनेस को भी ख्याल रख सकती है और उसका भी सहारा बन सकती है? भाई मैंने नहीं सुना था, और जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि आप सभी को पता होना चाहिए। सो आज की मानवता की राह पर हम चलने वाले हैं TMA के साथ। जी हाँ, TMA इंडिया यानी टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडिया, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं रॉकी रविंद्र गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और आज ये हमसे बात करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों की मदद करती है TMA इंडिया। सो रॉकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानवरचना के स्टूडियो में।
2: नमस्कार भावना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो।
1: पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, TMA तो इसकी फुल फॉर्म तो मैंने लोगों को बताई है, लेकिन ये कब इसका गठन हुआ और क्यों? और ना हर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक छोटी सी कहानी होती है, तो क्या TMA के पीछे भी कोई कहानी है, और इसका जो इंडिया चैप्टर है जिसके आप प्रेसिडेंट है, इसकी शुरुआत कब हुई?
2: टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि ओनली TMA ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो US से चलती है। 35 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था ताकि जो धंधे और बिजनेसेस डिस्ट्रेस में आ जाते हैं उनको तरीके से ठीक कर सकें और उनको वापस प्रॉफिटेबिलिटी में ला सकें, इसलिए TMA का गठन हुआ था 35 साल पहले। TMA इंडिया की शुरुआत हुई थी जून 11, 2024 को, जब हमने लंदन में इसका एक एग्रीमेंट साइन किया था विद TMA ग्लोबल।
1: वाओ, और क्या इसके एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कोई खास कहानी?
2: हाँ जी, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैं एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ और इंसॉल्व फेलो भी हूँ। इंडिया में इंसॉल्वेंसी करते हुए मैंने दो केसेस करे हैं 2019 के अंदर और 18-19 में। जब हम ये केस कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जब बिजनेसेस की वैल्यू इरोजन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज क्योंकि जब टाइम लिमिट्स स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट्स जो एक्ट में दे रखी है, IBC कोड में दे रखी है, वो जो कि 270 दिन है, वो जब बढ़ जाती है तो एक वैल्यू इरोजन शुरू हो जाती है एसेट्स के अंदर। आप समझे इसको इस तरीके से समझे कि जैसे आपने एक आइस क्यूब को एक प्लेट में रख दिया है और अगर वो 10 मिनट बाद आप उसे देखेंगे तो वो ज्यादातर पानी बन जाएगा, आइस कम रह जाएगी। उसी तरीके से अगर किसी भी बिजनेस में कोई एसेट्स हैं, अगर उनको तरीके से काम नहीं करवाया गया, उनको यूज नहीं किया गया, तो उनके अंदर वैल्यू इरोजन होनी शुरू हो जाती है और वो लगभग डिप्रिशिएट होके बहुत कम कीमत पे आ जाते हैं। आज अगर आप देखें कि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो 2/3 कंपनी जो भी जाती है वो लिक्विडेट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, बिक जाती है। तो उनको कैसे सेव किया जाए, ये एक थॉट प्रोसेस था। उस थॉट प्रोसेस के अंदर हमने टर्न अराउंड की मदद ली। उसके अंदर अगर आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको पहले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर तब भी वो ठीक नहीं होता है तो उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है या ICU में डाल दिया जाता है। ICU में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। अगर आप बिजनेस की बात करें तो व्हाट आई वुड कंपेयर IBC इज टू ए ICU ऑफ ए बिजनेस। हमारे पास OPD के डॉक्टर्स ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर।
1: वाकई,
2: तो हम वो OPD क्रिएट करना चाहते हैं बिजनेसेस के लिए जो कि उनको जब वो स्ट्रेस में स्टार्ट करते हैं, अपने स्ट्रेस को, कैश फ्लो को नेगेटिव जाने लगता है या अपने स्ट्रेस में आ रहे होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम लोगों के पास वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो कि उसको ठीक कर सके। आज अगर आप देखें तो इंसॉल्वेंसी की कोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं बहुत सारे केसों से, और वो तरीके से काम भी नहीं कर पा रही हैं। अगर हम लोग कंपनियों को ठीक कर देते हैं पहले ही इंसॉल्वेंसी में जाने से पहले, तो सिर्फ वही कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी जो कि फिजिबल या वायबल नहीं है चलाने के लिए। उसका एक काम होता है टू बी केप्ट एज अ गोइंग कंसर्न। वो चीज अगर जो कंपनी फिजिबली नहीं है उसको आप इंसॉल्वेंसी में

0: जाइए, नंबर ऑफ अमाउंट, जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, एंड जो आज की डेट में एनसीएलटी की बेंचेस हैं वो उसको इजीली हैंडल कर सकेंगी लोअर नंबर ऑफ केसेस को।
1: वाओ, आई मीन आई हैड नेवर थॉट कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो इस बारे में भी सोचती है, बट इसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण क्या है उसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, वक्त एक छोटे से प्यार ऐसे म्यूजिकल ब्रेक का। Feel good, feel nice.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं TMA इंडिया के साथ। TMA इंडिया यानी टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन भारत का ये चैप्टर है, और अगर देखा जाए तो 1988 में TMA का गठन हुआ था, जो कि ग्लोबल एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही है अलग अलग किस्म के ट्रांसफॉर्मेशन में। अब इसका जो भारत का चैप्टर है उसके प्रेसिडेंट है रॉकी रविंद्र गुप्ता जी, और आज हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। रॉकी जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल, एग्जैक्टली TMA बिजनेसेस को हेल्प कैसे कर रही है?
1: टू बी वेरी फ्रैंक, TMA एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं, परंतु जो हमारे मेंबर्स हैं वो काम कर सकते हैं कमर्शियली, जिसमें लॉयर्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इन सबका क्या रोल है बिजनेस ठीक करने के लिए। नॉर्मली कोई भी बिजनेस को ठीक करने के लिए इट्स लाइक वो इस तरह से, किसी भी आदमी को कोई बीमारी है आपको 5 तरह के डॉक्टर्स चाहिए हो सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। उसी तरीके से जब हम किसी कंपनी में या बिजनेस में जाते हैं तो सबसे पहले नीड एनालिसिस होती है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है उसमें। तो अगर आपके मार्केटिंग में प्रॉब्लम है या बिजनेस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है या आपके सर्विस

0: बिजनेस को तो ठीक किया जा सकता है एक आदमी के बलबूते पे, परंतु अगर बड़ा बिजनेस है तो उसको उसके लिए हमारे को एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके लिए हमारे को मेंबर्स चाहिए होते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि इन सबको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। तो इसी कारण से हिंदुस्तान के अंदर जब हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं तो वी आर लुकिंग एट ओनली टू एस्पेक्ट, लीगल एंड फाइनेंशियल। हमारे कोड के अंदर लिखा तो है कि कोड में कि कंपनी को गोइंग कंसर्न रखना है, पर किसी के पास ऑपरेशनल एक्सपर्टीज नहीं होती किसी भी कंपनी को सही रखने की। और टर्न अराउंड के अंदर मेजरली इट्स एन ऑपरेशनल एक्सपर्टीज दैट इज रिक्वायर्ड। क्यों? आपका अगर कैश फ्लो खराब हो गया, आपके पास आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपको जो आपके देनदार हैं आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो इसी कारण से नहीं दे रहे हैं ना, वो कारण हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ऑपरेशन अगर आपके सही हो जाते हैं तो रेवेन्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली आपके सही हो जाते हैं, तो आपका कैश फ्लो भी सही हो जाता है। उस तरीके से कंपनी अच्छे राह पे चल पड़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी के राह पे चल पड़ती है। हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी आने में टाइम लगे, बट अगेन अगर आपका रास्ता सही है तो आप अपने गंतव्य पे सही तरीके से पहुंचेंगे।
1: That sounds really wonderful. मतलब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक हम ये सोचते थे कि जो इतने भी बिजनेसमैन हैं, rather business women भी हैं, उन सभी की ना मदद करने के लिए कोई नहीं है, इट इज योर ओन वेंचर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि TMA इंडिया या फिर TMA ग्लोबल इस चीज का भी ख्याल रखता है, और आप ऐसी कंडीशन पे ना आ जाएं जहां आपका बिजनेस बंद हो जाए, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में चला जाए, उससे पहले कोई है जो आपका ख्याल रखने के लिए तैयार है। अभी अलग अलग किस्म के काम कैसे करते हैं, किस तरीके से लोगों को इनसे बेनिफिट होता है, इसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो वन रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन झाक।
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। देखिए भाई, जब कभी भी हम किसी की मदद करते हैं तो हम ये कहते हैं हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, लेकिन जब किसी के डूबते हुए बिजनेस में आप मदद करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है आपके अंदर सब कुछ जिंदा है, जो आप किसी डूबते को सहारा बनकर ना सिर्फ तिनका लेकिन एक पूरी कश्ती दे रहे हैं कि आइए ऊपर आइए और अब आप अपनी नैया को खुद ले जाइए। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में, वो है TMA इंडिया, यानी टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडिया। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ग्लोबली, और इनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसके बाद अगर हम देखें हमारा इंडिया का चैप्टर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट कर रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में रॉकी रविंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि TMA इंडिया के प्रेसिडेंट है। रॉकी जी, अब तक हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर मैं आपके ग्रुप की बात करूं जो TMA के साथ एसोसिएटेड हैं, और अगर हम देखें तो ग्लोबली कितनी कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है?
1: Globally, we are available in almost like 59 countries.
0: Wow.
1: 59 jurisdictions, I would say, not countries. North America के अंदर ज़्यादा chapters हैं, और हम लोगों को, मेरे को यह दायित्व भी दिया गया है international committee के द्वारा कि नए chapters creation करने का, और हमने TMA UAE और TMA Mauritius को खड़ा करने के लिए तैयारी कर ली है, और within next 2-3 महीने के अंदर I think ये लोग भी अपना TMA चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। जहां तक बात आपने जो पहला सवाल किया था that was regarding
0: कि हमारे भारत का जो चैप्टर है उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं,
1: तो हमारे जो पास जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है उसके अंदर हमारा एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होता है। उस बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के अंदर जो हेड कर रहे हैं दैट इज मिस्टर चंडियोक, ही इज द एक्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हमारे साथ में आर्सेलर मित्तल के CEO हैं मिस्टर ओमन, और इसके साथ में हमारा एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स भी है जिसमें दुनिया भर के डिफरेंट जुरिस्डिक्शन के काफ़ी सारे नामी ग्रामी नाम जुड़े हुए हैं। उसके साथ में सतीश कुमार गुप्ता हैं जो इस वक्त जेट एयर के लिक्विडेटर हैं, आई एम देयर, एंड देयर आर मिस्टर वेंकटरामन आनंद इज देयर, ही वॉज एक्स CEO ऑफ RPG गोयनका ग्रुप। तो इस तरह के काफ़ी सारे नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर आप बात करें कि इंडिया में जितने भी लगभग टर्नअराउंड एक्सपर्ट्स हैं, जो चूंकि ज़्यादा नहीं है, वो लगभग सारे ही हमारे साथ से किसी ना किसी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं।
0: वाओ, तो भाई देखिए, TMA इंडिया जो है, हमारे भारतीय जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी एक अच्छी कंपनी है और आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता इस कंपनी में कहीं कोई परेशानी है और आप उस कगार पर आ रहे हैं जहां इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन आ सकती है, उससे पहले कोई है जो आपके हाथ पकड़ने को तैयार है, सो आपकी बाह को थामकर आपको वापस उस कंडीशन में ले आना जिस कंडीशन से आपने शुरुआत की थी, धीरे धीरे राह आपको पकड़नी है। सो ये काम करती है TMA इंडिया। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इतने बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फंक्शन करती है। मानवता की राह पर हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, इतने सारे हीरोज से बात करते हैं, और ये वो हीरोज हैं जो इन हीरोज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रॉकी रविंद्र गुप्ता जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं TMA इंडिया के। रॉकी जी, मुझे बताइए कि TMA इंडिया के क्या वॉलंटरी विंग्स भी हैं, और अगर हैं तो किस तरीके से हैं, किस प्रकार ये काम करते हैं?
1: ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या है कि हमारे पास हर फील्ड से जो कि बिजनेस को चलाने के लिए सक्षम होता है उस तरह के लोग हैं। जैसे कि आप समझे, लीन मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे पास वकील हैं, हमारे पास कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, सप्लाई चेन से रिलेटेड लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं। सो जिसकी जहाँ पर जरूरत पड़ती है हम उनको वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
0: वाओ, सो ये एक बड़ा सा कहना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप है, एक नेटवर्क है, एक एसोसिएशन है, जिसकी मतलब कहना चाहिए शाखाएं बहुत सारी हैं, लेकिन शाखाओं के साथ जड़ एक ही है। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये बड़ा खास तौर से फंक्शन करता है। जहां जिस चीज की जरूरत होती है ये वहां पहुंच कर उनकी मदद भी करते हैं, और साथ के साथ उन्हें वो पाथ भी दिखाते हैं जहां से वो आगे जा सके। So, अगर हम TMA की बात करें, और आज तक अगर आपने कभी नाम नहीं सुना है, आप उन लोगों में से हैं जो आज तक TMA की तरफ पहुंचे नहीं है, तो आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही खास ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है। और अगर इसके बारे में और भी बातें जाननी है तो बस जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। सुना रही हूँ एक प्यारा सा गाना, लेकिन आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं रॉकी रविंद्र गुप्ता जी के साथ, जो प्रेसिडेंट हैं TMA इंडिया के। रॉकी जी, अब एक अहम सवाल, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो के जरिए, और अब लोगों को जब TMA के बारे में पता लग रहा है और आप इतनी बहुत ही डिटेल में और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में, मान लीजिए कि कोई इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहता है, कोई इससे बेनिफिट लेना चाहता है, कोई हाथ मिलाना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: दोनों तरीके से पॉसिबल है। अगर किसी बिजनेस को हमारी मदद चाहिए, और मैं आपको एक बस ये बोलना चाहता हूँ, आपने पहले बोला कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी में जा रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग सक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हम स्ट्रेस को पकड़ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस मेनी फोल्ड्स। पहली बात, अगर किसी को हमारे से जुड़ना है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मेंबर्स हर मेजर सिटी में उपलब्ध हैं और बिजनेसेस की हेल्प इमीडिएटली कर सकते हैं। दूसरा है कि आप सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टर्न अराउंड इज नॉट सो मच मैच्योर्ड इन इंडिया। बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो एक अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि TMA ग्लोबल से जुड़ी हुई है, उसका नाम है यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड टर्नअराउंड प्रोफेशनल्स। वो एसोसिएशन लाइडन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है जो कि सर्टिफिकेशन देती है सर्टिफाइड टर्नअराउंड एनालिस्ट और सर्टिफाइड टर्नअराउंड प्रोफेशनल्स का, और ये दोनों सर्टिफिकेशंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स इन ए टर्नअराउंड इंडस्ट्री। इससे ऊपर दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग इनको इंडिया लेके आ गए हैं, परंतु क्योंकि CTA और CTP आर वेरी प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए हमने एक नया कोर्स स्पेशली पायलट इंडिया के लिए तैयार किया है, विच इज कॉल्ड बेसिक कोर्स इन टर्नअराउंड मैनेजमेंट, जो कि मेरे हिसाब से 1 नवंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ ए प्राइमर फॉर प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्नअराउंड एंड रिस्ट्रक्चरिंग इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और लीगल रिस्ट्रक्चर। तो ये हम लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, ताकि हमारे हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स भी शुड बी ऑन पार विद द इंटरनेशनल टर्नअराउंड प्रोफेशनल्स।
0: रॉकी जी, बड़ा एक अहम सवाल रह गया जो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। देखिए, हम ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा डेवलपिंग नेशन है जिसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और अगर हम हमारे स्टार्टअप्स की बात करें या यंगर जनरेशन की बात करें, तो यंगर जनरेशन का अब झुकाव जो है वो दूसरी तरफ आ गया है, वेर पहले हम जॉब सीकर्स होते थे, अब हम जॉब गिवर्स हो रहे हैं। लेकिन जहां हम ज्यादा जॉब गिवर्स हो रहे हैं, वहां उसी जॉब गिवर बनने के बाद उस बिजनेस को सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो ऐसे में क्या TMA बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है, और अगर हाँ तो कैसे?
1: देखिए, हम लोग 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं, लीगल, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट।
0: जी,
1: प्रिंसिपल्स सब जगह के सेम है। अगर आप इसको डिस्ट्रेस्ड बिजनेस में यूज करें, आप इसको स्टार्टअप में यूज करें, या आप इसको स्केलिंग अप में यूज करें, तो हम स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हैं, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग अ बिजनेस आर द सेम एवरीवेयर। तो स्टार्टअप्स को, स्केलिंग अप ऑफ ए बिजनेस को, या फिर कोई डिस्ट्रेस्ड बिजनेस हो, उसको हेल्प हम लोग कर सकते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो सक्षम है ये सब काम करने के लिए।
0: वाओ, सो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भारत की इकोनॉमी को इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम सबके पास हर चीज का सॉल्यूशन हो। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। TMA इंडिया आपके लिए ढेर सारे सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और ये जो मोटिवेटेड टीम है, डेडिकेटेड टीम है, ये डेफिनेटली कमाल कर रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रॉकी रविंद्र गुप्ता जी के साथ, जो कि प्रेसिडेंट हैं TMA इंडिया के। रॉकी जी, बहुत सारी बातें आपसे पूछी। इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे ढेर सारे लिसनर्स ने तो TMA का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन अब सबको पता है कि टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या करता है। और खुदा ना खासा कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि भाई हमारी जो बिजनेस है या हमारा स्टार्टअप है वो ऐसी कंडीशन में जा रहा है, तो लोगों को पता है कि एक दरवाजा है जहां पर खटखटाया जा सकता है। तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले रॉकी जी, हमारे सभी लिसनर आपको सुन रहे हैं, क्या खास मैसेज आप उनको देकर जाना चाहेंगे?
1: एक मैसेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। फेलियर इज नॉट द एंड, it is an opportunity and opportunity to grow. This is the only message that I want to give, so don't be afraid of failures.
0: Such a beautiful message. Of course bhai, agar aap apni nakamiyon se darenge to aap to kamyab hone se darne ki koshish kar rahe hain, so usse darne ki zarurat nahi hai, koshish ye karni hai ki aap uske naye tareeke dhoonde. तहे दिल से धन्यवाद रॉकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज हमारे लिसनर्स बहुत बेनिफिट हुए हैं TMA इंडिया के बारे में जानकर।
1: धन्यवाद भावना जी फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं वादा कर देती हूँ, चलिए भाई अगले हफ्ते होगी मेरी और आपकी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने यह सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है, बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिली।

देखभाल करनी होती थी, इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब एक महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदा बख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई। उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी। उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को

0: अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामूली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गए मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूं। तो मैं भी झक मारता हूं। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उठपटांग बातें करते हो, बोलो, रहोगे?
1: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ।
0: सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
1: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
0: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे?
1: पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं।
0: कुछ उन्होंने तुमसे कहा?
1: नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे।
0: सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी,
1: सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनिया थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
0: खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा,
1: पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए।
0: सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
1: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
0: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
1: कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
0: अब तुम कहती हो तो मैं हीला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा।
1: चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं।
0: होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस न हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा,
1: तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो, और 100 दफा ही कह सकती हो
2: कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
1: नहीं बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया।
2: तो मेरी शर्तें मंजूर हैं?
1: कैसी शर्तें?
2: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
2: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो क्या बात करूं?
2: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
2: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
2: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
0: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ।
2: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
2: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
2: मेरा नाम शंकर है।
1: ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
2: चलो आओ अंदर चले।
0: शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
1: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
1: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो रुक क्यों गई हो?
0: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो।
2: कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
0: शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
2: नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
1: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है।
2: बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
1: लो बस अब खुश हो गई।
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा,
1: क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो?
0: सुल्ताना ने हंसकर कहा,
1: तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी।
2: बोलो देती हो?
1: ले लो।
0: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए।
1: सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा,
0: मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा,
1: साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो।
0: अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसके पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है।
2: सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देखकर आई थी।
0: सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई।
1: सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई।
0: उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा,
1: कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है।
0: कब बनवाई?
2: सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूं। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी।
1: ये बुंदे तुमने कहां से लिए हैं?
2: अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ सपने तक ही रहने नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और डेडिकेशन से उन्हें रियलिटी में बदल दिया है। और आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं एक और ऐसी ही कहानी जिसमें है ड्रीम्स, जिसमें है स्ट्रगल्स, रिस्क, फेलियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस। जी हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस के लिए सारे काम करता है जिससे वो अपनी लाइफ में अपना नाम बना सके और जमीन से आसमान तक की जो ऊंचाई छूने तक का जो सफर है ना, उसे हासिल कर सके।

बस इसी के साथ मेरे पास ना आपके लिए छोटा सा सवाल भी है कि आप में से कितने लोगों के पास बोट का ईयरफोन है या फिर हेडफोन है या फिर स्मार्ट वॉच है। हो सकता है आप इस वक्त मेरी आवाज भी अपने ईयरफोन्स में सुन रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रांड को आज हम इतनी इजीली अपनी डेली लाइफ का पार्ट समझते हैं, उसकी जर्नी शुरू कैसे हुई होगी? सोचिए सोचिए। तो आज का सक्सेस मंत्रा वही है। जी हाँ, आज के सक्सेस मंत्रा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने इंडियन यूथ की चॉइस को समझा, एक सिंपल आइडिया पर काम किया और उस आइडिया को एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। जी हाँ, उनका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता, इनका नाम आपने सुना होगा, ये सोशल मीडिया पर भी स्टैम्प पे जब हम एक प्रोग्राम आता है वो आप मुझे बताइएगा, उस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि आपने इन्हें ना देखा होगा। और दोस्तों, अमन गुप्ता बोट के को फाउंडर है, लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ एक सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है मार्केट को समझने की, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की, रिस्क लेने की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक ऑर्डिनरी आइडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रांड में कन्वर्ट करने की। आज जब हम हेडफोन्स, ईयरफोन्स या फिर स्मार्ट वॉचेस को खरीदने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बोट ने अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है। स्टाइलिश प्रोडक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग है और यंग जनरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट भी करता हुआ है ये ब्रांड, और यही चीज अमन गुप्ता की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल ब्रांड की स्टार्टिंग में एक स्टोरी होती है, एक पॉइंट होता है जहां किसी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं सेफ ऑप्शन चूज करूं या फिर अपने आइडिया पर ट्रस्ट करके एक बार रिस्क ले ही लो। अमन गुप्ता की जर्नी में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया। एक तरफ था एक स्टेब्लिश्ड करियर और दूसरी तरफ था एंटरप्रेन्योरशिप का अनसर्टेन पाथ, और उन्होंने क्या चूज किया होगा बताइए। यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि बोट जो प्रोडक्ट है, एक ब्रांड है, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सक्सेस के पीछे कौन सा डिसीजन था, कौन से चैलेंजेस थे और क्या लेसन उसके पीछे छुपे हुए थे, जिसे हम भी अपनी लाइफ में अपना कर हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं यार। क्योंकि सक्सेस मंत्रा का मकसद सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद है उनकी जर्नी से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अपना कुछ स्टार्ट करने का ड्रीम देखते हैं, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या फिर आप अपने करियर में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आज का सक्सेस मंत्रा आपके लिए है। चलिए अब थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं। उस वक्त जब अमन गुप्ता सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं थे, बल्कि एक यंग प्रोफेशनल थे जो अपने करियर जर्नी में नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे आज पूरी डिटेल में इनकी जर्नी को। पर उससे पहले अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के साथ, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ना बहुत कम एज में ना बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़े ब्रांड को इतना बड़ा नाम दे दिया, इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंचा दिया। दोस्तों अभी हमने बात शुरू की थी कि एक ऐसे ब्रांड की जो आज के बहुत यंग इंडियंस की डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है और उसका नाम है बोट। लेकिन हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है और किसी भी एंटरप्रेन्योर की कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाएं। तो चलिए आज के हीरो यानी कि अमन गुप्ता की जर्नी को थोड़ा और क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं। अमन गुप्ता का बैकग्राउंड बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ा रहा। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए की फील्ड में अपना करियर बनाया। उनका प्रोफेशनल जर्नी यही नहीं रुका, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया और फाइनेंस और बिजनेस की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फाइनेंस बैकग्राउंड वाला पर्सन हेडफोन्स और ईयरफोन्स की कंपनी तक कैसे पहुंच गया। बस यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टोरी का। दोस्तों लाइफ में ना कभी कभी हम जिस फील्ड में काम कर रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वही हमारी लाइफ की फाइनल डेस्टिनेशन बन जाती है। कभी एक जॉब हमें एक्सपीरियंस देती है तो कभी कोई फेलियर, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कभी कोई प्रॉब्लम हमें एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाती है। अमन गुप्ता के केस में भी उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आगे चलकर एंटरप्रेन्योरशिप में काफी यूजफुल रहा। बिजनेस को समझना, नंबर्स को समझना, मार्केट को एनालाइज करना और डिसीजन लेना, ये सब स्किल्स उनके अंदर इसी काम की जर्नी के दौरान ही आया। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना कोई सिंपल डिसीजन नहीं होता है। जॉब में एक सर्टेन स्टेबिलिटी होती है, मंथली इनकम भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर होती है, लेकिन बिजनेस में आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। कभी रिजल्ट्स मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और कभी रिस्क भी लेना पड़ता है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है कि सक्सेस के लिए सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत भी होनी चाहिए आपके अंदर, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, आपके माइंड में कोई आइडिया हो, कोई सपना हो, लेकिन हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अगर हम हर बार फेलियर के फियर्स की वजह से अगर रुक जाएंगे ना, तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली में कितना कर सकते थे और कितना हमने खो दिया उसे ना करके। अमन गुप्ता की जर्नी भी हमें यही रिमाइंडर देती है कि करियर में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब हमें डिसीजन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा सेव ओपिनियन या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी, इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा हमें। और अमन गुप्ता ने एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चूज किया, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। एक आइडिया को कंपनी में कन्वर्ट करना, मार्केट में जगह बनाना और कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट तक पहुंचाना, ये काम बिल्कुल इजी नहीं था। तो कैसे हुई इसकी शुरुआत, करेंगे इसके बारे में भी बात, लेकिन अभी लूंगी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके मेहनत से, हिम्मत से उस ऊंचाई को छुआ है, अपना नाम को बनाया है और आज दुनिया में वो इतने फेमस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सब लोग उनके बारे में जानते हैं जो कहते थे कि कल को शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर आज वो खुद कहते हैं कि क्या काम करा है तुमने। दोस्तों बस ऐसा ही लाइफ में ना आपको भी मोटिवेट होना है और सबसे पहले तो आपको कुछ करके ना उन लोगों को दिखाना है जो शायद आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए करिए, हिम्मत जुटाइए और बस आगे बढ़ते जाइए। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमन गुप्ता की जर्नी के बारे में। अभी तक हम अमन गुप्ता की जर्नी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर एक आइडिया ने धीरे धीरे एक बड़े ब्रांड का शेप लेना शुरू किया था। अब तक हमने जाना कि अमन गुप्ता का बैकग्राउंड फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ा था। उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव किया। लेकिन अब सवाल ये है कि बोट का आइडिया आया कहाँ से। दोस्तों सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया अक्सर हवा में से नहीं आते, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम, नीड या फिर किसी गैप को ऑब्जर्व करने से आते हैं। और अमन गुप्ता और उनके बिजनेस पार्टनर समीर मेहता ने भी मार्केट में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी को नोटिस किया। उस टाइम इंडिया में हेडफोन्स, ईयरफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का मार्केट ग्रो कर रहा था अभी, लेकिन कंज्यूमर्स के सामने एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। एक तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स थे जिनके प्रोडक्ट्स काफी एक्सपेंसिव हो सकते थे और दूसरी तरफ था अफोर्डेबल ऑप्शंस, लेकिन उनमें डिजाइन और ब्रांड अपील्स हर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। यहीं से एक सिंपल थॉट सामने आया कि क्या इंडियन कंज्यूमर को ऐसा प्रोडक्ट दिया जा सकता है जो अफोर्डेबल भी हो, स्टाइलिश भी हो और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करे। और इसी थॉट ने बोर्ड की फाउंडेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2016 में अमन गुप्ता ने और समीर मेहता ने बोर्ड की शुरुआत की, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने पर नहीं था। उन्होंने समझा कि आज के यंग कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो एक्सपीरियंस, डिजाइन और आइडेंटिटी भी देखते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप कोई ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स खरीदते हैं तो क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है? नहीं ना, हम उसका डिज़ाइन देखते हैं, प्राइस देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, रिव्यूज़ भी चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है या नहीं। बोर्ड ने इसी कंज्यूमर माइंडसेट को समझने की कोशिश की। उन्होंने प्रोडक्ट्स को यंग जनरेशन की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पोजीशन किया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो म्यूजिक सुनने के साथ साथ स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सकें। और यहाँ से हमें सक्सेस मंत्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी वही होती है जहां आप दूसरों से पहले कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। दोस्तों कभी कभी हम भी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वही प्रॉब्लम देखकर सोचता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और बस यहीं से एक आम लोग में और एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और यही डिफरेंस एक नॉर्मल आइडिया और बिजनेस आइडिया के बीच होता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम अमन गुप्ता की जर्नी के साथ चल रहे हैं और अब तक हमने जाना कि बोट के आइडिया किस तरह मार्केट की नीड को समझने से निकला। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने एक सिंपल थॉट के साथ जर्नी को स्टार्ट किया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल हो, स्टाइलिश हो और यंग कंज्यूमर की नीड को समझे। लेकिन दोस्तों, एक प्रोडक्ट बनाना और एक ब्रांड बनना दोनों अलग चीजें होती है। अब बोट की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी यही है। सोचिए, मार्केट में हेडफोन्स और ईयरफोन्स पहले से अवेलेबल थे, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन की कमी नहीं थी, तो फिर बोट ने अपनी अलग जगह कैसे बनाई? इसका आंसर है ब्रांडिंग। जी हाँ, बोट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारे ईयरफोन्स खरीदो, उन्होंने यंग ऑडियंस की लाइफस्टाइल को समझना और अपनी कम्युनिकेशन को उसी के अराउंड बिल्ड किया। जी हाँ, म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग, कॉलेज लाइफ, ये सब यंग जनरेशन की डेली लाइफ का पार्ट है। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को इन्हीं एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट किया और यहीं से बोट एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से धीरे धीरे यूथ लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में आइडेंटिफाई होने लगा। दोस्तों, ब्रांडिंग का सिंपल मतलब सिर्फ एक लोगो या फिर एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, बल्कि ब्रांडिंग का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपना नाम सुनते ही एक पर्टिकुलर फीलिंग या फिर इमेज को इमेजिन करने लगे। जैसे बोट का नाम आते ही लोगों के माइंड में यंग, स्टाइलिश और ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक्स की इमेज आ जाती है। इसके लिए कंपनी ने सोशल मीडिया को भी इफेक्टिवली यूज किया है। यंग ऑडियंस जहां एक्टिव थी, ब्रांड भी वहीं प्रेजेंट रहा। सेलिब्रिटीज, एथलीट्स, इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन ने भी ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाने में रोल प्ले किया। और अब यहां एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? मुश्किल है ना, क्योंकि जब लोग जानेंगे ही नहीं तो उसे खरीदेंगे कहाँ से। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बोट ने इसी चीज को सीरियसली लिया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूप में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के पार्ट के रूप में प्रेजेंट किया। आपने नोटिस किया होगा कि आज यंग कंज्यूमर्स के लिए ईयरफोन सिर्फ म्यूजिक सुनने का डिवाइस नहीं है, वो वर्कआउट के टाइम भी उसे यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी यूज होता है, ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग में भी उसे यूज करते हैं और कभी कभी फैशन एक्सेसरीज की तरह भी कैरी किया जाता है। बोट ने इसी चेंजिंग लाइफस्टाइल को अपने फेवर में यूज किया। और यहाँ से हमारे आज के सक्सेस मंत्रा का एक और इम्पोर्टेंट लेसन निकलता है कि अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में एंट्री दे सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको मार्केट में आइडेंटिटी देता है। वक्त हो गया है इसी के साथ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए सक्सेस जर्नीज, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उनकी जर्नी से, और आप भी सोचते हैं कि यार अगर ये इंसान कर सकता है, अगर इसके पास कुछ नहीं था इसने फिर भी कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों हम आज जो चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है अमन गुप्ता। जी हाँ, अमन गुप्ता एक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया। और दोस्तों अब तक हमने अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं। हमने जाना कि एक मार्केट नीड से आइडिया कैसे निकला, और फिर एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूथ फोकस ब्रांड बनाने पर फोकस कैसे किया गया। लेकिन दोस्तों एक बात हमें अक्सर सक्सेसफुल पीपल की स्टोरीज में भूल जाते हैं कि हम उनकी सक्सेस देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। आज बोट एक वेल नोन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, लेकिन जब कोई कंपनी शुरू होती है तब उसके पास आज जैसी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती। मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है, कंज्यूमर के ट्रस्ट को जीतना पड़ता है, और हर स्टेप पर कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। अमन गुप्ता और समीर मेहता के सामने भी ये चैलेंजेस थे। मार्केट में ऑलरेडी कई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मौजूद थे, ऑलरेडी कंज्यूमर्स के पास मल्टीपल चॉइसेस भी थी। ऐसे में एक न्यू ब्रांड के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि कंज्यूमर हमें क्यों चूज करेगा, और इसका आंसर सिर्फ एक लो प्राइस नहीं हो सकता। अगर आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो कंज्यूमर को वैल्यू देनी पड़ती है। बोट ने अफोर्डेबिलिटी के साथ डिजाइन, फीचर और यूथ फोकस ब्रांडिंग पर भी फोकस किया, मतलब कंज्यूमर को ये फील हो सके कि उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बल्कि उसकी नीड और लाइफस्टाइल को समझने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में हर डिसीजन परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी तो प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, कभी कभी तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती, और कभी कंपटीशन टफ हो जाता है, और कभी ग्रोथ के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी सॉल्यूशन को ढूंढना, और यही थॉट हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं ना। आप जॉब में किसी अपॉर्चुनिटी के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, क्या आपका करियर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या आपका ड्रीम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फेलियर एक रिजल्ट हो सकता है, लेकिन फेल

ऐसा कौन सा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि अब मुश्किल है लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं किया? अगर आप रेडियो के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपने आंसर को ना दिल में जरूर याद कीजिए, और कभी कभी हमारी अपनी जर्नी भी किसी और के लिए सक्सेस मंत्रा बन सकती है, और आप इसे हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम इसे दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो हमारा नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 पर, इस पर हमें मैसेज करके या कॉल करके हमें अपनी जर्नी बताइएगा, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपके साथ भी ऐसा हुआ हो पर आपने कभी हार नहीं मानी, तो हमें अपनी जर्नी को शेयर कीजिएगा, हम भी इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel like.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ। और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा, और अब हम अपनी कहानी के ऑलमोस्ट लास्ट फेस में पहुंच चुके हैं। अब तक हमने अमन गुप्ता की जर्नी, बोर्ड की आइडिया, ब्रांडिंग और बिजनेस चैलेंजेस के बारे में बात की। लेकिन दोस्तों, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है?

उनका माइंडसेट। जी हाँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत लोगों को दिखती है लेकिन हर कोई उस अपॉर्चुनिटी पर काम नहीं करता। अमन गुप्ता की इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि कस्टमर को समझने की कोशिश करिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्या बनना है, बिजनेस का मतलब ये है कि कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए। बोर्ड के केस में यंग कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल को समझना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, जैसे कि म्यूजिक, फिटनेस, ट्रेवल, गेमिंग और एवरीडे लाइफस्टाइल। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट और ब्रांडिंग को पोजीशन किया गया, यानी पहले कस्टमर को समझो फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचो। दोस्तों, ये लेसन हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि एग्जाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी ऑडियंस को समझिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझिए। जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ लेते हैं सॉल्यूशन ढूंढना इजियर हो जाता है। अमन गुप्ता की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बल्कि अपने काम को सही तरह से कम्युनिकेट करना भी इम्पोर्टेंट है। और अमन गुप्ता को हमने शार्क टैंक इंडिया के थ्रू भी देखा है। जी हाँ, शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसे आपने देखा है, आप इन्हें जानते हैं, टेलीविजन पर आपने इन्हें देख रखा है। एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक इंडिया जिसमें आपने इन्हें देखा है, जहाँ पर ये एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चंस फेस करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं। इससे एक सिंपल लेसन मिलता है कि अपने आइडिया पर कॉन्फिडेंस रखिए लेकिन क्वेश्चन से डरिए मत, क्योंकि क्वेश्चन हमें अपनी वीकनेस समझने का चांस भी देते हैं। और दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेना नहीं होता है, बल्कि कभी डिसीजन आपका सही होगा और कभी गलत होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने डिसीजन से क्या सीखा है और नेक्स्ट स्टेप हम उससे सीख कर क्या बेटर बनाने वाले हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या सेल करना चाहेंगे? फूड, फैशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या कोई ऐसी सर्विस जो लोगों की डेली लाइफ को इजी बना सकें? एक मिनट के लिए सीरियसली सोचिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करना चाहेंगे। नंबर बहुत ही आसान है हमारा 8010781078 पर। और फिर अपने आप से एक सवाल पूछेगा कि मेरा आइडिया लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। बस यहीं से एंटरप्रेन्योरशिप की थिंकिंग आपके दिमाग में ना खुद आने लगेगी, आप खुद उसे सोचना शुरू कर देंगे। अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पेशेंस और कंटिन्यूस लर्निंग होती है। तो आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, आइडिया सबके पास हो सकता है लेकिन उस आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए एक्शन जरूरी है। और अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम अपने सफर के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं। पिछले सेगमेंट्स में हमने अमन गुप्ता की जर्नी को अलग अलग एंगल से समझा, एक फाइनेंस प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन, बोर्ड का आइडिया, यंग कंज्यूमर्स को समझना, ब्रांडिंग, कॉम्पिटिशन और चैलेंजेस। हमने इस जर्नी के कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखे हैं, लेकिन अब सवाल है कि इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीखते हैं। तो चलिए अमन गुप्ता और बोर्ड की जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार फिर से। पहला मंत्र है अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। जी हाँ, बोर्ड की जर्नी हमें बताती है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तब भी हो सकती है जब ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हो, बस उसे पहचानने की जरूरत है। दूसरा मंत्र है रिस्क लेने से मत डरिए। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे कैसे। तो इसलिए जब कुछ आए ना दिमाग में, उस पर काम करना और सोचना शुरू करिए और उस पर एक्शन लेना शुरू करिए, देखिए जरूर होगा। तीसरा मंत्र है कस्टमर को समझिए। जी हाँ, जब तक आप कस्टमर की नीड को नहीं समझेंगे ना, जब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो आप सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। चाहे आप बिजनेस करें या फिर अपने करियर में ग्रो करें, सामने वाले की नीड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा मंत्र है सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। जी हाँ, प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन जो ब्रांड होता है, जो आइडेंटिटी होती है, वो आपको कुछ ही चीजों की मिलेगी। क्योंकि हम किसी भी चीज को ना उसके ब्रांड से, उसकी इमेज से ही याद रखते हैं कि वो क्या चीज है, क्या करता है और उसकी क्या जरूरत है हमें। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करिए। पांचवा मंत्र है कि फेलियर से सीखिए। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि फेलियर आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके बोलते हैं कि अब नहीं हो पाएगा, पर नहीं, फेलियर आएंगे और वो शायद आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ना आगे बढ़ते रहना है, कभी उससे डरना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। एक दिन का मोटिवेशन आपको शायद स्टार्ट करा सकता है, लेकिन रेगुलर एफर्ट्स आपको डेस्टिनेशन तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ना उसके ऊपर काम करिए, आप देखिए वो चीज आपको जरूर मिलेगी जो भी आप करना चाहते हैं। छोटा स्टार्ट कीजिए, उससे सीखिए, गलती कीजिए, इम्प्रूव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रांग माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और अपने आइडिया पर बिलीव आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजी स्नेहा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जिसमें अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगी कि सपना चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे रियलिटी बनाने की पहली स्टेप जो होती है वो हमेशा आपको ही लेनी होती है। तो इसलिए उस स्टेप को लीजिए और लाइफ में कुछ करिए, आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए खुद पर ना भरोसा करिए, पॉजिटिव रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप जरूर लीजिए। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, पर आप जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
2: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मानोरचना 107.8 FM, जो आपसे कहता है फील गुड फील लाइव। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक खुशहाल खैरियत से होंगे। अगर अपना हालचाल हम लोग बताएं और जस्ट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ भी सब ठीक है। बाकी ये शो हमारा होता है स्टार्टअप बेस्ड एक शो। इसमें हम लोग बात करते हैं ओवरऑल एक पूरे प्रोसेस की। हम लोग एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रांड की तरफ चलते हैं। पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, सो दैट कि आप ज्यादा फेमिलियर हो सके उस एक चीज से, आपको प्रोसेस के बारे में पता लगे, फाउंडर्स के बारे में पता लगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझ पाए। सो अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या जस्ट इन केस इफ यू आर स्टडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, तो उसमें आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि इट टेल्स यू अबाउट एंटायर थिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो या दैट्स हाउ दिस शो इज रियली इंपॉर्टेंट। और यहाँ आप साथ साथ आपको ये भी पता लगता है कि भैया कौन कौन वो लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम ये बात बोल पाते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। करेंगे डिस्कशन कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री में डील करती है, लेकिन ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद शो में आगे बात होगी। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

उम्मीद कर रहा हूँ गाने पसंद आए। अब इसी के साथ अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी इंडस्ट्री है वो है फिनटेक। फिनटेक दो वर्ड से मिलाकर के एक वर्ड बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फिनटेक जो इंडस्ट्री है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप मोटे मोटे तौर पर ये लगा लीजिए कि एक अम्ब्रेला, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके नीचे बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं, फिर उनमें कंपनीज जो हैं वो फॉल करती हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पेमेंट्स होते हैं, लैंडिंग होती है, इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग वर्टिकल हो जाता है इंश्योर टेक नाम से, इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम वेल्थ टेक बुलाते हैं, बैंकिंग होती है, खासतौर पर नियो बैंकिंग जो हम बोल रहे हैं, एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो मोटा मोटा ओवरव्यू ये है कि एक अम्ब्रेला टर्म है फिनटेक, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फॉल करती हैं। उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि सब इंडस्ट्रीज हैं। अगर 2025 के आंकड़े को देखें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर USA एंड UK। ठीक है, जो इंडियन फिनटेक मार्केट है उसकी वैल्यू है समवेयर अराउंड $100 बिलियन। और ये 2027 तक, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, $150 बिलियन तक पहुंच सकती है। जो इसका ग्रोथ रेट है, ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। जहां पर आप ये देख सकते हैं अच्छा खासा कि इंडिया में ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं और जो अलग अलग सेगमेंट्स में डील करते हैं। पेमेंट्स में अलग होते हैं, इंश्योरेंस में अलग हैं, पर्सनल फाइनेंस में अलग हैं, लैंडिंग में अलग हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और इसमें आप किसी भी कंपनी को जानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गूगल पे इसमें फॉल करता है, पेटीएम इसमें फॉल करता है, और मतलब ये जो इंडिया में डील करते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज इंडिया की नहीं है बट स्टिल इंडिया में ऑपरेट करते हैं और हम डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करते हैं। एक्को जैसी कंपनीज इसमें फॉल करती हैं। ये सब कुछ फिनटेक का पार्ट है, यानी कि हमारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ये। तो आज हम इस इंडस्ट्री को समझेंगे, उसके बाद बताएंगे आज हम कंपनी कौन सी लेकर आए हैं आपके लिए। पर अभी फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बताएंगे ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में कि किन किन ड्राइवर्स के आधार पर या कौन कौन से वो की पॉइंट्स हैं जिनके बलबूते पर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी बनी है, सो दैट आपकी हेल्प हो थोड़ी सी इंडस्ट्री को और अच्छे से समझने में और थोड़ा उसको डीकोड करने में। लेकिन फिलहाल मजा लें गानों का और जुड़े रहें हमारे साथ।

वेलकम बैक, मैं आरजी सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM। यहां पर हम आज की जो इंडस्ट्री आपको समझा रहे हैं वो है फिनटेक, और इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो पहला ग्रोथ ड्राइवर है UPI, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आमतौर पर हम सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमें किराने का सामान खरीदना हो, सब्जी खरीदनी हो, या किसी मॉल में शॉपिंग करनी हो, UPI हम लोग यूज करते हैं। और मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि भारत जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड फिनटेक इनोवेशंस में कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड। एज ऑफ अप्रैल 2025 UPI ने 12 बिलियन ट्रांजैक्शंस पर मंथ जो है हैंडल करी हैं, इनफैक्ट 12 बिलियन से भी ज्यादा। और इस ट्रांजैक्शन की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, इट इज मोर देन 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हमने खाली UPI के थ्रू की है। UPI जो है इंडिया से स्टार्ट हुआ, बट अभी काफी सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। सिंगापुर ने अडॉप्ट किया है, UAE ने अडॉप्ट किया है, फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया है, और ये भारत का जो डिजिटल फाइनेंस डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक ऐसी चीज जो बहुत काम की है, बहुत कारगर है, और इतना स्मूथली ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इसको अडॉप्ट कर चुकी हैं अभी तक, और इसकी काफी तारीफ होती है। सो UPI एक बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत बड़ा की ड्राइवर है अगर हम ग्रोथ की बात करें। इनफैक्ट हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो तक UPI यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, या जिसने सबसे ज्यादा पुश किया है इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में, इट इज UPI। दूसरा फिर इसमें आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। काफी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लाइक डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आधार एंड इंडिया स्टैक। इन्होंने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया। सरकार का भी बहुत अहम योगदान है इसमें, बहुत अहम रोल रहा है, बहुत भूमिका रही है, तभी जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। इसी के साथ RBI की तरफ से भी कुछ रेगुलेटरीज एंड पॉलिसीज जो हैं बनाई गई हैं, SEBI की तरफ से बनाई गई हैं, IRDA की तरफ से बनाई गई हैं, NPCI की तरफ से बनाई गई हैं, जो इन्वेस्टर्स को एंड जो इनोवेटिव माइंड्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देता है कि सरकार हमें सपोर्ट करती है, अथॉरिटीज हमें सपोर्ट करती है, गवर्निंग बॉडीज हमें सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए वो निश्चिंत रहते हैं। सो या दिस इज सो अमेजिंग कि सरकार भी इतना प्रमोट कर रही है, हमारी अथॉरिटीज को पुश कर रही है, और ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टर्स को भी ट्रस्ट है, लोगों को भी ट्रस्ट है। सो या दैट्स हाउ इट इज ग्रोइंग। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको और कुछ चीजों के बारे में जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर पाई। बट कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। नाउ बिना किसी देरी के अपने शो को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हूँ सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और आज जो इंडस्ट्री हम आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज फिनटेक। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही हैं या हमें सुविधा प्रदान कर रही हैं, किसी भी तरीके से हम उनको यूज कर रहे हैं। तो दो हमने अभी तक समझे जो बहुत मेजर फैक्टर रहे हैं इसकी ग्रोथ में, UPI एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। थर्ड आता है मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन। अगर आप देखेंगे सो ओवर 850 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसमें अगर आप आंकड़ा देखें स्मार्टफोन का फिल्टर लगाएंगे तो 650 मिलियन से ज्यादा जो हैं वो खाली स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और जो रूरल इंडिया है वो भी एक मेजर यूजर बेस बना है डिजिटल पेमेंट्स एंड बैंकिंग के लिए। और मैं हर बार ये बात बोलता हूं जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं कि अगर किसी भी चीज का आपको ये देखना है कि वो कितने काम की है या वो कितनी जिंदगियों में पहुंच चुकी है या सही मायने में वो एक कामयाब प्रोजेक्ट है या नहीं, तो उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आप रूरल इंडिया विजिट करिए और वहां पर अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मींस हमारा मॉडल सक्सेसफुल है। और ये हो पाया है UPI के केस में। इनफैक्ट गांव में जो लोग जाते हैं ना सब्जी बेचने के लिए या और भी कोई चीज बेचने के लिए, उन तक के पास QR कोड्स होते हैं, गांव के लोग भी स्कैन करके पेमेंट्स कर देते हैं। मैं वो कह रहा हूं कि गांव में

टेक से भी जो ऑडियंस होती है वो डिजिटल जो वर्ल्ड होता है उससे काफी यू नो अट्रैक्टेड होती है, उसको पसंद करती है। इसीलिए डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें बढ़ोतरी दिखाई दी। और लास्ट इसमें ग्रोथ ड्राइवर का मैं रीजन डेफिनेटली बताऊंगा COVID-19 बूस्ट को। भाई पैंडेमिक ने काफी कुछ बदला हमारी जिंदगी में, एक मासिव शिफ्ट हमें दिखाई दिया फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स की, हमें ऑनलाइन लर्निंग दिखाई दी, हमें और बहुत सारी ऐसी कंपनीज दिखाई दी जो आई और लोगों ने ट्रस्ट किया उनके ऊपर। क्योंकि उस टाइम पर यह हो रहा था आप किसी चीज को टच नहीं कर सकते, हर चीज को आप एक यू नो डाउटफुल नजर से देख रहे थे। सो या COVID-19 ने भी काफी पुश किया इस एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में। अब ये हुई दोस्तों ग्रोथ ड्राइवर्स की बात, हमने 5 ग्रोथ ड्राइवर यहां पर आपको बताई, UPI, गवर्नमेंट सपोर्ट, मासिव स्मार्टफोन एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड COVID-19 बूस्ट। अब इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। आगे आपको बताएंगे सेगमेंट्स के बारे में, काफी सारे सेगमेंट्स हैं इसमें जो हमने यहां पर डिस्कस भी किए थे, उसको डिस्कस करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, फील गुड फील लाइव।

मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ, शहर फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दोस्तों, इस शो में हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में, पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। फिलहाल जिस इंडस्ट्री को आपको हम समझा रहे हैं अच्छे से, ये इंडस्ट्री है फिनटेक। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं थोड़ा सा। पहला सेगमेंट आता है पेमेंट्स, ठीक है। इसमें मेजर प्लेयर्स हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे। ये होते हैं डिजिटल वॉलेट्स या QR बेस्ड UPI। दूसरा आता है लैंडिंग टैग, जिसमें आपको दिखाई देता है क्रेडिट बी, कैश ई, जेस्ट मनी, पे यू, स्लाइस, जिसमें आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। तीसरा आता है वेल्थ टैग, जिसमें ये कंपनीज फॉल करती हैं लाइक जेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी एंड सो ऑन। इसमें आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है, दैट इज इंश्योरटेक। इसमें आता है पॉलिसी बाजार, एको, डिजिट, वन अश्योर। इसमें आपको डिजिटल इंश्योरेंस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी सुविधाजनक हो गया है। पहले क्या हुआ करता था कि शॉप्स हुआ करती थी लोकल ऑफलाइन मार्केट में, आप उनके पास जाते थे, उनको जहां से कमीशन मिलता था वो वही इंश्योरेंस आपको दिखाते थे, तो इसलिए बहुत सारी डील्स हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहुंच सकती थी और हमारे को शायद पसंद आ जाती, बट वो नहीं पहुंच पाई किसी कारणवश। इसलिए अभी जब डिजिटल हुआ सब कुछ, तो इन चीजों ने, इन कंपनीज ने काफी हेल्प की हमारी, और अब हम पैसे भी बचाते हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चूज करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिनटेक सेगमेंट आता है नियो बैंकिंग, लाइक जुपिटर, फी, नियो, ओपन। ये डिजिटल ओनली बैंक्स होते हैं जहां पर कोई आपको फिजिकल ब्रांच नजर नहीं आती है, बट आपका एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद लास्ट जो फिनटेक सेगमेंट आता है, दैट इज रेगटेक, जिसमें कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो साइनजी, IDFI, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करती हैं रेगुलेशंस जो हैं वहां पर कंप्लाई करने के लिए बाय यूजिंग AI एंड ब्लॉकचेन। तो ये बहुत स्मार्टली इसको डिजाइन किया गया है, स्मार्टली स्ट्रक्चर्ड एक इंडस्ट्री है जिसमें सेगमेंट वाइज चीजें बनाई हुई हैं ताकि स्मूथ ट्रांजैक्शंस होती रहें, ताकि सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो पेमेंट वाला जो फंडामेंटल है उसमें आपको मेजरली दिखाई देंगे लोग जो यूज करते हैं, तो पेमेंट्स के लिए अलग से एक सेगमेंट है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। लैंडिंग के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। वेल्थ टेक के लिए अलग है, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। इंश्योरेंस टेक जो है उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस अलग हैं। सो लाइकवाइज इस सारे सेगमेंट्स के अलग अलग पॉलिसीज बनाई हुई हैं ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथ रहें, कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कैम ना हो किसी भी तरीके का। सो या दीज आर द सेगमेंट्स। लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है फिनटेक इंडस्ट्री, आज हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आप इतना समझ पाए हैं कि आप जो इन्वेस्ट करते हो और आप जो पे करते हो, आप जो लोन लेते हो, आप जो इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको इतना पता है कि एटलीस्ट ये फिनटेक में फॉल करती हैं सारी चीजें। आगे फर्दर कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, उसके बाद कंपनी के बारे में बात करेंगे। पर कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील दैट।

देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं फिर एक बार यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये म्यूजिकल ब्रेक पसंद आया। अपने शो को अब आगे लेकर चल रहे हैं हम। फिनटेक हमारी आज की इंडस्ट्री है, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। मैं हूँ सागर और इस टाइम आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। फिनटेक में अगला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ की ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो भी देखिए, बाय नाउ पे लेटर, BNPL, इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी क्रेडिट बेस्ड कन्वीनियंस जो मॉडल है उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसीलिए ये एक नई इंडस्ट्री उभर के सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया भी था, जो लैंडिंग टैक होते हैं, जो आपको पर्सनल लोन दे सकते हैं, लाइक पे यू, स्लाइस, कैश ही, क्रेडिट भी। इसके बाद आता है डिजिटल लैंडिंग रेगुलेशंस। RBI ने नई गाइडलाइंस जो है वो इम्प्लीमेंट की हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रह सके और किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई पैसा ले रहा है तो किसी भी तरीके का कोई स्कैम ना हो, कोई इशू ना हो, कंपनी झूठ ना बोले, क्लाइंट झूठ ना बोले, इस तरीके से गाइडलाइंस है वहां पर। थर्ड आता है यहाँ पर एम्बेडेड फाइनेंस। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन्होंने इंटीग्रेट की हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ओला ऑफर करती है आपको माइक्रो लोन्स, ठीक है। तो ये काफी अमेजिंग पार्ट है कि आप अगर वो कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, पैसे नहीं है आपके पास, आप माइक्रो लोन वहां पर ले सकते हैं। एंड फर्दर इसमें आप डीप डाइव करके समझ सकते हैं माइक्रो लोन्स होते क्या है। बट फिलहाल ये एक अलग सा ट्रेंड हमें दिखाई दिया है जिसको कंपनीज ने इनिशिएट किया है और ये बखूबी लोगों ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद आता है AI and ML, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन रिस्क असेसमेंट। हमारे एल्गोरिदम्स काफी एडवांस हो गए हैं, जिसमें अंडरराइटिंग जो है वो की जाती है, फ्रॉड डिटेक्शन किया जाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है लोन लेने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉड करने का कोई इंसान सोच रहा है, तो इसलिए अंडरराइटिंग की जाती है, अच्छे से समझा जाता है, पूरी प्रोफाइलिंग की जाती है। तो इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में नई नई चीजें निकल के सामने आई हैं, जो हम कहते हैं कि काफी इंप्रूव हुई हैं चीजें, काफी स्मूथ तरीके से ट्रांजैक्शंस हो पा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लॉकचेन एक्सपेरिमेंट्स। RBI ने डिजिटल रूपी पायलट एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव जो है वो लिए, जिसने रीडिफाइन किया हमारे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को। तो ये RBI के इनिशिएटिव है, RBI काफी मदद कर रहा है। RBI आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो RBI इज द मेजर बैंक जो सारे बैंक्स के पीछे होता है। अगर कभी कोई ग्रीवेंस होता है या बैंक के लेवल पर कोई चीज एड्रेस नहीं हो पाती है तो लोग RBI तक जाते हैं और उनकी बात सुनी जाती है। इसलिए RBI बहुत अहम भूमिका निभाता है और बैंक्स के लिए सारी गाइडलाइंस जो बनाई जाती हैं वो RBI ही बनाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी बात आपको बताइए फिनटेक की आप समझ पाए हैं। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, मैं हूं सागर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप जुड़े हुए रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइव। हमारी इंडस्ट्री है आज की फिनटेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है। अब हम शो को आगे लेकर चलेंगे और आपको कुछ और चीजें बतानी है, और उसके बाद हम कंपनी की तरफ चलेंगे। तो अब तक देखिए, सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी, ग्रोथ ड्राइवर्स मैंने आपको बता दिए, की सेगमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ट्रेंड्स और इनसाइट्स कुछ आपको दे दिए। थोड़ा सा ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड नंबर पे आती है ग्लोबली। अगर हम देखें तो फिनटेक स्टार्टअप्स में हम बस US एंड UK से पीछे हैं। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, जहां पर 46% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है 2022 में वो केवल इंडिया से हुई है। वहीं पर अगर हम इंडियन फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात करें, मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, उसमें कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, लाइक रेजर पे उसमें है, फोन पे उसमें है, पेटीएम उसमें है, क्रेड उसमें है, ग्रो उसमें है, पाइन लैब्स उसमें है, ज़ेरोधा उसमें है, और ये बहुत लंबी लिस्ट है। और यकीन मानिए, यूनिकॉर्न बनाना इज नॉट एन इजी थिंग, है ना। देन उसके बाद हम बात करें अगर UPI मॉडल की, तो उसको काफी सारी कंट्रीज में स्टडी भी किया जा रहा है और इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, या फिर उससे इंस्पायर होकर सिमिलर सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं UK में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में। और इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि सिंगापुर में इसको ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, UAE में इसको यूज किया जा रहा है, फ्रांस में इसको यूज किया जा रहा है, और जहां पर यूज नहीं किया जा रहा है वहां पर सिमिलर मॉडल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के आधार पर देखा जा सकता है कि फ्यूचर आउटलुक जो है इंडिया का फिनटेक का बहुत अच्छा है, जहां पर ये माना जा रहा है कि इंडिया का जो फिनटेक रेवेन्यू है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2030, समवेयर अराउंड $400 बिलियन। Tier 2 and Tier 3 जो सिटीज हैं वो मेजर प्लेयर्स बनते हैं इन फिनटेक कंजम्पशन हब्स, वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देगा। बैंक्स और फिनटेक्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है उससे काफी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इनोवेशन हमें दिखाई दे रहा है वहां पर अच्छा खासा। क्रॉस बॉर्डर फिनटेक है, ठीक है, जो हमने बताया UPI जो है वो मल्टीपल पार्टनरशिप्स कर रहा है ग्लोबल पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि और स्मूथ हो जाए चीजें अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन पाइपलाइन और जिनके ऊपर काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक जितनी चीजें आपको बताई हैं समझ पाए हैं आप, और काफी हद तक आप फेमिलियर हैं फिनटेक इंडस्ट्री से। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको बतानी है, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद फिर फर्दर बात करेंगे कंपनी की। तो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: तो जरा ओढ़ो हो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं आरजे सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव। फिनटेक हमारी इंडस्ट्री है और इस टाइम हम लास्ट सेगमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और लास्ट हमारा जो सेगमेंट है दैट इज चैलेंजेस। कितना स्मूथ सब कुछ नहीं होता है, कुछ चैलेंजेस हैं और जो हर चीज के साथ होते हैं, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर जो चैलेंजेस उनकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला, जब भी हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठ के सामने आता है, और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनको शायद टाइट करने की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा काफी बार हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, काफी सारे स्कैम्स हुए हैं और जो आम हो चुके हैं हमारे जीवन में, इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है हमारे सामने। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने फाइनेंसिस को मैनेज कैसे करना है, इसलिए फाइनेंस मैनेज करना हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो एडल्ट हो और जब उसके पास पैसे हो, कमाने लगे, वो ट्रांजेक्शन करने लगे, तो उसको पता हो अच्छे से कि कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कितना यूज करना है। वहीं पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से थोड़ा सा मोनोपोली जैसा सिनेरियोस कुछ कुछ इंडस्ट्री में दिखाई देता है, जो सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कुछ बिग प्लेयर्स हैं, सिर्फ उनके ऊपर निर्भरता है और उनकी लगभग लगभग सिमिलर फी होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, तो ज्यादा विकल्प बच नहीं पाते हैं। हालांकि नए नए स्टार्टअप जो है वो आ रहे हैं, मैं ये भी कहूंगा कि हमारे बीच में भी कुछ गैप्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। एंड उसके बाद लास्ट इसमें चैलेंज जो आता है वो है रेगुलेटरी बैलेंस। एक बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाता है ये, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी इंडस्ट्री फिनटेक। अभी उम्मीद कर रहा हूं यहां का 360 डिग्रीज एक पर्सपेक्टिव आपको मैं दे चुका हूं। अब लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे आज की कंपनी की। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं सागर और शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। फील गुड फील लाइफ।

आशा करता हूँ अभी तक इंडस्ट्री को समझ गए हैं, म्यूजिकल वाइब पसंद आ रही है। बिना किसी देरी के शो को आगे लेकर चलेंगे। आज का हमारा ब्रांड है जो फिनटेक में डील करता है, उसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी एक इंडिया का लीडिंग कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर न्यू एज डिजिटली नेटिव जो बिजनेसेस हैं, जैसे ई कॉमर्स ब्रांड्स हो गए या D2C जो ब्रांड्स होते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर स्टार्टअप्स हो गए, उनको एम्पावर करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कंपनी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में SaaS बुलाते हैं, वो ब्रांड्स हैं, या इनफैक्ट किसी का अगर रेस्टोरेंट भी है, उनको एम्पावर करने का काम करता है ये वाला एक प्लेटफॉर्म। 2020 में ये ब्रांड स्टार्ट हुआ वेलोसिटी, और ये जो है हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प्स इन सो मेनी वेज, लाइक इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन डिल्यूटिव फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, मीनिंग आपको जो है कैपिटल मिल जाएगी विदाउट इवन गिविंग अप द इक्विटी। यानी कि जो शार्क टैंक में हमने देखा है कि इतने प्रतिशत इक्विटी के बदले इतना पैसा मिलेगा, तो इक्विटी दिए बिना भी आप यहां से फंड रेज कर सकते हैं। सो या दिस इज द फाइनेंशियल पार्टनर। आई मीन टाइम बहुत चेंज हो चुका है, अभी कितने सारे ऐसे स्टार्टअप आ गए हैं जो काम ये करते हैं कि बाकी स्टार्टअप्स को एम्पावर करता है। सो थिंग्स हैव शिफ्टेड अ लॉट डिफरेंटली, और ये काफ़ी अमेजिंग पार्ट भी है कि हम लोग काफ़ी नए नए इनोवेटिव तरीके जो हैं वो लेकर के आ गए हैं। आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। यहाँ पर 400 करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन हुआ है इकलौते 2024 के फेस्टिव सीजन में। ब्रांड्स लाइक Amazon, Flipkart एंड क्विक कॉमर्स जाइंट्स लाइक Blinkit, ये बहुत तेजी से और बहुत फास्ट पेस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं। सो दे हैव रेज 30.3 million US dollars इन फंडिंग एंड आर ट्रस्टेड बाय ओवर 4,000 ब्रांड्स। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल, बिकॉज ये एम्पावर करता है बाकी अदर स्टार्टअप्स को, एम्पावर करता है बाकी तमाम ब्रांड्स को जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। इवन इफ यू आर नॉट विलिंग टू गिव द इक्विटी, यू कैन स्टिल रेज द मनी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है यहाँ पर और काफी सारे मॉडल्स इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट कि इंडिया में हमने ऐसे ब्रांड्स भी बनाए हैं जो बाकी ब्रांड्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं और उनको स्केल अप करने में मदद कर रहे हैं। सो या दिस इज वेलोसिटी। ऑन दिस नोट लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे हाउ इट स्टार्टेड, हु आर द फाउंडर्स, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडर्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक।

फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई होगी। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम आगे लेकर चलेंगे। मेरा नाम है सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। हम जिस ब्रांड की आज बात कर रहे हैं उसका नाम है वेलोसिटी। ये ब्रांड स्टार्ट हुआ 2020 में। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन की वजह से बंद थी अपने घरों में, और इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। मतलब लिटरली इट वॉज बूमिंग। ये टाइम था वो D2C ब्रांड्स जो हैं वो लिटरली लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी निकल के आ रहे थे, और इतने सारे ब्रांड्स हमने स्टार्ट होते हुए देखे। लेकिन एक कैच है यहाँ पर कि जब आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई स्टार्टअप चलाते हो, सो यू नीड कैपिटल, राइट? यू नीड कैश। ट्रेडिशनल बैंक्स की अगर आप बात करेंगे बहुत स्लो प्रोसेस होता है। वेंचर कैपिटल, वहां पर आपको इक्विटी देनी होती है, स्टेक पे लगानी होती है। बट यहाँ पर स्टार्ट हुई ये कंपनी जिसका नाम है वेलोसिटी, बेंगलुरु में स्टार्ट हुई, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसी एक प्रॉब्लम को, इसी प्रॉब्लम पार्ट को फिक्स करने के लिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया ये ब्रांड इस मिशन के तौर पर, लेट्स एम्पावर द अदर स्टार्टअप्स एंड उनकी चिंता को थोड़ा कम करते हैं। सो ये जो है रिवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग इन्होंने देनी स्टार्ट कर दी। एक ऐसा मॉडल जहां पर जो रीपेमेंट है वो आपकी बिजनेस की सेल्स से जुड़ी हुई है, दैट मींस ग्रो बिग पे फास्टर। ठीक है, ये इनका एक कोर फंडामेंटल था और ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। आई डोंट नो आप में से कितने से लोग हैं जिनका स्टार्टअप है, जो फैमिलियर हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से, बट इफ यू आर द वन देन आपको पता होगा कि कितना क्रूशियल हो जाती हैं ये सारी चीजें। आई मीन टेक योर टाइम। अगर कोई भी ऐसा स्लो डाउन कोई प्रोसेस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि सेल अच्छी नहीं हो रही है, सो यू शुड टेक योर टाइम। जब से ये जो है स्टार्ट हुआ है, जब से इसको लॉन्च किया गया है, तब से इसने लिटरली बहुत एक्सपेंड किया है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स में इन्होंने जो है पैसा दिया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो AI पावर टूल्स बना रहे हैं। मतलब उस टाइम पर मैं बोलूंगा दैट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम, बट उस टाइम से ये एम्पावर करते आ रहे हैं। सो इट बिकेम काइंड ऑफ अ वन स्टॉप शॉप फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ। सो ये है हमारी आज की कंपनी वेलोसिटी। आशा करता हूँ अभी तक ओवरव्यू आपको मिल गया है, कैसे स्टार्ट हुई, कहानी क्या है, कब स्टार्ट हुई, ये सब आप जान पाए हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या वो आइडिया था। तो कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं था, बट हाँ बहुत छोटे से ये बात समझ में आ गई कि यार स्टार्टअप्स को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पर पूरी वेव आई हुई है, बट एट द सेम टाइम भैया बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो यहां पर इन्होंने ये सब करना शुरू किया और स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करना शुरू किया। सो ऐसे करके ये प्लेटफॉर्म जो है खड़ा हुआ और आज की रेट में काफी अच्छा खासा नाम है वेलोसिटी का, खासतौर पे जब आती है बात ई कॉमर्स ग्रोथ के ऊपर। तो ये है हमारी आज की कंपनी। अब लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव, आशा करता हूँ ये म्यूजिकल वाइब आपको पसंद आई। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शो का आगे लेकर चलेंगे। बात करते हैं फाउंडर्स की। भैया कौन है वो शार्प माइंड्स, कौन है वो ब्रिलियंट माइंड्स जिनके दिमाग में आइडिया आया? तो वो तीन नाम है, अभिरूप मेधेकर, अतुल खिचारिया एंड सौरभ स्वरूप। पहला नाम लेते हैं अभिरूप मेधेकर, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वेलोसिटी। पुणे के रहने वाले हैं, मतलब ही इज द विजनरी फोर्स बिहाइंड वेलोसिटी। इन्होंने प्रीवियसली काफी काम किया है, जैसे कि मैकिन्जी कंसल्टेंट एंड साथ साथ एलिवेशन कैपिटल। दैट मींस कि फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं। इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कह सकते हैं फ्रंट रो की सीट मिल गई इन्हें इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अगर आप इनकी बात करते हैं क्या विजन है इनका, सो ही सो एम्बिशियस। अपना इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता को प्रमोट करना है, बाकी ब्रांड्स को जो है अपलिफ्ट करना है। तो ये है इनका एक अल्टीमेट ड्रीम जो ये अभी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर अगर हम बात करें, 2024 में एक टेक एंड इनोवेशन सबमिट हुआ था, वहां पर उन्होंने बात बोली थी कि AI का बहुत बड़ा रोल है इनकी बिजनेस ग्रोथ में। ठीक है, जहां पर इन्होंने मैकिन्जी में जब काम किया तो वहां पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है सीखा था, और उसके बाद AI जब दुनिया में आया तो उसके बाद दोनों तीनों चीजों को इन्होंने मिला दिया वहां पर, एंड दैट्स हाउ दे आर ग्रोइंग। सो ये है वेलोसिटी के CEO मिस्टर अभिरूप मेधेकर। दूसरा नाम आता है अतुल खिचारिया। अतुल इज द ऑपरेशनल बैकबोन ऑफ वेलोसिटी। इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, इनके होम टाउन के बारे में, बट इनका एक्सपीरियंस एज अ फाउंडर बहुत कुछ बताता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए। इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने ब्रांड को स्केल अप करना है, और कैसे बाकी ब्रांड्स की हेल्प करनी है स्केल अप करने में। जो भी डिजिटल बिजनेसेस हैं उनकी कैसे मदद कर सकते हैं हम कि वो जो है अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा फोकस रहता है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक बहुत ट्रस्टेड नेम बन जाता है फॉर ओवर 4000 ब्रांड्स। एंड द थर्ड नेम इज सौरभ स्वरूप, को फाउंडर एंड CEO। भाई देखिए, डिजिटल एरा में किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, ई कॉमर्स के एरा में किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, टेक्निकल जो इंसान होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ही इज एग्जैक्टली द सेम पर्सन। He is also from Bengaluru startup seed. He is the tech wizard. Literally, जो Velocity का AI innovation है, जिस data set पर उसको train किया जाता है, जो भी changes की जरूरत होती है, वो सब ये करते हैं। इन्होंने past में भी जो है काफी tech solutions जो हैं build किए हैं, scale किए हैं, and he is really passionate about using AI. मतलब यहाँ पर नए benchmark set करने की, इन्हें एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ड्रीम लगा लीजिए या एक विश लगा लीजिए, बट इन्हें ये करना है और इनको बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे टूल्स बनाए हैं जो AI का क्वालिटी चेक भी करते हैं, मतलब नॉट जस्ट AI यूजिंग, सिंपली AI का क्वालिटी चेक भी किया जाता है। AI पावर्ड क्रेडिट एनालिस्ट जो है वो भी यहाँ पर इन्होंने बनाया है। सो दीज आर द ब्रिलियंट माइंड्स जो अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अलग अलग विजन लेकर आते हैं, बट सेम पीस पर जब आते हैं, एक ड्रीम के लिए काम करते हैं, एक ब्रांड के लिए काम करते हैं, सो इवेंचुअली वो बड़ा बनता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। और फिलहाल इसी नोट पर हम लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो चल रहे हैं यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानी कामयाबी की, और इस वक्त आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम के साथ। अब ये वेलोसिटी के की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहला है ह्यूज मार्केट अपॉर्चुनिटी। इंडिया का जो D2C एंड ई कॉमर्स मार्केट है, ये 2030 तक $250 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। दैट मींस कि जो भैया D2C ब्रांड्स हैं वो और तेजी से ग्रो करेंगे और निकल के आएंगे नए प्लेयर। दैट मींस सबको फंडिंग की जरूरत होगी, तो वहां पर ये ब्रांड आ जाता है। और अभी भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, एक पूरा दौर चल रहा है स्टार्टअप्स का। इसके बाद आता है AI एंड डाटा इनोवेशन। यहाँ पर AI पावर्ड क्रेडिट एनालिसिस एक टूल है इनके पास, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है वानी AI। ठीक है, जो यहाँ पर फाइनेंसिस को आपके थोड़ा फास्ट और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है, डील करता है, जो एनालाइज करता है कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर फाइनेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है तो। तीसरा भैया, किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए जरूरी होता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि आपको स्ट्रांग फंडिंग मिले। सेम इन्हीं के साथ है, तो इनके पास भी अच्छी खासी एक फंडिंग है, लेट्स नॉट गो देयर। फोर्थ आता है फाउंडर सेंट्रिक अप्रोच, क्योंकि फाउंडर्स जो हैं वो खुद टीम बिल्ड करते हैं, खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो खुद से नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, और खुद बहुत पैशनेट है इस एक चीज को लेकर, तो वो ये चीज इवेंचुअली एक बहुत बड़ी USP बन जाती है। उसके बाद इनका जो मेन फोकस होता है, दैट इज द फिफ्थ की ड्राइवर, और वो होता है कि 2024 में जो इन्होंने 400 करोड़ रुपए फेस्टिव सीजन में एलोकेट किया, उससे काफी ब्रांड्स जो हैं उन्होंने ग्रो किया, काफी पीक सेल साइकिल देखी, ब्रांड्स ने बूस्ट किया उनकी इन्वेंट्री, उनकी मार्केटिंग, हर एक चीज पर अच्छा खासा स्पेंड हुआ। और ये इन्होंने अब यहां से आप कह सकते हैं कि फेस्टिव फोकस्ड एक तरीके से एक साइकिल बनानी शुरू करी है। दैट्स व्हाट मेक्स दिस ब्रांड सो स्पेशल। सो या, दीज आर द की ड्राइवर्स, और आप कह सकते हैं कि जो इस ब्रांड को बहुत खास बनाते हैं, ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड वेलोसिटी। So, हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास है। अगर आप अभी भी ये कहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज फुल हैं, कहीं पर कोई गैप नहीं है, देन यू शुड रीड दिस स्टोरी ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर तीन ऐसे लोग जिनको इतनी क्लटर्ड मार्केट में, इतना ज्यादा क्योटिक मार्केट में भी एक गैप नजर आ गया, जहां पर इतने सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम को फिक्स कर रहे हैं, उन्हें उसके बावजूद एक और प्रॉब्लम नजर आई कि भैया ये नहीं देना चाहते इक्विटी और उनको जल्दी चाहिए, तो क्या किया जाए सर? सो दे इन्वेंटेड टूल्स लाइक वानी AI, जिससे क्रेडिट एनालिसिस हो पाए और जल्दी जो है लोन डिस्पर्स हो जाए। आशा करता हूं अब इतना जो शो आपको बताया है, इतनी जो इंडस्ट्री आपको बताई है, आप लोग समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज RJ सागर साइनिंग ऑफ।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है। कहने को तो ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आती है। अगर एक दिन आपको ये दिक्कत हो जाए तो अगले 2-3 दिन काफी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हैं। सिर में दर्द तो आपने अक्सर फील किया होगा, कभी कभी बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, शोर होता है, पोल्यूशन होता है, या फिर वैसे ही तबीयत खराब होती है तो सिर में दर्द होता है। लेकिन क्या ये सिर दर्द माइग्रेन है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन को पहचाने कैसे, और ये इतना कॉमनली यूज होने वाला शब्द माइग्रेन आखिर होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब रेगुलर हेडेक की शिकायत करते हैं तो उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि आपको माइग्रेन है। लेकिन माइग्रेन को पहचानना, इसका सॉल्यूशन क्या है वो जानना, और इसको रोकना ये भी जरूरी है। सो आज माइग्रेन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर मेघा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: थैंक यू।
4: सो डॉक्टर मेघा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम हेडेक की बात कर रहे हैं तो हेडेक पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस किस तरीके के हेडेक होते हैं, क्योंकि जनरली जो हेडेक होता है वो यहाँ पर होता है, साइड्स में होता है।
5: सो हेडेक बहुत तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो हेडेक्स को हम दो तरीके से बताते हैं कि एक प्राइमरी हेडेक्स है, एक सेकेंडरी हेडेक्स है। प्राइमरी हेडेक्स ही होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, उसमें सबसे टॉप पे जो आता है वो होता है माइग्रेन।
4: ओके।
5: एंड माइग्रेन के साथ में टेंशन टाइप हेडेक, वो दूसरा टाइप होता है हेडेक का जो कॉमनली देखा जाता है। उसके अलावा अदर हेडेक्स होते हैं जिनमें कि साइनस हेडेक्स हो गए या फिर हमारे क्लस्टर हेडेक्स हो गए। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स विच आर सीन, बट सबसे कॉमन जो टॉप मोस्ट अगर हम बोले तो इट इज माइग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक।
4: माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक होता है। लेकिन डॉक्टर मेघा, माइग्रेन को पहचानना एक अपने आप में बड़ा टास्क है।
5: सो माइग्रेन जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि इट इज़ लाइक अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमेशा मरीज को देख के और उसकी बातें सुन के पता चलता है कि ये माइग्रेन है।
4: Okay.
5: इसके लिए कोई अलग से रेडियोलॉजिकल MRI या कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि हम कहें कि ये माइग्रेन है।
4: ओके।
5: सो माइग्रेन का पेशेंट जो सबसे कॉमन सिम्टम लेके आता है वो सरदर्द होता है। सरदर्द आधे सर में टप टप टप जैसा दर्द होना, या फिर टस टस टस महसूस होना कि ऐसा कि थ्रॉबिंग सेंसेशन लग रही है कि सर में ऐसा लग रहा है कि कोई नसें फड़क रही हैं। ऐसा दर्द होना हमें माइग्रेन में मिलता है। दूसरा माइग्रेन को डिटेक्ट करने का होता है कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत तेज हो गया। स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली माइग्रेन बिल्डअप होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 आवर्स में तेज होने लगता है। एंड कभी कभी माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो 24 से 48 घंटे एंड अप टू 72 आवर्स भी लास्ट कर सकता है।
4: ओके, यानी इतना समय तक माइग्रेन का दर्द चलता है।
5: जी, तो माइग्रेन बहुत बार लंबे समय तक हमार को 3 दिन तक भी, अप टू 5 डेज आई हैव सीन कि पेशेंट का सरदर्द ठीक नहीं हो रहा है। सो उस सरदर्द की वजह से अपना काम डेली रूटीन जो होता है वो काफी इफेक्टेड हो जाना है।
4: यानी माइग्रेन एक ऐसा सिरदर्द होता है, इसका जो सिम्टम है वो सिरदर्द है, लेकिन इसके अलावा भी क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं और इसको कैसे पहचाने हम कि ये माइग्रेन हो चुका है? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा है 8010781078। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें एक ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत कॉमनली आपने देखी होगी, लोगों को इससे सफर करते देखा है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको माइग्रेन है। और माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 से 4 दिन तक किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की क्षमता रखता है। लेकिन माइग्रेन को पहचानना कैसे है? क्या ये सिर्फ सिर दर्द है या फिर क्या ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बाकी बॉडी पार्ट्स में भी दिक्कत ला सकती है? क्या बच्चों को होता है या बड़ों को होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो डॉक्टर मेघा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 1 दिन से लेकर 4 दिन तक किसी को भी परेशान कर सकती है, मतलब सिर दर्द खत्म ही नहीं होता। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द है या कुछ और भी प्रॉब्लम है?
1: सो माइग्रेन हेडेक जो स्टार्ट होती है, सरदर्द जो शुरू होता है, उससे पहले पेशेंट्स को अदर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जैसे कि उबासी आना, एक्सेसिव उबासी आ रही है, योनिंग किए जा रहे हैं, या फिर फटीगेबिलिटी है, थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन, मूड में चेंजेस हैं, लो मूड फील कर रहे हैं। एंड उसके बाद में हमारे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं हेडेक के, कि सरदर्द है। सरदर्द के साथ में बहुत बार पेशेंट को कंप्लेन होती है विजुअल सिम्टम्स की, मतलब कि आंखों के आगे धुंधलापन आना या आंखों से दिखाई देने में दिक्कत होना या आंखों के आगे रंगीन गोले बनना, ये भी एक कारण होता है जिसके साथ में माइग्रेन शुरू होता है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे सरदर्द बिल्डअप होता है उसके साथ में मरीज बहुत बार उल्टी का मन होना, उसके साथ में एक्सेसिव लाइट या साउंड से इरिटेबिलिटी होना कॉमनली देखा जाता है।
0: यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिरदर्द होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिट है आपने कहा है, और सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज होता है जब आपके विजन पे कुछ इफेक्ट होता है। Definitely. आपको समझ ही नहीं आता कि ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है या तकलीफ है या फिर आप वैसे ही किसी डेफिशिएंसी की वजह से चक्कर आ रहे हैं या फटीग है, और ऐसे में आंखों के सामने कुछ कलरफुल इमेजेस बनना, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेस वाली चीज होती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिए कुछ बेसिक सिम्टम्स जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि माइग्रेन है, लेकिन क्या माइग्रेन सिर्फ एक बड़ी उम्र के लोगों को होता है या यंग एज में होता है? क्या बच्चों और बुजुर्गों को भी इफेक्ट करता है?
1: सो माइग्रेन का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, मतलब अगर आपके घर में, परिवार में आपके फादर मदर या किसी भी फैमिली मेंबर को माइग्रेन है तो देयर आर चांसेस, 50% चांसेस कि वो आपको ट्रांसफर होगा। एंड जिनमें होता है ऑनसेट, अगर हम बात करें कि कब शुरुआत होती है सरदर्द की या माइग्रेन के सिम्टम्स की, लेस देन 5 ईयर के बच्चे में भी हेडेक स्टार्ट हो सकते हैं, माइग्रेन के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट, यूजुअली जो हम बोलते हैं कि किस उम्र से शुरू होता है, दैट इज प्यूबर्टी एज, मतलब कि 10 से 12 साल की उम्र पे सरदर्द जो होता है वो चालू होता है एंड धीरे धीरे बिल्डअप होता है, इंक्रीज करता है। एंड वंस यू रीच आफ्टर, मतलब 40 से 50 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद में आपका जो सरदर्द होता है वो कम होने लग जाता है।
0: ओके, यानी 50 साल के बाद कम

0: हो जाता है
1: जी।
0: और 12-13 साल की एज से शुरू होता है। क्या ऐसा होता है कि प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है?
1: सो अगर हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की आज, तो माइग्रेन मोस्टली फीमेल्स में कॉमन होता है, लेडीज में, ठीक है, एंड 3 times ज़्यादा कॉमन होता है लेडीज़ में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। रीज़न हार्मोन्स, हमारी फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होते हैं, 2 main हार्मोन होते हैं जो हमारी फीमेल बॉडी में काम कर रहे होते हैं। तो जब भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होगी तो उसकी वजह से हमारे को, जिनको हेडेक के लिए प्री डिस्पोजिशन है, उनमें माइग्रेन देखा जाता है, पर्टिकुलरली जैसे कि हमारे पीरियड्स आने से पहले,
0: ओके,
1: या फिर प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ रहा होता है और हमारा ईस्ट्रोजन कम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में हमें सरदर्द या पहले 3 या 4 महीने में सरदर्द की फ्रिक्वेंसी, जिनको पहले से माइग्रेन है, उनमें बढ़ जाती है। एंड एज लेडीज अचीव द मेनोपॉज तो उनके हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है।
0: ओके, यानी ये जो 30 साल की एज, 20 से 30 की एज है, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एज है माइग्रेन
1: रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप।
0: हाँ, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें और ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। सो ऐसी कुछ बातें और भी चल रही हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें उसका, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉडकास्ट सेक्शन में आरजी दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय के साथ मिल जाएंगी, माइग्रेन से जुड़ी हुई, जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारी ऐप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी सीरियस बातों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे गाने जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो, तो अभी फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक। मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: खुश रहे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें हैं माइग्रेन के बारे में, एक बहुत कॉमन समस्या जो अक्सर लेडीज को देखी गई है होते हुए, कुछ जेंट्स को भी होती है, लेकिन एक्चुअली में जब सिर दर्द बहुत भयानक हो, दो दिन तक ठीक ना हो रहा हो, तो माइग्रेन कहलाया जाता है और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। लेकिन क्यों ये माइग्रेन हो जाता है, कैसे ये ट्रिगर करता है, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर सिर दर्द हो जाता है। कई लोगों को धूप में जाने से होता है, कई लोगों को शोर से होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजों से भी होता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। तो आपको वो पहले समझना होता है कि किस चीज से एक्चुअली ये ट्रिगर हो रहा है। और यही सब बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय। डॉक्टर मेघा, माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो मैं ट्रिगर्स आपसे जानना चाहूंगी, कैसे होता है, कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं माइग्रेन के?
2: सो जैसा कि हमने पहले बात करी कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है कि 50% चांसेस होते हैं जिनकी फैमिली में है उनको जेनेटिक ट्रांसमिशन होने का टू द नेक्स्ट मेंबर। उसके अलावा नींद का कम लेना, इनएडिक्वेट स्लीप, या हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे वर्क ज़्यादा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन टू लाइट एंड साउंड, या फिर हम खाली पेट सुबह में बिना नाश्ता करे हुए आए हैं, एक्सपोजर टू परफ्यूम्स, मतलब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल्स, ऑयल स्मेल्स कैन ऑल्सो प्री डिस्पोज अस टू माइग्रेन अटैक्स। सो हर पेशेंट का या हर इंसान के जिनको हेडेक्स की कंप्लेन रहती है, माइग्रेन की कंप्लेन रहती है, उनके अपने अपने ट्रिगर्स होते हैं। अगर हम उन ट्रिगर्स को पहचान के उसे कट डाउन करें तो हमारे माइग्रेन के अटैक की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो भी कम की जा सकती है।
1: ओके डॉक्टर मेघा, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है पोस्ट कोविड, तो मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं। अपना फोन या अपना लैपटॉप देखते हैं तो समझ आता है कि दिन में 5 से 6 घंटे आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो क्या ये भी ट्रिगर है?
2: जी बिल्कुल, एक्सेसिव जब स्क्रीन का एक्सपोजर होता है, दैट इज लाइक लाइट का एक्सपोजर टू द आईज होता है, तो वो हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है एंड नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ब्रेन के, वो डायलेट करते हैं और उसकी वजह से पेन का स्टिमुलेशन जो होता है वो बढ़ता है और पेशेंट्स को बहुत बार पेन कंप्लेन होता है। बहुत देर तक काम कर रहे थे उसके बाद में हमें सर दर्द हो गया, तो वो एक तो आई की फटीगेबिलिटी की वजह से सर में दर्द होता है और दूसरा एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारी नर्व पे स्ट्रेस आता है उसकी वजह से होता है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसके बाद उनको कई बार सिर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कॉफ़ी बहुत लोगों की फेवरेट है, लेकिन कई लोग बिल्कुल कॉफ़ी छोड़ देते हैं क्योंकि सिर में दर्द होता है, और कई लोग कॉफ़ी पीते हैं इसलिए कि सिर दर्द ठीक करना है।
2: सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन ड्रिंक्स, हमारा इनटेक 1 to 2 cups ऑफ कॉफी पर डे हो सकता है, बट अगर हम दिन में 5-5, 6-7, तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कैफीन जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्रेन के डायलेट करके हेडेक्स स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है। सो एक्सेसिव, बहुत बार लोगों को चीज या ओवर एज चीज जो होता है उसे लेने से हेडेक्स होते हैं। समटाइम्स इनटेक ऑफ अल्कोहल स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेड वाइन कैन प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू हेडेक्स। सो माइग्रेनस वी से डोंट इंडल्ज इन द अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो। अदर देन दैट अगर आप देखें तो सिट्रस फ्रूट्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू हेडेक्स।
1: सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं कि विटामिन सी रिच हैं और लेने चाहिए,
2: बट बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड द कॉम्पोनेंट इट कैन ट्रिगर्स द माइग्रेन अटैक्स इन द पेशेंट।
1: सो ऐसे में तो अचार वगैरह या चटनी भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम बढ़
2: सकता है। एंड अदर देन दैट चॉकलेट एंड कोला, सो डार्क चॉकलेट इज हेल्पफुल बट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द चॉकलेट, सो किसी का भी ज्यादा होना शरीर में नुकसानदेह होता है। तो इन अ लिमिटेड क्वांटिटी यू कैन कंज्यूम कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी, चॉकलेट एंड कोलाज एज वेल एज द अदर कैफिनेटेड या एरिएटेड ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड।
1: यानी जो चीज़ें टेस्ट में बहुत अच्छी हैं पर हेल्दी नहीं है उनको तो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ट्रिगर करती हैं। डॉक्टर मेघा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे जो यंग गर्ल्स हैं या फिर कहें वेमेन, मेकअप बहुत कॉमन सी चीज होती है, डेली यूज में है. सो क्या मेकअप या परफ्यूम्स ये भी ट्रिगर कर सकते हैं?
2: जी, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द परफ्यूम जो होती है, जिनमें बहुत तेज स्मेल आ रही है परफ्यूम की, तो जिनमें ये ट्रिगर होता है स्मेल का, दैट कैन ऑल्सो प्री डिस्पोज टू माइग्रेन अटैक्स. आई हैव सीन समवन जिसको काजल लगाने की वजह से हेडेक हो जाता था, एंड वंस

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: फील गुड फील लाइव. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और हम बात करें हैं माइग्रेन के बारे में, एक ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम जिसको शायद आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकता है जिसको ये माइग्रेन हेडेक हो रहा हो. माइग्रेन के कई और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे आंखों के आगे कुछ कलरफुल सर्कल्स बनना, या फिर वॉमिट फील होना, नोजिया फील होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. बहुत ज्यादा योनिंग आ रही है अगर आपको अचानक से, आपकी नींद भी पूरी है लेकिन फिर भी आपको उबासियां आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ये माइग्रेन की शुरुआत तो नहीं है. बहुत ज्यादा डर के नहीं रहना है, लेकिन हाँ सिम्टम्स को जरूर पहचानना है. बट अब माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए? हमने अक्सर उन लोगों को देखा है जिनको माइग्रेन होता है, वो दवाई खाते हैं पर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है. तो फिर माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जनरली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेडिसिन होती है. सो ऐसी कुछ बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से, जो कि कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर मेघा, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं और उन्हें ये बहुत घबराहट होती है कि अगर आज उनका दिन बहुत हेक्टिक चला गया तो उनको कहीं माइग्रेन अटैक ना हो जाए. सो इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है?
1: तो सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमारे ट्रिगर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, कट डाउन करना है. चाहे वो हमारे अगर परफ्यूम का एक्सपोजर है या स्मेल की वजह से है तो उसे अवॉइड करना है. अगर हमारी नींद स्ट्रेस है तो हमें उसे कट डाउन करना है बाई डूइंग लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक योगा, मेडिटेशन. ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है एज अ पार्ट एंड पार्सल, की ये नहीं है कि आज करा कल नहीं किया है. अ डेली रूटीन विल प्रिवेंट फर्दर अटैक्स ऑफ माइग्रेन. उसके अलावा खाने में मैग्नीशियम रिच फूड जो होता है, डेट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग माइग्रेन. तो मतलब कि जो फूड जिसमें हमारे मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, चाहे वो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, ये सब है. एक्सेसिव नहीं, बट थोड़ा थोड़ा इन अ एडिक्वेट एंड ऑप्टिमम अमाउंट में लेंगे तो इट विल हेल्प. उसके अलावा जब माइग्रेन को हमने प्रिवेंशन की तरह तो देखा, पर हर माइग्रेन के दो तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं. एक, जो एक्यूट हेडेक हो रहा है, जो सिम्टम है अभी करेंटली, उसको खत्म करना, और आगे ऐसे सरदर्द ना बने उसको बनने ना देने के लिए दवाइयां देना. सो दोनों तरीके से, एक्यूट एंड प्रिवेंशन, बोथ हैज टू बी डन, जिससे कि आगे के आपके नंबर ऑफ डेज, आपके ऑफिस, आपके बच्चों के स्कूल वर्क्स, या लेडीज का घर का कामकाज जो है वो इम्पैक्टेड या इफेक्टेड ना हो.
0: बिल्कुल.
1: सो एक्यूट ट्रीटमेंट में यूजुअली हम पेन किलर्स, जो सरदर्द की दवाइयां होती हैं, वो देनी होती हैं. बहुत ज्यादा पेन किलर लेना, मतलब कि आप हफ्ते में तीन तीन चार चार बार अगर हेडेक्स की मेडिकेशन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक हो जाता है. मतलब कि हम ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से सरदर्द की दवाइयां हमारे ऊपर काम नहीं कर रही और हमारे को सरदर्द बना ही रहेगा. सो उन पेशेंट में जिनको हम महीने में या तीन महीने में 15 दिन पर मंथ ज्यादा पेन हो रहा है, या हर मतलब 15 दिन में सरदर्द बना ही रहता है, आधा महीना हमारे सरदर्द में ही निकल जाता है, चाहे वो हल्का है, धीरा है, तेज है, पर वो निकले जा रहा है, तो उन केसेस में हम प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, विच आर इन द मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू पेशेंट को जो हेडेक की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो कम हो जाती है. एंड दे आर पेशेंट्स हुआ ट्रीटेड एंड 6-6 महीने या साल साल भर भी उनको कोई ऐसा अटैक नहीं आता है सरदर्द का, एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन.
0: ओके. यानी बहुत सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं माइग्रेन को. लेकिन इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मेघा, कि बहुत सारे बाम मार्केट में मिलते हैं या आइस पैक कई लोग सजेस्ट करते हैं, वो भी कंट्रोल करने में मदद करता है?
1: जब भी हमें हेडेक या माइग्रेन का अटैक होता है, तो आइडियली कहा जाता है कि कमरे की लाइट जो होती है वो डिम रखनी होती है, या तेज नहीं होती है, या फिर बंद करके रखनी होती है. डार्क रूम प्रिवेंट द स्टिमुलेशन टू द आईज एज वेल एज टू आर नर्व्स, जिसकी वजह से हमारे हेडेक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. उसके अलावा यूज ऑफ आइस पैक ऑन द फोरहेड और ओवर द स्कैल्प एंड नेक पे हॉट पैक, देयर इज अ डिफरेंस. तो यहाँ से मसल रिलीव होती है नेक की, और हेडेक की मसल, जो मसल लूज हो गई है, जो मतलब नसें फैल रही हैं बिकॉज ऑफ पेन, उसको कंस्ट्रिक्शन मिलता है. तो दोनों का इस्तेमाल, आइस पैक का ओवर द फोरहेड एंड नेक पे हॉट पैक. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन विच हेल्प इन रिलीविंग द पेन. अदर देन दैट, कॉफी कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव कॉफी नहीं कि आप कॉफी ही लिए जा रहे हैं सिर्फ वन कप ऑफ कॉफी
0: ब्लैक कॉफी और नॉर्मल कॉफी
1: अब ब्लैक कॉफी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हेडेक और रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी जो तेजी है या बहुत तेज दर्द है उसको कम करती है तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमें मदद करती हैं हेडेक को कम करने में
0: जी क्या माइग्रेन को कभी खत्म किया जा सकता है
1: माइग्रेन को खत्म नहीं किया जा सकता इट इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन वी कैन ओनली डू द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अगर वो इतना सिम्टोमेटिक है देन वी नीड टू गेट द ट्रीटमेंट डन फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट कि हमें कैसे कैसे अपने हेडेक्स को कंट्रोल करना है और कब हमें दवाइयाँ खानी है बहुत बार लोग तेज दर्द होने पे दवाई खाते हैं कि जब तक वो पीक पे हो जाता है तो वंस इट हैज रीच्ड इस पीक तो फिर वो टाइम लगाता है खत्म होने पे तो यूजुअली जब आपको पता है जो माइग्रेनर्स होते हैं दे नो कि उनको किस प्रकार का हेडेक है और कब शुरू हो गया है तो आपको इनिशियल पार्ट में ही दवाई खानी है अपना पेन किलर खाना है अगर आप उसको पीक होने पे दवाई खाएंगे तो इट विल टेक टाइम उतना ही टाइम लगेगा एंड दवाई का इफेक्ट भी कम आता है
0: क्या नॉर्मल जैसे सिर दर्द में डिस्प्रिन सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है इनिशियल स्टेज पे वो भी खाई जा सकती है
1: जी डिस्प्रिन ब्रूफिन नेप्रोक्सिन ये सब दवाइयां होती हैं जो हम कॉमनली देते हैं अपने पेशेंट्स को टू कंट्रोल द पेन एंड उसके अलावा आजकल नेजल स्प्रेज भी आते हैं अगर जिन पेशेंट्स में कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्पाइट टेकिंग द एनसेट्स मतलब कि डिस्प्रिन आइब्रोफिन या नेप्रोक्सिन तो दे कैन डू अ स्प्रे अपनी नाक में स्प्रे डाल के उस अटैक को कम कर सकते हैं उसकी ड्यूरेशन और तेजी जो होती है उसको कम किया जा सकता है
0: लाइक इनहेलर्स वो भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे
1: इनहेलर से थोड़ा डिफरेंट बट इट इज अ टाइप ऑफ स्प्रे
0: ओके जी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं आपके डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करेंगे प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए और माइग्रेन एक बार शुरू हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग चलता है बट आप इसको अगर कंट्रोल कर सकें अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस से तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं लेकिन वक्त बहुत कम है फिलहाल डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से लेते हैं इजाज़त थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा स्टूडियो में आने के लिए
1: थैंक यू
0: तो बहुत सारी बातों के बाद अब टाइम है आपसे इजाजत देने का फिर से होगी मुलाकात प्रोग्राम ऑल इज वेल में अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ और करेंगे एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की खोज लेकिन अभी फिलहाल टेक केयर बाय बाय दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हर हफ्ते मैं आपकी मुलाकात कराती हूं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में महारत हासिल की होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं खुद एक म्यूजिशियन हूं, तो संगीत के साथ मेरा कुछ ऐसा कनेक्ट तो रहता ही है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि पहली बात तो वो हमारे शहर फरीदाबाद से हैं, फरीदाबाद की ही बेटी हैं और उन्होंने फरीदाबाद का नाम बहुत रोशन किया है, तो इसीलिए वो हमारे फरीदाबाद की आन बान और शान है। मैं बात कर रही हूँ आद्या मिश्रा की, जिन्होंने इंडियन आइडल में हमारे शहर फरीदाबाद का बहुत नाम रोशन किया है, अपना और अपने परिवार का भी बहुत नाम रोशन किया है। सो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नायाब अवार्ड्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के टाइटल अपने काबू में किए हैं, यहाँ तक के उन पर जीत हासिल की है, जीत का परचम लहराया है, जैसे कि वॉइस ऑफ दिल्ली NCR, जयपुर आइडल, IIMA अवार्ड फॉर बेस्ट सूफी सॉन्ग। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा संगीत का रियलिटी शो जो संगीत का महाकुंभ कहलाता है, इंडियन आइडल जैसे शो में इन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आद्या मिश्रा जी की, जो हमारे अपने फरीदाबाद शहर की ही हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आद्या जी आज हमारे शो में।
5: गौरी मैम, मुझे तो खुशी हो रही है कि आप सब ने मुझे आज बुलाया है और आपने इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोले हैं।
4: थैंक यू सो मच आद्या, ये तो आपका मैं कहूँगी बढ़प्पन है जो आपको इतना अच्छा लग रहा है। सो आद्या, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपकी संगीत की जर्नी कैसे और कब शुरू हुई, हमें इसके बारे में बताइए।
5: तो बेसिकली मेरा भाई है, बहुत म्यूज़िक में है, मतलब वो उसकी बहुत हॉबी थी कि, तो वो बहुत गाता बजाता सब था, तो उसने म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करी थी। उस टाइम पे मैं छः साल की रही हूँ।
4: ओके
5: तो अब वो होता ही है कि बड़ा भाई गया है तो मैं भी जाऊँगी।
4: जी, जी जी ये तो है।
5: तो वो जो सीखता था वो आके हमें सुनाता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा याद रखती थी कि इसने क्या किया मैं भी करूँगी।
4: जी
5: फिर एक दो बार मैं उसके साथ भी चली गई, तो मैं उसके साथ गई थी एक बार, तो उन्होंने कुछ तो गाने के लिए कहा था, एक पलटा था वो गाने के लिए कहा था, तो वो मुझे याद था कि इसने तो घर में बहुत सुनाया है, तो मैंने वो सुना दिया उधर। उन्होंने बोला नहीं था मुझे कि मैं सीखती तो थी नहीं, तो उन्होंने उनको बड़ा अच्छा लगा और उनको भी ऐसे आवाज़ अलग लगी, उन्हें लगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, तो उन्होंने भी पिच किया कि इसको भी सिखाना चाहिए, और मैंने भी बोला कि मुझे भी सीखना है। तो व्हेन आई वाज 7-8 इयर्स ओल्ड, वहाँ से फिर मैंने सीखना शुरू किया।
4: ओके तो आद्या, पहला पल या पहला वो कौन सा ऐसा स्टेज था जब आपको लगा कि भाई मुझे म्यूजिक सीखना ही है अब? तो
5: पहला स्टेज मैं कहूँगी जब मुझे वॉइस ऑफ दिल्ली NCR जो 2019 में मैं जब जीती थी, वो मेरे लिए एक पॉइंट था कि मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि उससे पहले ना एक श्योरिटी नहीं थी मुझे कि हो पाएगा मुझसे, क्योंकि म्यूजिक फील्ड बहुत मुश्किल है।
4: Exactly.
5: इंटर कोई करे तो बहुत बहुत मुश्किल है, तो मुझे यकीन नहीं था खुद पे, बट जब मैंने वो जीता तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि नहीं,
4: क्या म्यूजिक में ही जाना है,
5: मुझे उसी में जाना है। और फिर वहां से फिर मेरी जर्नी मैं कहूंगी एक नए इंसान के रूप में शुरू हुई है, क्योंकि आपके माइंड में जब आ जाता है ना कि नहीं मुझे यही करना है, तब आप अलग बन जाते हो। तो मैं कहूंगी कि जब मैं वो जीती थी शो तब हुआ था वो।
4: अच्छा अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत छोटी उम्र से सीखना शुरू कर दिया, तो इसमें आपके पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, मतलब जब उन्होंने आपके ब्रदर को सिखाना शुरू किया, आफ्टर दैट ब्रदर ने तो म्यूजिक छोड़ दिया, आपने शुरू कर दिया, तो मम्मी पापा का क्या कहना था कि हाँ चलो ठीक है आद्या को इसमें आगे कंटिन्यू कराते हैं? और दूसरा एक मेरा सवाल इसके साथ ये भी रहेगा कि गुरु कौन रहे आपके बचपन से जिनसे आपने अपनी संगीत की शिक्षा ली?
5: तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन था उस पे, तो मेरे पेरेंट्स में से तो किसी को भी नहीं था कि अरे इनकी तो हॉबी है इनकी, अच्छा। मतलब ये इसमें करियर बनाएंगे, वो किसी का भी नहीं था।
6: ओके।
5: तो बट उन्होंने सिखाया कि इनको पसंद है तो इनको सीखना चाहिए, बट मम्मी को कहीं ना कहीं था कि नहीं इसकी आवाज़ अलग है, तो वो माओ को हो जाता है, रहता ही है। तो जब वॉइस ऑफ दिल्ली एनसीआर जीता था ना मैंने, वो ही पॉइंट पे मेरे पेरेंट्स कन्विंस थे, मतलब एक पेरेंट्स को भी दिलासा देना होता है कि नहीं हम कर सकते हैं इसमें, तो पापा को तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि हाँ इसमें करियर हो पाएगा, बट मम्मी लगी रहती थी मुझे, ऑडिशन में भी मम्मी ही लेके जाती थी जितने ऑडिशन है। पापा अच्छा। को ऐसे था कि वो सपोर्ट तो हमेशा करते थे, लेकिन उन्हें ऐसे होता है ना कि यकीन नहीं था उन्हें भी कि इसमें कर सकते हैं हम। बट वो जीतने के बाद दोनों मेरे पेरेंट्स हो गए कि नहीं नहीं म्यूजिक में तुम करो अच्छा है,
6: मतलब उन्हें लगा होगा कि कुछ इसने अचीव किया है तो इसमें ये आगे बढ़ सकती है।
5: करेक्ट, आगे बढ़ सकती है। तो बट मैं कहूंगी कि मेरी मम्मी ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें बहुत लोग आते नहीं है
6: बिल्कुल,
5: और उसमें अगर आपका एक पेरेंट लगा हुआ है आपके पीछे, आपको ले जा रहा है हर जगह रिजेक्ट होने के बावजूद, तो फिर वो पेरेंट का ही पूरा, मैं तो कहूंगी कि मेरी
6: बिल्कुल उनका सहयोग। क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज है कि इतने ऑडिशंस होते हैं, हर कोई पेरेंट नहीं जा पाते अपने बच्चों के साथ,
5: नहीं ले जाते। ऊपर से वो बहुत सारे, तो सबसे पहले चीजों से लड़ना पड़ता है, हो पाएगा नहीं,
6: बिल्कुल
5: आप नहीं जानते किसी को इस फील्ड में, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन्हें एक डर भी रहता है कि एक, क्योंकि एक प्रॉमिसिंग करियर नहीं है कि आपका, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बनोगे, आपकी बहुत अच्छी इनकम होगी
6: जी।
5: उसके बाद भी अगर आपका पेरेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो हैट्स ऑफ है। तो मेरी मम्मी ने शुरुआत में से ही किया है, पापा ने तो अब शुरू कर दिया, बट शुरुआत से मम्मी ने ज़्यादा किया है। और शिक्षा की बात हो तो मैंने शुरुआत के 8 साल अमित पांडे सर है उनसे सीखा है, मेरा भाई भी उन्हीं से सीखता था।
6: अच्छा।
5: एंड देन आफ्टर दैट मैंने 2 साल क्षितिज माथुर सर हैं दिल्ली में, अच्छा। उनसे सीखा है, उसके बाद तो इंडियन आइडल में हो गया था सिलेक्शन।
6: सो आद्या, जैसे आपने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, अपने गुरुजी के बारे में बताया, तो आपको कोई ऐसी बात जो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा जो आपको याद रहती हो हर पल स्टेज पर जाने से पहले, कुछ ऐसे टिप्स हों, पॉइंट्स हों जिस बात को आप हमेशा याद रखती हैं, चाहे वो पेरेंट्स का ही कुछ ऐसा मैसेज हो, कुछ उनकी सलाह हो कि आद्या को ये फॉलो करना है और उसे हमेशा वो याद रहती है, तो वो क्या चीज़ है?
5: जो सबसे मेन बात जो रहती थी ना, वो मैं कहूँगी मेरा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखता होगा कि बहुत है, बट अंदर अंदर उतना नहीं था, तो मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, बहुत करती हूँ, स्टेज पे जाते कॉन्फिडेंस से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ गलत वो नहीं किया है, वो मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से हिल गया है मेरा। तो वो जो मुझे याद है वो यही रहता था कि किसी से डरना नहीं है, जो आपके सामने है वो आपको सुनने के लिए आए हैं
6: जी,
5: तो आपको उस पल पे सिर्फ ये सोचना है कि आप यहाँ एज अ सिंगर आए हो, आप अपनी परफॉर्मेंस पेश करने आए हो, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए उस टाइम पे, कुछ आपको सोचते नहीं होना चाहिए उस टाइम पे कि मैं, आपके दिमाग में 100 थॉट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, तो वो ही बात याद आती थी कि शांत। मतलब बहुत सारे लोग ये देते हैं कि ऐसे गाना वैसे गाना, वो तो वो इंसान तब कर पाएगा ना जब वो शांत होगा, तो मुझे वही याद रहता था कि शांत हो जाओ, शांत हो, अपने आप को बोलती थी शांत हो जाओ
6: और बिल्कुल घबराओ मत, नर्वस मत,
5: हाँ, लंबी सांस लो शुरू।
6: बहुत अच्छी बात आपने ये बताई है, और ये जरूरी नहीं है म्यूजिक की फील्ड में, किसी भी फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नर्वस नहीं होना है, अपना बेस्ट दो, है ना, फिर आगे तो भगवान के ऊपर है जो भी हो,
5: वो तो फिर
6: बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अच्छा आद्या, एक आपका मैं मेन चीज, अब जैसे इंडियन आइडल तो मेन रहा ही है आपकी लाइफ में, एक जो उड़ान मिली है वो शायद उसी से ही मिली है, तो ये जो इंडियन आइडल का ऑडिशन राउंड था, ये आपका बड़ा वायरल हुआ फोन वाला, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये तो हम जरूर आपसे आज सुनना चाहेंगे।
5: तो बेसिकली जो ऑडिशंस हैं वो मुंबई में हो रहे थे, दिल्ली के हो चुके थे, बट फिर मुंबई में मेन ऑडिशन जो टीवी राउंड था वो था, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो लास्ट मोमेंट पे मुझसे छूट गई थी फॉर ट्रैफिक, बिकॉज फरीदाबाद और दिल्ली का एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो छूट गई थी। एंड देन वो एक होता है ना कि आपके हाथ से मौका जा रहा है, तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं श्रेया मैम को बहुत फॉलो करती हूँ,
6: ओके,
5: तो उनके पोस्ट पे कमेंट वगैरह लाइक वगैरह मैं कंटिन्यूस करती हूँ, तो मैंने सोचा कि वही मैं एक डीएम कर देती हूँ, बाय चांस किस्मत अच्छी हो तो कन्वे मैं कर दूंगी उनके, जो हमारे साथ जो टीम रहती थी बेसिकली जो ऑडिशंस के टाइम रहते हैं जिनसे आप कॉन्टेक्ट करते हो, जो ऑडिशन
6: क्रू मेंबर
5: होते हैं, मैंने उनको ऐसे मैसेज कर दिया था, मुझे कोई होप नहीं थी कि वो देखेंगे कि मैं लेट हो रही हूँ, मैंने श्रेया मैम को एक डीएम कर दिया, अगर हो सके तो आप कन्वे कर दो, वो सुन ले और मुझे सिलेक्ट कर ले, कुछ तो हो जाए, तो उन्होंने कन्वे कर दिया उनको, तो उन्होंने अपने डीएम्स चेक किए और फिर उसमें मेरा डीएम शुरुआत में ही था क्योंकि मैंने उसी टाइम भेजा था, एंड देन वो फिर मैं पहुंची उतने में ही मेरा हो गया ऑडिशन, हो तब इट वॉज अ मैटर ऑफ लक, एल से लक और मतलब किस्मत की ही बात थी वो, अगर नहीं देखते वो, क्योंकि इतने हजारों उनको डीएम आते हैं, किसी के कहने पे कोई डीएम देख ले तो होता नहीं
6: बिल्कुल, और कभी कभी तो मतलब वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो वो क्या अपना फोन चेक करते हैं क्या है, इतने बिजी रहते हैं। सो चलिए कहा जाए तो आपका दिन था उस दिन, आपका लक ने आपका साथ दिया, तो इसीलिए आज हमारे साथ आद्या मिश्रा जी बैठी हुई हैं। ओके, सो आद्या, मैंने आपके इंटरव्यूज में और आपके जो भी पॉडकास्ट देखे हैं उसमें मैंने एक नाम बहुत ही फ्रिक्वेंटली सुना है, वो नाम है नीरज कालकर सर का, तो इनके साथ आपका क्या बॉन्ड है, आप उन्हें क्या अपना मेंटोर मानती हैं, किस तरीके से इनसे आप जुड़ी हैं और सर की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, ये भी आप हमें बताइए।
5: तो मतलब ये नाम, ये जो भी इंसान है मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब नीरज सर से मैं आइडल में ही मिली थी, तो वो हमें मेंटर करते थे, जो जो भी राउंड्स होते हैं उसमें जो एक मेंटर होते हैं वो हमारे मेंटर थे, तो वहाँ मैं उनसे मिली थी और मैं बहुत ब्लेस्ड ऐसे फील कर रही थी, क्योंकि ना हम बहुत तरसते हैं उनसे मेंटर होने के लिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमारे ऑडिशंस लेते हैं और हम देखते रहते हैं ना कि हम यही हमको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अब इस बार उन्होंने सेलेक्ट किया कुछ तो उन्होंने देखा होगा कि इस बार सेलेक्ट कर लिया, तो हम लोग बहुत बहुत वैसे रहते हैं कि हमें आपसे सीखना है, हम क्योंकि उनके पास जेन्युइनली बहुत टिप्स होते हैं, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा रियाज वो कराते हैं।
6: अच्छा,
5: तो ये नेम और ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पूरा चेंज कर दिया फ्रॉम द आद्या दैट आई वॉज एंड जो आद्या मैं अब हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं आपको बताऊँगी आगे क्यों, बट क्योंकि वो हमारे मेंटर थे ड्यूरिंग द होल शो, जो जब सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे तो उनको वो मेंटर करते हैं, गाने जो भी होते हैं ना, तो एक तो मैं उनसे बहुत समय से ना चाहती थी कि उनसे मैं मिल भी पाऊँ, बात कर पाऊँ दो शब्द, क्योंकि वही जो ऑडिशंस होते हैं ग्राउंड लेवल पे उसमें जो बच्चों को सिलेक्ट और रिजेक्ट करना होता है वो वही करते हैं,
6: मतलब पर्दे के पीछे नीरज सर होते हैं मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं नहीं, वो तो सामने बैठे होते हैं। अच्छा। सामने सामने जो जज हमको कर रहे होते हैं ना वही होते हैं, मेरे लिए तो मेन जज वही है जो भी है, मतलब मैं मेनली उनके लिए हम लोग जाते हैं कि हम थोड़ा सिलेक्ट हो तो थोड़ा उनसे जान पाए कि क्या नज़रिया है म्यूज़िक को लेके, तो हम उन मैं उनसे हमेशा रिजेक्ट होती हूँ या वो होता है, तो इस बार सिलेक्ट हुई थी तो वो होता है ना कि अरे इन्होंने हमें इस बार बार रिजेक्ट किया है, अब सिलेक्ट किया तो कुछ तो होगा, इनसे हम जानते हैं, तो एज अ मेंटर एंड स्टूडेंट ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था।
6: अच्छा,
5: एंड मैं आपको बताऊँ उनका नज़रिया संगीत को लेके इतना अच्छा, इतना पक्का है ना, मतलब मेरा पूरा चेंज हो गया। अच्छा। मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा मैं म्यूजिक को जान ही नहीं पाई आज तक अपनी जिंदगी में, जैसा इन्होंने बताया है, तब मैं तो म्यूजिक से मिली नहीं हूँ, जैसा म्यूजिक ये बता रहे हैं ऐसा म्यूजिक ना कोई करता है ना मैं मिली हूँ, मतलब पूरा मैं एक शॉक हो गई थी
6: म्यूजिक के लिए, नजरिया आपका चेंज हो गया बिल्कुल,
5: पूरा चेंज हो गया, और कितने सारे टिप्स, गाना है आपके पास, गाना आपका बेबी है, आप उसको कैसे क्या खिला रहे हो, कैसे उसको पाल रहे हो ना, उससे आपका आउटपुट आता है, तो वो नज़रिया देना गाने के पीछे, जो भी गाना मिल रहा है अभी नॉर्मली हम करेंगे तो एक गाना है याद करा सुना दिया,
6: बिल्कुल
5: उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं होता, अब अगर आप मुझे बोलोगे ना उसके पीछे इतने प्रोसेस हैं, मैं उस गाने को जीऊँगी पहले तब मैं परफॉर्म करूँगी आपके सामने, तो इतना कुछ हमने सीखा ना उनसे, तो वो मेंटर स्टूडेंट से थोड़ा एज अ फादर भी मैं उनको देखने लगी, मैंने उनको बोला भी कि मैं आपको एज अ फादर फिगर मानती हूँ, एंड आज अब मैं उनको ताता बुलाती हूँ, तो ताता मतलब पापा ही होता है संस्कृत में, एंड मैं उनको अपना फादर, सेकंड फादर मैं उन्हें मानती
6: हूं। मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट ही देखी थी फादर्स डे की, आई गेस उसमें आपने मेंशन किया होगा, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा।
5: करेक्ट। तो उनको मैं सेकंड फादर मानती हूँ, गुरु तो मैं मानती हूँ, मतलब फिर आफ्टर इंडियन आइडल मैं उनकी ही गाइडेंस के अंडर हूँ। मैं उनसे जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है,
6: मतलब वो आपको कदम कदम पे गाइड करते हैं,
5: कदम कदम पे गाइड करते हैं। मैं और पूरा मेरा जो रूटीन है, रियाज है, मैं सब वो सब उन्होंने मुझे बताया है कैसे करना है, मैं पूरा वही फॉलो करती हूँ।
6: तो रियाज की आपने जैसे बात की, तो आप किस तरीके से अपना रियाज करते हो, मतलब क्या टाइमिंग्स रहते हैं, और जनरली लोगों को कैसे रियाज करना चाहिए? क्योंकि म्यूजिक में तो कहा जाता है कि अगर प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे, तभी आवाज निखरती है। तो आप थोड़ा इसके बारे में बताओ, और सर ने आपको क्या गाइड किया है, नीरज सर ने, वो भी हमें बताओ।
5: तो रियाज की जहाँ तक बात है, देखो रियाज के बिना तो है ही नहीं हम,
6: बिल्कुल
5: ठीक है, हम कुछ भी एकदम टॉप बन जाए। लता जी भी, लता जी इसलिए थी क्योंकि वो रोज रियाज करती थी उस एज पे भी जी। जब हुआ एंड पहले तो ऐसा था आइडल से पहले कि एक घंटे किया रियाज, दो घंटे किया, किसी किसी दिन नहीं किया, कि वो सीरियसनेस नहीं है ना।
6: हाँ।
5: वो म्यूजिक को लेके वो ही नहीं है, एक नजरिया ही नहीं है। तो जैसे हमने आपको बताया ना कि मैं उनसे मिली तो मेरा पूरा चेंज हुआ। अब मैं ऐसी थी जो मैं 4 बजे सोने जाती हूँ सुबह।
6: अच्छा।
5: अब मैं 4 बजे उठती हूँ सुबह।
6: अच्छा।
5: 4 बजे मैं 4 या 3:30 उठती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं पूरा रियाज करती
6: हूँ। तो आप सोते कितने बजे हो?
5: सोना 9 बजे होता है।
6: अच्छा।
5: कभी कभी हल्का लेट हो जाता है, बट 9 बजे के बाद तो फिर पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि 9 बजे से 6:30-6:30 घंटे का वो है, 6:30 घंटे अच्छी नींद हो जाती है।
6: अच्छा।
5: तो मैं 9 बजे सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, सो जाती हूँ, और फिर सुबह 3:30 उठती हूँ।
6: अच्छा।
5: नहाओ, ब्रश करो, अपना सब कुछ करो, एंड फिर पूजा और रियाज दोनों साथ में होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त है। तो उठने का मेनली है कि वो उस टाइम पे एनर्जीज बहुत हाई होती है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे सिखाया है।
6: ओके।
5: सब उन्होंने ना संस्कार भी दिए हैं बहुत, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि इसीलिए मैंने बोला कि मैं आद्या जो थी उससे मैं बहुत डिफरेंट,
6: बिल्कुल अब चेंज हो गए।
5: भगवान में भी मन लगता है, भगवान जी की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो भी मुझे उन्होंने सिखाई। हम लोग क्योंकि इतना नहीं करते थे, अब तो मैं भगवान जी से बात करती हूँ नॉर्मली। तो रियाज और पूजा दोनों साथ में सुबह सुबह मैं करती हूँ। उसके बाद आपको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे रियाज करना ही चाहिए।
6: अच्छा।
5: के बिना वो हो जाता है ऐसे ना, सुनने में बड़ा लगता है कि 6 से 8 घंटे, आप स्कूल जाते हो, आप 8 घंटे स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, 8 घंटे तो ऑफिस जाते ही हो। तो यहाँ भी वही है, आप ऐसा नहीं है कि 8 घंटे लगातार गाते रहो, 2 घंटे आपने किया, एक सेटिंग में 2 घंटे निकलते हैं आराम से, थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा रेस्ट दिया, वॉइस रेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है। तो ये सब कुछ मुझे उन्होंने ही सिखाया है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे रियाज करते हैं, कहाँ करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में, स्पेशली ऐसे इंसान को जिसका कोई ऐसा नोन ही नहीं है जो म्यूजिक में है, उसे तो बड़ी दिक्कत,
6: कोई बैकग्राउंड ही नहीं है जो गाइड कर सके।
5: और मेरी आवाज बहुत अच्छी करी उन्होंने, मतलब मेरा मुंह ही नहीं खुलता था, मैं सच बताऊं तो।
6: अच्छा।
5: आवाज आ रही है पर मुंह नहीं खुलता, ऐसे बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है, और लोग ना बस टोक देते हैं आपको।
6: हाँ।
5: आपका मुंह नहीं खुल रहा, पर कोई ठीक नहीं,
6: कोई समझाता नहीं,
5: कोई ठीक, उन्होंने लग के ठीक कराया उसे।
6: अच्छा।
5: जबकि वो उनका काम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका काम है मेंटर करना, लेकिन वो अपने काम के अलावा आके हमारे साथ इतना टाइम बिताते थे ना, एज अ पूरा अच्छे से एज अ म्यूजिशियन।

0: बहुत हमें हमने बहुत सीखा है उनसे। मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आइडल से जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ली है ना, वो मैं यही कहूँगी कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग।
1: और उनसे आपका एक कनेक्शन बना, इतना अच्छा बॉन्ड बना कि आप अभी भी उनकी अगर हेल्प लेना चाहे आप कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हो,
0: अभी भी
1: उनसे सजेशंस मांग सकते हो।
0: कभी भी।
1: सो आद्या, जैसे आपने अभी नीरज सर का जिक्र किया यहाँ पर कि आपको बहुत गाइड किया है सर ने, रियाज के प्रति भी काफ़ी चीज़ें समझाई हैं, तो आपकी वॉइस बहुत हस्की वॉइस है अभी भी, मैंने जैसे हमने बात की, तो इसको कैसे आप मेंटेन कैसे रख पाती हैं? मतलब एक वो होता है ना, वॉइस टेक्सचर ख़राब नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके का रियाज आप करते हैं? क्योंकि डेफिनेटली बहुत से लोग आज ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो क्या गाइड करेंगे आप कुछ म्यूजिक के जो लोग हैं, म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ को कैसे निखार सकते हैं?
0: तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले से पूरे इसका आंसर देने से पहले मैं ये बोलूँगी कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अपने आप को लेके, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या कैसे कितने पानी में है,
1: कैसा गाते हैं।
0: तो सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे उन्होंने ही सिखाया है कि हस्क जैसे होता है ना, अब तो बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं लोग, बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हस्क आपकी आवाज़ में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखिए, जब कोई बच्चा कोई भी पैदा होता है, किसी की आवाज़ हस्की नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारी आदतों की वजह से ऐसा हो जाता है। बाहर का खाना,
1: अच्छा
0: ठंडा खाना, आपकी बॉडी को जो सूट नहीं कर रहा कंटिन्यूसली वो खाना, बात करने का टोन, तो बात करने का टोन और गाने का टोन सेम होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो धीरे धीरे, गा रहे हो बहुत तेज, कुछ उसका वो ही नहीं है, मतलब मैच ही नहीं है। या फिर आप बहुत, एक टोन की बात होती है, बहुत पतला बोल रहे हो, एकदम से बहुत मोटा गा रहे हो, तो वो आप अनजाने अनजाने में ही, पर वो सही चीज़ नहीं है। और हस्क भी फिर इसी चीज़ों की वजह से आता है। तो जब मैं आइडल में आई थी ना, तब तो मेरी आवाज़ में बहुत हस्क था। मतलब अब मैं ये बोलूँगी कि जो गाने मैं अब गा सकती हूँ, शायद मैं उस समय गा भी नहीं सकती थी, इतना हस्क।
1: अच्छा,
0: तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे ठीक कराया है, तो बैठ के लग लग के उन्होंने मेरा हस्क पे काम किया। और अब मैं कहूँगी कि 70% हस्क रिड्यूस हो गया मेरी वॉइस से, तो क्लैरिटी होती है ना जो आवाज़ में, वो आई है अब जाके थोड़ी, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हस्क था। और आजकल बहुत हस्क को बहुत ये
1: अच्छा और डिफरेंट माना जा रहा है,
0: और लोग जानबूझ के गा रहे हैं, नहीं मत करो,
1: मतलब अच्छा
0: क्लियर होनी चाहिए आपकी आवाज़। मैं कहूँगी कि मतलब टेक्सचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टोन की बात कर रही हूँ। टेक्सचर हस्क से डिफाइन नहीं होता। टेक्सचर आपका मोटा पतला ये हो सकता है, पर हस्की ऐसा कुछ टेक्सचर नहीं होता। तो जो भी, मैं यही टिप दूंगी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ ऐसी है वैसी है। लोग भले आपको बोले बहुत अच्छा गाते हो, मुझे तो सबको ही बोलता है आप बहुत अच्छा गाते हो, पर मुझे पता है कि मेरे ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या मुझे किस चीज़ पे काम करना है। तो और जो टिप्स की मैं ये बात कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आवाज़ का ध्यान रखो। मतलब सोना आपका अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छा टाइम पर सो जाओ, प्रैक्टिस करो, और सबसे बड़ी बात कि आप बोलने पे ध्यान रखो। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आप गा सकते हो।
1: अच्छा,
0: अगर आप गंदा बोलोगे ना, आप गंदा ही गाओगे। मतलब कि बहुत तेज बोल रहे हो, चिल्ला
1: लाउड,
0: तो आपकी, तो आप ब्लेस्ड हो कि आपकी आवाज़ ख़राब नहीं हो रही है।
1: हाँ।
0: नहीं तो हमें पता है, मैं बहुत बात करूँगी ना, बहुत मेरी पूरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, मतलब बैठ जाएगी। तो धीरे बात करो, धीरे गाना भी अपना उसी के अगर, तो आप जितना अच्छा बात करोगे ना, उतना मधुर आपका गाना निकलेगा।
1: अच्छा,
0: तो और अच्छे अच्छी बात करो, अपने आप को पॉजिटिविटी से भरो, भले वर्ल्ड में बहुत कुछ गंदा चल रहा है, क्योंकि वो गाने में रिफ्लेक्ट हो जाता है।
1: ओके,
0: जो परेशान है उसके गाने में दिख जाएगा कि भाई ये परेशान है,
1: वो इमोशंस तो दिख ही जाएंगे, नजर आ जाएंगे।
0: और प्रैक्टिस करो, कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, मत छोड़ो, क्योंकि आप 2 दिन छोड़ोगे ना, आपकी आवाज़ बहुत पीछे चली जाती है। तो मैं यही टिप्स दूंगी कि रियाज तो अब किसी हर कोई सेम रियाज नहीं कर सकता, सब अपने गले के हिसाब से रियाज कर,
1: अपनी रेंज और अपने
0: आपको कोई लिमिट नहीं कर सकता। रेंज पे तो बहुत, कितनी लड़ाइयाँ हुई है दुनिया में कि ये रेंज है, वो रेंज है, कुछ नहीं होता ये। मतलब आपकी जो रेंज है बहुत अच्छी रेंज है, खुश रहो उसमें, कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। और बहुत लोग बोलेंगे आपको शायद, क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत लोग फेस करे हैं कि आपकी तो बड़ी कम रेंज है, ऐसा कुछ नहीं है,
1: काफी लो स्केल में गाते हो,
0: ऐसा कुछ नहीं होता। तो किसी और की बात मत सुनो जब आप, और ये ना तभी होता है जब हम बातों से अफेक्ट होते हैं जब हमने खुद का रियाज नहीं किया होता। अरे हम कौन सा रियाज करते हैं, सच सच ही बोल रहे होंगे।
1: हाँ, और कोई दूसरा आके आपको बताएगा, चाहे वो म्यूजिक बैकग्राउंड का भी ना हो, लेकिन हम उसकी बातों काफी सीरियस ले लेते हैं।
0: म्यूजिक ना एक ऐसा चीज है ना जिसपे हर कोई अपनी टिप्पणी देता
1: है। बिल्कुल बिल्कुल,
0: तुम मत सुनो, नहीं सुनने की जरूरत, सिर्फ अपने गुरु जी की सुनो और किसी की मत सुनो। तो यही टिप सबसे, गाना गाने वाले को ना गाने की टिप ज्यादा नहीं, ऐसी टिप ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ये चीजें ज्यादा खराब करती है, कैसे हम गा रहे हैं ना उसको ज्यादा अफेक्ट ये करती है।
1: बिल्कुल,
0: रियाज तो हर कोई कर सकता है, हर कोई बता सकता है ऐसे करना है वैसे करना है।
1: बहुत अच्छी टिप है आपने दिया आज। सो आद्य, जैसे अब इंडियन आइडल की बात चल रही है अभी तो हमारी, तो आपके उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट जज कौन थे?
0: मुझे श्रेया मैम ही पसंद थी। तो तीनों बहुत अच्छे थे, मतलब तीनों बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छे थे, बट श्रेया मैम से एक अलग बॉन्ड था, क्योंकि पता नहीं उनमें कुछ बात तो है, मतलब मैं कहूंगी गाने में तो वो है ही बहुत अच्छी, बट एज अ पर्सन ऑल्सो आप कनेक्ट कर पाते हो उनसे, लगता नहीं है कि ये द श्रेया घोषाल हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक कंफर्टेबल होते हैं ना जब आप किसी के साथ, तो उनके साथ आप बहुत इजीली कंफर्टेबल हो सकते हो। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, और एक वो फीलिंग भी होती है कि ये भी तो हमारे जैसे ही पाथ से आए हैं ना, तो उनमें वो अभी भी है, ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ है वो। आपसे ऑफ कैमरा वो आके बात भी करती थी,
1: अच्छा
0: टिप्स भी देती थी कि
1: मतलब जैसे आपका कोई सॉन्ग कैसा हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी हुई, उसके बारे में
0: खराब होता था ना तो वो आके दिलासा भी देती थी,
1: अच्छा
0: कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, हमारे साथ भी होता है। तो इसीलिए वो मतलब मेरी फेवरेट थी, क्योंकि बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है वो एज अ पर्सन एंड एज अ म्यूजिशियन दोनों।
1: अच्छा,
0: और श्रेया मैम की एक और बात की उन्होंने ना मुझे सबसे पहले आउट ऑफ सारे कंटेस्टेंट्स मुझे सबसे पहले उन्होंने फॉलो किया था इंस्टाग्राम।
1: अच्छा,
0: तो बहुत ही बड़ी बात होती है आजकल के टाइम में, क्योंकि इंस्टाग्राम इज अ वेरी मोस्ट यूज्ड ऐप, तो उस पर आपको श्रेया मैम फॉलो कर दें,
1: बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सबको फॉलो किया।
1: अच्छा,
0: और मैंने देखा कि उनकी मदर ने भी सबको फॉलो किया, मतलब
1: अच्छा।
0: उनकी मॉम, उनके डैड, आप देखेंगे वैसे भी इन जनरल जहाँ श्रेया मैम होती है ना कहीं वो प्रेजेंट होते ही हैं हमेशा पूरे टाइम। तो ये चीजें भी आपको बड़ी कनेक्ट करती हैं, क्योंकि एक माँ बाप भी उनके साथ है पूरे टाइम। उनकी मदर मुझे फॉलो करती हैं, बहुत स्वीट है उनकी मदर, सबको फॉलो करती हैं वो, सारे कंटेस्टेंट्स हैं और देखती रहती हैं, वो शो पे भी आई थी वो, तो बैठ के सबको अप्रिशिएट बहुत करती हैं।
1: ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी मदर आप लोगों से, मतलब उन्होंने फॉलो किया आप लोगों को, और मतलब इतना कितनी ब्लेसिंग्स दी होंगी
0: शोज ना, कि तभी तो श्रेया मैम ऐसी है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे होते हैं तो बच्चे तो अच्छे होते ही हैं।
1: ये तो है, और श्रेया मैम तो हम सभी की बहुत फेवरेट हैं, तो आप तो उनके साथ रहे हो, आई थिंक 6 months का टाइम तो आपने स्पेंड किया ही है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही कहूंगी मैं तो इसको। और जैसे आद्य, शो में हम देखते थे कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई एक्टर आ रहे हैं अपनी मूवी का प्रमोशन करने, मुझे याद है एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर आए थे, वो क्या एक्सपीरियंस है, मतलब वो एपिसोड तो आपका अमेजिंग था।
0: तो मैंने ना बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि रणबीर कपूर आएंगे ना तो प्लीज उस एपिसोड में कोशिश करके मुझसे गवा दो, क्योंकि आप हर एपिसोड में तो आप नहीं गा सकते थे, बिकॉज बहुत सारे कंटेस्टेंट्स शुरुआत में थे।
1: हाँ,
0: तो सैटरडे में जो बच्चे गाते थे वो संडे नहीं गाते थे, संडे दूसरे गाते थे, तो हमें इतना तो पता लग गया था कि रणबीर कपूर जो है वो सैटरडे को आ रहे हैं। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं कहा तुम नहीं डालोगे ना मुझे, मैं छोड़ दूंगी शो, मुझे बस रणबीर कपूर के में डालो, किसी के में मत डालना, रणबीर कपूर और SRK आएंगे तो मुझे डाले।
1: SRK आए थे आपके? नहीं आए।
0: तो रणबीर कपूर का जब पता चला हमको कि आ रहे हैं, तो सर प्लीज मुझे दे, तो उनका भी था कि ठीक है इसको तो देंगे, कंटेंट का भी था ना उनको तो मिलेगा। तो वो आए थे, तो मैं पहले तो मैं देख रही थी बस उनको, क्योंकि मैं बचपन से फेवरेट एक्टर है वो,
1: सभी के हमारे भी,
0: इतनी अच्छी एक्टिंग में, तो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज करी है उन्होंने। तो वो आए, तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं इनके लिए कुछ तो बोलूँगी, तो मैं बोलने लगी, उतने में वो स्टेज पर ही आ गए खुद ही,
1: तो एक तो ये भी उनकी भी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे वो। तो मैं ना एज इन जनरल उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, मैं नीचे अपने घुटनों पे बैठी थी, वो भी बैठ गए अपने घुटनों पे, एंड ही देन किस्ड माय हैंड आल्सो एंड देन ही हग्ड मी आल्सो एंड आफ्टर दैट बिना कहे कैप भी उन्होंने साइन करके मुझे पहनाई।
2: अच्छा।
1: तो और एक तो चीज़ जो ऑफ कैमरा हुई थी वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने कुन फाय कुन गाया था थोड़ा सा उनके लिए, तो मैंने जूते उतारे थे, वो उन्होंने अपने हाथ से जूते उठा के मुझे दिए हैं, मतलब बिना
2: बहुत ही कहेंगे कि डाउन टू अर्थ,
1: बहुत डाउन टू अर्थ थे। अमीनू का भी जो एक लड़की थी जो ब्लाइंड थी, बहुत अच्छा गाती थी हर सीजन में, उसके उन्होंने पैर छू लेते जाके।
2: अच्छा।
1: तो उनको कोई जरूरत नहीं है, बट इट्स हिज पर्सनैलिटी दैट इज डूइंग दिस। तो इसीलिए मैंने तो बोला ही था, देखो मेरा फेवरेट एक्टर ऐसे ही तो फेवरेट है नहीं, कुछ तो उसने बात होगी बंदे में जो मुझे मेरा फेवरेट है। तो मैं बहुत खुश थी वो पूरे टाइम, मैं बहुत खुश थी, मतलब इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे इतना चिढ़ाया गया कि तुम नहाई और हाथ पे किस किया था ना उन्होंने, या कैप लेके भाग जाते थे बच्चे कि नहीं हम रख लेते हैं।
2: वो कैप अभी भी है,
1: अभी भी है मेरे पास और मैं पहनती हूँ उसको कई बार।
2: वही मतलब कितने अच्छे पल हैं ये आपने जो इंडियन आइडल के टाइम बिताए हैं, तो बहुत सी यादें होंगी ना। तो कोई और भी ऐसी याद जो आप अभी तक मतलब कभी भूल ही नहीं सकते वो लाइफ में, इसके अलावा और क्या है?
1: दो मेमोरीज, एक तो जब संजय दत्त जी आए थे।
2: अच्छा।
1: तो उनसे तो सब डरते हैं, हाँ। डरते हैं सेंस वही
2: वो
1: उनका
2: पर्सनालिटी ऐसी, हाँ।
1: तो और मैंने तो मतलब मुझे बहुत ऐसे वो था कि भाई तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है, क्योंकि संजय दत्त इज वेरी
2: बिग नेम,
1: वेरी बिग नेम, एंड उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया।
2: अच्छा।
1: तो मैंने कहा ये तो भाई कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भगवान जी।
2: तब आपने कौन सा सॉन्ग गाया था?
1: तब मैंने गाया उनके पेरेंट्स को डेडिकेटेड था, नरगिस दत्त स्पेशल एपिसोड हुआ था, तो मैंने तीन गानों का मिक्स गाया था, एक तो नहीं दो गानों का मिक्स गाया था सॉरी, एक तो एक गजल थी एंड दूसरा था सुन मेरे बंधुरे, दैट इज अ सॉन्ग बाय आरडी बर्मन जी, तो ये गाया था मैंने और वो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ सामने से आके लिया, मैंने भी ले लिया उनका। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। मैंने पिंच भी किया था अपने आप को कि ये सब सच में हो रहा है। और सेकंड जब मुझे गोल्डन माइक मिला था, मतलब मैं सच में बता रही हूँ मैं इस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि 100 बच्चों में से 10 बच्चों को गोल्डन माइक मिलता है।
2: इसमें गोल्डन माइक का क्या कॉन्सेप्ट रहता है थोड़ा सा आप हमें बताइए?
1: तो बेसिकली अगर आपको गोल्डन माइक मिला है तो टीवी राउंड के बाद ना एक और राउंड होता है कलिंग राउंड,
2: ओके,
1: व्हिच इज नॉट शोन ऑन टीवी। कलिंग राउंड में बच्चे जो जिनको टिकट मिला है ना, वो बच्चों में से कुछ बच्चे एलिमिनेट होते हैं।
2: अच्छा।
1: जो कि टीवी पे वो राउंड नहीं दिखाया जाता है, एंड फिर जन जो टीवी राउंड आता है उसमें डायरेक्टली जो बच्चे कलिंग सर्वाइव करे एंड जिनके पास गोल्डन माइक है वो आते हैं। तो वो राउंड ना बहुत क्रूशियल राउंड है, जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल जाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो अगर आपको गोल्डन माइक मिल गया तो आपकी सेफ्टी होती है बहुत ज्यादा कि नहीं भाई
2: टॉप 15
1: के उसमें कम्पीट करने के लिए मैं लाइन में। तो वो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट, मैं आपको सच में बता रही हूँ मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मुझे गोल्डन माइक मिला था, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने बहुत रिजेक्शन फेस किया ऑडिशंस में, उसके बाद सिलेक्ट होना आना और गोल्डन माइक मिल जाना, जो कि बहुत कम बच्चों को मिलता है,
2: बहुत बड़ी
1: बात, नहीं एक्सपेक्टेड था। मुझे था भगवान बस टिकट दिलवा दो, बस सिलेक्ट करवा दो, रिजेक्ट ना हूँ बट हो जाऊंगी तो भी मुझे कोई गम नहीं है, बट गोल्डन माइक तो आई नेवर थॉट कि इट विल हैपन।
2: तो गोल्डन माइक तो अभी भी सजाया हुआ होगा अपने रूम में।
1: सजाया हुआ है, मैं मेरे हाथ कांप रहे थे मैंने वो लिया। अच्छा। था क्योंकि बचपन से भी हम देखते हैं ना, तो गोल्डन माइक जिसको मिलता था ना, हम टीवी पे देखते कूद जाते थे, अरे इसको मिल गया गोल्डन माइक, वो आपको मिल जाए तो फिर तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो वो मेरे लिए एक बहुत कोर मेमोरी है, जो सबसे बड़ी मेमोरी मेरे लिए एक्चुअली यही है कि मुझे जब गोल्डन माइक मिला।
2: नहीं
1: मैम भाग के आई थी मुझे गोल्डन माइक।
2: अच्छा। और ये सब जब चल रहा था तो आपकी मदर आपके साथ थी या फादर थे? साथ में कौन गया हुआ था?
1: तो वहाँ पे एक पेरेंट रह सकता था।
2: अच्छा।
1: दोनों नहीं रह सकते थे। तो मेरी मॉम थी, तो वो ऑफ स्क्रीन देख रही थी।
2: उनकी भी वो भी कितनी एक्साइटेड था। नहीं पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा मतलब कहेंगे कि एकदम सपना ही है जिन्होंने इतनी मेहनत की है अपने बच्चों के लिए।
1: मेरा ना इंडियन आइडल में ये भी एक्चुअली था कि
0: मदर स्पेशल एपिसोड आता है ना, तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी वहाँ बैठे और मैं उनके लिए गाऊँ और वो रोए और फिर मैं भी रोऊँ. तो वो एक होता है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी यार मैं कब उन माओं के साथ बैठूँगी. तो वो एक रह जाती है कुछ बातें आपके साथ.

0: ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी आवाज है आपकी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सो आद्या, जैसे आप इंडियन आइडल में 6 महीने तक रही, तो वहाँ पे सैटरडे संडे जो ये शूट रहता है, मतलब कैसे होता है वो, आप लोगों को गाने प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम मिलता है, और फिर शूट कैसे चलता है, पूरा दिन चलता है या सिर्फ रात रात में या कुछ ही घंटों का होता है, तो कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा वो भी बताइए और शूट के बारे में बताइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है वहाँ पर, तो हम बहुत जानने के लिए एक्साइटेड है।
1: करेक्ट, तो 2 दिन नहीं होती थी शूटिंग, हमारे पास बहुत कम टाइम होता था। अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत में तो बच्चे ज्यादा थे, जब तब हम लोग एक ही एपिसोड में गाते थे, तो बेसिकली क्या होता है दोनों एपिसोड एक ही दिन में शूट होते।
0: अच्छा।
1: तो क्योंकि सेम डे 2 अलग अलग गेस्ट आते हैं, फर्स्ट हाफ में फर्स्ट एपिसोड शूट होता है, सेकेंड हाफ जो 2 बजे के बाद है उसमें दूसरा एपिसोड शूट होता है। तो जब स्टार्टिंग में जब अलग अलग एपिसोड में होते थे, तो तब तो एक ही गाना प्रिपेयर करना होता था या 2 गाने मैक्स, तो तब हमें गाने लॉक हो जाते थे बाय, आप ले लो हमारा हर मंडे शूट होता था, तो गाने लॉक हो जाते थे बाय वेडनेसडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे कभी कभी। तो आप सोचो थर्सडे लॉक हुए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन है हमारे पास 2 गाने प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, जो कि आपको पूरे टीवी के सामने गाने हैं, जो आपने कभी सुने नहीं है शायद अपनी जिंदगी में। और 4 दिन वैसे लगते हैं कि ज्यादा नहीं भाई, बहुत कम होते हैं।
0: मतलब सॉन्ग आपको मिलता था वेंसडे या थर्सडे को?
1: मोस्टली थर्सडे।
0: ओके।
1: थर्सडे तक मिलता था क्योंकि गेस्ट कौन आ रहा है,
0: हाँ, वो तभी पता चलता,
1: वो तभी पता चलता था, क्योंकि तभी टाइम तो चाहिए लॉक करने के लिए किसी को भी, क्योंकि सबके अपना देखना होता है उनको भी, किसको बुलाना है किसको नहीं। तो थर्सडे तक, कभी कभी तो हमें फ्राइडे मिले हैं गाने।
0: अच्छा।
1: मंडे शूट है। Okay. और 1 दिन पहले टेक्निकल होता है। टेक्निकल में व्हाट हैपेंस इज, आपको जहाँ पे शूट होता है ना वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ आपको गाना होता है एक बार आउटफिट चेक के लिए।
0: Okay.
1: आउटफिट की फिटिंग्स होती है उस दिन, और प्लस आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कैसे साउंड कर रहे हो, ताकि आप 1 दिन बाद अच्छा परफॉर्म कर सको।
0: Okay.
1: आपके माइक के सेटिंग वगैरह सब उस दिन फिक्स हो जाते हैं। तो आप ले लो हमारे पास कभी कभी तो 2 दिन होते थे, और 3rd डे टेक्निकल है, फिर 4th डे शूट है। मोस्टली ऐसे ही होता था, बहुत डिफिकल्ट था, मतलब हम ऐसे थे क्या गाएंगे हम, गाना तो हम याद ही करने में तो डर, क्योंकि लोग, मेरी पावर अच्छी थी, मैं भूलती नहीं थी, कुछ कुछ बच्चे बेचारे फंसे पड़े
0: भूल जाते
1: हैं क्या लिरिक्स है, भूल गए।
0: और कभी कभी तो 2-2 गाने भी एक साथ गाए,
1: दो गाने एक साथ। अभी तक तो ठीक है, जब ऐसा होने लगा बच्चे कम हो गए, तो हमें दोनों एपिसोड में गाना होता था, तो आपके पास 4 गाने
0: संडे सैटरडे,
1: 4 गाने हैं, ठीक है। ऊपर से जब कोई एंट्री करता है उनके लिए एक मेडले होता है, उसके गाने अलग। हमने कहा हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको 5-6 गाने 3 दिन में करने हैं, वेरी लेस टाइम, सुबह से रात खाना नहीं खा पा रहे हैं। और हमारे मेंटर्स लेकिन बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई बच्चा नहीं कर पाता अगर हमारे मेंटर्स नहीं होते हमारे।
0: तो नीरज सर के साथ और भी कोई मेंटर्स थे?
1: हाँ, तो नीरज सर थे, उनके अंडर मंगल सर और धर्मेश सर थे।
0: ओके।
1: तो 3 हमें गाइड करते थे थ्रू आउट। तो नीरज सर तो घर ही नहीं जाते थे, सोचो उनको क्या जरूरत है, लेकिन वो हमारे लिए रात रात तक रुके हुए हैं। एक रामायण का एपिसोड हुआ था, टेक्निकल के 1 दिन पहले हमने गाने प्रिपेयर किए, लिटरली कुछ कुछ का तो बेचारों का टेक्निकल के दिन चेंज हुआ है। तो आपको ये सिखा देता है उस टाइम पे कि जो लोग बोलते हैं ना हमें अभी 1 महीना चाहिए गाना करने के लिए, आप सही है, लेकिन आपको हमेशा जिंदगी में ये मौका नहीं मिलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वो एक पावर बढ़ती है इंसान की कि हम करें। और सबसे यहाँ पे आप मेन चीज सीखते हो, आप बहुत पुराने गाने सीख लेते हो। मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो यो यो हनी सिंह और आतिफ असलम अरिजीत सिंह ओनली,
0: मतलब पुराना तो लेना देना ही नहीं था।
1: अब वो जो गाना बोल रहे हैं, मैं कहा ये कौन सा गाना है भाई, कौन से जमाने का गाना दे दिया आपने मुझे। अब या पहले तो मैं उसको समझ रही हूँ कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है, लिरिक्स याद करना, फिर गाने में बड़े टफ गाने।
0: तो गाना, जैसे पुराना गाना मिला आपको, तो आप कितनी बार उसे सुनते थे?
1: आप ले लो 1000 बार कम से कम, क्योंकि साउंड, अब मैंने आपको बोला ना

0: नए जमाने के सुन रहे हैं ना सिर्फ, उनका एक साउंड बन जाता है जो आप पुराने गाने आप अच्छे ही नहीं साउंड करोगे।
1: बिल्कुल,
0: पुराने गानों से अच्छे गाने हैं नहीं इस पूरी दुनिया में। मैं आपको ये बोलूंगी, मेरी जो आवाज इम्प्रूव हुई है ना इस हद तक, वो सिर्फ पुराने गानों की वजह से।
1: ओके,
0: क्योंकि उन बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग, बहुत अच्छा गाते
1: हैं। तभी तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड,
0: खतरनाक गाते हैं। मतलब मैं सही बता रही हूँ, मुझे लता जी के बारे में तक मुझे उतना नहीं पता था जब मैं गई थी, आप सोचिए। तब मैंने इतना सीखा है ना वहाँ जाके, मेरी सॉन्ग बैंक बढ़ गई है। अब जो लोग ने पहले से सुना हुआ है उनको तो चार दिन में करने में दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि उन्होंने सुन रखा है। मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी, बट नीरज सर पूरे टाइम लगे रहते थे, हेल्प करूँगा, सब मीनिंग समझाते थे गानों का, सब करते थे। तो और शूट शुरू होता था सुबह 9 बजे एंड इट यूज टू एंड बाई 1 AM, 12 AM समटाइम्स, 2 AM ऑल्सो समटाइम्स। कभी कभी टेक्निकली 12 बजे ख़त्म होता था, हम होटल आते थे 1 बजे तक, अगले दिन सुबह आपको 6 बजे जाना है।
1: अच्छा, बहुत बहुत हेक्टिक भी रहा होता है, लेकिन वो टीवी पर इतनी चीज़ें दिख नहीं पाती के,
0: ये कहाँ
1: दिखा। हाँ, मतलब के बैकग्राउंड में कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल है आप लोगों का भी। और यहाँ तक कि जैसे आपने बताया सॉन्ग्स के लिए दो दो दिन पहले भी आपको गाने मिले
0: चेंज तो, प्रिपेयर कर लिया। हाँ, नहीं अब चेंज है गाने।
1: अच्छा,
0: ये हुआ है।
1: और कौन सा गेस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग्स मिलते थे। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता था कि आपको आपकी वॉइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स मिलते थे या कुछ भी दे देते थे वो?
0: नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि मेंटर्स डिसाइड करते थे सॉन्ग पर। ऐसा ना, बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो खराब गा रही है क्योंकि इसको गाना गंदा मिला है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपसे गाते नहीं बन रहा गाना।
1: हाँ,
0: मतलब मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ उस टाइम पे। तो मैं लता जी का गाना कोई भी गाती हूँ तो मैंने जो सुना अपने, मुझे उतने नहीं अच्छे लगते अब, क्योंकि अब मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गाना कहाँ से ख़राब हो जाएगा, आप गा नहीं पा रहे, ये है मेन। तो ये तो बात ही गलत है कि इनको गाना इनके हिसाब से नहीं मिल रहा। वो लेकिन वो कोशिश करते थे बहुत हद तक कि लंबी जुदाई जैसे मुझे दिया उस टाइम पे, जैसे मेरा टेक्सचर था, सब था, तो लंबी जुदाई बहुत अच्छा सूट करता है गाना मुझ पे, लंबी जुदाई दिया। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किया है। मतलब उन्होंने मुझे ऐसे गाने भी दिए हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं गाऊंगी। मैंने इश्क दल अगया रोक दिया था, जो अनुराधा पौडवाल जी का गाना है। लता जी के गाने भी मुझे दिए थे, जो कई लोग ऐसे बोलेंगे कि लता जी के गाने तो गा ही नहीं सकती।
1: हाँ,
0: तो उस टाइम पे तो मैं मानूंगी, अब नहीं मानूंगी मैं ये बात। पर हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि, और ये लोग, ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप इसको हिसाब से नहीं दिए इसलिए ऐसा गा रही है, नहीं, वो फिर आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है कि एक पॉइंट दिखा रहे हैं उस बात का। तो वॉइस क्वालिटी के हिसाब से वो देते हैं जहाँ वो दे सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको
1: आपके हमेशा वैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल,
0: क्योंकि फिर अब फर्क क्या रह जाएगा,
1: और फिर कंपटीशन है ना बेसिकली, तो उसमें आने का क्या फायदा अगर आप हर तरीके के गाने नहीं गा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो आद्या, एक चीज और, जैसे आप टॉप 6 में आए थे, राइट? तो टॉप 6 में आने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था इंडियन आइडल के टॉप 6 में आना, तो क्या उसके बाद आपके सक्सेस के दरवाजे खुले या फिर कहीं ना कहीं आपको भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है?
0: देखिए, दरवाजे तो खुले, मुझे शेखर सर ने ऑन शो आके गाना दिया।
1: यस,
0: मतलब जो कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग फॉर मी।
1: और तब तो अभी शो चल ही रहा था,
0: शो चल रहा था, और उन्होंने शो चलते में मेरा गाना रिकॉर्ड भी करा दिया, शो चलते में रिलीज भी करा दिया।
1: अच्छा,
0: तो मतलब 3 मार्च को फिनाले था, 1 मार्च को मेरा गाना रिलीज हो गया।
1: ओके,
0: तो अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, अगर आप मेहनत करोगे तो आएगी। लेकिन हाँ, स्ट्रगल तो, आप एक म्यूजिशियन हो वो आपकी जिंदगी भर रहेगा। आप बहुत अच्छे, सपोज आप अभी, मैं श्रेया घोषाल जी बन गई, लेकिन अगर मैं उसे मेंटेन नहीं रखूंगी तो मैं वापस यही नॉर्मल हो जाऊंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गंदा गाती हूँ या मैं अच्छी म्यूजिशियन नहीं हूँ, वो किस्मत की बात है, या आपने कितनी मेहनत अपने आप को बिल्ड मेंटेन रखने में लगाई है उसकी बात है। ये डिफाइन नहीं करता कि आप कैसे म्यूजिशियन हो। मैंने देखा है इतने अच्छे गाते हुए लोग, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। तो ये मैं कहूँगी कि ये तो स्ट्रगल हर म्यूजिशियन की जिंदगी में जिंदगी भर रहेगा, जब तक आप मरते दम तक ही रहेगा।
1: हाँ,
0: ये एक्टर, डांसर, सिंगर, जो ऐसी प्रोफेशन है ना, इनके जिंदगी में लाइफ टाइम वो स्ट्रगल रहेगा कि आपको ऊपर कैसे रहे, जो कि बिल्कुल ये डिफाइन नहीं करता कि आपकी कला में आप कितने माहिर हो, पर दुनिया को अगर आपको ऐसे दिखाना है कि आप मेरा नाम जानते हो, ये स्ट्रगल आपकी जिंदगी में,
1: तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा एंड तक वो,
0: तो तभी तो विनर जो जीतते हैं कहाँ है।
1: हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जैसे इंडियन आइडल हो गया या सारे गामा पा जो भी रियलिटी शोज है, इनके विनर्स तो बस उसी टाइम रहते हैं, ज्यादा हम नहीं जानते हैं। तो
0: और जो वो सच में बहुत अच्छा गा रहे हैं, कुछ तो अच्छा गा रहे हैं, कुछ मैं ये भी बोलूंगी कि भटक गए, क्योंकि सर भी चढ़ जाती है कभी कभी, सक्सेस बहुत इजीली चढ़ती है, मतलब मैंने तो देखा है लोगों को।
1: अब जैसे एग्जांपल लिया जाए तो अरिजीत सिंह जो है,
0: अरिजीत
1: वो फेम गुरुकुल में आए थे,
0: फेम गुरुकुल में आए और उसके बाद वो कहीं नहीं आए, 8 साल बाद वो आए,
1: बिल्कुल गायब, एग्जैक्टली
0: क्योंकि और उस टाइम पे जैसे अरिजीत सिंह गाते थे ना, उस टाइम पे आप कोई नहीं बोल सकता कि अब वो ऐसे गाते हैं, तो इतना इम्प्रूवमेंट,
1: कितना फर्क है उनकी वॉइस में,
0: पता बहुत चलता है। आप एक बार रियलिटी शो में गए ना, आपको पता पूरा चल जाएगा कि आप कहाँ हो, क्या गाते हो, क्योंकि पूरा आपको पता चल जाएगा। वैसे आप गाओगे कोई बोलेगा नहीं सुनता कोई, जब आपको बहुत लोग बोलेंगे ना, जो बड़े बड़े जो जानकार है बोलेंगे कि आपको ये वर्क करना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मैं कहूँगी। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या गा रहे हैं, और उनको लगता है बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत ख़राब गा रहे हैं, तो ये बहुत, मैं तो बोलूँगी कि अब जैसे विनर है उसमें से कुछ लोग बहुत अच्छा भी गा रहे हैं, लेकिन अब वही है ना, नहीं जानते, क्योंकि मेंटेन ऊपर बिल्ड करना अपने आप को बहुत मुश्किल है। इतने लोग हैं आजकल, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं अब सब धीरे धीरे, तो मैं कहूँगी कि ये स्ट्रगल तो जिंदगी भर का है, कभी रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें,
1: मतलब मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी।
0: यस,
1: वो जरूर,
0: मेहनत सिर्फ गाने पे नहीं करनी, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सिर्फ गाने पे करनी होती तो बहुत लोग, कितने अच्छे अच्छे लोगों को मैं जानती हूँ, पर वही है कि आपको अपना सोशली भी ग्रो करना पड़ेगा, वो ग्रो नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं जानेगा।
1: हाँ,
0: ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का,
1: बिल्कुल। सो आद्या, इंडियन आइडल से जब आप एलिमिनेट हुए तो आपको कितनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा, मतलब कुछ अपने अंदर से नेगेटिव हुए आप, या फिर बहुत माइंड अपसेट हो जाता है और भी चीज़ें कि मैं वहाँ तक गई और आगे नहीं विनर बन पाई, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
0: कि मतलब मुझे ना ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं बोलूँ मतलब वर्ड सही नहीं है, बट औकात से ज़्यादा मिला था।
1: ओके,
0: मतलब मैंने तो सोचा था कि सिर्फ ऑडिशन हो जाए, टॉप 15 हो जाए, फिर निकाल दो कोई बात नहीं, पर नहीं, फिनाले तक भी मैं पहुंची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ, वो रहता है कि इतने करीब आके हो गया, बट खुद को भी पता है ना कि कितनी चीज़ें सुधारनी है, तो वो चीज़ का मुझे पता था कि मुझे अभी ये इस पे वर्क करना है, तो वो आपको पता होता तो फिर आप आउट होते तो
1: बुरा नहीं लगता,
0: नहीं लगता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं थी, मैं बहुत कुछ सीख के गई, इनफैक्ट
1: मतलब टॉप 6 में आने के बाद भी एक वो ब्लेसिंग ही रही आपके साथ।
0: मतलब हम में से किसी ने नहीं सोचा था, मेरे फैमिली में भी, कि टॉप 6 तक हो पाएगा।
1: हाँ, नहीं, ये काफी बड़ी बात है। आद्या, फिर इंडियन आइडल से निकलने के बाद आपको कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले, क्योंकि मैंने एक सुना है जिसमें अनु मलिक जी ने म्यूजिक दिया है, तो वो क्या था, वो आपको कैसे वो अपॉर्चुनिटी मिली?
0: तो आइडल के बाद मुझे जी वालों के साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे 3 सॉन्ग्स दिए थे।
1: अच्छा।
0: तो तीनों अनु मलिक जी ने ही कंपोज करे थे, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे आफ्टर शो मिली, तो इट वाज आल्सो गुड स्टार्ट। तो 3 बड़े अच्छे गाने उन्होंने मुझसे गवाए थे,
1: मतलब शो में रहते रहते शेखर सर के साथ, शेखर सर के साथ आपको मिले थे, और शो के बाद अनु मलिक जी के बाद, दोनों ही बहुत बड़े नाम है अपने आप में, तो आपके वो सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, और जैसे आद्या आपने बताया आप इंडियन आइडल में, आपने तो देखो स्टार्टिंग से ही देखी वो चीज़ के कैसे आप ऑडिशंस में गए, और आप पहले भी बहुत से ऑडिशंस आपने दिए हैं, तो अब जैसे नॉर्मल कोई एक जो सिंगिंग सीख रहे हैं, आजकल बहुत लोग सिंगिंग कर रहे हैं और हर किसी का सपना होता है कि टीवी पे आना है, चाहे फिर वो इंडियन आइडल हो, सारे गामा हो, या कोई भी और रियलिटी शो हो, तो उसका मतलब क्या है ऐसा एक फर्स्ट स्टेप मतलब स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा सा बताओ, जो जनरल ऑडियंस को नहीं पता, पब्लिक को नहीं पता कि हमें कैसे ट्राई करना चाहिए. क्योंकि मैंने भी देखा है कि हम लोग ऑडिशंस में जब जाते थे बचपन में, क्योंकि मैं खुद भी एक म्यूजिशियन हूँ, सो वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि हिम्मत ही नहीं हो पाती आगे. कभी कभी तो नंबर रात को 11-11 बजे आता है, सुबह से 5 बजे से लाइन्स लग जाती हैं. तो इसके बारे में आप बताओ कि कैसे हम उसमें अप्लाई, हमारे जो भी म्यूजिक सीख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड करिए.
0: तो इससे पहले मैं ये बोलूँगी कि नॉर्मल लोगों का होता है.
1: ओके,
0: आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट. मेरा कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी इंसान से मुंबई में, तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ म्यूजिक में. मेरी फील्ड, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है म्यूजिक में. तो कई लोग तो ये भी सोच के जाते हैं ना कि अरे नहीं होता नॉर्मल लोगों का, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, नहीं चाहिए.
1: तो जब तक आपकी कोई जानकारी नहीं है तो आप नहीं जा सकते,
0: ये सब गलत है.
1: अच्छा,
0: और टाइम लगेगा आपको. हाँ, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है तो आपको समय बहुत लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका समय आएगा नहीं. तो मैंने 9-10-11 साल की एज से लगातार ऑडिशन दिए हैं, और जब मैं 17 साल की हुई तब मुझे पहली बार मैं आई हूँ टीवी पे. तो मैं कम से कम 7-8 साल कंटिन्यूस मैंने ऑडिशन दिए हैं. मेरी मम्मी के साथ बार बार रिजेक्ट, बार बार रिजेक्ट. एक टाइम पे ना जो मुझे हमारे ड्राइवर थे वो छोड़ने आते, उन्होंने भी बोल दिया अरे आप कहाँ लेके जाते हो इसको, सर सिलेक्शन तो होता नहीं है. मेरी मम्मी मुझे उस साल, उसके अगले साल से मेट्रो से लेके जाने लगी कि कोई बोले नहीं. हाँ, मेरी बेटी को नहीं बोले कोई. तो होता है. और ऑडिशन का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ. तो जब आप जाने लगोगे ना, आप एक चेहरा फिर आपका याद रह जाता है.
1: अच्छा, जो लोग ऑडिशंस लेते हैं
0: हाँ, उनको रहे कि ये तो हर साल आती है ना, वो होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, लोग याद रखते हैं.
1: हाँ,
0: आपका जब टाइम होगा तभी होगा. तो हमें भी वही जो डेट्स दी जाती है ना, तो ये डेट्स हर जगह सर्कुलेट होते हैं, टीवी पे भी आता है जो हाँ, टीवी देखते हैं, फोन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कंटिन्यूसली आते रहता है कि इस तारीख पे स्कूल में ऑडिशन है. आप जाओ, लाइन में लगना पड़ता है. मैं सुबह 7 बजे से लाइन में लग के रात के 9 बजे नंबर आया, मेरा भी ऐसा हाल हुआ है. पर एक समय जब आप जाने लगते हो ना, तब आपका ऐसे होने लगता है कि कुछ राउंड्स ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं फोन के थ्रू ही. मतलब फोन पे वो वीडियो मांगते हैं आपके गाते हुए. हो सकता है आपके 2-3 लेवल उसी में क्लियर हो जाए, आप इतना अच्छा गाते हो, और आपको डायरेक्ट उधर जाना हो 4th लेवल में जो लास्ट लेवल है, ऐसा भी होता है. तो मेरे ख्याल से प्रोसेस वही है, क्रू मेंबर्स से आप लोग बात करो, आप लोग अपना जो वीडियो भेजते हो उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन हो. और कोई तरीका नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसा कोई तरीका, हमने भी वैसे ही किया है.
1: हाँ,
0: और वैसे ही सिलेक्शन होता है सबका.
1: मतलब कोई अगर ज्यादा ये नहीं हो सकता कि आपकी जब तक जानकारी नहीं है तो ही आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं.
0: झूठ है. और पैसे लेते हैं कई लोग तो ये बोलते हैं, ये तो एकदम झूठ है. मतलब नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे थे भी नहीं देने को, कुछ नहीं था ऐसा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वैसे लेते हैं कुछ ऐसा है. इट्स जस्ट नॉर्मल, बट आपको टाइम बहुत लगेगा. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. जब बताओ, मतलब मम्मी मुझे मेट्रो से लेके जाने लगी, ऐसा हाल हो गया था. तो टाइम लगेगा, बट हो जाएगा.
1: बट हो जाएगा. मतलब अगर ऑडिशंस आपको पता है कि हो रहे हैं तो जाना चाहिए.
0: जाना चाहिए,
1: है ना, क्योंकि
0: जाओ देखने के लिए जाओ. हाँ, कैसा गा रहे हैं लोग, क्या गा रहे हैं.
1: कभी कभी बहुत सी चीज़ें दूसरे को देखकर ही समझ आती हैं. तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है. आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसका, तो आपको भी वो चीज़ क्लियर नहीं होगी. आप भी ऐसे रूमर्स में ही भटकते रहेंगे, मुझे लगता है.
0: और फिर आपको लाइफ में ना एक वो मिल जाता है कि आप इतने रिजेक्ट हो चुके हो, आप कोई करेगा ना तो आप एकदम दुख में नहीं जाओगे.
1: हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा.
0: आजकल झेल नहीं पाते.
1: हाँ,
0: बहुत छोटी चीज़ है ये. तो बहुत रिजेक्शन मिलेंगे लाइफ में, उससे आप एक वो हो जाते हो, अकस्टम हो जाते
1: हो. और आधे आपके अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मतलब हमें क्या कुछ आपके फैंस को सुनने के लिए मिलेगा कुछ नया, उसके बारे में बताओ.
0: तो आफ्टर आइडल मेरा एक और पहलू से मैं भी रूबरू हुई, दैट इज कंपोज करना, लिखना, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं अभी कर पाऊंगी उसके लिए, क्योंकि वो खुद से आता है, आप कर नहीं सकते, मजबूरी नहीं कर सकते. तो मैं अभी एक्चुअली उसी में लगी हूँ, मैं अपने गाने लिख रही हूँ, कंपोज कर रही हूँ, एंड होपफुली कुछ 2-3 महीनों में मैं उन्हें रिलीज करना शुरू करूँगी. तो आई एम वर्किंग ऑन माई ओरिजिनल्स, एंड आई फील क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन अभी बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिस लेवल पे बढ़ रहा है ना ऊपर, आई फील इन द कमिंग टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज गोइंग टू रूल. क्योंकि फिल्मों में म्यूजिक लोग इसी पे रह जाते हैं, प्लेबैक नहीं
1: और कवर सॉन्ग्स बना के
0: नहीं मिलेगा प्लेबैक आपको, नहीं मिलेगा। चलो आप अपना इंडिपेंडेंटली कर लो ना, आपको रोका नहीं है किसी ने। अब आजकल इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा गाते हैं, उनको नहीं देता कोई प्लेबैक, नहीं देता है, पॉलिटिक्स तो है। तो आप अपना इंडिपेंडेंट,
1: लेकिन उन्होंने अपना भी नाम बनाया हुआ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसे हैं सोशल मीडिया के जरिए आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है
0: बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं इतने लोगों को देखा है जो 0 से 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए लोगों के सिर्फ गागा के पोस्ट करने से।
1: बिल्कुल,
0: तो इट्स वेरी इजी, एंड इजी तो नहीं कहूंगी मैं, मतलब अगर आप मेहनत से करो ना तो हो जाएगा। तो
1: बिल्कुल। सो आद्या, लास्ट में अब आप हमारे दर्शकों को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपके जरिए वो लोगों तक जाना चाहिए?
0: मैसेज तो मैं ये, मतलब चाहे आप म्यूजिशियन हो चाहे नहीं हो, मैं सबसे बड़ा तो ये दूंगी आप अच्छे इंसान रहो, बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस फील्ड में आने के बाद एकदम डिफरेंट हो जाते हैं,
1: बदल जाते हैं।
0: वो मत हो, आप अपने वैल्यूज पे बहुत स्ट्रांग रहो, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आपका हर सेकंड पे, हर स्टेप पे टेस्ट होगा कि आप कैसे हो, और आपको हर सेकंड में तोड़ेगा, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि आपके क्या गोल्स हैं व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। मतलब मैं ये मैसेज दूंगी कि आप अच्छे इंसान रहो, अपने वैल्यूज कभी भूलो मत, और अपनी फील्ड, आपके जो गोल्स हैं वो याद रख के उन पर बहुत मेहनत करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
1: ओके, सो लास्ट में अब आद्या ने हमें बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सो अब लास्ट में आद्या, मैं चाहूँगी कि जिस सॉन्ग की वजह से आप से हम लोग रूबरू हुए, कनेक्ट हुए, जो आपका वो पहला ऑडिशन का गाना था, आप एक बार वो ज़रूर गा के जाएँ आज, क्योंकि हमारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि आद्या मिश्रा का वो वाला सॉन्ग फिर से सब वो आपकी यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च करेंगे, देखेंगे, तो एक बार आप जरूर वो गुनगुनाइए।

0: वाओ, बहुत ही अमेजिंग, वेरी नाइस आद्या. मतलब ऐसे लग रहा है ओरिजिनल से भी ज़्यादा प्यारा आपने गाया है. अमेजिंग. सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. और आज की जो हमारी गेस्ट हैं आद्या मिश्रा, उन्होंने बहुत ही सुंदर टिप्स दी हमें, हमारे लिसनर्स को, हमारे दर्शकों को, और इंडियन आइडल का जो अपनी जर्नी हमारे साथ साझा किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आद्या. और हम आपको विशेज़ देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे कि आप ऐसे ही खूब अपना, अपने परिवार का, हमारा, हमारे शहर का नाम रोशन करिए. तो बहुत बहुत हम सब की तरफ से आपको बधाई, और हम चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत और अच्छे आए, आपके फैंस को, हम लोगों को सुनने के लिए मिले. तो जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इसी शो क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाज़त, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
2: Aaja tujhe bhi main kara du taman che pe disco.
3: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di. Assalamu alaikum dosto, main hu Arjun Sagar. Aaj ka hum lekar ke show Voice of Youth. ये शो अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हर बार हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बातें करके, गुफ्तगू करके कुछ कुछ चीजें निकलवाने की कोशिश करते हैं. आज हमारे साथ हैं मिस जैस्मिन. जैस्मिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि जैस्मिन एक एक्टर है, जैस्मिन एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, और काफी फेमस, बहुत कम टाइम में अच्छी खासी पहचान इन्होंने अपनी बनाई है. जैस्मिन से आज हम बात करेंगे कॉन्टेंट इकोनॉमी की, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है प्रोसेस. लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे जैस्मिन का. जैस्मिन स्वागत है.
4: हेलो, हेलो सागर भैया.

0: कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया जैस्मिन। थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए, अपने शब्दों में।
1: पहले तो जैसा आपको पता है, मेरा नाम जैस्मिन है, और पर ऑनलाइन मेरे को जस्सू भाई के नाम से ज्यादा जाना जाता है। जस्सू भाई या निब्बी का कैरेक्टर मेरा काफी फेमस है, तो उस हिसाब से। और बाकी कंटेंट बनता कैसे है तो ये मैंने
0: इसके
1: बहुत
0: बारे में
1: अपने
0: हम बाद में
1: अजीज
0: बात
1: मित्र से
0: करेंगे।
1: सीखा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
0: पहले तो हम आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप क्या करती हैं और कैसे आपने कंटेंट के बारे में सोचा, ये थोड़ा बताइए।
1: अच्छा, मैं पहले सेल्स लाइन में थी, मैंने सेल्स में काम किया हुआ है। तो सेल्स में काफी अच्छा पैसा मिलता है। आप जितना इंसान को पागल बना पाओ उतना अच्छा पैसा मिलता है, कहा जाता है वहां पे। तो मैं आपको आपकी किडनी ही बेच सकती हूँ। 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने स्कूल करने के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी, और मैंने ओपन से SOL से वो किया है कॉलेज। तो फिर मैंने जॉब किया, जॉब से जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गई तो मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि तुझे कुछ करना चाहिए, क्रिएटिव है तू, तेरी जबान जिस तरीके से चलती है ये वो फलाने का ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते, एक बार ट्राई लेके देखते हैं। तो पहले मैंने ग्राउंड वर्क से चालू किया, मैंने अपने एक मित्र है उनकी बड़ी हेल्प करी चीजों में, और हेल्प भी किया, उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने उनसे सीखा, और फिर आज मैं यहाँ पे हूँ। वो भी बहुत अच्छे कॉन्टेंट क्रिएटर है, काफी फेमस है, उनका नाम तैयब है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस
1: हाँ
0: तरफ आएंगे दोस्तों। फिलहाल आपने जाना जैस्मिन के बारे में, जैस्मिन की जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है। अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में हम लोग आगे बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक, मैं हूं सागर। शो यहां पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ। आज हमारे साथ हैं ऑनलाइन जस्सू भाई के नाम से काफी फेमस क्रिएटर जैस्मिन। शो है वॉइस ऑफ यूथ और हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं स्किल सेट की। जैस्मिन, बात करना चाहूंगा कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, शुरू से पूरा प्रोसेस बताइए हमें कि यहाँ से शुरू होता है, ये थॉट होता है, ऐसे इसको लिखा जाता है, बिल्कुल बेसिक की तरह जैसे कि आप पांचवी क्लास के किसी बच्चे को समझा रहे हो।
1: बेसिकली मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व की चीजें और मुझे जैसे बताई गई, जैसा मैंने सीखा आप लोगों से या आपके साथ रहने वाले लोगों से, तो मैंने देखा कि आपके माहौल से ही आता है ये। आप जिस माहौल में उठ बैठ, क्योंकि मुझे पता है सब फैमिली में ऐसा कोई ना कोई खड़ूस फूफा, चाची, मामी, ऐसा कोई ना कोई होता है। तो पहले तो ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए कि आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को। दूसरा, फिर आप उसको कैसे एग्जेजरेट करके अपने स्टाइल में बना सकते हो, ये प्रोसेस होता है। दूसरा, फिर हम लोग डिस्कस भी करते हैं आपस में। बहुत बार हुआ है कि आपने भी डिस्कस किया, मैंने भी किया, कि मेरे दिमाग में ना ये थॉट आया है कि बेस्ट फ्रेंड वाला ऐसा कुछ बनाते हैं या गर्लफ्रेंड वाला कुछ बनाते हैं। जैसे मेरा टॉम बॉय कैरेक्टर इसलिए फेमस है क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ कि मुझे पार्टियां करना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, और मैं बहुत जल्दी गुस्सा भी होती हूँ। जैसे टॉम बॉय का कैरेक्टर की बहुत जल्दी वो उसको पिनक हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो वो मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर है। और जो निब्बी वाला कैरेक्टर है वो मैंने किसी को देखा है ऐसा करते हुए। तो ये जितनी भी चीजें आपकी रियल लाइफ से ही आती हैं, मेरे हिसाब से आप उसी से उठाते हो चीजें और उसी से प्रेरित होके फिर आप आगे बनाने की कोशिश करते हो। बस उसको लिखने का और चीजें करने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना पैटर्न है करने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी, कैसे शुरू किया जाए?
1: पहले शुरू करो, क्योंकि लोग ना हेजिटेट होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है, मेरे ही दोस्त मेरे को ऐसे बोलते थे, अबे क्या कर रही है, ये सब कहाँ, नहीं होने वाली फेमस, तेरा नहीं होने वाला, तेर से नहीं होगा, बहुत लोगों ने मुझे बोला। फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी डाली जिसपे मुझे क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये क्या बना दिया। फिर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आपकी फैमिली स्टार्टिंग में ही आपको सपोर्ट करने लग जाती है, फैमिलीज भी नहीं करती क्योंकि ऑब्वियस है पैसा नहीं मिल रहा और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गरीब नहीं देखना चाहता जैसे कहते हैं, तो बस वही वाली बात है। तो आपको पहले स्टार्ट करना है सब चीजें छोड़ के, और आपको रेगुलर रहना है एक तरीके से अपने काम के साथ। जैसे रोज सांस लेते हो ना, वैसे ही करना है इसको कि रोज राइटिंग करनी है, रोज एक वीडियो पोस्ट करनी है, तो फिर धीरे धीरे आपको अपनी गलतियां भी नजर आने लगेगी, आपको पता लग जाएगा कहाँ से क्या चीज पॉलिश करनी है, क्या चीज अच्छा करना है या क्या मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। जैसे मैंने भी ऐसे ही सीखा है कि क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ। कुछ लोग भी बता देते हैं कि यार इस वीडियो में ना तू अगर ऐसे करती जैसे तूने रियल में बोला था तो और अच्छा लगेगा, तो वैसे होता है। तो आपको बस स्टार्ट करने की देरी है, और आपको बहुत कम लोग होंगे जो पुश करेंगे, शायद आपको कोई पुश भी ना करे, पर आपको ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास मैं हूँ, जैसे मेरे पास मैं हूँ, तो वो होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर, बी योर बिगेस्ट चीयरलीडर, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। बहुत खूबसूरत। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील।

0: फील गुड फील लाइव। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मजा आ रहा है, यहाँ तक जो बातचीत चल रही है उम्मीद कर रहा हूँ आपके आसपास की बात हो रही है, रिलेट कर पा रहे हैं आप थोड़ा सा। रीजन बीइंग की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो आप देखते हैं बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लाने का जो पर्पज है वो यही होता है कि सो दैट वी शुड एक्सप्लोर ऑल दीज थॉट्स, वी शुड एक्सप्लोर व्हाट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स। आज हमारे साथ यहाँ पर जैस्मिन है, तो जैस्मिन से हमने अभी तक बात करी है कि एग्जैक्टली ये कैसे करते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, और किसी नए इंसान को स्टार्ट करना है तो कैसे किया जाए। तो अभी तक जो बातचीत हुई उसमें इतना समझ में आया कि इग्नोर द क्रिटिसिज्म, सी द बिगर पिक्चर, जस्ट क्रिएट इट। ओके जैस्मिन, मैं ये भी बात करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों में दिमाग में ये थॉट होते हैं कि कॉन्टेंट क्रिएशन से सर्वाइवल कैसे हो पाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ होता है।
1: दाल चावल का जुगाड़ ऐसा होता है कि जब आप रेगुलर करने लगोगे ना, तो आपको भी समझ आने लगेगा कि बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे अब आप व्लॉग चैनल हो तो यूट्यूब से भी आपको यूट्यूब मोनेटाइज होगा, आपका फेसबुक मोनेटाइज होगा, तो उससे आपको एक बेसिक इनकम आने लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ही आएगी, स्टार्टिंग में कम ही आती है, मेरी भी कम ही आई थी और अभी भी कमी आती है, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी आती है ना। तो ये होता है आपका धीरे धीरे दाल चावल। आप जाते ही जॉब में आपको ऐसा तो नहीं होता ना कि मंथ पूरा होने से पहले ही बंदा आपको सैलरी दे देता है, आप उसे एक महीने को काटते हो ना, तो आपको वही टाइम काटना होता है। अब जिसमें स्किल्स है सरवाइव करने की वो सरवाइव कर जाता है, और जिसमें नहीं है तो वो बहाने दे देता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फाइनेंशियल इशू मेरे को भी रहे हैं, मेरे घर में मेरे फादर बीमार भी रहते हैं और मेरे भैया ही हैं कमाने वाले, तो मैंने भी फाइनेंशियल इश्यूज फेस किए हैं, पर मैंने हार नहीं मानी उस टाइम पे। और मेरे बिगेस्ट चीयर लीडर मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे बोला है, कुछ कुछ लोग जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों ने बेसिकली कि नहीं हो जाएगा आज नहीं कर...

0: सैटरडे संडे भैया छुट्टी चाहिए मेरे को, कि नहीं हो पा रहा बिल्कुल, है ना, दिमाग वो हो गया कि अब बस स्टॉप लग जाए यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2400 घंटे सिर्फ जॉब जॉब जॉब, 9 to 5 की जॉब, यू नो, है ना, तो सबको पता है कि ऐसा होता है. तो सेम क्रिएटर्स लाइन में भी ऐसा होता है कि सबको ब्रेक चाहिए होता है. एक मूवी बनने के बाद सब लोग वीकेंड घूमने जाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, कोई इवेंट पे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मैनी पेडी करा रहा है ना, कोई मसाज ले रहा है, तो सबको चाहिए होता है एक थेरेपी सेशन. आपके साथ भी ऐसा होगा, पूरे टाइम कंटेंट में लगे रहोगे तो फिर ऐसा नहीं है ना कि कंटेंट कभी खत्म ही नहीं हो रहा, कभी तो खत्म होगा आपके पास. फिर उसके लिए भी आप ऐसा करो ना कि मूवीज देखो, बुक्स पढ़ो, अपने आसपास गैदरिंग्स में जब जा रहे हो तो उनको ऑब्जर्व करो, बहुत सारी चीजें हैं. आप थोड़ा ट्रैवल करो, घूमने जाओ, वहां से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं. अभी एक क्रिएटर है अंकुर अग्रवाल, उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक वीडियो बना दी है, वो पहाड़ बने हुए हैं और उन्होंने रिलेट कर दिया कि पहाड़ क्या फील करते होंगे जब लोग उन पे चढ़ते होंगे या लोग उन पे थूकते होंगे या कुछ करते होंगे. तो ये सब वैसे ही आ रहा है ना कि वो घूमने गए होंगे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि यार पहाड़ पे जाते हैं लोग तो ये करते हैं, तो पहाड़ को कैसा लगता होगा. और बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि हम तो सोचते ही नहीं है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हाँ, तो ये ऐसे ही आता है.
1: ओके, सो कैसे ओवरकम किया जाए उसको, जब वो आता है तो कैसे वापस से ट्रैक पे आया जाता है? कभी आपके साथ ऐसा
0: पहले
1: हुआ है?
0: तो हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, अभी रिसेंट भी हुआ है मेरे साथ. मैं बीमार हो गई थी तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर अगर अच्छा हो, आपके आसपास अपने लोग हों जो आपको प्रेशराइज ना करे कि भाई तू कंटेंट ही नहीं बना रही, तेरा तो ये हो जाएगा, अब तो नहीं चलेगा तेरा पेज, डिमोटिवेट करने की जगह जो आपको ये बोले कि छोड़ ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहे भाई, ऐसे लोग हो तो फिर आप उस चीज से जल्दी निकल पाते हो. दूसरी चीज, आप उस टाइम पे ये हिम्मत मत हारो कि काम नहीं हो पाएगा. उस टाइम आप कोशिश करो कि मैं कहाँ से क्या चीज गेन कर सकती हूँ. तो मैंने उस टाइम मूवीज देखी है, अपने आप को मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, मैंने सीरीज देखी बहुत सारी, मैंने बुक्स पढ़ी और लोगों से मिलती रही. मैंने अपने आप को अकेले बंद नहीं किया कि नहीं काम नहीं हो रहा तो मैं किसी को शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी, या लोग अकेलेपन में बंद कमरा और ये सब जो मूवियों में चलता है आजकल की बंद हो जाती हूँ सब ठीक हो जाएगा. नहीं, आपको जितना एक्सपोजर अपने आप को देना है वो आपको देना ही पड़ेगा. अंदर रहने से कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर से अंधेरा है.
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर. तो आपको वापस से अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा आपको. बिल्कुल
0: रोशनी के लिए गेट खोलना ही पड़ेगा आपको, आप बंद कमरे में कुछ नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल. अब बहुत उत्तम. तो जैस्मिन, यहाँ पर मेरे सवालों का पिटारा जो है बंद होता है, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं. कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री.
0: प्लीज अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करें कंटेंट बनाने के लिए, और दूसरा थैंकफुल रहें उन लोगों के जिन्होंने आपको सपोर्ट किया. जैसे मैं अपने लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज भी करते हैं. उनमें से बहुत सारे क्रिएटर्स भी हैं, सागर भैया खुद हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं. तो प्लीज उन लोगों के थैंकफुल रहें, उनसे कभी दूर ना हो, और अपने काम को करते करते उनको मत भूल जाना जो पीछे, जिनको छोड़ा है वो आप आगे बढ़ने के लिए.
1: बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात बोली है जसमीन ने. एंड मैं तहे दिल से यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा जसमीन. आपने बहुत लंबा संघर्ष रहा है आपका, बहुत सारी चीजें आपने अपने जीवन में झेली हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, उतार बहुत लंबे लंबे गहरे गहरे आए हैं, लेकिन आपने चेहरे पर मुस्कुराहट रख के हमेशा अपने जीवन को आगे की तरफ देखा है. तो ढेर सारा प्यार आपको और शुभकामनाएं आपको. ऐसे ही जमे रहें, इतने ही सुंदर बनी रहें, इतने ही अंदर की अपनी इंसानियत को जगाए रखें ताकि आपके आसपास लोगों को वो स्पेस मिले जिससे वो आपके पास आ सके, कुछ बोल सके. और मुझे लगता है किसी भी इंसान की सबसे बड़ी उपाधि है कि आपके आसपास के लोग आपके पास आके बैठ सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं. ये आपकी बहुत बड़ी कमाई है.
0: थैंक यू सो मच.
1: तो ये मैं दिल से दुआ करता हूँ आप ऐसे रहें. और अब इसी के साथ दोस्तों, वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का. उम्मीद कर रहा हूँ जैस्मिन से बात करके आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है एग्जैक्टली हाउ दिस कंटेंट इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ टू कोप अप विद द क्रिएटिव ब्लॉकेज, कैसे स्टार्ट किया जाता है, पैसा कैसे होता है, एंड सो जस्ट डू इट सिंपल. फिलहाल इसी नोट पर मुझे इजाजत दीजिए. आशा करता हूँ शो आपको पसंद आया होगा. कोई फीडबैक है मेरे लिए या जैस्मिन के लिए, सो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बहुत आसान है, 8010781078. इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइए. फिलहाल मैं चलता हूँ. Now this is your host and host, Tarjay Sagar, signing off.

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। देखिए किसान भाइयों, बात हो रही है अरबी के बारे में। अब फसल कोई भी हो, मिट्टी का जब तक जिक्र ना हो, मिट्टी की बात ना हो, तब तक बात अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहली बात यही है कि हम मिट्टी का कैसे इस्तेमाल करें और मिट्टी वो कौन सी हो जो कि हमारी इस फसल यानी अरबी के लिए लाभदायक हो। तो किसान भाइयों, अरबी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर ये रेतली दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। घटिया निकास वाली मिट्टी में इसकी खेती बिल्कुल ना करें। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस्में वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि बहुत सारी किस्में होती हैं और अच्छी किस्म का आप चयन करते हैं तो आपकी फसल बेहतर होती है और लाभ भी आपको बेहतर मिलता है। सबसे पहले बात करूंगा उस किस्म की जिसका नाम है पंजाब अरबी एक। इसके पौधे पर बड़े तिरछे सीधे हरे पत्तों वाले और कद में लंबे पत्तों वाले होते हैं। डंठल के आधार पर लंबी आवरण होती है। इसके फल सामान्य लंबे और काफ़ी मोटे होते हैं। इसके फल भूरे रंग के और गूदा अंदर से क्रीम रंग का होता है। ये किस्म 175 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो औसतन पैदावार है वो 90 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो किसान भाइयों, मिट्टी और किस्मों के बारे में तो आपको मैंने बता दिया है। आगे आपसे बात करूंगा ज़मीन की तैयारी के बारे में, बिजाई के बारे में, क्योंकि ये सारी बातें जानना ज़रूरी हैं। तो बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदा।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बिजाई के बारे में। भाई देखिए, अरवी की आप फसल जब बोएंगे तो उसकी बिजाई का तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजाई का समय क्या हो। उचित पैदावार के लिए फरवरी महीने के पहले पखवाड़े में गांठों को नर्सरी बेड़ों पर बोएं और फासला पंक्ति से पंक्ति में 60x15 या 45x20 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। बिजाई की गहराई की बात करें तो गांठों को 6 से 7.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और एक बिजाई का जो ढंग है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गांठों की हाथों से बिजाई की जाती है, बीजों को मिट्टी में गहराई से बोया जाता है। गांठों की बिजाई गड्ढे खोद कर की जाती है और इसके अलावा इसकी बिजाई आलुओं की तरह मशीन से भी की जा सकती है। लेकिन एक प्रश्न है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए या बीज का उपचार भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ खेत में 300 से 400 किलो गांठों का प्रयोग करें। बीज के उपचार की बात आती है तो बीज के उपचार के लिए बवस्टीन के 2% घोल में 30 मिनट के लिए गांठों को भिगोएं। ये गांठों को मिट्टी में पैदा होने वाली जो बीमारियां होती हैं ना, उन बीमारियों से सुरक्षित रखता है। तो इसलिए बीज का उपचार भी ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है खाद पानी की, भाई कोई भी फसल हो, खाद पानी अच्छा नहीं मिलेगा तो वो फलेगी फूलेगी कैसे। खाद पानी तो अगर हमें और आपको भी सही से ना मिले तो हमारा भी जीवन कैसे फलेगा फूलेगा। तो बताऊंगा, खाद के बारे में भी आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है अरवी के बारे में। पीछे आपसे जिक्र किया था बीज का या बिजाई का ढंग क्या होता है, बिजाई की गहराई क्या होती है, ये सारी बातें आपको बताई थी। पर अब बात करूंगा खाद के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बिजाई से पहले गली हुई रूड़ी की खाद 40 से 62.5 क्विंटल प्रति एकड़ में डालें और शुरुआती खाद के तौर पर यूरिया 90 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 125 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो प्रति एकड़ डालें। बिजाई के समय पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा डालें। पहली बिजाई के समय नाइट्रोजन की मात्रा 2 हिस्सों में डालें और बाकी की बची हुई मात्रा गुड़ाई, निराई और मिट्टी चढ़ाने के समय डालना चाहिए। अब इतनी मेहनत करने के बाद अपनी फसल को आप अच्छे से खाद पानी तो दे देते हैं, पर जब बात आती है खरपतवार की तो वो आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। तो किसान भाइयों, खेत को नदीन मुक्त करने के लिए 1 से 2 कसी से गुड़ाई करें और हर एक गुड़ाई के बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। इससे जो खरपतवार है वो खरपतवार कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि उस पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और जब खरपतवार पर नियंत्रण हो जाएगा तो आपकी फसल खूब अच्छे से फलेगी, फूलेगी और आपको उसका दाम भी अच्छा मिलेगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, अरवी के बारे में आपसे बात हो रही है और पीछे मैंने आपको समझाया था खरपतवार के बारे में, इसके अलावा बात की थी खाद की, तो खाद और खरपतवार के बारे में तो बात हो चुकी है, अब बात करेंगे सिंचाई की। देखिए किसान भाइयों, जरूरत से पहले सिंचाई फसल की बढ़िया पैदावार के लिए बहुत लाभदायक होती है। हाँ, और अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में सिंचाई 3 से 4 दिनों के फासले पर करें और बारिश के मौसम में सिंचाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, पर कई बार ज़रूरत के मुताबिक जीवन रक्षक के लिए सिंचाई ज़रूरी होती है। इस फसल को नियमित अंकुरण के लिए स्थिर सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बिजाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। बीजों के अंकुरण तक खेतों में नमी बनाए रखें। इसके अलावा दोस्तों देखिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब बीमारियों से कैसे रोकथाम की जाए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे रोग के बारे में जिसको जाना जाता है पत्ता झुलस रोग। इस बीमारी का हमला मुख्य तौर पर बारिश के मौसम में रात का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और दिन का 25 से 28 डिग्री सेल्सियस होने पर होता है। इससे पत्तों पर पानी के गोल धब्बे बन जाते हैं जो सूखने के बाद पीले और गहरे जामुनी रंग के हो जाते हैं। अब सवाल आता है रोकथाम कैसे की जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। पत्ते के झुलस रोग की रोकथाम के लिए डीथेन M45 400 से 500 ग्राम को 100 से लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 14 दिनों के फासले पर प्रति एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरह की बीमारी जिसका नाम है पत्ता झुलस रोग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वायरस के बारे में जिसको जाना जाता है एलोमाई या बोबोन वायरस के नाम से। ये बैसिलाइस वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इस बीमारी से झुर्री और विशाल पंख वाला चितकबरा रोग बन जाता है। इसकी अगर आप रोकथाम करना चाहते हैं तो इसकी रोकथाम के लिए रोधक किस्मों का प्रयोग करें और क्षतिग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़ फेंक दें। एक और रोग होता है जिसका नाम है दाशीन का चितकबरा रोग। ये एक विषाणु वाली बीमारी है किसान भाइयों, जो चेपे के कारण होती है। इस बीमारी के लक्षण ठंडे महीनों में देखने को मिलते हैं और इससे नाड़ी का चितकबरा फैल जाता है और पत्तों पर अलग अलग किस्मों में निशान बने हुए साफ दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अरवी की अलग अलग किस्में उगाएं, जिससे आपकी फसल को किसी भी तरह की कोई भी हानि ना होने पाए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, अरवी के बारे में बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। अब भाई, फसल हमारी झूमती झूमती तैयार हो चुकी है। अब बात आती है फसल की कटाई की। देखिए किसान भाइयों, इस फसल की पुटाई पत्ते पीले पड़ने पर बिजाई के बाद 175 से 200 दिनों में की जा सकती है। नर्म अरवी की पुटाई के लिए अगेती पुटाई करें। पुटाई के काम को ज़्यादा आसान करने के लिए खेत को अच्छी तरह से पानी लगाएं। इसकी पुटाई कसी या हाथ वाले औजारों के साथ की जा सकती है। पुटाई के बाद अरवी को साफ किया जाता है और फिर छटाई की जाती है। पर कटाई के बाद क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। पुटाई के बाद अरवी को ठंडी और शुष्क जगह पर बीज उत्पादन के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ठंडी और शुष्क जगह पर स्टोर करने से अरवी को गलन रोग से बचाया जाता है और अरवी को कोल्ड स्टोर या गड्ढों में भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी है अरवी के बारे में, और अरवी से जुड़ी जितनी भी बातें थीं सारी बातें आपके साथ साझा कर ली हैं। पर अब आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ और चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है रचनाकार मधु कांकरिया के बारे में। उनके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। उनका कहना है कि हर एक देश का, समाज का अपना स्वतंत्र बोध होता है और युग बदलने के साथ साथ उसका बोध भी बदलता रहता है, जिसका रूप साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरह व्यक्ति और समाज एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक उसी तरह साहित्य और युग बोध भी अनुपूरक हैं। एक के बिना अन्न की कल्पना असंभव है, ऐसा कहना है मधु कांकरिया का। लेकिन इनके बारे में आज के एपिसोड में और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, मधु कांकरिया का युगबोध सजग, सतर्क और स्पष्ट है। अपनी कहानियों में उन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को भली भांति भांप कर यथार्थ वर्णन किया है। जो प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, समस्याएं उन्हें एक बेहतर समाज के निर्माण में बाधक प्रतीत हुई हैं, उनका हल प्रस्तुत करने का यत्न भी एक शुद्ध साहित्यकार की भांति किया है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण मधु कांकरिया की कहानियों में समाज का वास्तविक यथार्थ अंकित हुआ है, जहां कल्पना के अटने की ज्यादा गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। सूरज पालीवाल के मुताबिक मार्क्सवाद जीवन और जगत को देखने की स्वस्थ दृष्टि देता है, जिसका प्रभाव मधु कांकरिया के जीवन और रचना जगत में देखा जा सकता है। वो मार्क्सवादी नहीं है, लेकिन उसकी विरोधी भी नहीं है, इसलिए उनकी रचनाओं का आकाश विस्तृत है। घर परिवार की सीमाओं का जो बार बार अतिक्रमण होता है, उसके सूत्र इसी मार्क्सवाद के प्रभाव में देखे जा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मधु कांकरिया का रचना संसार बहुत विस्तृत है, जिसके कारण वो अपने समकालीन रचनाकारों जैसे मालती जोशी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, राजी सेठ, अनामिका, उषा प्रियंवदा, सुधा अरोड़ा, नासिरा शर्मा और सूर्य बाला से अलग और विशिष्ट हैं। दोस्तों, मधु कांकरिया के व्यक्तित्व का खुला दर्शन उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। वो ड्राइंग रूम में बैठकर लिखने वालों में से नहीं हैं। वो उन गलियों में जरूर भटकती हैं जहां उनके पात्र हैं। वो फॉर्मूला टाइप कहानी में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। जीवन जैसा है उसको वैसा ही साहित्य में उतारने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। जीवन में जो स्त्री हार रही है उसे वीर बाला या झांसी की रानी बनाकर बहुत नहीं दिखाती हैं। यही उनकी लेखन की खासियत है जो और लेखकों से उनको अलग करती है। इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में, उनके लेखन के बारे में। मधु कांकरिया की हर एक कहानी समकालीन दौर से इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक पाठक खुद को उसमें जरूर पाता है। अगर स्त्री की बात करें तो 20वीं सदी के अंतिम दशक की लेखिकाओं ने स्त्री मुक्ति की समस्याओं को अपने अनुभवों, भोगी हुई जिंदगी की यातनाओं, मुक्ति की छटपटाहट और बेचैनी को वाणी प्रदान की है। आज की स्त्री अपने सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार करती है, सामंती परिवेश की जकड़न और रूढ़ मर्यादाओं को तोड़ती है, साथ में सकारात्मक रूप से अपने दृढ़ व्यक्तित्व को भी वाणी प्रदान करती है। मधु कांकरिया की कहानी, जिसका नाम है दाखिल, कहानी दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन का जिक्र हुआ है। अब सुकीर्ति के बारे में किस तरह से जिक्र किया है मधु ने, आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मधु कांकरिया की उस कहानी का जिसका शीर्षक है दाखिल। दाखिल में पति द्वारा प्रताड़ित स्त्री यानी सुकीर्ति के जीवन संघर्ष का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। सुकीर्ति के प्रति पति का व्यवहार कैसा था, ये छोटे से विक्रम यानी जो बेटा है उसके कहने से पता चलता है कि मैंने फेंके हैं ये चाकू यहाँ, मुझे डर था कहीं पापा गुस्से में ये चाकू ही तुम पर ना फेंक दें। उस दिन जो गरम गरम चाय किस तरह फेंकी थी पापा ने आपके ऊपर। दोस्तों, सुकीर्ति अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराना चाहती है, लेकिन पति के ना होने से ये काम सहज नहीं था। वो अपने भाई को पति बनाकर बच्चे के एडमिशन का प्रयास करती है और आखिरकार अनेक संघर्ष के बाद वो इसमें सफलता पाती है। पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली स्त्री का जीवन बहुत ही कठिन और संघर्षशील होता है। पुरुष के बिना नारी के अस्तित्व को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये हकीकत है और यही सत्य है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, भारतीय नारी के विषय में पहले से ही पवित्र संकल्पना रही है कि वो किसी भी प्रतिकूल या नकारात्मक स्थिति में अपने सतीत्व का विसर्जन नहीं करेगी, क्योंकि ये नारी का आभूषण है। उसकी पवित्रता पितृ सत्ता की वैचारिकी और उससे तराशी स्त्री सोच से आबद्ध रही है, लेकिन आज के युग तक आते आते इस दृष्टिकोण में काफी कुछ

कुछ बदलाव आए हैं। जीवन मूल्य के प्रति बदले हुए चिंतन के कारण वर्तमान में स्त्री स्वतंत्रता के साथ जीवन बिताना चाहती है। अगर उसकी स्वतंत्रता पर जबरदस्ती लगाम लगा दी जाए तो उसका मन आजादी के लिए तड़पने लगता है। वो किसी न किसी तरह स्वतंत्र होने की सोच में डूब जाती है। फिर रास्ता कोई भी हो, सही हो या गलत हो, उसे परवाह नहीं रहती। दोस्तों, मधु कांकरिया की एक कहानी है जिसका नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। इस कहानी के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है मधु कांकरिया के बारे में और उनकी लेखन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, उनकी एक कहानी है जो कि बड़ी मशहूर है, नाम है चूहे को चूहा ही रहने दो। ये कहानी एक प्रतिशोध परायण स्त्री का बयान बनती है। एक बार नायिका हिम्मत करके अपने छोटे भाई के मित्र से हाथ मिला लेती है तो उसका पति उसके हाथों को दीवार पर रगड़ देता है ताकि स्पर्श के चिन्ह मिट जाएं। नायिका कहती है, मेरे पति ने मेरी देह की जमीन पर ऐसी हदबंदी कर दी थी, ऐसे कटीले बाड़े डाल रखे थे कि मैं किसी हम उम्र इंसान से बात करने तक तरस जाया करती थी। पति से बदला लेने के लिए एक अजनबी से शारीरिक संबंध बनाकर घोषित करती है, हाँ आज की ये रात अकस्मात नहीं थी, इसके मेघ खंड मेरे अवचेतन में जाने कितने वर्षों से खंड खंड इकट्ठे हो रहे थे, आज की रात मेरे प्रतिशोध की रात है। तो इस तरह से दोस्तों मधु कांकरिया ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में फैली जो कुरूतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया और जो स्त्रियां हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की। इनके बारे में अगले एपिसोड में आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगा। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। जी हाँ दोस्तों, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ संडे शाम 4 से 5 आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक, जहाँ पर होती है बात हमारी। जी हाँ, हमारी इसलिए क्योंकि हम सब ट्रेंडिंग टॉपिक की ही बात करते हैं ना, है ना, क्योंकि चाहे बात हो सोशल मीडिया की, या बात हो हमारी सोसाइटी की, बात हो देश की, या बात हो विदेश की, हर टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं, हर टॉपिक को हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत से गाने भी। जी हाँ, गानों से तो सबको प्यार है, गाने सुनकर कभी लोग सैड होते हैं तो गाने सुनते हैं, हैप्पी होते हैं तो गाने सुनते हैं, कभी ऐसे मूड क्या है समझ में नहीं आता है तो गाने सुन लेते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं तो गाने सुन लेते हैं, तो इसलिए गाने भी उतने इम्पॉर्टेंट है जितने की कोई बात होना। तो मैं आ गई हूँ आपके पास, हाजिर हूँ लेकर एक और खास इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, एक मीनिंगफुल और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक, और इसी के साथ क्योंकि शुरू हो रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स की

सिर्फ ट्रेंड ही नहीं करते हैं बल्कि हमारी लाइफ और सोसाइटी से भी कनेक्ट होते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स इक्वालिटी डे पर। जी हाँ, वुमेन्स की आज खास तौर पर बात होने वाली है, क्योंकि भाई अब हम देख रहे हैं जब कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, वुमेन्स जो आज के टाइम में कितनी तरक्की कर रही है, पर एक समय ऐसा भी था जब हम देखते थे कि वुमेन्स को कुछ नहीं समझा जाता था, शायद कोई इक्वेलिटी नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। पर आज के टाइम में देखें तो बहुत सी चीज़ें बदल गई है। जी हाँ, 26 अगस्त ये एक खास दिन होता है जब साल में वुमेन्स इक्वेलिटी डे के रूप में इस चीज़ को मनाया जाता है। नाम सुनते ही सबसे पहले एक वर्ड दिमाग में आता है और वो होता है इक्वेलिटी। जी हाँ, यानी कि बराबरी। लेकिन क्या हमने कभी एक्चुअली सोचा है कि इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? क्या एक वुमेन को मेन से कॉम्पिटिट करना है? बिल्कुल भी नहीं। इक्वेलिटी का सिंपल सा मतलब है हर इंसान को अपने सपनों को चूज करना, अपनी एबिलिटीज को दिखाने और लाइफ में आगे बढ़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। जी हाँ, अगर एक लड़का अपना करियर चूज कर सकता है तो एक लड़की भी अपना करियर खुद चूज कर सकती है, और इसका हक होना दोनों को बराबर चाहिए। अगर एक बेटा अपने सपनों को फॉलो कर सकता है तो बेटी भी अपने सपनों को फॉलो कर सकती है। उसे सपोर्ट मिलना चाहिए उस चीज के लिए कि तुम भी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात तो ये है इसमें कि इक्वालिटी किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं होता है, बल्कि इक्वालिटी का मतलब होता है सबको ऊपर उठने का मौका देना। जी हाँ, आज हम वुमेन्स को हर फील्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाते हुए देख रहे हैं। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, मीडिया हो, या फिर लीडरशिप क्वालिटी क्यों ना हो, वुमेन कंटिन्यूसली प्रूव कर रही है कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर वो क्या कुछ अचीव करके नहीं दिखा सकती है। लेकिन इक्वालिटी की जर्नी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर से ही शुरू होती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने घर से उसकी शुरुआत करनी है। जब पेरेंट्स अपनी बेटी को उसके सपनों को सीरियसली लेते हुए जब इसकी फ्रीडम देते हैं ना, और जब फैमिली उसके डिसीजन पर ट्रस्ट करने लगती है, और जब वर्कप्लेस में टैलेंट को जेंडर से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी से जज किया जाता है, तब रियल इक्वालिटी क्रिएट होती है। तो आज का ये ट्रेंडिंग तड़का, जिसमें हम सिर्फ वुमेन इक्वालिटी डे के बारे में ही बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम बात करेंगे उस कॉन्फिडेंस की, सपनों की, अपॉर्चुनिटी की, जो उन वुमेन्स को, जो उनकी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर कर रही है। और एक थॉट के साथ आज की जर्नी को शुरू करते हैं कि इक्वालिटी का मतलब किसी के आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि हर किसी को अपने बेस्ट वर्जन में पहुंचने का मौका देना ही इक्वालिटी है। तो बस इसी के साथ, जब मैंने अभी शुरू में बोला कि प्यार प्यार से गाने भी लेकर आई हो, तो वो भी सुनेंगे। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि पूरे एक घंटे का सफर है, तो आपको मैं बोर नहीं करूंगी, सुनाऊंगी बहुत ही प्यार सा गाना। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और दोस्तों, आज हम ट्रेंडिंग तड़का में एक स्पेशल टॉपिक के साथ चल रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ आज हम चल रहे हैं, वो है विमेंस, यानी कि विमेंस इक्वालिटी डे। विमेंस इक्वालिटी की बात आज की जा रही है, एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एक दिन तक ही लिमिटेड नहीं होता बल्कि हमारी डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमने बात की कि इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी जर्नी की जो बहुत सुंदर भी है और इंस्पायरिंग भी, कि बेटी से लीडर तक की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब सोसाइटी में लड़कियों को कुछ रोल्स पहले डिसाइड कर दिए जाते थे कि तुम्हें बस इतना ही करना है। उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आज की बेटी सिर्फ अपने घर का नाम ही रोशन नहीं करती है बल्कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी बना रही है। कोई डॉक्टर बनना चाहती है तो कोई टीचर, कोई साइंटिस्ट, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन तो कोई आरजे, जर्नलिस्ट या फिर फिल्म मेकर। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज बहुत सी जो लड़कियां हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए डरती नहीं है, ये नहीं सोचती कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, बल्कि वो मेहनत भी कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि टैलेंट किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। जी हाँ, टैलेंट को बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक चांस चाहिए और कभी कभी सिर्फ एक इंसान चाहिए जो कहे तुम कर सकती हो, और ये सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बेटी अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। अगर उसके पेरेंट्स उसका मजाक बनाने के बजाय उसे कहें ठीक है बेटा मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो शायद एक सेंटेंस से उसकी पूरी दुनिया ही बदल सकती है। इसी तरह एक लड़की जब कॉलेज में अपना करियर चूज करती है, वो एक विमेन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, या फिर कोई फीमेल एथलीट जब फील्ड में उतरती है, हर स्टेप सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देता है। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ किसी बड़ी पोजीशन पर होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप का मतलब होता है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चैलेंजेस के सामने खड़े रहना और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना। तो अगर आपके आसपास कोई बेटी, कोई बहन, कोई फ्रेंड, कोई कलीग या फिर कोई माँ अगर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है, तो उसे कंपेयर करने की बजाय उनका ना सपोर्ट सिस्टम बनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आप एक बार सपोर्ट कर तो देखिए, क्योंकि एक सिंपल सा एनकरेजमेंट कभी कभी किसी का कॉन्फिडेंस और टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और आज का इसी के साथ एक पॉजिटिव थॉट, हर बेटी के सपने को एक मौका दीजिए, क्योंकि पता नहीं कल वही बेटी कितनी जिंदगियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ अर्जी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं विमेन्स इक्वालिटी की। जी हाँ, अब तक

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है।

गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है, तुम्हें ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी, और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है, ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया, ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है। सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं, इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है, उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसने जोड़ता जाता हूँ, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं, और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है, उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा, तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे। अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे, उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ। वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ। पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा, पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता, और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं।
जो है था और रहेगा, इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है, सोचो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है, या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी, अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहां संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहां से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है, जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है, क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं, जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या, अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा, जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या, सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है, आखिर उनसे न रहा गया, और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था,
आंखें बड़ी प्यारी थी। साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने लगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी हैं हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरणों में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में इच्छा है कि सिर को कोई बड़ा मूल्य है, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की। इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो
तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम

तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है, वो तो कहता आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पगध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इन

0: इंद्रधनुष है मगर वायवी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी देहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रोक रुके रह जाना, झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है, मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ, मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा, तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो, तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है, तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना, मिटकर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया, आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी, श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी, तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ, लेकिन तुम तो वही के वही हो, ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता, असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती, जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है, और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा में, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं, सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन से ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़। इसलिए तो बुद्ध, नानक, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता। मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारण का तुम यही सोच रहे होगे, तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अर्चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जच भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो,
1: और ये अब तक की सड़ी गली श्रद्धा को तुम फेंको। इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है। क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा? अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है। तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरे उतर जाएगा। और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी आसान है। अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ। फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता। मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना? कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया। ईमान आ गया इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो। इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी। ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो। अचानक तुम पाओगे अशांति गई, और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी। क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे? तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे होगे, तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख
0: हमारी व्याख्याएं सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों? पूछा पूछने वाले ने। क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना। असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा? जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है। इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो, और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेशु मनुष्येशु बेहरा मनुष्य का आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझें। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी सांख्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक सांख्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। सांख्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सच्चा है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। आसार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं, उनके शब्द शब्द में अर्थ और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर हैं। और मालिक इनके पीछे खिंचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है। और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़ा शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे, जो अंतिम होने में समर्थ है। इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी हूं। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती है तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सो कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं. और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing.
5: Right.
4: क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा.
5: Absolutely.
4: लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself. What we don't realize is it's not just for myself. It's for my family also.
4: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक, कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हम आपस वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
4: और ये मेरे लिए जरूरी
5: है. दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग. टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. तो सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
5: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना है। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी, तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे

0: पेन रिलिव करते जाते हो तो ज्यादा पेन कौन दे रहा है? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी द लॉस इज ओनली माइन. आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली. मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी. और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव. सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूँ.
1: पेन में हूँ
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ. इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है. अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो. और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ. एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी. अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन. आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं वो, तो वो कौन सी विल पार है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई विल कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट, क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं,

0: जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं, अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ होता है. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: ट्रू.
1: बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right, but we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin bar bar keh kar ke hai aapke sath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega wo theek hai, but by saying that we're saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.